0: Ravi Kapoor. आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। आज मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व करेंगे। इस कार्यक्रम में देश विदेश से लाखों लोगों के वर्चुअल माध्यम से जुड़ने की संभावना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक विशेष योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम में 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से सदर इलाके के गैरिसन ग्राउंड में होगा। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वीं दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति आज कूनू राष्ट्रीय उद्यान में जनजातीय समुदाय चीतों की देखभाल करने वाले कर्मियों और उद्यान कर्मचारियों से मुलाकात भी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण करेंगे। इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रे तटीय रक्षा के लिए टारपीडो रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा है कि इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हो रही है। परीक्षा अंग्रेजी और 12 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे जयपुर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। श्री वैष्णव उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा विकसित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। श्री सोनोवाल ने कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की अनुचित टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। फीफा विश्व कप फुटबॉल में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के ठीक 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। अर्चना कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं सामूहिक स्वरों में ये देशगान।

0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में सुनिए डॉक्टर वंदना गुप्ता से ये योग गीत।
1: प्रायोजक हैं शिवराम जन कल्याण सेवा समिति सागर। आइए सुनते हैं डॉक्टर वंदना गुप्ता द्वारा रचित और स्वरबद्ध ये योगा गीत।

इस योग गीत के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:25 हुए हैं। आइए हम आपको हमारे आज की सभा के शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा बता दें। आपसे थोड़ी देर बाद यानी सुबह 6:30 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। गायक स्वर होगा अनुराधा मराठे और श्रीकांत पारगांवकर का। भूले बिस्वे गीतों का कार्यक्रम होगा 6:40 पर। दैनिक कार्यक्रम सुबह सुबह आप सुनेंगे आज सुबह 7:00। 7:05 पर कृषि संकेत कार्यक्रम में आप सुनेंगे खेत बचाओ अभियान विषय पर ये चर्चा। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर ए के त्रिपाठी। 7:20 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। सुबह 7:30 पर हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का सीधा प्रसारण।

सुबह 8:15 पर आप सुनेंगे बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। 8:30 पर बच्चों का मनपसंद कार्यक्रम होगा बाल सभा। 9:30 पर आप सुनेंगे रेडियो पत्रिका कार्यक्रम गागर में सागर, संकलन और निर्माण है अदिति जैन का। सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। सुबह 11:00 आप सुनेंगे प्राजित कार्यक्रम हर गांव हर आंगन हम हैं हीरो। सुबह 11:40 पर हम रैली करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्राजित कार्यक्रम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री व माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का सीधा प्रसारण। दोपहर 2:00 आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम रिले करेंगे फिल्म संगीत। शाम 5:00 आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम रिले करेंगे इस घंटे की सुर्खियां। 5:02 पर हम रिले करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से कार्यक्रम युववाणी। 5:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम मैं सागर हूँ। 5:40 पर आप सुनेंगे भेंट वार्ता, विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग, विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर श्वेता नेमा। 6:00 आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

रात 9 बजे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जारी का कार्यक्रम। रात 11 बजे आप सुनेंगे रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। तो ये थी हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ।

रीति की सुंदर रीति का अनुपम उदाहरण है दूध और जल का मिलन। दूध में मिलकर जल भी दूध के भाव बिकने लगता है, किंतु कपट रूपी खटाई के पड़ते ही पानी दूध से एक बारगी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है, प्रेम रूपी स्वाद जाता रहता है। सती के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव से आतंकित होकर शिव जी से छिपाव किया और मिथ्या वचन कहे कि उन्होंने श्री राम की कोई परीक्षा नहीं ली, किंतु सर्वज्ञ शंकर ने सब कुछ जान लिया और सती के कपटपूर्ण व्यवहार के लिए उनका त्याग करने का निश्चय कर लिया। उधर सती को अपनी करनी याद करके अत्यंत ग्लानि हुई। उन्होंने शिव का रुख पहचान लिया कि स्वामी ने उनका त्याग करने का निश्चय कर लिया है। अपने पाप की प्रतीति होने पर सती से कुछ कहते नहीं बना, किंतु उनका हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आमे के समान जलने लगा। इधर शिव जी ने अपने दृढ़ निश्चय के अनुसार वट वृक्ष के नीचे पद्मासन में बैठकर अखंड समाधि लगा ली।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ, गायक स्वर था अनुराधा मराठे और श्रीकांत पारगांवकर का। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए भूले बिसरे गीतों का ये कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं शमशाद बेगम को फिल्म आर पार बने। गीत है मजरू सुल्तानपुरी का और संगीत है ओपी नैयर का।

0: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आइए सुनते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार को फिल्म चलती का नाम गाड़ी में। गीत है मजरू सुल्तानपुरी का और संगीत है एसडी बर्मन का।
1: चलो अब चले गए, प्रश्न ही उठता, मैं तो सो ही जाता।
2: अरे बाहर निकलो,
1: मैं मरम्मत की

0: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है।

0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है, आप सुन रहे हैं कुछ भूले बिसरे गीत। और लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर को फिल्म छलिया में। गीत है उमर जलालाबादी का और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

और आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं मुकेश को फिल्म मधुमति में। गीत है शैलेंद्र का और संगीत है सलिल चौधरी का।

मुकेश के गाए इस गीत के साथ ही भूले बिसरे गीतों का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: स्पर्धा प्रातः 10 वादने आरभ्यते। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतजगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृतसाप्ताहिकी इति विशिष्टकार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड् प्रवाहिकातः रविवासरे मध्याह्ने 11:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वेऽपि एतत् श्रोतुं प्रभवन्ति। अयं कार्यक्रमः अद्यैव प्रसार्यते। इति वार्ताः।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के ठीक 7 बजे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम सुबह सुबह। श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज हम चर्चा करते हैं योग की। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि हर साल 21 जून यानी कि आज ही के दिन पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। योग हमारे भारत की सबसे पुरानी और अनमोल विरासत है। योग शब्द संस्कृत की धातु युज से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना। ये शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को एक सूत्र में जोड़ता है। श्रोताओं, 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है, इसलिए इसी से पवित्र दिन के लिए चुना गया है। योग का उद्देश्य केवल शरीर को स्वस्थ रखना नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण स्वस्थ जीवन जीना है। आज की मशीन जैसी भागदौड़ी वाली जिंदगी में मोबाइल स्क्रीन और तनाव ने हमारी नींद, शांति और स्वास्थ्य सब छीन लिया है। ऐसे में योग एक वरदान है। जी हाँ, आपने सच ही सुना है कि योग एक वरदान है। योग के अंतर्गत किए जाने वाले आसन, प्राणायाम और ध्यान हमारे शरीर को लचीला बनाते हैं, रक्त संचार बेहतर करते हैं और पाचन तंत्र सुधारते हैं और रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाते हैं। इसलिए हम हमेशा योग को अपनाना ही चाहिए। योग में सूर्य नमस्कार पूरे शरीर का व्यायाम है। योग की विशेषता है कि इसे कोई भी कर सकता है। इस योग दिवस पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम रोज अपने लिए 30 से 45 मिनट निकालेंगे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचार रहते हैं और स्वस्थ विचार से ही एक स्वस्थ समाज और स्वस्थ देश का निर्माण होता है। इसलिए आज हम प्रण लें कि आओ योग को अपनाएं, स्वस्थ रहें और खुश रहें। और योग दिवस के उपलक्ष में एक छोटी सी कविता। 21 जून का दिन है आया, 21 जून का दिन है आया, योग दिवस का परचम लहराया। 21 जून का दिन है आया, योग दिवस का परचम लहराया, विश्व भर में गूंज है आई, भारत की विधा फिर से जगाई। विश्व भर में गूंज है आई, भारत की विधा फिर से जगाई। आसन करो, सांस को साधो, आसन करो, सांस को साधो, मन हो शांत, मिले नया वरदान। सूर्य को नमन, धरती को वंदन, शरीर और आत्मा का हो मिलन। सूर्य को नमन, धरती को वंदन, शरीर और आत्मा का हो मिलन। टेंशन थकान सब हो छाया, टेंशन थकान सब हो छाया, योग का दीपक जग जगमगाया। बच्चा बूढ़ा नारी जवान, सबके लिए है योग समान। 21 जून का दिन है आया, योग दिवस का परचम लहराया। विश्व भर में गूंज है आई, भारत की विधा फिर से जगाई। चलो आज हम ये मनाएं, चलो आज हम ये मनाएं, रोज थोड़ा योग अपनाएं। स्वस्थ रहेगा तन और मन, योग से ही होगा जीवन धन्य। इसी के साथ सुबह सुबह कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम सुबह सुबह। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम कृषि संकेत। आज का विषय है खेत बचाओ अभियान और वार्ताकार है डॉक्टर ए.के. त्रिपाठी।
1: भाइयों नमस्कार। भारत सरकार किसान कल्याण एवं कृषि मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा खेत बचाओ अभियान 1 जून से 30 जून तक पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश में संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भूमि में बहुत अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों या रसायनों के उपयोग को रोकना है, साथ ही किसान भाइयों को समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना है। किसान भाइयों, किसी भी फसल के अच्छे उत्पादन के लिए 17 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें से 3 पोषक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमको प्रकृति से प्राप्त होते हैं। 3 मुख्य पोषक तत्व हैं नत्रजन, फास्फोरस और पोटास, जिनकी सभी फसलों को अच्छी ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। 3 हमारे द्वितीयक पोषक तत्व हैं कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम, जो हमारे मुख्य पोषक तत्वों के सहायक के रूप में काम करते हैं और फसल के उत्पादन को बढ़ाते हैं। इसके अलावा जो बाकी बचे हुए पोषक तत्व हैं, जैसे जिंक है, बोरॉन है, मॉलिब्डेनम है, आयरन है, ये हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। तो जहाँ पे हम बहुत हाई वैल्यू क्रॉप लगाते हैं, जैसे टमाटर है, मिर्च है और भी तमाम तरह की सब्जियाँ हैं, फूलों की खेती है, वहाँ पे हमको इन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। हालांकि विगत वर्षों में हमने सागर जिले में देखा है कि गेहूं में भी बोरॉन की कमी, गेहूं में भी जिंक की कमी, मक्के में जिंक की कमी, इस प्रकार से सूक्ष्म पोषक तत्वों की हमारी जमीन में धीरे धीरे कमी होती जा रही है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का जो प्रमुख बात है कि हम मृदा परीक्षण के आधार पर संतुलित मात्रा में उर्वरक उपयोग करें। उर्वरक उपयोग के साथ साथ प्रत्येक वर्ष किसान भाई गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या और जो भी कंपोस्ट खाद उनके पास उपलब्ध हो सकती है उसका उपयोग करें। इसके अलावा प्राकृतिक कृषि में तैयार किए जाने वाले जीवामृत और घन जीवामृत का उपयोग करें, जिससे हमारी मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, हमारी मिट्टी में सूक्ष्म जो जीव हैं उनकी मात्रा में वृद्धि होगी। इसके बाद हम विभिन्न प्रकार के जो जैव उर्वरक हैं, जैसे राइजोबियम का जो जैव उर्वरक है वो दलहनी फसलों के लिए है, PSB जो जैव उर्वरक है वो सभी फसलों में काम आता है, पोटास वाला कल्चर सभी के काम आता है, सल्फर वाला, जिंक वाला, तमाम तरह के जो कल्चर है, माइकोराइजा है, ट्राइकोडर्मा है, इन सारे कल्चर का उपयोग हम अलग अलग फसलों में, जिनको हम बीजोपचार, जैसे राइजोबियम को हमेशा बीजोपचार के रूप में उपयोग करना चाहिए, लेकिन बाकी कल्चर को हम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट के साथ मिक्स करके उसको मल्टीप्लाई करके सीधे खेतों में उपयोग कर सकते हैं। इससे हमारे पोषक तत्वों की मांग कम होगी, पोषक तत्व जो पहले से हमारी ज़मीन में पड़े हुए हैं वो हमारी फसलों को प्राप्त होंगे, उनकी घुलनशीलता बढ़ेगी और हमको रासायनिक उर्वरक की उपलब्धता कम करानी पड़ेगी। इसके बाद जो हमको खाद या उर्वरक ज़मीन में डालना है तो उसमें हमको ये ध्यान रखना है कि ऐसे उर्वरक जिनमें फास्फोरस है उनको हमेशा खेत की तैयारी के समय या बुआई के दौरान उपयोग करना चाहिए। नत्रजन की मात्रा हमको टॉप ड्रेसिंग के रूप में खड़ी फसल में उपयोग करना चाहिए। पोटास का जरूर है कि हम आधार खाद के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं और कुछ मात्रा में हम खड़ी फसल में, जब 20-25 दिन की हमारी फसल हो तो चाहे मक्का हो चाहे और कोई फसल हो उसमें उपयोग किया जा सकता है। तो कुछ मात्रा में हमको जो हमारी कन्वेंशनल फर्टिलाइजर हैं DAP, यूरिया, सुपर फास्फेट, इनका उपयोग करना है। कुछ मात्रा में हमको खड़ी फसल में जैसे जो घुलनशील उर्वरक हैं NPK 18-18-18, NPK 19-19-19, NPK 20-20-20, NPK 52-34, NPK 17-44, 12-61, 00-50, ये फर्टिलाइजर घुलनशील होते हैं और इनको हम सीधे खड़ी फसल में उपयोग करते हैं तो इनकी जो पौधों को उपलब्धता है वो 80-90% तक हो जाती है। इसके साथ साथ हमको जो हमारा फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें हमको नैनो फर्टिलाइजर, नैनो DAP, नैनो यूरिया, अभी आगे चल के नैनो NPK भी आने वाला है, इनका भी उपयोग करना है, जिससे हम जो हमारी कन्वेंशनल फर्टिलाइजर है उस पे हमारा आश्रय हमारा कम हो, जमीन का कई माध्यमों से पोषण होगा तो पौधे ज़्यादा मात्रा में उसको लेंगे और ज़्यादा मात्रा में उसको लेंगे तो हमारा उत्पादन अच्छी क्वालिटी का और ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होगा। तो इस पूरे अभियान का उद्देश्य किसानों को संतुलित मात्रा में उर्वरक उपयोग, मृदा परीक्षण और
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि संकेत, विषय था खेत बचाओ अभियान और विशेषज्ञ थे डॉक्टर ए के त्रिपाठी।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम कोलकाता में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामूहिक योग सत्र में ले रहे हैं भाग। कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज, भोपाल में 32 केंद्रों पर 13,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी शुभकामनाएं। और प्रदेश में मानसून 6 दिन लेट, आज इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत 37 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम कोलकाता में आयोजित किया जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहर के रेड रोड पर सामूहिक योग सत्र में हिस्सा ले रहे हैं।
1: 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही है। पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है।
0: इसके बाद प्रधानमंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर 3 स्वदेशी नौसैनिक पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। इन पोतों का डिजाइन नौसेना युद्ध पोत डिजाइन ब्यूरो और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। INS दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस है, वहीं INS संशोधक जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए और INS अग्रह पनडुब्बी रोधी युद्धपोत के रूप में तैयार किया गया है। नौसेना ने बताया कि इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है, जिसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। ज्यादा जानकारी दे रही हैं जबलपुर से हमारी संवाददाता सुरभि तिवारी।
2: सेना की विशेष विमान से शनिवार की शाम संस्कारधानी पहुंची महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का डुमना विमानतल पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल समेत जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने स्वागत किया। महामहिम राष्ट्रपति अब से कुछ ही देर में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को उपाधियां और स्वर्ण पदक प्रदान करेंगी। कार्यक्रमों के समापन के बाद महामहिम राष्ट्रपति विशेष विमान से ग्वालियर के लिए प्रस्थान करेंगी। जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी।
0: जबलपुर में आयोजित राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम के साथ साथ राजधानी भोपाल, पांडुना, झाबुआ, छिंदवाड़ा, आगरमालवा, धार, पन्ना, बैतूल, बड़वानी, खंडवा और शिवपुरी सहित प्रदेश के सभी जिलों में जिला स्तरीय योग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज नीट यूजी पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। भोपाल में 32 केंद्रों पर 13,774 विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। प्रशासन ने सभी केंद्रों पर CCTV कैमरे और जैमर लगाए हैं और प्रत्येक केंद्र पर डॉक्टरों की तैनाती भी की गई है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित की जाएगी, जबकि बायोमेट्रिक सत्यापन और

0: बुकिंग की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक चलेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने केंद्रों पर मोबाइल फोन, घड़ी व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया है। परीक्षा से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी।
1: आप बेखौफ अपने अपने स्थान पर अपनी परीक्षा की तैयारी के अनुसार से नीट की एग्जाम दें। नीट की एग्जाम में आपको सब परमात्मा सफल करे। सरकार के सारे प्रबंधन है, जहाँ जहाँ जैसी जरूरत पड़ रही है, जहाँ हमारे पंजीयन कराने से लेके अंदर भी जो हमारे मित्र जाएंगे उनके लिए भी हर एक जिला प्रशासन को विशेष निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि नीट का एग्जाम निर्बाध रूप से सानंद संपन्न होगा।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज एक दिवसीय राजस्थान दौरे पर रहेंगे, जिसमें वे कई महत्वपूर्ण रेलवे अधोसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। वे बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर अपने दौरे की शुरुआत करेंगे। इसके बाद जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। इसी कार्यक्रम में रेल मंत्री मेगा कोचिंग टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे, जो रेलवे रखरखाव कार्यों को आधुनिक बनाने के लिए तैयार की गई सुविधा है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल इंदौर जिले के सांवेर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 42,000 से अधिक पात्र हितग्राहियों को 2,500 करोड़ रुपए से अधिक की आवास स्वीकृतियां प्रदान की। इस अवसर पर 38,000 से अधिक परिवारों को उनके नवीन पक्के आवासों में गृह प्रवेश भी करवाया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने 2,935 करोड़ रुपए की लागत वाली 48.10 किलोमीटर लंबी इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड फोरलेन परियोजना का भूमि पूजन भी किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल रायसेन जिले के बाड़ी में आयोजित जनकल्याण शिविर को संबोधित किया। श्री चौहान ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि किसानों के सम्मान का प्रतीक है, यह राशि छोटे किसानों के लिए वरदान है।
3: यहाँ मध्य प्रदेश सरकार ने जन कल्याण शिविर भी लगाया है और कोशिश है कि अपनी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान सीधे जनता को भटकना ना पड़े इन जन कल्याण शिविरों में हो जाए। विकास की अनेकों सौगात बाड़ी को भी मिली है, विशेषकर तहसील भवन का है लोकार्पण हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार ने मूंग खरीदी की स्वीकृति मांगी थी, वो मूंग खरीदी की स्वीकृति हमने दे दी है।
0: उन्होंने कहा कि केंद्र की राशि के साथ प्रदेश सरकार भी इतनी ही राशि जोड़कर किसानों को हर साल 12,000 रुपए की सहायता दे रही है। इसके साथ ही भोजपुर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 31 नई सड़कों की स्वीकृति की घोषणा भी की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल भोपाल के बरखेड़ी कला स्थित कृषि विस्तार प्रशिक्षण संस्थान में प्राकृतिक खेती की कार्यशाला को संबोधित किया। डॉक्टर यादव ने कहा कि कीटनाशक और रासायनिक खाद के उपयोग से कैंसर जैसी घातक बीमारियां होती हैं, इसलिए सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ रही है। उन्होंने बताया कि गौपालक किसानों को सरकार हर महीने 1100 रुपए प्रति गाय की दर से आर्थिक सहायता दे रही है। सागर जिले के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने ग्राम सरखड़ी, साजी और ताजपुर में 10 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र का वास्तविक विकास जनता की सक्रिय सहभागिता से ही संभव है और उनका लक्ष्य सुर्खी के हर गांव को सुविधा युक्त बनाना है। प्रदेश सरकार की भावांतर योजना को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये योजना ई मंडी एप्लीकेशन के साथ एकीकृत डिजिटल ढांचे के अंतर्गत लागू की गई है, जिसके तहत सोयाबीन की खरीदी पूरी तरह से ऑनलाइन की गई है। इस योजना के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य और वास्तविक बिक्री दर के बीच के अंतर की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में अंतरित की जाती है। अब रुख करते हैं क्रिकेट की खबर का। श्रीलंका में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अपने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची है। अब बात मौसम की। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में मानसून 6 दिन की देरी से चल रहा है और इसके आने में अभी 4 दिन और लगेंगे। मौसम केंद्र ने 25 जून तक प्रदेश में मानसून की दस्तक देने का अनुमान जताया है। इससे पहले प्री मानसून गतिविधियां जारी रहेंगी। आज इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत प्रदेश के 37 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भोपाल, सागर, उज्जैन और रतलाम समेत कुछ जिलों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत पवन चौक में गृह प्रवेश कार्यक्रम में 167 हितग्राहियों को नए घरों की सांकेतिक चाबियां, चेक और प्रमाण पत्र बांटे गए। शिवपुरी के मानस भवन, पांडुना के ग्राम

चकुना और डिंडोरी में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। झाबुआ के ग्राम बिल्डोज में अवैध कॉलोनी विकसित करने वाले 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। कटनी में नीट परीक्षार्थियों के लिए एक विशेष हेल्प सुविधा केंद्र शुरू किया गया। बड़वानी जिले में नीट परीक्षा के 11 परीक्षा केंद्रों पर 3,845 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम कोलकाता में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामूहिक योग सत्र में ले रहे हैं भाग। कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति डॉक्टर मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। नीट UG की पुनः परीक्षा आज, भोपाल में 32 केंद्रों पर 13,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी शुभकामनाएं। और प्रदेश में मानसून 6 दिन लेट, आज इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर समेत 37 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के ठीक 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहेगी। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म गंगा की लहरें में। गीत है मजरू सुल्तानपुरी का और संगीत है चित्रगुप्त का, और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है आप सभी ने। डाबकी रोड अकोला से पत्राया है सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर। इसी गीत को सुनना चाहा है गुजरात ग्राम गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और जगदीश जौहरी ने। तो लीजिए सुनिए आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

0: पापा लाइए 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ।
1: है?
0: ए नहीं, हाँ, सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ,
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म सच्चा झूठा से। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, गीत है इंदिवर का, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का, और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है आप सभी ने कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय। इसी गीत को सुनना चाहे जवाहर नगर दुर्ग से RC कामड़े, करुणा, मीना, अश्वनी और विपुल कामड़े। तो लीजिए सुनिए आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।
5: मुझसे बात करती हूँ

जैन होने के सामने हर धर्म का धर्म है, इतना त्योहार और पर्व सिर्फ रस मजाई की बनकर रह जाती है। जबलपुर एक ऐसा शहर है जो समय के साथ चलते हुए भी अपनी संस्कृति और परंपराओं को संजोकर रखे हुए है। यहाँ का दशहरा अब पूरे देश में अपनी जगह बना चुका है और मुहर्रम यहाँ जिस अनूठे अंदाज में मनाया जाता है उसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। और आज ये शहर मना रहा है 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का अमूल्य उपहार है। ये केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि बारहवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऐतिहासिक और गरिमा में समारोह में मैं चमन तालवार आकाशवाणी जबलपुर की ओर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उप महानिदेशक श्री वलीउल्लाह खान के कुशल निर्देशन और कार्यक्रम प्रमुख श्री श्यामलाल चहलानी और कार्यक्रम अधिकारी श्री बिपिन यादव के मार्गदर्शन में आकाशवाणी की जिस क्रिएटिव टीम के माध्यम से ये प्रसारण आप तक पहुँच रहा है उसमें शामिल है वरिष्ठ अभियांत्रिकी सहायक श्री नित्यानंद त्रिपाठी और श्री आशीष पाल सहायक श्री गुरुदास सिंह ठाकुर और कार्यक्रम अनुशासी श्री नीला पाटी। जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास के इस कार्यक्रम में शामिल हजारों लोग जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल हैं पलक पावड़े बिछाए समारोह की मुख्य अतिथि देश के प्रथम नागरिक और भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वे कब आधारें और इस कार्यक्रम की गरिमा को और ऊंचाई प्रदान करें। मित्रों, संस्कार और संस्कृति का मतलब है शहर जबलपुर, जिसे भूदान आंदोलन के प्रणेता आचार्य विनोबा भावे ने यहाँ के लोगों की शालीनता संयम और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से प्रभावित होकर संस्कार धनी के नाम से विकसित किया था। यहाँ से प्रदेश के जीवन रेखा माँ नर्मदा समृद्धि लुटाती हुई गुजरती है, जिसका परिणाम है रेवा के हर कंकर को शंकर का प्रतिरूप माना जाता है। पतित पावनी नर्मदा के तट पर बसा जबलपुर आस्था और भक्ति की नगरी है। ये शहर न सिर्फ पर्व त्योहारों को मनाता है वरन उन्हें जीता भी है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उस पर्व त्योहार को मनाने वाले शहर में कितने हैं, बस ये शहर उस रंग में खुद को रंग लेता है। अमन चैन और इंसानियत हर धर्म का मर्म है, जिसके बिना त्योहार और पर्व सिर्फ रस मदायगी बनकर रह जाते हैं। जबलपुर

एक ऐसा शहर है जो समय के साथ चलते हुए भी अपनी संस्कृति और परंपराओं को संजोकर रखे हुए है। यहाँ का दशहरा अब पूरे देश में अपनी जगह बना चुका है और मुहर्रम यहाँ जिस अनूठे अंदाज में मनाया जाता है उसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। और आज ये शहर मना रहा है 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का अमूल्य उपहार है। ये केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि शरीर मन और आत्मा के संतुलन का विज्ञान है। योग संपूर्ण जीवन शैली को परिष्कृत करने की विधा का नाम है। हजारों वर्षों से योग भारतीय पद्धति का अभिन्न अंग रहा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने का श्रेय जाता है देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में अपने संबोधन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को अभूतपूर्व समर्थन मिला और 177 देशों ने इस प्रस्ताव का सह प्रायोजन किया, जो संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में सबसे अधिक समर्थित प्रस्तावों में से एक है। और अब हम सारे लोग सावधान की मुद्रा में

0: राष्ट्रगान देश की अस्मिता और गरिमा का पर्याय है, और ये पावन ध्वनि हम जहाँ पर भी हैं, जिस हालत में हैं, अगर हमारे कानों तक पहुँचती है तो हमें सावधान की मुद्रा में खड़े होकर उसे सम्मान देना चाहिए, क्योंकि ये देश की गरिमा और उसके सम्मान का पर्याय है। समारोह स्थल पर माननीय राष्ट्रपति महोदया का आगमन हो चुका है, और समारोह के स्थल के दाहिनी ओर मीडिया को स्थान दिया गया, जिसमें आकाशवाणी की टीम भी है, और मंच के बिल्कुल सामने मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए स्थान आरक्षित है। मुझे दिखाई दे रहे हैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव, उनके बहुत सारे मंत्रिमंडल के सदस्य साथ में ट्रैक सूट में तैयार हैं योगाभ्यास के इस समारोह में और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। आज की भागदौड़ और तनाव भरी जीवन शैली में सेहत को बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, और योग एक ऐसा समाधान है जो हर चुनौती का समाधान लेकर हमारे सामने आता है। योग सिर्फ व्यायाम की पद्धति नहीं, वरन पूरी जीवन शैली है, जिसमें मन की शुचिता का भी एक अहम रोल है, अहम भूमिका होती है, और योग के माध्यम से जीवन के बहुत सारे सवाल, जीवन के बहुत सारे तनाव और जीवन की बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव,
1: आज के इस कार्यक्रम की उत्सव मूर्ति महामहिम माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय महामहिम राज्यपाल श्रीमान मंगभाई पटेल साहब, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, माननीय मंत्री श्रीमान प्रहलाद सिंह पटेल जी, माननीय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा श्रीमान इंदर सिंह परमार जी, इस अवसर पर मौजूद सभी माननीय सांसदगण, विधायकगण, महापौर, अन्य गणमान्य अतिथिगण, जबलपुर के प्यारे भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, विश्व भर में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, और इस वर्ष की थीम भी योग फॉर हेल्थी एजिंग, हमारे लिए स्वस्थ आयु के लिए योग इस वर्ष की थीम है। वैश्विक कल्याण, वैश्विक शांति, वैश्विक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता योग दिवस प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के सफलतम 12 वर्ष पूर्ण होने पर संयोग है ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। इस वर्ष योग दिवस के राष्ट्रीय आयोजन का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगरी कलकत्ता से बंगाल से किया जा रहा है। विश्व भर के लगभग 2500 स्थानों पर 210 से अधिक भारतीय दूतावास इस कार्यक्रम के भागीदार हैं। योग के रूप में भारत ने दुनिया को सौंपा है मानवता के कल्याण का उपहार। योग का अर्थ जोड़ना, भारत ने अपने ज्ञान, विवेक, विचार से सदैव विश्व को जोड़ा है। प्रधानमंत्री जी ने भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा, आध्यात्मिक चेतना वैश्विक पटल पर स्थापित कर विश्व को हमारी समृद्ध सनातन संस्कृति से परिचित कराया है। प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस का प्रस्ताव रखा तो इसे रिकॉर्ड 175 से ज्यादा देशों ने एक साथ ऐतिहासिक समर्थन करके 2015 में पारित कराया था। इस वर्ष दुनिया भर में 30 से 35 करोड़ लोगों ने एक साथ सामूहिक योग सत्रों में भाग लेने का हम सबको इसका एहसास है। मध्यप्रदेश के कोने कोने में यह आयोजन लोगों को योग से जोड़ने का और जागरूक करने के लिए हर घर योग अभियान सफलतापूर्वक संचालित किया गया है। और वैसे तो योग के प्रथम व्याख्याता आदि गुरु भगवान शिव को प्रणाम, अष्टांग योग के प्रणेता महर्षि पतंजलि के चरणों में भी प्रणाम, नर्मदे महारानी की ये नगरी संस्कारधानी जबलपुर में वैश्विक चेतना के महाकुंभ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर समस्त योग साधकों और प्रदेशवासियों को अनंत शुभकामनाएं। ये हमारा सौभाग्य है 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर माननीय महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारे बीच उपस्थित है। हम करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। मैं मध्यप्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से माननीय महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी माननीय राष्ट्रपति का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम को अपनी गरिमा में उपस्थिति से सुशोभित कर रहे हमारे मार्गदर्शक माननीय राज्यपाल महोदय श्रीमान मंगूभाई पटेल जी का भी हम हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप सबके मौजूदगी से हम सबके लिए ये सौभाग्य की बात है, हमें गर्व है। हमारी जड़ें भारतीय संस्कृति से जुड़ी है। हमारी संस्कृति सनातन ऋषि परंपरा ने संसार को सदैव एक परिवार के रूप में देखा है। हमने कभी भी भौगोलिक सीमाओं को सोच में सीमित नहीं किया है, बल्कि संपूर्ण विश्व को वसुदेव कुटुंबकम का अमर संदेश दिया है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। योगियों की तपस्थली मध्य प्रदेश, श्री कृष्ण जी को यही योग का ज्ञान मिला। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक संपन्नता यहाँ के गौरवशाली इतिहास का अभिन्न अंग रही है। यह भूमि अनादिकाल से योगियों की तपोभूमि रही है। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं मध्य प्रदेश की पावन धरती उज्जैनी स्थित महर्षि सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की। यहाँ उन्होंने 64 कला 14 विद्याओं का गहन अध्ययन किया। इन कलाओं और विद्याओं में योग विज्ञान सबसे प्रमुख था। विश्व भर में हो रहे आयोजन से भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा हम सबके लिए सौभाग्यशाली और गौरव दिलाती है। आज दुनिया के 200 से ज़्यादा देशों ने सहभागिता करते हुए 2500 से ज़्यादा विशाल आयोजन, लगभग 35 करोड़ लोगों ने सामूहिक योग अभ्यास से हमें इस बात के लिए पुनः उस भाव को परिलक्षित करने के लिए प्रेरित किया है, जब भारत पुनः विश्व को शांति सौहार्द्रता और उदारता के साथ हमारी सनातन संस्कृति से परिचित करा रहा है। अत्यंत गर्व और प्रसन्नता का विषय है। मैं आज के इस अवसर पर सच में ये जो हमारे लिए माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने आज के इस योग दिवस के अवसर पर हम सब पे उपस्थित होकर के ये जो कृपा की है, हम हृदय से उनका पुनः वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं पुनः मध्य प्रदेश की धरती पर आप सबके माध्यम से सभी योग साधकों को पुनः इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रातः काल के सत्र में। और वैसे एक और योग के साथ संयोग भी है, आज 21 जून है। 21 जून ही हमारे लिए ऊर्जा के अनंत भंडार भगवान सूर्यनारायण जी की कक्षा परिवर्तन का दिन भी है। आज ही के दिन 21 जून को सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन की तरफ अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। दिन तिल तिल करके कम होगा और रात्रि की निशा बढ़ती जाएगी, लेकिन हमारे उत्साह और उमंग में दिनों रात बराबरी से हमारी अपनी ऊर्जा का इस भंडार के अनंत स्रोत को मानवता की सेवा के लिए हम अपने जीवन का क्षण क्षण लगाएं, इसी कामना के साथ योग से निरोग रहें, जीवन भर योग को अपनाएं, इसी भावना के आधार पर पुनः आप सबको योग दिवस की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हम सादर निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से कि आप माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का सम्मान करने का कष्ट करें। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को शॉल और योग मुद्रा का प्रतिरूप भेंट करें। करतल ध्वनि के साथ माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का योग में मध्य प्रदेश में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पुनः अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी का सम्मान करने का कष्ट करें, आपको शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट करके, योग मुद्रा का प्रतीक चिन्ह भेंट करके अभिनंदन करें। करतल ध्वनि के साथ माननीय राज्यपाल महोदय जी का हृदय से स्वागत है। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। योग की इस पावन साधना में सहभागी बनने हेतु मैं विनम्रता पूर्वक माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, माननीय राज्यपाल महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ, कृपया वे सामने की ओर अभ्यास स्थल पर अपनी गरिमा में सहभागिता प्रदान करने का कष्ट करें। और अब हम मंच पर आमंत्रित करेंगे योग अभ्यास हेतु प्रशिक्षणकर्ता को, जो कि मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान आयुष मंत्रालय भारत सरकार से हमारे बीच हैं, जो कि योगाभ्यास करवाएंगे। योग है जीवन का आधार, स्वस्थ तन मन का यह उपहार है। ऋषियों की अनुपम विरासत, भारत की गौरवशाली धरोहर है योग। योग से तन में शक्ति आती है, मन में नई उमंग जागती है और श्वास श्वास में चेतना भरकर जीवन को संतुलित बनाती है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु, ओम सह वीर्यम करवावहै, तेजस्विना वदितमस्तु मा विद्विषावहै। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मा मन और शरीर के सामंजस्य का दिव्य विज्ञान है। भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा से प्राप्त यह अमूल्य धरोहर आज संपूर्ण विश्व को स्वास्थ्य, शांति और संतुलन का संदेश दे रहा है। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी की गरिमा में उपस्थिति हम सभी को प्रेरित करती है कि हम सभी को योग से जुड़ना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready? Ready?

0: योग एक ऐसी जीवन शैली है जो जीना सिखाती है। आप सबने गौर किया होगा कि तेज आंधी तूफान में जो मजबूत पेड़ होते हैं जड़ से उखड़ जाते हैं, लेकिन जो लचीले पेड़ पौधे होते हैं वो बचे रहते हैं, और योग शरीर को लचीला बनाने का काम करता है।
1: कमर गर्दन को सीधा रखिए, आंखों को कोमलता से बंद करिए। ओमकार के लिए श्वास भरिए। ओम।

धीरे से आंखों को खोलिए। अब हम चालन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। इसके लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। चालन क्रियाओं का अभ्यास शरीर को लचीला बनाता है। गर्दन की क्रियाओं के अभ्यास से प्रारंभ करेंगे। जिन्हें गर्दन में दर्द है वे इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। गर्दन को आगे और पीछे झुकाने का अभ्यास। पैर में 2 इंच का फासला बना लीजिए। दोनों हाथ को कमर पर रखिए। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे आगे झुकाइए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में ले आइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को पीछे की तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को बीच में लाइए। एक बार पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे से आगे की ओर झुकाइए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को पीछे ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाइए। दाईं तथा बाईं ओर गर्दन को मोड़ने का अभ्यास।

श्वास छोड़ते हुए सिर को दाई तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को बीच में लाइए। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाई तरफ ले जाइए। श्वास भरते हुए वापस लाइए। पुनः श्वास छोड़ते हुए सिर को दाई ओर ले जाइए। श्वास भरते हुए सिर को बाई तरफ ले जाइए। पुनः श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आ जाइए। अगला अभ्यास है सिर को, गर्दन को दाहिने से बाएं और बाएं से दाएं घुमाने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की तरफ झुकाइए। श्वास भरते हुए सिर को घड़े की सुई की दिशा में दाहिने से बाईं तरफ घुमाते हुए वापस लाइए। एक बार पुनः इस अभ्यास को दोहरा जाइए। श्वास भरते हुए पुनः इसी अभ्यास को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में भी दो बार दोहरा जाइए। श्वास लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाइए और हाथों को वापस पुनः अपनी जगह पर ले आइए। अगला अभ्यास है स्कंध संचालन का अभ्यास। जिन्हें फ्रोजन शोल्डर की परेशानी है वे इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को बगल से ऊपर उठाइए, हथेलियां बाहर की दिशा में खुली हुई। श्वास छोड़ते हुए हाथ को वापस लाइए। पुनः श्वास लेते हुए भुजाओं को ऊपर उठाइए। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में ले आइए। अगला अभ्यास स्कंध चक्र का अभ्यास है, शोल्डर रोटेशन। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल से कंधे की ऊंचाई तक ले आइए। हथेली को पलटकर ऊपर की तरफ करिए। हाथ की उंगलियों को कंधे पर रखिए। कोहनी को सामने से जोड़ लीजिए। श्वास भरते हुए एक शून्य का आकार कोहनी से बनाइए। श्वास भरते हुए कोहनी ऊपर, श्वास छोड़ते हुए कोहनी नीचे। एक बार और इस अभ्यास को दोहरा जाइए। इसी प्रकार घड़ी की विपरीत दिशा में भी दो बार दोहरा जाइए। अगला अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए, भुजाओं को वापस लाइए। अगला अभ्यास है कटिचालन का अभ्यास। इसके लिए अपने पैरों में कंधे के बराबर दूरी बना लीजिए। दोनों हाथों को सीधे रखते हुए सामने की तरफ से उठाइए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाहिनी तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए शरीर को सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाइए। इसमें आपका दाहिना हाथ की हथेली आपके बाएं हाथ के कंधे के सामने आएगी। श्वास भरते हुए शरीर को सीधा कीजिए। पुनः श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए शरीर को बीच में लाइए। पुनः श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं लेफ्ट साइड घुमाइए। श्वास भरते हुए शरीर को सीधा कीजिए। दोनों हाथों को वापस लाते हुए विश्राम कीजिए। अब हम योगासनों के अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। यह प्रोटोकॉल विशेषतर आपके लिए 30 मिनट का बनाया गया है। पहला योगाभ्यास है ताड़ासन। ताड़ासन के लिए अपने पैर को मिला लीजिए या 2 इंच का फासला बना लीजिए। जिन्हें घुटने में दर्द है वे एड़ी ना उठाएं। दोनों हाथों को समस्थिति में नीचे रखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से कंधे के स्तर तक लाइए। श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेली को बाहर की तरफ उलट लीजिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। अब एड़ी को उठाते हुए पंजे के बल खड़े हो जाइए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में रहने से शरीर में संतुलन तथा दृढ़ता आती है। श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में वापस आ जाइए और विश्राम कीजिए।

पहला अभ्यास पादहस्त आसन का अभ्यास। इसके लिए जिनके भी कमर में दर्द है वे इसे सावधानी पूर्वक करें। दोनों पैरों में इसी प्रकार 4 इंच का फासला बनाकर रखिए। दोनों हाथों को सामने से ऊपर उठाइए और अच्छा खिंचाव पूरे हाथ में दीजिए। अब श्वास छोड़ते हुए पीठ को खींचते हुए सामने की तरफ से नीचे झुक जाइए और दोनों हाथ को अपने पैर के बगल रखने का प्रयास कीजिए। जितना संभव हो उतना ही कीजिए। यह आसन शरीर की रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है तथा पाचन शक्ति में सुधार करता है। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आइए। दोनों हाथों को बगल से वापस लाइए और विश्राम कीजिए। अब हम अर्धचक्र आसन का अभ्यास करेंगे। अर्धचक्र आसन, दोनों हाथों को कमर पर रखिए, उंगलियां आगे की तरफ, अंगूठा पीछे। अब अपनी कोहनी को पीठ के पीछे की तरफ ले जाइए और समानांतर करने का प्रयास कीजिए। श्वास भरते हुए गर्दन पीछे ले जाइए और श्वास छोड़ते हुए जितना संभव है पीछे झुकने का प्रयास कीजिए। यह अभ्यास श्वसन क्षमता को बढ़ाता है। श्वास भरते हुए वापस आइए और दोनों हाथों को वापस लाते हुए विश्राम कीजिए। अपने स्थान पर दंड आसन की स्थिति में बैठ जाइए। दंड आसन अर्थात दोनों पैरों को सामने की तरफ फैला लीजिए। दोनों हाथों को नितंब के पास रखिए। कमर गर्दन एक सीध में रहे। यह है दंड आसन। भद्रासन बैठकर करने वाली सीरीज में पहला आसन है भद्र आसन। पैर को मोड़ते हुए दोनों तलवे को मिलाइए। अब श्वास छोड़ते हुए अपने पैर के पंजे को पकड़ लीजिए। एड़ी को शरीर के और पास लाने का प्रयास कीजिए। यह आसन घुटने और नितंब के जोड़ों को स्वस्थ रखता है और महिलाओं के लिए अत्यंत ही लाभदायक है। पुनः धीरे से दंडासन में वापस आइए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास है वज्र आसन का अभ्यास। अपने पैर को मोड़ते हुए एड़ी के बीच में बैठने का प्रयास कीजिए। दोनों पैर के अंगूठे इस स्थिति में मिले हुए। दोनों हाथ घुटने पर रखिए। कमर गर्दन को सीधा रखिए। यह आसन पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है तथा पैर की मांसपेशियों को भी मजबूती प्रदान करता है। यहीं से अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। इसके लिए अपने घुटने पर खड़े हो जाइए। दोनों हाथ कमर के पीछे रखिए। अब श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे और सिर को पीछे की तरफ ले जाइए। कमर के निचले हिस्से से श्वास छोड़ते हुए झुकने का प्रयास कीजिए। यह आसन कमर दर्द को ठीक करने में सहायक है। श्वास भरते हुए पुनः वज्रासन की स्थिति में आ जाइए और विश्राम कीजिए। यहीं से हम शशक आसन का अभ्यास करेंगे। शशक आसन, जिसके घुटने में दर्द है वे आराम से सुखासन की स्थिति में भी बैठकर शरीर आगे ले जाते हुए इस अभ्यास को कर सकते हैं। शशक आसन के लिए दोनों हाथों को, दोनों घुटनों को फैलाते हुए दोनों हाथों को अपने घुटने के बीच में रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए अपने शरीर को आगे इस प्रकार ले जाएंगे कि छाती और ठोड़ी जमीन से लगे हुए रहे। यह आसन तनाव और घबराहट को कम करने में मदद करता है। पुनः इसी स्थिति में बैठे रहें और धीरे से श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। शशक आसन में पैर जिस प्रकार खुले हुए हैं उसी में ही हम उत्तान मंडूक आसन करेंगे। उत्तान मंडूक आसन के लिए श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाइए। दोनों हाथों से अपोजिट विपरीत कंधे को पकड़िए। दाहिने हाथ से बाएं कंधे को और बाएं हाथ से दाहिने कंधे को। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इसमें बने रहिए। यह आसन पीठ तथा गर्दन की तकलीफ से छुटकारा दिलाता है। श्वास भरते हुए पुनः वापस आइए और पेट के बल लेट जाइए।
अब हम पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे, जिसमें पहला आसन है मकर आसन। मकर आसन के लिए अपनी हथेली के ऊपर हथेली को रखिए, ठोड़ी या गाल को टिकाते हुए पीछे दोनों पैरों में उचित दूरी बनाइए और विश्राम कीजिए। यह आसन शरीर और मन को विश्रांति देता है। अगला अभ्यास है भुजंग आसन का अभ्यास। भुजंग आसन के लिए अपने दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथों को श्वास भरते हुए आगे की तरफ सीधा खींचिए, श्वास छोड़ते हुए हाथ को मोड़ते हुए हथेली को सीने के पास लाइए। अब श्वास भरते हुए ठोड़ी और छाती को नाभि वाले भाग तक उठा लीजिए। यह आसन श्वसन क्षमता में सुधार लाता है, पेट की चर्बी घटाता है तथा कब्ज से राहत दिलाता है। पुनः श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आकर मकर आसन की स्थिति में विश्राम कीजिए। शलभ आसन, दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथों को जंघाओं के पास ले जाइए या जंघाओं के नीचे हथेलियां जमीन की तरफ रखते हुए दोनों पैरों को बिना घुटना मोड़े उठाने का प्रयास कीजिए। इसमें ठोड़ी जमीन से लगी हुई रहे। यह आसन साइटिका तथा पीठ दर्द में आराम दिलाता है। धीरे से पैर को वापस लाइए और करवट लेते हुए अपने पीठ के बल किए जाने वाले आसनों की तरफ आ जाइए। इसके लिए करवट लेते हुए अपने पीठ के बल आ जाइए। अगला अभ्यास है सेतु बंध आसन का अभ्यास। जिन्हें गर्दन में दर्द हो वे इस आसन को सावधानी पूर्वक करेंगे। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए एड़ी को नितंब के नजदीक लाइए। अब दोनों हाथों से अपने टखने एंकल जॉइंट को पकड़िए, श्वास भरते हुए पीठ को उठाइए और पुलनुमा आकृति बनाइए। यह आसन अवसाद की रोकथाम में सहायक है। पुनः श्वास छोड़ते हुए वापस आइए और पीठ के बल ही विश्राम कीजिए। उत्तान पाद आसन, पैरों को मिला लीजिए, हाथों को शरीर के बगल सीधा रखिए, हथेलियां जमीन की तरफ रहेंगी। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर 35 टू 45 डिग्री उठाइए, पैर के पंजों को खींच के रखिए। यह श्वसन क्षमता में सुधार लाने में सहायक है। पुनः यहीं से अर्धहलासन करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों पैर को 90 डिग्री लाइए। कुछ क्षण के लिए सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इसी स्थिति में बने रहिए। यह अभ्यास उच्च रक्तचाप को में सहायक है। यहीं से पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए दोनों घुटनों को मोड़ते हुए जंघाओं को सीने के पास लाइए, दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाते हुए टखनों के नीचे पकड़िए, अपने घुटने के नीचे दोनों हाथों को फंसाते हुए पकड़िए। अब श्वास छोड़ते हुए अपने सर को उठाते हुए ठोड़ी को दोनों घुटनों के बीच में लगाइए। यह आसन पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है। श्वास छोड़ते हुए सर को नीचे रखिए और पैर को वापस ले आइए तथा शवासन में विश्राम कीजिए। शवासन, दोनों पैरों में उचित दूरी, दोनों हाथ की हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई, आंखें कोमलता से बंद। गहरा श्वास लीजिए, धीरे से श्वास छोड़िए। गहरा श्वास लीजिए, धीरे से श्वास छोड़िए। शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति
सजगता का भाव रखिए और शिथिल हो जाइए। यह आसन चिंता और तनाव को दूर करने में सहायक है। किए हुए अभ्यास के प्रभावों को महसूस करिए। अब धीरे से दाईं या बाईं करवट लेते हुए अपने स्थान पर उठकर बैठ जाइए। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। दोनों हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाइए। दोनों हाथों को अपने घुटने पर रख लीजिए। आंखों को कोमलता से बंद करिए। हम कपाल भाती का अभ्यास करेंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए। उदर की मांसपेशियों पर दबाव डालते हुए झटके से श्वास छोड़िए। इसकी 15 आवृत्ति एक साथ करेंगे। गहरा श्वास छोड़ते हुए शांति का अनुभव करिए। कपाल भाति का दूसरा चक्र करने के लिए शारीरिक मानसिक रूप से तैयार हो जाइए। पुनः गहरा लंबा श्वास भरिए। प्रारंभ।

गहरा लंबा श्वास छोड़िए। कपालभाति श्वसन अंगों का कार्य सुचारी पूर्वक करवाता है तथा कफ विकारों को दूर करने में मददगार है। अगला अभ्यास प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं, अनुलोम विलोम का अभ्यास। अपने दाहिने हाथ की राइट हैंड की प्राणायाम मुद्रा बना लीजिए। अंगूठे से अपने दाहिनी नासिका को बंद करिए। बाईं नासिका के माध्यम से धीरे धीरे श्वास भरिए। बाईं नासिका लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करते हुए दाहिनी नासिका राइट नॉस्ट्रल से धीरे धीरे श्वास को छोड़ दीजिए। पुनः राइट नॉस्ट्रल दाहिने नासिका रंध्र से धीरे धीरे श्वास को भरिए। दाहिना नासिका रंध्र बंद करके बाएं नासा रंध्र से धीरे धीरे श्वास छोड़ दीजिए। एक चक्र और कर जाइए। बाएं नासिका रंध्र से श्वास को भरिए। बाएं नासिका रंध्र को बंद करते हुए दाहिने नासिका रंध्र से श्वास को छोड़िए। पुनः दाहिने नासिका रंध्र से श्वास को भरिए तथा बाएं नासिका रंध्र से श्वास को छोड़िए। यह अभ्यास रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। धीरे से दोनों हाथ को वापस लाइए ज्ञान मुद्रा में और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम का अभ्यास है। अपनी जीभ को बाहर निकालते हुए जीभ के माध्यम से श्वास को भरिए। जीभ को ट्यूब का आकार दीजिए। जीभ को अंदर ले जाते हुए नासिका से धीरे धीरे श्वास को छोड़ दीजिए। एक बार और इस अभ्यास को दोहरा जाइए। यह अभ्यास एकाग्रता शक्ति को बढ़ाता है तथा उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए लाभदायक है। भ्रामरी प्राणायाम के लिए धीरे से लंबा गहरा श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान मकार ध्वनि से गुंजन करिए। जिनको शांभवी मुद्रा या षणमुखी मुद्रा आती है वो उस मुद्रा के साथ भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। पुनः श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान मकार ध्वनि कीजिए।

यह प्राणायाम तनाव को दूर करने में सहायक है तथा आंतरिक आनंद की प्राप्ति कराता है। दोनों हाथ को वापस लाइए। ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा अर्थात बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर गोदी में रखिए। दोनों हाथों को गोदी में रखिए। धीमा लंबा गहरा श्वास लीजिए। धीमा लंबा गहरा श्वास छोड़िए। आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। कंधे को और शिथिल कर दीजिए। ध्यान योग का सबसे जरूरी अंग है। सारी प्राथमिक प्रक्रियाएं ध्यान के ही लिए हैं। ध्यान आत्मा का अमृत यात्रा है। ध्यान प्रातःकाल स्वर्णिम सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ रही हैं। हमारा रोम रोम सविता का तेज सूख रहा है। प्रखर तेजस्वी प्राणवान हम बन रहे हैं। ध्यान की गहराइयों में जब साधक प्रवेश करता है तो वह अनुभव करने लगता है कि समस्त सृष्टि एक ही चेतना प्रवाहित हो रही है। वह अपना आत्मस्वरूप है जिसे वेद अहम ब्रह्मास्मि, उपनिषद तत्वमसि कहता है। ध्यान की पूर्णता का परिणाम है मन की शांति, हृदय में करुणा तथा आत्मा का प्रकाश। यही भाव अपने मन में लाइए। अपने शुद्ध विचारों के प्रति और सजग होते जाइए। अब अपनी सामान्य श्वास प्रश्वास के प्रति सजग हो जाइए और मन ही मन संकल्प लीजिए, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्मविकास समाया हुआ है। संकल्प लीजिए, मैं मानव मूल्यों का पालन करते हुए स्वयं के प्रति, समाज के प्रति, विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूँ। देश के विकास के लिए समर्पित हूँ। अब शांति पाठ के लिए अपने दोनों हाथ को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। ओमकार के लिए श्वास को भरिए।

0: दोनों हथेलियों को अपने आंखों पर रखिए। हथेली के अंदर आंखों को धीमे से खोलते हुए दोनों हाथ को वापस ले आइए। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय उज्ज्वलमय हो। धन्यवाद।
1: धन्यवाद। और अब हम बहुत ही आदरपूर्ण निवेदन करते हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से, माननीय राज्यपाल महोदय जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप पुनः मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आज संपूर्ण विश्व में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्सव मनाया जा रहा है और इसी उत्सव को मनाने हेतु आज हमारे बीच माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का मुख्य आतिथ्य। हम पुनः हृदय से स्वागत करते हैं माननीय राष्ट्रपति।

0: अयोध्या जी का, और जिस प्रकार से हम सभी जानते हैं कि योग की उत्पत्ति भारत की प्राचीन परंपरा है। हजारों वर्षों पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने योग के माध्यम से शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का मार्ग खोजा, जो आज संपूर्ण विश्व को स्वस्थ और सुखी जीवन का संदेश दे रहा है। योग है भारत की पहचान, स्वस्थ जीवन का है वरदान। तन हो निरोग, मन हो प्रसन्न, योग बनाए जीवन धन्य। और जहाँ योग है वहाँ स्वास्थ्य है, जहाँ स्वास्थ्य है वहाँ उत्साह है। योग से जुड़े निरोग रहें, यही जीवन का सच्चा प्रवाह है। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, हमारे बीच योगाभ्यास के माध्यम से हम सभी को प्रेरित किया, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। और अब पुनः माननीय राष्ट्रपति महोदया जी मंच पर पधार रही हैं, और आज मध्य प्रदेश के लिए परम सौभाग्य है कि योग दर्शन की प्रणेता महर्षि पतंजलि की कर्म भूमि के रूप में इस पावन धरा का उल्लेखनीय किया जाता है। महर्षि पतंजलि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निकट स्थित है, और आज जबलपुर की भूमि एक और ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बन रही है, जब माननीय राष्ट्रपति महोदया जी इस धरती पर योग साधना कर समूचे विश्व के समक्ष भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और मध्य प्रदेश की आध्यात्मिक चेतना का संदेश देगी। योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने की विधा नहीं, बल्कि जीवन को संतुलन, संयम और सकारात्मकता से भरने वाली जीवन पद्धति है। जनसेवा, सामाजिक समरसता एवं मानवीय मूल्यों के प्रति सतत समर्पित मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी से अब हम विनम्र निवेदन करते हैं कि आप अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित करने का कष्ट करें।
1: सभी को नमस्कार। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जबलपुर के कार्यक्रम में उपस्थित भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंत्रीगण, सांसदगण, महापौर श्री, विधायक श्रीओ, अधिकारीगण, उपस्थित महानुभाव एवं भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, भारत की पहचान को विश्व मंच पर ऊंचाई पर करने वाले हमारे महान धरोहर योग के 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उत्सव में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का उपस्थित से मध्य प्रदेश का जन जन प्रसन्न और आनंदित है। माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का प्रदेशवासियों की ओर से श्रद्धापूर्वक हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा मानना है कि योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का साधन नहीं है, बल्कि यह जीवन को संतुलित, सार्थक और आनंदमय मनाने की सरल जीवन पद्धति है। हमारी ज्ञान परंपरा ने हजारों वर्ष पूर्व योग के रूप में स्वस्थ जीवन का जो मार्ग दिखाया था, आज पूरी दुनिया उसे अपना रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मान्यता भारत की पहचान परंपरा के वैश्विक सम्मान का प्रतीक है। इस अवसर पर भारत की गौरवशाली योग परंपरा को दुनिया में मान्यता और सम्मान दिलाने में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व, वैश्विक दृष्टि और अटूट प्रतिबद्धता के प्रति आभार व्यक्त करना हम सभी का कर्तव्य है। हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन का क्रम बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था है। इन सभी अवस्थाओं में हम सुखी खुशहाल रहे, इसके लिए हमारे तन और मन का स्वस्थ रहना जरूरी है। प्राणायाम से माध्यम से हम केवल सांस नहीं लेते, बल्कि नई ऊर्जा, नया उत्साह और सकारात्मक सोच का भी अपनाते हैं। ध्यान हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। तथा मन की

0: चंचलता को शांत कर आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। प्रतिदिन केवल 20 से 30 मिनट का योग अभ्यास, प्राणायाम और ध्यान हमारे जीवन में प्रभावी और सकारात्मक परिवर्तन लाने का सबसे सरल रास्ता है। आज माननीय राष्ट्रपति महोदय की गरिमामयी उपस्थिति में हम सभी यह संकल्प करें कि योग को केवल एक दिवस के आयोजन तक सीमित नहीं रखेंगे, योग को जीवन भर स्वस्थ रहने, मानसिक संतुलन बनाए रखने और आत्मिक उन्नति प्राप्त करने का माध्यम बनाकर अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करेंगे। आइए एक स्वर में कहे, स्वस्थ तन प्रसन्न मन, योग बने जीवन का धन, यही विकसित और स्वास्थ्य भारत का पथ है। मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया का बहुत बहुत आभार मानते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूं। आभार, भारत माता की जय।
1: धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी। आज योग के इस दिव्य बेला में जब संपूर्ण वातावरण स्वास्थ्य साधना और सकारात्मक ऊर्जा से अनुप्राणित है, तब हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है, हमें माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मैं करबद्ध निवेदन करती हूँ भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से कि आप अपने अमूल्य मार्गदर्शन और आशीषपूर्ण उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें।
2: 12वीं योग शिविर की इस उपस्थिति में मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी सामने बैठे हुए, सरकार में शामिल सभी मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, छात्र छात्रागण, अधिकारीगण, सभी को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई। जबलपुर को विशेष पहचान देने वाले मानवर्बोदा की पावन धरती पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मैं देश विदेश में सक्रिय सभी योग साधकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम यहाँ भारत की उस महान परंपरा का उत्सव मना रहे हैं जिसने मानवता को स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाया। योग विश्व समुदाय को हमारी सांस्कृतिक धरोहर का अमूल्य उपहार है। ये हमारे ऋषियों और मुनियों की हजारों वर्षों की साधना का परिणाम है। हमारे शास्त्रों में शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को जीवन की सफलता का आधार माना गया है। योग उसी संतुलन को स्थापित करने के मार्ग है। योग शब्द का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। ये व्यक्ति को स्वयं से, समाज को प्रकृति से तथा संपूर्ण मानवता को व्यापक विश्व चेतना से जोड़ने का सशक्त माध्यम है। आज विश्व जो अनेक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, तो योग मानवता को शांति, संतुलन, समरसता और सामूहिक कल्याण का मार्ग दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। देवियों और स्वजनों, वर्ष 2014 में भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इस पहल से पिछले 12 वर्षों से विश्व कल्याण के एक सशक्त माध्यम के रूप में योग पद्धति को पहचान और भी मजबूत हुई है। आज विश्व के अनेक देशों में करोड़ों लोग योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। इसी महीने अहमदाबाद में आयोजित प्रथम वर्ल्ड योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप इसका एक अच्छा उदाहरण है। इस आयोजन पर कई देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिए थे। हम कभी कभी विदेशों में जाते हैं, वो योगा के बारे में पूछते हैं क्योंकि योग अभ्यास विदेशों में भी किया जाता है और ये भारत का ही एक प्रेरणा के ये उदाहरण है। मुझे बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ये थीम समाज के वरिष्ठ सदस्यों के स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर एवं गरिमापूर्ण जीवन के लिए योग की उपयोगिता को रेखांकित करती है। आज हम जो जीवन शैली अपनाते हैं वही हमारे आने वाले समय के स्वास्थ्य एवं सुख का

चुनौती आज इन बीमारियों की रोकथाम में समग्र चिकित्सा पद्धति का प्रयोग व्यापक रूप से हो रहा है। योग इस समग्र प्राणी का अहम हिस्सा है जो सरल, प्रभावी और सुलभ है। भारत सरकार योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए योग शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा जन जागरण के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहे हैं। ये प्रसन्नता का विषय है कि अनेक संस्थाएं विश्व स्तर पर लोगों को योग पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना और समस्त मानवता के कल्याण का आधार स्तंभ है। मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ कि योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे। इसी के साथ ही मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।

0: राष्ट्रगान के साथ ये कार्यक्रम अब अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर है। श्रोताओं, आज योग भारत की सीमाओं से निकलकर विश्वव्यापी जन आंदोलन बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 190 से अधिक देशों में मनाया जाता है, जो मानव स्वास्थ्य, शांति और वैश्विक एकता का अद्भुत प्रतीक है। इस बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के उद्देश्य को लेकर ये दिन मनाया गया और बहुत जल्द परिणाम हमारे सामने होंगे। आकाशवाणी की जिस क्रिएटिव टीम के माध्यम से आज का ये प्रसारण आप तक पहुंचा, उसमें शामिल हैं वरिष्ठ अभियांत्रिकी सहायक श्री नित्यानंद त्रिपाठी और श्री आशीष पाल, सहायक श्री हुबराज सिंह ठाकुर और कार्यक्रम अधिशासी श्री नीलाभ वाजपेयी के साथ मैं चमन सालवार अब आपको आकाशवाणी के स्टूडियोज वापस लिए चलता हूँ।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है बच्चों का मनपसंद कार्यक्रम बाल सभा।

0: सदगुरु कबीर गुरुकुल विद्यालय सिमरिया रोड कर्रापुर जिला सागर CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल अनुभवी शिक्षकों द्वारा सभी विषयों का संपूर्ण ज्ञान स्पोकन इंग्लिश पर्सनालिटी डेवलपमेंट म्यूजिक डांस ड्रामा कंप्यूटर क्लासेस समृद्ध लाइब्रेरी सुरक्षित पर्यावरण के साथ खेल सुविधा CCTV कैमरे की निगरानी में बच्चों की विशेष सुरक्षा एवं बस सुविधा प्रवेश प्रारंभ जल्दी संपर्क करें 7566432100
1: बाल सभा सुनने वाले सभी श्रोताओं और खासकर हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को हमारा जय हिंद। चलिए बच्चों, आज कार्यक्रम की शुरुआत आपके जैसे प्यारे बच्चे के द्वारा लिखी इन पंक्तियों के साथ कर लेते हैं। एक हसीन पल याद आया और आपकी याद साथ लाया, जब भी दूर थे हम आपको हमेशा साथ पाया। खुशी का पल हो या हो कोई कठिन समय, कभी ना हाथ छोड़ा हमारा आपकी एक मुस्कान के लिए। किसी भी हद तक चले जाते हो, क्या कभी थकते नहीं, हमेशा उंगली पकड़कर साथ चलते नजर आते हो। कभी डांटते हो फिर मना भी लेते हो, इसीलिए पिता कहलाते हो। चाहे कुछ भी हो मुझे तो आप भगवान नजर आते हो। बिल्कुल बच्चों, इन्हीं खूबसूरत पंक्तियों के साथ फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हम आ गए हैं एक बार फिर आप ही की तरह चहकती फुदकती उछलती कूदती रंगी बिरंगी जानकारियों से सजी मस्ती भरी बच्चों की सभा बाल सभा लेकर। आज आप साथ हैं अपनी रानी दीदी के, तो स्वीकारें दीदी का ढेर सारा प्यार और सुप्रभात। जी हाँ बच्चों, बाल धमाल के साथ हम आ पहुंचे हैं जून के तीसरे रविवार तक, और चलिए आज का बाल धमाल बाल मंच से करते हैं। तो आइए सुनते हैं बाल मंच।
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सद्गुरु कबीर गुरुकुल विद्यालय सिमरिया रोड कर्रापुर जिला सागर।
2: लेकर आए बच्चों का शो
3: बाल मंच।
0: सदगुरु कबीर गुरुकुल विद्यालय सिमरिया रोड कर्रापुर जिला सागर CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल अनुभवी शिक्षकों द्वारा सभी विषयों का संपूर्ण ज्ञान स्पोकन इंग्लिश पर्सनालिटी डेवलपमेंट म्यूजिक डांस ड्रामा कंप्यूटर क्लासेस समृद्ध लाइब्रेरी सुरक्षित पर्यावरण के साथ खेल सुविधा CCTV कैमरे की निगरानी में बच्चों की विशेष सुरक्षा एवं बस सुविधा प्रवेश प्रारंभ जल्दी संपर्क करें 7566432100।
4: आइए बच्चों, बाल सभा के इस क्रम बाल मंच की परंपरा को निभाते हुए हम मुलाकात करते हैं विद्यार्थियों से। हमारे बीच हैं जिया दुबे। जिया, आपको आकाशवाणी में आकर कैसा लग रहा है?
5: दीदी हमें बहुत अच्छा लग रहा है।
4: तो किस क्लास में अध्ययन कर रही हैं जिया?
5: 11वीं।
4: तो आप आज अपने साथियों के लिए क्या सुना रही हैं?
5: वर्तमान समय में महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा और सुरक्षा की जो समस्या हम सबके सामने है, मैं उस पर अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। यह केवल एक भाषण नहीं बल्कि एक प्रखर ओजस्वी और जागृतिपूर्ण उद्घोष है। आज के इस तथाकथित आधुनिक युग में भी नारी की सुरक्षा एक ज्वलंत प्रश्न बनी हुई है और उसकी शिक्षा एक संघर्षमय यात्रा। जब तक प्रत्येक बालिका स्वयं को निर्भीक और सुरक्षित अनुभव नहीं करेगी, तब तक समाज की प्रगति एक मृग तृष्णा ही बनी रहेगी। एक शिक्षित नारी न केवल अपने अस्तित्व को सशक्त करती है बल्कि संपूर्ण राष्ट्र की आधारशिला को भी दृढ़ बनाती है। किंतु विडंबना यह है कि आज भी उसे भय बंधनों अन्याय और विषमता की बेड़ियों में जकड़कर रखा जाता है, उसकी उड़ान को सीमित किया जाता है और उसके सपनों को दबाया जाता है। किंतु अब समय आ गया है कि हम यह स्पष्ट रूप से स्वीकार करें कि नारी कोई दायित्व नहीं बल्कि अपार शक्ति शक्ति सृजन और परिवर्तन की प्रतीक है। उसकी सुरक्षा उसका जन्मसिद्ध अधिकार है और शिक्षा उसका सर्वोच्च शस्त्र। हमें केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहना बल्कि एक सशक्त क्रांतिकारी परिवर्तन का सूत्रपात करना होगा ताकि हर नारी निर्भीक होकर अपने अधिकारों के साथ जी सके, अपने स्वप्नों को साकार कर सके और इस समाज को एक नई दिशा दे सके। धन्यवाद।
4: बहुत ही अच्छे विचार थे आपके लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा पर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और मुलाकात कर लेते हैं आपके अगले साथी से। चलिए अपने साथियों को अपना नाम बताइए।
6: लालिमा पायक।
4: लालिमा, किस कक्षा में अध्ययन कर रही हैं आप?
6: 11th।
4: तो आज अपने साथियों को बाल मंच में क्या सुनाने जा रही हैं आप?
6: टुडे आई एम हियर टू स्पीक अबाउट बेसिक एजुकेशन एंड मोरल, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। बेसिक एजुकेशन इज अ फाउंडेशन ऑफ एवरी पर्सन लाइफ। इट टीचर्स हाउ टू रीड, राइट एंड सॉल्व प्रॉब्लम। इट गेव अस नॉलेज अबाउट सब्जेक्ट लाइक लैंग्वेज, मैथमेटिक्स एंड साइंस। विदाउट बेसिक एजुकेशन इट बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू अंडरस्टैंड वुड ग्रो इन लाइफ। एजुकेशन हेल्प अस टू बिकम कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट। बट एजुकेशन इज नॉट ओनली अबाउट बुक्स एंड एग्जाम। अलॉन्ग विथ बेसिक एजुकेशन एंड moral education teaches good values and good behavior. It teaches speak truth, respect elder, help other and be kind to everyone. It also teaches honesty, discipline and responsibility. In conclusion, I would like to say that basic education would your mind and moral education would your character. Both are equally important for a happy and successful life. Thank you.
4: चलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और अब हम मुलाकात करते हैं आपके एक और साथी से। चलिए अपने साथियों को अपना नाम बताइए।
7: दीदी, मेरा नाम उमराग ठाकुर।
4: किस कक्षा में अध्ययन कर रहे हैं आप?
7: हम नौवीं।
4: कक्षा नौवीं में आप पढ़ते हैं, तो पढ़ाई लिखाई में मन लगता है ना आपका?
7: हाँ।
4: तो आज अपने साथियों को आप क्या लेकर आए हैं?
7: सामाजिक समरसता।
4: चलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है।
7: सामाजिक समरसता शब्द का अर्थ है समाज के सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म के लोग एक साथ एक रस के समान हो जाएं और बिना किसी भेदभाव के आपस में मिलजुल कर रहें। इसी उद्देश्य को व्यक्त करते हुए मैं उमराग ठाकुर कविता को प्रस्तुत करता हूँ। थोड़ा तू अलग, थोड़ा मैं अलग, थोड़ा तू अलग, थोड़ा मैं अलग, कहना ये कितना आसान है। सोचा कभी एक हैं हम, क्योंकि पहले हम इंसान हैं। सरहदें खींची हैं जमीन पर सबका एक आसमान है। उम्र अलग, सोच अलग, अलग सबका मुकाम है। रास्ते अलग, हम सफर अलग, पर मंजिल सबकी मशान है। तुझसे नहीं, मुझसे नहीं, हमसे ये जहान है। लाख अलग पर एक हैं हम, क्योंकि पहले हम इंसान हैं।
4: बहुत ही अच्छी आपने सामाजिक समरसता पर ये बात कही। और बच्चों देखिए ना, भिन्न भिन्न धर्म संस्कृतियों के लोग रहते हुए भी हम सब एक हैं। तो उमराग, आपको अच्छा लगा यहाँ आकर?
7: जी दीदी, हमें बहुत अच्छा लगा।
4: हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और मिलते हैं आपके एक और साथी से।
8: दीदी, मेरा नाम अश्विन शुक्ला है।
4: अश्विन, किस क्लास में पढ़ते हैं आप?
8: दीदी, मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ।
4: तो क्या क्या शौक है अश्विन आपके?
8: अच्छा, दीदी हमें खेलना, पढ़ना और ड्राइंग करना।
4: इसका मतलब आप बड़े होकर चित्रकार बनना चाहते हैं?

0: रहते हैं क्या?
1: हाँ दीदी।
0: चित्रकार तो बनेंगे, आपको शुभकामनाएं, लेकिन अपने साथियों के लिए आज क्या लेकर आए हैं आप?
1: परिवार में बड़े बुजुर्गों का महत्व।
0: चलिए स्वागत है आपका।
1: परिवार में बड़ों का महत्व एक बरगद के वृक्ष के समान है, जो न केवल परिवार को भावनात्मक सहारा, प्रेम और निस्वार्थ देखभाल प्रदान करते हैं, बल्कि अपने अनुभवों से सही मार्गदर्शन भी करते हैं। वे परिवार की रीढ़ की हड्डी होते हैं, जो परंपराओं, संस्कारों और नैतिक मूल्यों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। परिवार में बुजुर्ग मार्गदर्शक, सलाहकार, संस्कार और मूल्यों के रक्षक, भावनात्मक और सुरक्षात्मक कवच, परंपराओं के संवाहक और मुश्किलों में सहारा होते। धन्यवाद।
0: जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करते हैं ना?
1: हाँ दीदी,
0: कहना मानते हैं आप सबका।
1: हाँ दीदी,
0: हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और मिल लेते हैं एक और साथी से। लीजिए बच्चों, आपके बीच आ चुकी हैं खुशी ठाकुर। खुशी, किस कक्षा में पढ़ती हैं आप?
2: दीदी 11वीं कक्षा में।
0: क्या बनना चाहती हैं आप बड़े होकर?
2: पुलिस में जाना है।
0: पुलिस में जाना है, बड़ी अच्छी बात है। देश की सेवा की भावना आपके मन में है, हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। चलिए आज अपने साथियों के लिए क्या सुना रही हैं आप?
2: विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव। आकाशवाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को सप्रेम नमस्कार। वर्तमान समय में युद्ध का भारत पर प्रभाव विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यदि भविष्य में विश्व युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ सकता है। सबसे पहले इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल और खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ सकती हैं। दूसरा प्रभाव व्यापार और वस्तुओं की उपलब्धता पर पड़ सकता है। कई जरूरी सामान जैसे दवाइयाँ, मशीनें और इलेक्ट्रॉनिक वस्तु जो दूसरे देशों से आती हैं, इनकी कमी हो सकती है। तीसरा प्रभाव देश की सुरक्षा पर पड़ सकता है। कई देशों के साथ संबंध प्रभावित हो सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि विश्व युद्ध किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता। हमें हमेशा शांति, सहयोग और एकता का समर्थन करना चाहिए, ताकि दुनिया में शांति बनी रहे और सभी देश मिलकर आगे बढ़ सके। धन्यवाद।
0: हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सदगुरु कबीर गुरुकुल विद्यालय, सिमरिया रोड, कर्रापुर, जिला सागर, CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, प्रवेश प्रारंभ। जल्दी संपर्क करें 7566432100। और मिल लेते हैं आपके एक और साथी से। चलिए जल्दी से अपना प्यारा सा नाम बताइए अपने साथियों को। बड़ी मुस्कुरा रही हैं तो। सुहाना राठौर, किस कक्षा में पढ़ती हैं आप?
3: आई एम इन क्लास 11।
0: बहुत बहुत स्वागत है। अपने साथियों के लिए आज क्या लेकर आई हैं आप?
3: टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑल्सो नोन एज AI। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स गिविंग मशीन्स द एबिलिटी टू थिंक, लर्न एंड मेक डिसीजंस लाइक ह्यूमंस। In today's modern world, AI is everywhere, from smartphones to smart homes, from Google searches to voice assistant like Alexa and Siri. AI is making our life easier and faster. There are many advantages of AI in healthcare. It helps doctors detect diseases at an early stage. In education, it provides smart learning and helps students understand concepts better. In industries, businesses, AI increases efficiency and reduces human error. It also plays a big role in technologies like self-driving cars and robots. However, AI also has some disadvantage. It may reduce job opportunities as machines replace human workers. It also raises concerns about privacy and security. Moreover, machines do not have emotions like humans, so they cannot take decisions like humans in sensitive situations. So it is very important to use AI wisely and responsibly. AI should be used to support human, not to replace them. In conclusion, artificial intelligence of the world, if used properly, it can make our life better and solve many global problems. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मुलाकात करते हैं आपके एक और साथी से। लीजिए बच्चों, हमारे बीच हैं दीपिका दांगी। दीपिका, किस कक्षा में पढ़ती हैं आप?
4: 11वीं कक्षा में।
0: चलिए आज अपने साथियों के लिए आप क्या लेकर आई हैं? और
4: दीदी, धर्म निरपेक्षता के विषय में अपने विचार प्रस्तुत कर रही
0: हूं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
4: भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्म निरपेक्षता शब्द 1976 के 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। यह अवधारणा भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में परिभाषित कर करती है जिसका अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं है और जो सभी

0: धर्मों को सम्मान, सुरक्षा और स्वतंत्रता प्रदान कराता है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म का अभाव नहीं बल्कि प्रत्येक धर्म के प्रति समान सम्मान और निष्पक्षता है। यह वह सिद्धांत है जो हमें विभाजन नहीं एकता का मार्ग दिखाता है। जब धर्मनिरपेक्षता को अपनाते हैं तब राष्ट्र सशक्त बनता है। यदि हम सच्चे अर्थों में एक सशक्त समृद्ध भारत का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें धर्मनिरपेक्षता को केवल संविधान में नहीं अपने विचार व्यवहार में भी उतारना होगा। यही वह मार्ग है जो हमें एकता, शांति और प्रगति की ओर ले जाएगा। धन्यवाद।
1: हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बुलाते हैं एक और साथी। क्या नाम है आपका?
2: दीदी, मेरा नाम सिद्धि चौरसिया है, मैं कक्षा 11वीं में पढ़ती हूँ।
1: चलिए, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सिद्धि।
2: समक्ष भारत के विषय में एक कविता प्रस्तुत करती हूँ। राष्ट्र नहीं भारत हूँ मैं, इतिहास नहीं काल हूँ मैं, गिरते उठते बनते बिगड़ते हर समय की पहचान हूँ मैं, संस्कृतियों की परिभाषा हूँ मैं, अंतरिक्षों की खोज हूँ मैं, तांडव और मंथन का नाद हूँ मैं हूँ तो असंभव भी है संभव, मैं हूँ तो शेषनाग के डंक में भी अमृत, मैं सरस्वती, मैं संस्कृति, मैं गंगा, मैं धरा, मैं ही गगन विशाल, मैं त्रिशूल, मैं त्रिनेत्र, मैं त्रिवेणी, हर धारा का कुंभ हूँ मैं अध्यात्म, मैं विज्ञान, मैं अनुसंधान, मैं विधि, मैं विधान, मैं तत्व, मैं निर्माण, सृष्टि से पहले, आकाश के आगे, शून्य के भीतर, शून्य के बाहर, सिर्फ मैं अनंत, मैं निरंतर, मैं ब्रह्म, मैं ब्रह्मांड, मैं ही प्रश्न, मैं ही समाधान, भारत हूँ मैं, भारत ही रहूंगा आज का अनंत काल। धन्यवाद।
1: बहुत ही प्यारी आपने कविता सुनाई, भारत हूँ मैं और भारत ही रहूंगा। चलिए, इसी तारतम्य में अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मुलाकात करते हैं एक और साथी से।
3: दीदी, मेरा नाम समीक्षा तिवारी।
1: समीक्षा, किस क्लास में पढ़ती हो बेटा?
3: दीदी, मैं कक्षा 10वीं में पढ़ती हूँ।
1: हम आपका स्वागत करते हैं।
3: राम राम सभी को। अपने बुंदेलखंड में नरवाई गेहूं की कटाई के बाद बचे डंठल को जला देगी परंपरा पर व्यंग। गौर से सुनो, धुआं में उड़ा थमा विकास, अरे दद्दा गजब ढा दो, कतई मॉडर्न हो गए का सबके सब। अब वो जमानो गो जब बैलगाड़ी भर के भूसा घरे आउत तो, अब तो मशीन करवाएं आई और फसल चटाचट काटी, पीछे छोड़ गई ऊना रवाई। जैसे गेहूं की शादी के बाद पत्तल डरी रत, अब हम ठहरे बुंदेली ठाटवारी, इतनी मेहनत कौन करे कि ऊखे उखाड़े या खाद बनाए, हमने तो उठाई माचिस की सीख और धर दई लंका। धन्यवाद।
1: गेहूं की कटाई के बाद बचे डंठल, इस पर अपने आपने विचार साझा किए, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सदगुरु कबीर गुरुकुल विद्यालय, सिमरिया रोड, कर्रापुर, जिला सागर, CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, अनुभवी शिक्षकों द्वारा सभी विषयों का संपूर्ण ज्ञान, स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, कंप्यूटर क्लासेस, समृद्ध लाइब्रेरी, सुरक्षित पर्यावरण के साथ खेल सुविधा, CCTV कैमरे की निगरानी में बच्चों की विशेष सुरक्षा एवं बस सुविधा, प्रवेश प्रारंभ। जल्दी संपर्क करें 7566432100। लीजिए, भागते दौड़ते ये भी चली आ रही हैं। और क्या नाम है आपका? नाम तो बता दीजिए अपना।
4: नाम जिया दुबे है।
1: अच्छा जिया, किस क्लास में पढ़ती हैं आप जिया?
4: जी दीदी, हम कक्षा 11वीं के छात्र हैं।
1: तो जिया, किस बात पर इतनी हंसी आ रही है अभी आपको?
4: अरे दीदी, हम तैयारी में लगे हुए थे कि हम क्या सुनाएं।
1: आपने सोच लिया ना कि क्या सुनाना है?
4: जी दीदी, सोच लिया।
1: तो सुनाइए, क्या सुना रही है?
4: दीदी, बुंदेलखंडी कविता सुनाने जा रही हूँ।
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका।
4: देखो जा कैसी मनमानी, पीबे खो हो रही परेशानी, मनो सड़कों पे बह रहो पानी, देखो जा कैसी मनमानी, ढोर बछेरू प्यासे फिर रहे, पक्षी मेंढक गर्मी में मर रहे, गाड़ी धो रहे शीशे सी चमकानी, देखो जा कैसी मनमानी, मगर सरकार तो दे रही घर घर पानी, टोर टोर टोटी पाइपलाइन नसानी, कितनो करे कैसे करे कदर को नहीं जानी, देखो जा कैसी मनमानी।
1: वाकई में बहुत मनमानी चलती है कि कहीं भी नल खुला छोड़ देते हैं, पानी बह रहा है सड़कों पर, है ना। बहुत ही आपने अच्छा जागरूकता पूर्ण ये संदेश दिया है अपने बुंदेली बोली में। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और मुलाकात करते हैं आपके एक और साथी से।
5: दीदी, मेरा नाम नीलम तिवारी है।
1: नीलम, किस क्लास में पढ़ती हो बेटा?
5: कक्षा 10वीं में।
1: तो अभी से ये शिकन क्यों दिख रही है आपके चेहरे पर अपने बोर्ड परीक्षाओं की? अभी तो आपका सत्र शुरू हुआ है ना?
5: हाँ दीदी, लेकिन हमने पढ़ाई अभी से शुरू क्यों कर दी है।
1: चलिए अपने साथियों के लिए आप क्या लेकर आई हैं?
5: मैं दोहे लेकर आई हूँ शिक्षा के विषय पर। शिक्षा के अभाव में खिले न गुड़ का फूल, शिक्षा में ही बसा जगत प्रगति का मूल। शिक्षा का अभिप्राय है फैले ज्ञान प्रकाश, मानव संबल बन करे निर्धनता का नाश। जीवन भर है सीखना जिस मानव का ध्येय, लड़ी किसी अण क्षेत्र में रहता सदा अजय। जीवन के हर क्षेत्र में बुद्धि करे अपार, शिक्षा ऐसा वृक्ष है फल दे बारंबार। धन्यवाद।
1: बहुत ही अच्छे आपने दोहे सुनाए हैं और आपने शिक्षा पर बहुत अच्छी बात कही है। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सदगुरु कबीर गुरुकुल विद्यालय सिमरिया रोड कर्रापुर जिला सागर CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रवेश प्रारंभ। जल्दी संपर्क करें 7566432100। लीजिए बच्चों, हम आमंत्रित करते हैं सोनाक्षी ठाकुर को।
6: धन्यवाद दीदी।
1: सोनाक्षी किस कक्षा में पढ़ती हैं बेटा आप?
6: दीदी मैं 10वीं कक्षा में अध्ययन करती हूँ।
1: तो अभी इस समय आपको बाल मंच में भी आना था और ये कक्षा 10वीं की पढ़ाई, जैसे गर्मी को कहते हैं ना उफ ये गर्मी, तो कभी कभी आप भी कहती होंगी ना?
6: हाँ दीदी, हम भी बोलते हैं उफ ये बोर्ड परीक्षाएं।
1: किस तरह से मैनेज करती हैं आप अपने ये गीत कविताएं और दोस्तों से मिलना मिलाना और अपनी पढ़ाई को?
6: हम सब कुछ नियत समय से करते हैं तो सब हो जाता है दीदी।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है। आज अपने साथियों के लिए आप क्या लेकर आई हैं? और
6: दीदी मैं खेल पर कविता लाई हूँ छोटी सी। चलिए शुरू करते हैं। जिंदगी एक खेल है और हम सब खिलाड़ी हैं। कोई हार कर सीखता है तो कोई जीत कर निखरता है। मैदान छोटा हो या बड़ा, हौसला बड़ा होना चाहिए, क्योंकि असली जीत वही है जो मेहनत से हासिल होती है। धन्यवाद।
1: बहुत अच्छी आपने कविता सुनाई, लेकिन एक बात और बताते जाइए कि जब आप खेलती हैं तो खेल का मैदान आपको क्या सिखाता है?
6: दीदी खेल का मैदान हमें अनुशासन, आत्मविश्वास, धैर्य और टीम वर्क सिखाता है।
1: अब हम इनका धन्यवाद देते हैं क्योंकि और भी साथी कतार में हैं, तो उनसे भी मुलाकात कर लेते हैं।
7: दीदी मेरा नाम आकर्षणा डांगी है, मैं कक्षा 11वीं में पढ़ती हूँ।
1: तो आपकी कविता भी कुछ ऐसी ही आकर्षक होगी, है ना?
7: हाँ दीदी।
1: अरे वाह, पूरा विश्वास है बच्चों इनको।
7: दीदी मैं एक छोटी सी कविता लाई हूँ, स्कूल चले।
1: स्कूल चले, चलिए भाई चलते हैं।
7: चलो साथियों स्कूल चले, चलकर पढ़ाई करना है, पढ़ लिख कर एक दिन हमको भारत माँ का मान बढ़ाना है। चीर कर धरती को हमें मोती भी ढूंढ लाना है। पढ़ लिख कर हमको एक दिन आसमान में तिरंगा लहराना है। मिटाकर अशिक्षा को अब शिक्षा की अलग जगाना है। पढ़ लिख कर हमको एक दिन धरती को स्वर्ग बनाना
1: है। बहुत ही अच्छी कविता सुनाई है। स्कूल चले हम, तो बच्चों हम भी चले। हाँ बच्चों आज तो छुट्टी है, हमारा मतलब था कि इनका धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी ही प्यारी सी छात्रा हमारे बीच है।
8: दीदी मेरा नाम आयुषी जैन है, मैं 11वीं में पढ़ती हूँ।
1: तो आप क्या लेकर आई हैं अपने साथियों को?
8: मैं आज बताऊंगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
1: मन में कब से था कि आपको बाल मंच में जाना है?
8: बहुत टाइम से सोच रही थी।
1: तो आपकी कोशिश भी सफल हो गई ना?
8: हाँ दीदी।
1: तो चलिए अपनी कविता भी सुना दीजिए अपने साथियों को।
8: लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी ताना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोता खोल लगता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ना दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कभी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
1: इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और मुलाकात कर लेते हैं एक और साथी से। चलिए अपना प्यारा सा नाम तो बता दीजिए अपने साथियों को।
9: दीदी मेरा नाम खुशी पटेल है।
1: तो ठीक है, अपनी क्लास बता दीजिए अब।
9: मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ।
1: अपने साथियों को क्या लेकर आई हैं आप?
9: आला उदल गायन शैली।
1: चलिए आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
9: आला उदल बड़े लड़ैया, चमचम चमक रही तलवार, मची खलबली रण में भारी, होने लगे बार पे बार। जब जब दुश्मन रण में आए, टूट पड़े उदल तत्काल, काट काट सर धूल चटाने कर रण भूमि मैं रक्त से लाल आला उदल लड़ी लड़ाई उदल तभी भरी हूँ का चुन चुन सारे दुश्मन मारे उदल करते हैं संहार महाबली उदल बलशाली भीम सरीखे विपुल महान सेना जब जब आला गाए लड़ने जाए वीर जवान। धन्यवाद
1: खुशी, आपने बहुत ही अच्छा आला गायन किया, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इसी तारतम्य में अब हम बुलाते हैं आपके एक और साथी को, हम आपका बहुत

0: बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, लेकिन हमें तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि समय हमें इजाजत नहीं देता है कि हम आपसे और मुलाकात करें। तो बच्चों, आप यहाँ आए, आपने हमसे बात की और साथियों से मुलाकात की, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
1: दीदी, हम भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
0: इसी धन्यवाद के साथ हो जाए जोरदार तालियां बच्चों। सदगुरु कबीर गुरुकुल विद्यालय, सिमरिया रोड, कर्रापुर, जिला सागर, CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, प्रवेश प्रारंभ। जल्दी संपर्क करें 7566432100। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे सदगुरु कबीर गुरुकुल विद्यालय, सिमरिया रोड, कर्रापुर, जिला सागर। सदगुरु कबीर गुरुकुल विद्यालय, सिमरिया रोड, कर्रापुर, जिला सागर।

अभी आप सुन रहे थे बच्चों का मनपसंद कार्यक्रम बाल सभा। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। थोड़ी देर में विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किए जाएंगे।

माधुरी दीक्षित नेने और अनुपमा राग की आवाजों में गुलाब गैंग फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। चित्रलोक कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं।

उदित नारायण और साथियों की आवाज़ों में ये गीत आप सुन रहे थे। इस गीत को मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था और आनंद मिलिंद ने इस गीत की धुन बनाई थी। आज फादर्स डे है, पिता दिवस। हमारी संस्कृति में पिता को देवता के समान माना गया है। पिता का स्नेह, पिता का अनुशासन और प्रेरणा हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है, पूरी राह दिखाता है। पिता के स्नेह और मार्गदर्शन से ही हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। यूं तो हर दिन हमें अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ और श्रद्धा समर्पण का भाव होना चाहिए, और यदि कोई विशेष अवसर आए तो उस अवसर को हमें कभी नहीं चूकना चाहिए। इस अवसर का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। और विश्व फादर्स डे हमें अपने पिता के प्रति सम्मान, श्रद्धा और प्रेम व्यक्त करने का ये सुंदर अवसर प्रदान करता है। आइए हम उन सभी पिता को नमन करते हैं जो अपने परिवार की खुशियों के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। यही पिता का स्नेह, यही पिता का प्यार हमारे जीवन को संवारता है, सजाता है, आगे बढ़ाता है।

में प्रेम की दीवानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान, करीना कपूर और साथियों की आवाजों में। देव कोहली ने इस गीत को लिखा था, अनु मलिक ने इस गीत की धुन बनाई थी। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, चित्रलोक के कार्यक्रम के बाकी गीत इस ब्रेक के बाद।

फिर स्वागत आप सभी का चित्रलोक कार्यक्रम में। श्रेया घोषाल की आवाज में लापता लेडीज फिल्म का ये गाना। ये संगीत है राम संपत का। स्वानंद किरकिरे ने इस गीत को लिखा है।

0: श्रेया घोषाल की आवाज में स्वानंद किरकिरे का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे। राम संपत का संगीत था। लापता लेडीज फिल्म का ये गाना आपने सुना।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों

0: बहुत कॉमन है.
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर. ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी.
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने.
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है. और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं.
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर.
2: लीजिए अब सुनिए धुरंधर फिल्म का ये गीत.

0: जैस्मिन सैंडल्स और सतिंदर सतराज की आवाजों में आप धुरंधर फिल्म का गीत सुन रहे थे।
1: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

श्रेया घोषाल की आवाज में ये तूतक तूतक तूतिया फिल्म का गाना है। प्रणव वात्स का ये गीत लिखा है इन्होंने और विशाल मिश्रा का संगीत है।

इस गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत सविता सिंह को। नमस्कार, आपका दिन बहुत शुभ हो, मंगलमय हो और आप सुखी, समृद्ध, ऊर्जावान रहें। इसी के साथ ही एक बार फिर से इजाजत, नमस्कार।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए रेडियो पत्रिका कार्यक्रम गागर में सागर। संकलन और निर्माण है अदिति जैन का और प्रस्तुति है दीपक निषाद की।

0: आयोजित हुई गतिविधियों की जानकारी। दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों, सरकारी योजनाओं और न्यायिक सहायता की जानकारी देने के उद्देश्य से सागर जिला न्यायालय परिसर में विशेष विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विभिन्न सत्रों के माध्यम से कानूनी अधिकार, मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन और निःशुल्क विधिक सहायता जैसे विषयों पर जानकारी दी गई। इस आयोजन में बड़ी संख्या में दिव्यांगजन और उनके परिजन शामिल हुए। हमें विस्तार से जानकारी दे रहे हैं मिथिलेश।
1: आकाशवाणी सागर के समस्त श्रोताओं को सादर नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम मिथिलेश डहरिया है और मैं जिला न्यायालय सागर में जिला विधिक सहायता अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ। 13 जून 2026 को माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय श्री विवेक रूसिया साहब के द्वारा एक ऑनलाइन कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया था, जिसका नाम अनुगूंज रखा गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य श्रवण एवं वाक बाधित व्यक्तियों को उनके विधिक और संवैधानिक अधिकारों की जानकारी दिए जाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हमारे मूक बधिर व्यक्तियों को, यदि उनके बीच किसी प्रकार का कोई न्यायालयीन मामला आ जाता है या उन्हें किसी प्रकार की विधिक परामर्श की आवश्यकता होती है तो उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती है और उन्हें इस बात की भी जानकारी नहीं होती कि वे अपनी समस्याओं का निराकरण किस मंच के माध्यम से करा सकते हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश में दिनांक 13 जून को माननीय कार्यवाहक न्यायाधिपति महोदय के द्वारा प्रदेश व्यापी कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया था, जिसमें प्रदेश के समस्त मूक एवं बधिर व्यक्तियों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदान की गई थी। धन्यवाद।
0: असंतुलित खानपान और दवाओं के अत्यधिक सेवन से लीवर पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को लेकर चिकित्सकों ने चिंता जताई है और इसी संबंध में नीमा द्वारा आयोजित बैठक में विशेषज्ञों और चिकित्सकों ने बताया कि स्वस्थ जीवन शैली और संतुलित आहार से लीवर संबंधी कई समस्याओं से बचा जा सकता है। बैठक में बड़ी संख्या में चिकित्सक उपस्थित रहे। हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर नीरज जैन।
2: नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज कुमार जैन। बीते सप्ताह सागर जिले में नीमा जिला सागर शाखा के द्वारा नीमा जिला सागर शाखा की कार्यकारिणी द्वारा एक मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसका प्रयोजन था कि हमारे जितने चिकित्सक हैं उनको नीमा की गतिविधियों के बारे में, मौसमी बीमारियां जो अब आगे जो मौसम आ रहा है, बारिश का मौसम आ रहा है, इससे लोगों को बचाने के लिए जागरूक करने के लिए मीटिंग का आयोजन किया गया था। साथ ही साथ इसमें हमारे जो हैं मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर राहुल जैन उपस्थित थे, जिन्होंने इस मीटिंग में लीवर से संबंधित होने वाली बीमारियों के बारे में चर्चा करी, किस प्रकार लीवर का बचाव करा जा सकता है, लीवर को किन तत्वों से, जैसे कि शराब से, जैसे कि तेलीय खान पान से और अन्य चीजों से जिससे लीवर को जो नुकसान करती है उससे बचाव के लिए उन्होंने लोगों को और चिकित्सकों को उपाय सुझाए। नीमा जिला सागर के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश पटेरिया द्वारा नीमा की गतिविधियों के बारे में, जिसमें म्यूचुअल बेनिफिट स्कीम यानी जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं उनको इस स्कीम के बारे में उन्होंने बताया गया। साथ ही साथ बताया गया कि इस स्कीम के तहत वार्षिक रूप से कुछ पैसे जमा करके हम अपने साथियों को आपातकाल की स्थिति में किस तरह से हम सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है, इनको विकलांगता होने में या किसी मृत्यु की स्थिति में किस प्रकार से नीमा की जो कार्यकारिणी है उनकी मदद करने के लिए तत्पर है। इस बैठक में लगभग जिला सागर से 40 चिकित्सकों ने सहभागिता की। बैठक बहुत सफल रही और इसमें चिकित्सकों ने बहुत आनंद लिया। रात्रि भोज के उपरांत इस बैठक का समापन किया गया और अन्य सामान्य चिकित्सक बहुत सारे उपस्थित थे। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मध्य प्रदेश विद्युत मंडल पेंशनर एसोसिएशन की बैठक में कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ी जानकारियां साझा की गई। इस संबंध में हमें अधिक जानकारी दे रहे हैं महाराज सिंह।
3: मेरा नाम महाराज सिंह राजपूत है। पेंशनर एसोसिएशन में सह सचिव का मेरा पद है। जो कार्यक्रम हुआ है वो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ है। हर पॉइंट पे मार्गदर्शन दिया है। किसी को कोई शक है तो उन्हें पूरा विस्तार से समझाया कैसे इसका लाभ मिलेगा और कोई परिस्थिति ऐसी भी है जिनमें लाभ नहीं मिल सकेगा वो भी उन्होंने पूरा मार्गदर्शन दिया। जो उनकी लिस्ट में हॉस्पिटल एडमिट है उनसे ही इलाज करवाएं और अगर उनसे इलाज नहीं करवाते कोई दूसरे हॉस्पिटल से इलाज करवाते हैं तो उसका आप रिम्बर्समेंट ले सकते हैं। पूरा उन्हें मार्गदर्शन दिया। करीब 200-250 पेंशनरों की उपस्थिति हुई और सभी को बहुत ही अच्छा लगा ना, पूरा मार्गदर्शन मिला। उसमें बिल्कुल हर प्रकार की सुविधा, एम्बुलेंस

0: से जाएंगे तो उसका भी खर्च बहन करेंगे ना, वहाँ आप रुकेंगे ना तो कमरे का भी बहन करेंगे, डॉक्टर की फीस भी बहन करेंगे। जिनने नहीं कराया उसके लिए भी आगे आप सुनाने वाला है और निश्चित रूप से करवाएं, इसमें कोई इतनी ज्यादा ऐसी परेशानी नहीं है।
1: रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सागर में 22 जून को युवा संगम कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में हमें अधिक जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर मयंक कुमार रूसिया।
2: मैं डॉक्टर मयंक कुमार रूसिया सौद्रा राय शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विभाग के विभाग अध्यक्ष और ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर के रूप में कार्यरत हूं। तो युवा संगम कार्यक्रम जो विशाल रोजगार मेला का आयोजन 22 जून दिन सोमवार को प्रातः 11 बजे से सायं 5 बजे तक ये कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। पॉलिटेक्निक कॉलेज है सौद्रा राय शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय तिली रोड रिमझिरिया में ये आयोजित किया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार मंत्रालय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय भोपाल के निर्देशानुसार जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में और जिला व्यापार उद्योग केंद्र के सहयोग से एवं जिला रोजगार कार्यालय के सहयोग से प्रति माह के अंतिम सोमवार को हम लोग ये इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं रोजगार मेले का। ये रोजगार मेला युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। इस कार्यक्रम में देश और प्रदेश की कई नामी कंपनियां आती हैं और बच्चों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती हैं। अगर कोई अशिक्षित व्यक्ति भी है और अगर किसी तरह का कोई उसने स्किल्स अपनी नेचुरल लाइफ में लिया है तो ऐसे बच्चे भी इसमें रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा 10वीं पास 12वीं पास डिप्लोमा इंजीनियरिंग या किसी ने अगर फार्मेसी किया है, हायर एजुकेशन में भी बहुत सारे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे BA BCOM BSc स्नातक है वो, तो वो भी इस रोजगार मेले का अवसर का लाभ उठा सकता है और प्लेसमेंट प्राप्त कर सकता है। इसमें सभी प्रतिभागी सभी अभ्यर्थी जिनका न्यूनतम योग्यता 10वीं पास हो वो इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अभ्यर्थियों के लिए मैं विशेष रूप से ये कहना चाहूंगा कि अभ्यर्थी अपने साथ में अपने मूल दस्तावेज की कॉपी जरूर लेके आए, साथ में अपना समग्र आईडी आधार कार्ड एक पासपोर्ट साइज का फोटो ये वो अभ्यर्थी जरूर लेके आए। सभी अभ्यर्थियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, धन्यवाद।
1: श्रोताओं, आज 21 जून को फादर्स डे यानी पितृ दिवस मनाया जा रहा है। फादर्स डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पिता एक ऐसा शब्द है जिसमें सुरक्षा भी है, विश्वास भी है और जीवन भर साथ चलने वाली सीख भी है। कुछ लोग आज अपने पिता के साथ ये दिन मना रहे हैं, कुछ उनसे दूर हैं, कुछ देश के दूसरे शहरों में हैं, कुछ विदेशों में हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनके पिता आज सिर्फ उनकी यादों में बसते हैं। लेकिन पिता और संतान के रिश्ते की डोर समय, दूरी और परिस्थितियों से कहीं अधिक मजबूत होती है। आज फादर्स डे के अवसर पर हम सागर और सागर से जुड़े अपने कुछ श्रोताओं के संदेश आपके साथ साझा कर रहे हैं। सुनते हैं उनकी दिल की बात।
3: नमस्ते, मैं अमिता। बचपन में उंगली पकड़कर चलाने वाले पापा आज भी मेरी हिम्मत बने हुए हैं। मेरी हर छोटी बड़ी उपलब्धि में उनका योगदान शामिल है। मेरे पापा मेरे लिए उतने ही खास हैं जैसे कि धड़कन के लिए सांसें।
4: मेरा नाम नीलेन सिंह राजपूत है, मैं आज विदेश में हूँ, लेकिन जब भी कोई सफलता मिलती है सबसे पहले मुझे मेरे पापा का चेहरा याद आ जाता है। मेरी हर उड़ान की नींव उन्हीं के त्याग और उन्हीं के भरोसे पर खड़ी है। हैप्पी फादर्स डे।
5: मैं अचला जैन,
6: मैं अपने पिताजी को बहुत याद कर रही हूँ। मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं है परंतु उनके दिए हुए संस्कार सहनशीलता मेरे साथ है और मैं उनके पद चिन्हों पर चलती हूँ और आगे भी चलती रहूँगी।
7: नमस्ते, मेरा नाम गीत है एंड मैं इस फादर्स डे पर ये कहना चाहती हूँ कि पापा चाहे कितना भी वर्क हो या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, आप हमेशा मेरे लिए टाइम निकाल लेते हो एंड उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच। एंड आपका प्यार और सपोर्ट मेरी सबसे बिगेस्ट स्ट्रेंथ है एंड मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ, बिलीव मी, कि मुझे आप जैसे पापा मिले। सो अ वेरी हैप्पी फादर्स डे एंड मुझे जितने भी फादर्स सुन रहे हैं उनको भी अ वेरी हैप्पी फादर्स डे।
1: शिखर की ओर। श्रोताओं, जब सांसों में लय हो, मन में शांति हो और जीवन में संतुलन हो, वहीं से योग की शुरुआत होती है। 21 जून यानी आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग केवल आसनों का अभ्यास नहीं है बल्कि शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करने की एक प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति केवल शरीर की नहीं बल्कि विचारों की स्थिरता और मन की शांति में भी होती है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जहां तनाव और व्यस्तता हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुके हैं, योग हमें ठहरना, स्वयं को सुनना और भीतर की ऊर्जा को पहचानना सिखाता है। और श्रोताओं, कहा भी गया है कि योग है जीवन का आधार, तन में स्फूर्ति, मन में विस्तार। योग दिवस के इस विशेष अवसर पर हम बात करेंगे योग के महत्व, उसके वैज्ञानिक और व्यावहारिक पहलुओं और स्वस्थ जीवन में उसकी भूमिका पर। सुनिए योग विषय के विशेषज्ञ डॉक्टर नितिन कोरपाल से ये विशेष बातचीत।
2: जी, मैं डॉक्टर नितिन कोरपाल वर्तमान में रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर में राजकीय विश्वविद्यालय है, इसमें योग शिक्षा विभाग में गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्यरत हूँ। आप सभी को विदित है कि 21 जून पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये 21 जून पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन भारत की पहल पर सन 2014 में नरेंद्र मोदी जी द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा को अपने संभाषण में प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिस पर 170 देशों ने तत्काल स्वीकृति देते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता प्रदान करने हेतु संयुक्त राष्ट्र सभा में प्रस्ताव पर मोहर लगाई थी। और फिर 21 जून को सन 2015 से लगातार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इंटरनेशनल डे होगा के रूप में मनाया जा रहा है। वर्तमान में ये 12वां आयोजन होगा जो वैश्विक स्तर पर आयोजित किया जाएगा। और जो सरकारी रिपोर्ट है वह यह है कि 210 से ज्यादा देशों में यह आयोजन साइमल्टेनियसली, यहाँ पर दिन है वहां दिन और जहां रात्रि होगी उसके रात्रि के होने के पश्चात जब सुबह होगी तो वह आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष जो थीम रखी गई है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, अर्थात हम एक स्वस्थ जीवन शैली को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उस थीम को ध्यान रखते हुए सरकार के आयुष मंत्रालय जो कि एक इंडिपेंडेंट मंत्रालय है, मूल रूप से परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के तहत आयुष मंत्रालय आता है और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के तीनों के संयुक्त उपक्रम में एक कॉमन योगा प्रोटोकॉल का निर्धारण करते हुए जो कि लगभग 45 मिनट का प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल में पूरे विश्व में एक सी ही स्थितियों का वर्णन करते हुए अभ्यास करते हुए योग दिवस मनाया जाता है। मनुष्य के सामाजिक, आर्थिक और वैचारिक पहलू हैं। इन पहलुओं से पहले मनुष्य अपने शरीर और मन से स्वस्थ हो, इस आयोजन को वैश्विक स्तर पर रखने की संकल्पना यही है कि एक स्वस्थ शरीर का निर्माण आवश्यक है, जिसमें स्वस्थ शरीर के साथ साथ स्वस्थ मस्तिष्क हो, तब जाकर के मनुष्य जो है अपने सामाजिक, आर्थिक और वैचारिक ढांचे को स्वस्थ बना सकता है और एक राष्ट्र के विकास की संकल्पना में योगदान दे सकता है। आज चूंकि 21 जून है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, सागर विश्वविद्यालय, डॉक्टर हरिसिंह और विश्वविद्यालय, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि यहाँ पर स्थापित योग शिक्षा विभाग पूरे विश्व का सर्वप्रथम विभाग है जहां से योग शिक्षा विश्वविद्यालय स्तर पर प्रारंभ हुई थी। हमारा जो विश्वविद्यालय है वो पायोनियर इंस्टीट्यूट कहलाता है, जहां पर प्रथम बार विश्वविद्यालय स्तर पर स्नातक, डिप्लोमा तथा स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम तैयार किए गए। इन पाठ्यक्रमों को आधार मानकर पूरे विश्व के जितने भी विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थान हैं वहां पर योग के पाठ्यक्रम बनाए गए और अब तो एक सेंट्रलाइज्ड सर्वमान्य पाठ्यक्रम भी तैयार करने का प्रयत्न भारत सरकार की ओर से किया जा रहा है ताकि उसमें एकरूपता बनी रहे और सभी जगह एक से पाठ्यक्रम लागू किए जाएं। ऐसे सागर के इस शहर के हम वासी हैं, हम सभी से अनुरोध करेंगे कि भारत सरकार की भी मंशा है कि 365 दिन योग, अर्थात योग केवल एक 21 जून के लिए या 12 जनवरी जो कि अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय युवा दिवस कहलाता है, स्वामी विवेकानंद की जयंती और उस दिन सामूहिक सूर्य नमस्कार होता है, तो केवल इन दो दिनों तक सीमित न रहे, अब एक तीसरा दिन भी शामिल हो गया है विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को। तो कहने का तात्पर्य है कि केवल ये दिनों तक सिमट कर न रह जाए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 365 डेज योग का एक नारा भी दिया है। तो ये सभी को अपने जीवन के कल्याण के लिए, शरीर मन और आत्मिक कल्याण के लिए योग को अपनाना चाहिए। मेरी ओर से ये अपील है कि समस्त विश्व के नागरिक
8: चाहे वे किसी भी भाषा, किसी भी जाति, किसी भी लिंग के व्यक्ति हों, सभी हम ईश्वर के बनाए हुए समान प्राणी हैं। सभी के पास दो आंखें, दो कान, नासिका, जिह्वा, पूरा शरीर में दो हाथ और पैर, एक सा संगठन दिया गया है। तो केवल रंग काला है या गोरा है, या मैं इस समाज का हूं या इस जाति का हूं, इस भेद के आधार पर हम जो अपने वर्गीकृत करते हैं अपने आप को, इन सब से हटकर एक मानसिक और शारीरिक संगठन को बनाने के लिए योग को अपने जीवन में अपनाएं। इसी संदेश के साथ मैं आप सभी को आज के दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपके जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति हो, आप तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। बहुत शुभकामनाओं के साथ बहुत धन्यवाद।
9: सागर के मोती।
1: मंजिल तक पहुंच जाना ही सफलता की एकमात्र पहचान नहीं होती, कभी कभी उस मंजिल की ओर लगातार बढ़ते रहना भी प्रेरणा बन जाता है। सागर के मोती में हम अक्सर ऐसे व्यक्तित्वों से रूबरू होते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और उपलब्धियों से एक खास मुकाम हासिल किया है, लेकिन कुछ मोती ऐसे भी होते हैं जो अभी तराशे जा रहे होते हैं, जो अपने सपनों को आकार दे रहे होते हैं, जो चुनौतियों के बीच भी रुकना नहीं जानते। आज हम मिलवाने जा रहे हैं ऐसी ही एक युवा शख्सियत से जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते हुए एमएड, बीएड और अन्य उच्च अध्ययन के माध्यम से अपने ज्ञान को समृद्ध किया है। उनका सपना है एक सफल बिजनेस वुमन बनना, और इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए वो लगातार प्रयासरत हैं। तो सागर के मोती में मिलते हैं ऋतु ठाकुर से और जानते हैं उनके सपनों, संघर्षों और सफर की कहानी उन्हीं की जुबानी।
10: मेरा नाम ऋतु है, ऋतु ठाकुर। मैं बंडा से आती हूँ। मैं सागर में अभी जॉब कर रही हूँ और जॉब के साथ साथ मैं अपनी स्टडी भी रनिंग में चल रही है मेरी। मैंने बीए किया है, फिर एमए किया है, मतलब ग्रेजुएट हूँ, फिर पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, और मैं अब पीजी कॉलेज से बैचलर इन लाइब्रेरी कोर्स कर रही हूँ। इसके पीछे का रीजन ये है कि जैसे आगे चल के जिस भी सेक्टर में जाऊँ, मुझे ऐसा नहीं लगे कि मैंने कुछ मिस कर दिया है पीछे। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जितना सीख सकती हूँ उतना सीख लूँ, और मेरा ये वीलैप करने का सीधा सा पर्पस ये है कि मेरे लिए एक और अपॉर्चुनिटी खुल जाए उसके थ्रू। सागर में मैं एक कंपनी के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब कर रही हूँ। हमारी कंपनी का एक ऐप है, उस पे ही काम होता है सारा, और उस ऐप के थ्रू आप अब सागर की सभी सेवाएं ले सकते हैं। जैसे सागर में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का काम करता है, वो हमारे ऐप से जुड़ के अपने काम को डिजिटल बना सकता है, मतलब अपनी सेवा को ऑनलाइन माध्यम से आगे बढ़ा सकता है। स्टार्टिंग से ही सबसे पहले मैंने कोर्स किया था, उसके थ्रू मैंने सोचा जैसे मैं पढ़ाई के साथ साथ मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकूं, जैसे कॉलेज का जो भी खर्चा होता है मैं खुद के पैसों से निकाल सकूं, मतलब अपनी इनकम के थ्रू मैं अपनी पढ़ाई जारी रखती हूं। सबसे बड़ा रोल इसमें मेरी माँ का है, उनने मुझे बचपन से ही सपोर्ट किया है, मतलब मेरे मतलब एज के लड़कियाँ हैं जो सभी की शादी हो चुकी है, सब सेटल हैं अपनी लाइफ में, लेकिन इन फ्यूचर मैं खुद का बिजनेस करना चाहती हूँ, वो भी मैं करूँगी। मेरे पापा भी हैं, पापा गांव पे रहते हैं, किसान हैं, तो वो फार्मिंग ही करते हैं। एक मेरा छोटा भाई है, वो भी पढ़ाई करता है। सबसे बड़ी सपोर्टर मेरी माँ ही रही है, मतलब रिलेटिव में सब जगह चीज़ों को मैनेज करना, मुझे यहाँ तक पहुँचाना, मैं सागर आ रही हूँ तो मतलब मुझमें सपोर्ट करना। जैसे कि आप जानती हैं कि घर में लड़कियों को क्या रहता है कि खाना बनाओ, आराम से सेटल हो जाओ, मतलब यहाँ खाना बनाओ वही, लेकिन मेरी माँ मुझसे ना खाना पीना भी नहीं बनवाती हैं, वो मतलब मुझे हर चीज़ों में सपोर्ट करती हैं। कहीं जाने के लिए फ्रीडम, मतलब कह सकते हैं लड़की के जो पंख रहते हैं ना, वो उनकी माँ ही देती हैं उड़ने के लिए। तो ऐसा है, मैं इन फ्यूचर भी एक बिजनेस वूमन बनना चाहती हूँ, और इसी की वजह से मैं मल्टीपल चीज़ें सीखना चाहती हूँ। जैसे कि मैं अभी कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब कर रही हूँ, मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ आगे चल के मेरी स्किल्स डेवलप हो और मैं और भी सेक्टर में चीज़ें समझ पाऊँ या मतलब करने की कोशिश करूँ। मैं एक तरह से अपने आप को खुद को ट्रेनिंग दे रही हूँ इन फ्यूचर अपने गोल्स को पाने के लिए। मैं पहले स्पोर्ट में भी थी कॉलेज में, मुझे गेम्स बहुत पसंद हैं, और मैं खो खो की टीम प्लेयर भी रही हूँ और कैप्टन भी रही हूँ। मैंने कबड्डी भी खेली है, और मैं मतलब रंगोली वगैरह भी बहुत अच्छी बनाती थी कॉलेज के टाइम पे। मेरे पास बहुत सारे अवार्ड्स भी हैं, जैसे मेरे पास डांसिंग का अवार्ड है, एक कॉलेज स्तरीय है। और मैंने रंगोली भी बनाई है, उसमें भी मैं कॉलेज स्तर से फर्स्ट आई थी। और मैं खो खो भी खेला है, खो खो में मैं रहली से जीत के आई थी, बंडा से रहली गई थी, वहाँ से मेरी टीम के साथ जीत के भी आई थी। और मैं कबड्डी भी खेलती हूँ, बट टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो अब उन चीज़ों को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। संदेश यही रहेगा, अपनी स्किल्स को डेवलप करिए। लड़कियों से खास करके मेरा रहेगा कि कोई भी चीज़ आपको सीखने के लिए सोचना ज़रूरी नहीं है कि हमारे ये काम की ही है। हर स्किल को सीखिए, इन फ्यूचर आपको कुछ ना कुछ वो आपको देखी ही जाएगी। और खाना तो आप बना ही लेती हैं, साथ ही साथ देश भी बनाइए हमारे हिसाब से। छोटे छोटे बिजनेस कीजिए, छोटी छोटी जो काम होते हैं आप, मतलब कहते हैं कुछ नहीं करेंगे तो कुछ होगा नहीं, कुछ करेंगे तो कुछ होगा। छोटा बड़ा जो भी है, आप खुद पे डिपेंड रहिए। हमारे माता पिता जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे भी मुझे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी लड़कियों को पढ़ाइए, उनको फ्रीडम दीजिए, आगे जाने का मौका दीजिए, उनको उसमें सपोर्ट करिए। थैंक यू।

0: श्रोताओं, माटी की महक केवल माटी में नहीं होते है। कई बार जा खुशबू कछु लोगों की कहानियों में बसत है जो अपनी जड़ों से जुड़े रहकर समाज के लाने सपना देख रहे हैं। आज माटी की महक में हम आपरों की मुलाकात करवा रहे हैं बुंदेलखंड की ऐसी एक बेटी से जौनने एक व्यक्तिगत चुनौती को अपनी ताकत बनाओ। आपने अपने बेटा की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के दौरान योग को फिर से अपने जीवन में अपनाओ। धीरे धीरे जो अभ्यास उनकी जुनून में बदल गई। आपने योग को समझो, उसको सीखो, उसमें दक्षता हासिल करी और महसूस करो जौन परिवर्तन वे अपने जीवन में देख रही हैं, उसको लाभ समाज तक पहुंचाओ जाए। और जई सोच उन्हें एक योग शिक्षिका के रूप में लोगों को स्वस्थ जीवन की ओर प्रेरित करबे के लाने निरंतर आगे बढ़ा रही है। अपनी माटी, अपने लोग और अपनी संस्कृति से जुड़ी ज्योति राजपूत की जब प्रेरक यात्रा सुनत है कि कैसे एक माँ की चिंता ने सेवा, समर्पण और योग के नए सफर को जन्म दाओ।
1: नमस्कार, हमारा नाम ज्योति राजपूत है और हम योगा से जुड़े हुए हैं। हम योगा करत भी हैं और सिखात भी हैं और हमारा उद्देश्य जो है कि ज्यादा से ज्यादा लोग योगा के बारे में जानें और करें। काहे कि ये के बहुत ज्यादा फायदे हैं। ये हमारे मन को भी शांत रखते है, तन को भी निरोगी रखते है और लंबे समय में अगर हम देखें तो इसे हम बीमारी मुक्त हो सकते है। तो हमारे बार बार डॉक्टर के जावे की झंझट भी खत्म हो सकता है। तो हमारा उद्देश्य वही है कि जो हमारे बुंदेली भाई बहन हैं उन सबको एक ही जानकारी होए और अगर कोई करवावे वालों मिल रहा हो तो उसके थ्रू करे, लेकिन मतलब योगा से जुड़े। कहा है कि योग ना हमारे जो पिताजी हैं वे बहुत समय से कर रहे हैं तो वे हम लोग को बचपन में कराते तो उतने से थोड़ी रुचि आई हम लोग को बचपन से, तो थोड़े बड़े हो गए तो रुचि हट गई, लेकिन वो वापस अब 4-5 साल से वापस रुचि आई। दूसरे कारण सबसे बड़ा एक हमारा लड़का है क्योंकि जब वो तो को ऐसी कछु मतलब बीमारी थी कि वो ठीक ही नहीं रहे तो अपन ने सागर में बहुत जगह उसको इलाज कराओ लेकिन कहीं आराम नहीं लगो। फिर थोड़ा अपन योगा के बारे में मालूम पड़ो कि इसे सही हो जाए, इसे सही हो जाए, तो ऐसे करके अब फिर अपन ने सोची कि अब दूसरों से सलाह ले भी से अच्छा है कि अपन ये सारी पढ़ाई कर लो। तो फिर अपन ना इसमें मतलब बहुत अंदर तक फिर अपन ने पढ़ाई की, फिर सर्टिफिकेट उसमें करी और जो थोड़ी आयुर्वेदा से भी अपन जुड़ के उनकी दवाई ववाई करके तो अभी मतलब लड़का ठीक है। तो अब अपन इसको पकड़ के बैठे हैं कि ये मान के चलो कि अपन योग कर नहीं रहे हैं, अब अपन योग को जी रहे हैं। अगर योग ना करें तो अपनी जिंदगी अधूरी है अभी, ये है अब। और अपनी पढ़ाई अपन ने एमए करो है, फिर बीएड भी है, एमएड भी है, फिर अपन योगा के क्षेत्र में भी आए हैं, फिर अपन ने डाइट न्यूट्रिशन को भी कोर्स करो तो फिर अपन यही में जुड़ गए योगा और आयुर्वेद में। तो अपन एक थोड़े से लोगों को फायदा बता रहे हैं और लोगों को अपन जो ही चाह रहे कि निरोगी रहे इंसान और शांत मन होए, जो आजकल सब कोई को शांति ही नहीं मिल रही है, सब परेशान है, नींद नहीं आ रही है, भाग दौड़ भरी हमारी सबकी जिंदगी है। तो हमारी थोड़ी सी वही कोशिश है कि सब लोग इतने मतलब वो हो जाए कि अपनी लाइफ से जो भी है जैसी भी है संतुष्ट रहे, तो वो योग से ही संभव है ये सब चीजें कि हम अपनी जिंदगी में शांति और संतुष्टि के साथ हम अपने जीवन को निकाल सकते थे। हम बाहर भी जा सकते थे, बाहर अपन को पैसा भी बहुत मिल सकते थे, लेकिन कहा है कि अगर अपन सागर में देखें तो कोई भी ऐसा बहुत से लोग हैं लेकिन उतना जागरूक नहीं हो पा लोग के जहाँ एक जगह जाके कर सके। तो अपन बस सुविधा लोगों को दे रहे हैंगे, जगह भी दे रहे हैं, सुविधा भी दे रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे, क्योंकि इतने लोगों को ना वो चीज की ज्यादा जानकारी नहीं है और बाहर के लोग तो जागरूक हैं और उनके लाने तो और लोग भी अवेलेबल हैं, लेकिन अपन जो माटी में भय है, अपने लोगों से जुड़े भय है, अपनी सोच यही है कि उतने के लोगों को फायदा मिले चाहे पैसा कमाए, वो अपन को महत्व नहीं रखा। लोगों को नहीं पता है, लोगों को पता जो हंसे के बस वजन कम हो जाते, वजन बस कम नहीं होते और अंदरूनी चीजों के फायदा इनके धीरे धीरे जब हम करते रहते हैं तब लंबे समय में पता चला थे अपन को कि अपन का कर रहे हैं और इनके फायदा का हो रहे हैं। हमारा तो जो संदेश है कि सब लोग योग करें, योगा को जाने, इसे हमारे तन की, मन की और निरोगी काया प्राप्त होते है। लंबे समय में हम ऐसे है कि भाई हमारी छोटी छोटी बीमारियां जो दूर हम कर सकते हैं बिना पैसा खर्च करें और घर बैठे, तो भाई जरूर योगा से जुड़े और योगा को अपनाएं, योग करें और निरोग रहें, यही हमारा संदेश है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आप औरों को सुनवा रहे हैं रामचरण यादव की आवाज में लोकगीत।

0: सप्ताह चर्चा में।
1: श्रोताओं, देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून पूर्व गतिविधियां जारी हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के कई राज्यों में गरज चमक, तेज हवाओं और हल्की से मध्यम बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। दिल्ली NCR समेत कई क्षेत्रों में मौसम में बदलाव के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में तेज हवाओं और आंधी की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और आगामी दिनों में इसके और क्षेत्रों में पहुंचने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। उड़ीसा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में मानसून के विस्तार की संभावना व्यक्त की गई है। हालांकि देश के कुछ क्षेत्रों में वर्षा की कमी भी बनी हुई है, लेकिन अधिकांश स्थानों पर बदलते मौसम के कारण लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल रही है। विभाग ने नागरिकों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और स्थानीय मौसम संबंधी सलाह का पालन करने की अपील की है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक रेडियो
2: पर है अभिषेक कटियार का। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे शहडोल जिले में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम गांधी स्टेडियम में आयोजित किया गया है, जहां जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों ने सामूहिक योग किया। इस वर्ष की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग रखी गई है। जिले के स्कूलों, पंचायतों और संस्थानों में भी एक साथ योगाभ्यास कराया गया। अब बात करते हैं प्रशासनिक बदलाव की। भारत सरकार ब्लॉक, तहसील और जिला पुनर्गठन की तैयारी कर रही है। इसी सिलसिले में IIPA दिल्ली की 2 सदस्यीय टीम शहडोल पहुंची है। टीम नागरिकों और अधिकारियों से जानकारी जुटा रही है। युवाओं को रोजगार देने में भी शहडोल ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में जिला प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। 203 हितग्राहियों को ऋण वितरित किया गया है। इससे कई युवाओं ने अपना कारोबार शुरू कर दूसरों को भी रोजगार देना शुरू किया है। दूसरी तरफ खरीफ सीजन की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। जिले में किसान पिछले साल की तुलना में अधिक मात्रा में खाद खरीद रहे हैं। अब तक करीब 7,000 किसान खाद ले चुके हैं। कृषि क्षेत्र से जुड़ी एक और अच्छी खबर सामने आई है। इस वर्ष समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी निर्धारित लक्ष्य से अधिक हुई है। जिले में 25,000 मीट्रिक टन लक्ष्य के मुकाबले 29,244 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। अधिकांश किसानों को उनकी उपज का भुगतान भी कर दिया गया है। जल संरक्षण की बात करें तो जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत लाखों जल संरचनाओं और सोकपिट का निर्माण कराया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वसहायता समूहों की महिलाओं ने भी इसमें भागीदारी निभाई है। महिलाओं ने प्लास्टिक बोतलों से ड्रिप इरीगेशन मॉडल बनाकर पानी बचाने की पहल की है। वहीं PM स्वनिधि योजना के तहत पात्र स्ट्रीट वेंडरों को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। जिले को 11,000 से अधिक ऋण प्रकरणों का लक्ष्य मिला है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक नई पहल सामने आई है। कलेक्टर निवास के पास महिला स्वसहायता समूहों के लिए विशेष व्यावसायिक परिसर बनाया जाएगा। करीब 3.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस परिसर में 32 दुकानें होंगी। यहां महिलाएं अपने उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री कर सकेंगी। शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए सरकारी स्कूलों में रियल टाइम ई अटेंडेंस प्रणाली लागू की गई है। शिक्षकों की उपस्थिति अब सीधे ऑनलाइन दर्ज की जा रही है। वहीं साक्षरता के क्षेत्र में भी जिला तेजी से आगे बढ़ रहा है। उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत अब तक 1,49,000 से अधिक लोग साक्षर हो चुके हैं। अगले वर्ष मार्च तक जिले को पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए विशेष अभियान लगातार जारी है। स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए जिला चिकित्सालय में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब बनाई जा रही है। करीब 1.25 करोड़ रुपए की लागत वाली यह लैब अगस्त से शुरू होने की उम्मीद है। यहां मरीजों को एक ही स्थान पर 134 प्रकार की जांच सुविधाएं मिलेंगी। समाज सेवा के क्षेत्र में भी शहडोल के युवाओं ने प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया है। श्रीराम रक्तदान समिति के करीब 150 सदस्य पिछले एक दशक से जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। ये टीम अब तक 3,000 यूनिट से अधिक रक्तदान कर चुकी है। जिले की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए ज्ञान भारतम मिशन के तहत जैन मंदिर से प्राप्त प्राचीन अभिलेखों और पांडुलिपियों का पंजीयन पूरा कर लिया गया है। इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आगे जिले के अन्य ऐतिहासिक स्थलों का भी सर्वेक्षण इसी प्रकार से किया जाएगा। शिक्षकों की दक्षता बढ़ाने के लिए MLB कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन बीते दिनों किया गया। इसमें जिले के 30 विद्यालयों के रसायन शास्त्र के शिक्षक शामिल हुए। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए श्रम विभाग ने नागरिकों से श्रम प्रहरी बनने की अपील की है। जागरूक नागरिक श्रमिकों से जुड़ी समस्याओं और श्रम कानूनों के उल्लंघन की जानकारी विभाग तक पहुंचा सकेंगे। जिले में आकाशीय बिजली गिरने से पिछले दो दिनों में 3 लोगों की मौत हो गई है। पपौंद क्षेत्र में महुआ बीनने गई 2 युवतियों की बिजली गिरने से जान गई, वहीं पर एक अन्य महिला भी घायल हुई। वहीं गोहपारू क्षेत्र में भी एक युवक की बिजली गिरने से मौत हो गई। और अंत में पुलिस विभाग से जुड़ी खबर, शहडोल जिले में 110 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए गए हैं। लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ कर्मियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। शहडोल जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी शहडोल जिले की चिट्ठी। आलेख अरविंद पांडे का था, वाचन था अभिषेक कटियार का, और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। ये आकाश
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। कार्यक्रम के प्रथम भाग के प्रायोजक हैं 287 मेरी चाय, तन मन जगाए बात बन जाए।

0: फोन करें गीत सुने। इस कार्यक्रम के पहले भाग के प्रायोजक हैं 287 मेरी चाय, तन मन जगाए बात बन जाए।
1: नमस्कार श्रोताओं, हम हाजिर हैं आपका चहेता और पसंदीदा कार्यक्रम फोन करें गीत सुने लेकर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त जय शेखर, और आइए लेते हैं ये पहला कॉल। हेलो।
2: हेलो,
1: नमस्कार।
2: नमस्ते सर,
1: फोन करें गीत सुने में स्वागत है आपका। अपना नाम बताएं।
2: जी सर, ग्राम मंजिला से दशरथ अहरवाल बोल रहे।
1: दशरथ भाई, क्या हाल चाल है आपके?
2: बढ़िया हूँ सर।
1: अच्छा दशरथ भाई, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए क्या करते हैं आप?
2: स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए सर व्यायाम करते हैं।
1: बहुत ही अच्छी,
2: जल्दी उठते हैं सर।
1: हाँ हाँ हाँ
2: जी सर।
1: और खान पान में क्या सावधानी बरतते हैं?
2: जी सर, जैसा मौसम रहता है वैसा खान पान खाते, जैसे अभी गर्मी चल रही है तो तला वला ज्यादा नहीं खाते हैं।
1: बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तेल से बचना है, कम से कम तेल का इस्तेमाल करें तो हमारा स्वास्थ्य बहुत ही बढ़िया रहेगा। और एक बात और हम कहना चाहेंगे कि शक्कर का भी इस्तेमाल कम से कम करें।
2: जी जी सर।
1: और सेहत के लिए योग, प्राणायाम, ध्यान, सारी चीजें कर सकते हैं आप।
2: जी सर। और जो चाय पीते तो सर गुड़ की भी पी सकते हैं सर।
1: देखिए, गुड़ हो या शक्कर बात बराबर हो जाती है।
2: जी जी सर।
1: गुड़ में थोड़ा सा आयरन ज्यादा होता है, लेकिन शक्कर के जो गुण हैं वो तो उसमें मौजूद होते ही हैं।
2: जी जी सर।
1: तो कोई ऐसा नहीं कि गुड़ खा रहे हम तो खुश हो जाएं, तो गुड़ भी कम से कम खाएं। तो हमें उम्मीद है दशरथ भाई आप और अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे।
2: जी जी।
1: बता दें गाना कौन सा सुनवाए हम आपको?
2: जी सर, फिल्म का नाम है दामिनी।
1: गाने के बोल
2: सर कोई सा भी सुना देना।
1: आइए सुनते हैं दशरथ भाई आपकी फरमाइश पर फिल्म दामिनी का ये गीत।

0: ताजगी का एहसास, ऐसा ही स्वागत बारात का होना चाहिए।
1: जी समदन जी, बारात का स्वागत हम करेंगे 287 मेरी चाय के साथ।
2: दिल मिलाए, रिश्ते बनाए, 287 मेरी चाय।
0: अभी खरीदें 287 मेरी चाय और पाएं सेकंड फ्लश की क्वालिटी।
1: बारिश के मौसम में तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है?
0: 287 मेरी चाय।
1: हाँ, मानसून आने को है, अब चाय ज्यादा लगेगी।
0: अभी चाय खरीद ले तो सेकंड फ्लश की क्वालिटी मिल जाएगी।
2: तन मन जगाए, बात बन जाए, 287 मेरी चाय।
3: नमस्कार, स्वागत है आपका, फोन करेंगी सुने मैं।
4: जी हम पंडापुरा से गोपाल भट्ट बोल रहे हैं।
3: गोपाल भट्ट भाई, हमें ये बताएं कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखते हैं इस मौसम में, जब बरसात आने को होती है, थोड़ी सी बूंदाबांदी हो जाती है, फिर रुक जाती है, फिर धूप निकल आती है, तो कैसे रखते हैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान?
4: जी यही है कि धूप में नहीं निकलते ऐसे समय पे।
3: हाँ हाँ,
4: और खान पान को थोड़ा ध्यान रखते है, मठा है, दही है,
3: हाँ हाँ,
4: नींबू पानी है, इन चीजों को उपयोग करके और स्वास्थ्य के लाने वो रखते हैं, पानी ज्यादा पीना।
3: बिल्कुल सही करते हैं आप, और थोड़ा सा घूमना फिरना भी चालू कर दीजिए आप।
4: हाँ, सुबह जाते हैं सर यहाँ संजय ड्राइव तरफ।
3: अच्छा अच्छा, चलिए बहुत ही खुशी की बात है। चलिए गोपाल भट्ट भाई, हमें उम्मीद है आप और भी स्वस्थ रहेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करेंगे, तो बताएं फरमाइश क्या लेकर आए हैं आप?
4: फरमाइश सर एक शहनाई को है रफी जी की आवाज में, न झटको जुल्फ से पानी ये मोती टूट जाएंगे।
3: सुनिए गोपाल भाई अपनी फरमाइश पर ये गीत।
4: ठीक है, धन्यवाद सर, नमस्ते सर।
5: न झटको जुल्फ से

0: आह, ताजगी का एहसास ऐसा ही स्वागत बारात का होना चाहिए।
1: जी समदन जी, बारात का स्वागत हम करेंगे 287 मेरी चाय के साथ।
2: दिल मिलाए, रिश्ते बनाए, 287 मेरी चाय।
0: अभी खरीदें 287 मेरी चाय और पाएं सेकंड फ्लश की क्वालिटी।
1: बारिश के मौसम में तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है?
0: 287 मेरी चाय।
1: हाँ, मानसून आने को है, अब चाय ज्यादा लगेगी।
0: अभी चाय खरीद ले तो सेकंड फ्लश की क्वालिटी मिल जाएगी।
2: तन मन जगाए, बात बन जाए, 287 मेरी चाय।
3: नमस्कार, फोन करेंगे सुने में स्वागत करते हैं आपका, अपना शुभ नाम बताएं।
4: जयशेखर जी नमस्कार, जय जबलपुर एमपी से अशोक सिंह।
3: अच्छा अशोक भाई, क्या हाल चाल है आपके?
4: हाल चाल ठीक है, बहुत गरीब हूँ इसलिए फोन नहीं लगा सकता आपसे।
3: हर आदमी गरीब है और हर आदमी दिल से अमीर है।
4: जी सर, कैसे तो हैं आप?
3: हम बढ़िया, आपकी दुआएं हैं। और आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रख रहे हैं आजकल इस मौसम में, जब बरसात भी हो रही है, धूप भी निकलती है, क्या कर रहे हैं?
4: स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, ताजा खाना खाते हैं और गर्मी से बचने के लिए अपना बचाव रखते हैं।
3: हाँ,
4: पदार्थ पीते हैं, कम पीते, सत्तू वत्तू उनका करते थे सेवन, ककड़ी खीरा।
3: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा करते हैं आप। और तली भुनी चीजों से बचने की कोशिश करें।
4: जी सर, पर्यावरण बचाने के लिए अगर पेड़ पौधे लगाएं, यही है हमने का नियम है।
3: चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया
4: जी।
3: तो बताएं अशोक भाई, गाना कौन सा सुनवाए हम आपको?
4: सुना दीजिए दो दिलों की दास्तान, हमराही मेरे हमराही, सुरेश भाटकर लता जी की आवाज, संजय दत्त फिल्माया।
3: अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। सुनिए अपनी फरमाइश पर ये गीत।
4: बहुत बहुत धन्यवाद,
3: नमस्कार।

0: आह, ताज की का एहसास, ऐसा ही स्वागत बारात का होना चाहिए।
1: जी समदन जी, बारात का स्वागत हम करेंगे 287 मेरी चाय के साथ।
2: दिल मिलाए, रिश्ते बनाए, 287 मेरी चाय।
0: अभी खरीदें 287 मेरी चाय और पाएं सेकंड फ्लश की क्वालिटी।
1: बारिश के मौसम में तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है?
0: 287 मेरी चाय।
1: हाँ, मानसून आने को है, अब चाय ज्यादा लगेगी।
0: अभी चाय खरीद ले तो सेकंड फ्लश की क्वालिटी मिल जाएगी।
2: तन मन जगाए, बात बन जाए, 287 मेरी चाय।
3: नमस्कार सर।
4: नमस्कार, फोन करें गीत सुनने में स्वागत है आपका।
3: धन्यवाद सर आपको। आप जयशेखर जी बोल रहे हैं?
4: जी बिल्कुल, और आप कौन बोल रहे हैं?
3: सर मैं बाबू यादव बोल रहा हूँ सारनाथ वाराणसी से। सर ऐतिहासिक नगरी है तो अच्छा लगेगा।
4: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। बरसात के क्या हाल चाल है आपके यहाँ? कुछ गतिविधियाँ शुरू हुई प्री मानसून की?
3: नहीं सर, अभी तो शुरू नहीं हुई है, बादल वगैरह छाए रहते हैं।
4: हाँ,
3: लेकिन अभी गर्मी है।
4: आपके यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है लेकिन इलाहाबाद, बनारस, सारनाथ?
3: हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, गर्मी। अरे हम लोग तो गंगा के किनारे जाकर बैठते हैं शाम को, तो नजारा भी अच्छा होता है, मौसम बढ़िया लगता है।
4: क्या बात है, कभी हम भी आके बैठेंगे आपके साथ।
3: सर अगर घाटों में बैठेंगे तो आप उठना भूल जाएंगे।
4: तो बाबू भाई हमें ये बताएं कि स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखते हैं आप?
3: जो अपना रोज का रूटीन है उसमें अपना योग शामिल किए हुए हैं। तो अपना 10 मिनट वही करते हैं।
4: हाँ बहुत ही अच्छी बात है।
3: और पैदल चलते हैं 1.5 किलोमीटर तक।
4: बहुत ही बढ़िया,
3: ये रोज का रूटीन है।
4: बढ़िया, और अपने खान पान पर भी ध्यान दें, अच्छा खाएं, ताज़ा खाएं।
3: जी सर वो तो सही है, वो तो लगा रहता है।
4: बता दें बाबू भाई गाना कौन सा सुन रहे हैं हम आपको?
3: आज हमको फिल्म जायका सुनवा दीजिए सर।
4: कौन सा?
3: अगर तुम मिल जाओ, जमाना छोड़ देंगे हम, श्रेया घोषाल गाया हुआ है। और सर इजाजत देंगे तो 2 लाइनें भी कहना चाहूँगा।
4: बिल्कुल बिल्कुल।
3: कि कहते हैं कि अशकों की जुबान नहीं होती। कहते हैं कि अशकों की जुबान नहीं होती और लफ्जों में मोहब्बत बयां नहीं होती। और मेरे जो प्यार से तो कद्र करो यारो, मोहब्बत हर किसी पे मेहरबान नहीं होती।
4: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। आइए सुनते हैं बाबू भाई आपकी फरमाइश पर फिल्म जहर का ये गीत।

0: ताजगी का एहसास, ऐसा ही स्वागत बारात का होना चाहिए।
1: जी समदन जी, बारात का स्वागत हम करेंगे 287 मेरी चाय के साथ।
2: दिल मिलाए, रिश्ते बनाए, 287 मेरी चाय।
0: अभी खरीदें 287 मेरी चाय और पाएं सेकंड फ्लश की क्वालिटी।
1: बारिश के मौसम में तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है?
0: 287 मेरी चाय।
1: हाँ, मानसून आने को है, अब चाय ज्यादा लगेगी।
0: अभी चाय खरीद ले तो सेकंड फ्लश की क्वालिटी मिल जाएगी।
2: तन मन जगाए, बात बन जाए, 287 मेरी चाय।
0: फोन करें, गीत सुने। इस कार्यक्रम के पहले भाग के प्रायोजक थे 287 मेरी चाय, तन मन जगाए, बात बन जाए।
3: हेलो,
4: नमस्कार, स्वागत है आपका फोन करेंगी सुने में।
3: जी सर,
4: अपना नाम बताएं।
3: सनी शर्मा।
4: सनी शर्मा।

0: शनि शर्मा, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: गंज बासोदा।
0: अच्छा अच्छा, गंज बासोदा में क्या करते हैं आप?
1: डेयरी फार्म।
0: बहुत ही बढ़िया। कितने पशु हैं आपके यहाँ?
1: 9-10।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, मैं ये बताओ सनी, अपने को फिट रखने के लिए क्या करते हो?
1: अपने को फिट रखने के लिए अच्छा खान पान।
0: किस प्रकार का खान पान रखते हो थोड़ा सा बताओ हमें, क्या क्या खाते हो?
1: रोटी, सब्जी, दूध, घी, दूध।
0: अच्छा अच्छा, आपकी खुद की डेयरी है तो दूध तो अच्छा मिल जाता होगा आपको।
1: हाँ।
0: और क्या करते हो फिट रहने के लिए?
1: एक्सरसाइज, अखाड़े जाते।
0: अच्छा, अखाड़े जाते हैं। अखाड़े का नाम क्या है आपके?
1: राजेंद्र नगर अखाड़ा।
0: बहुत ही अच्छी बात है सनी भाई, अपने को स्वस्थ रखने के लिए फिट रहें, खूब अच्छा खाना खाएं, अखाड़े जाते हैं आप, ये पुरानी पारंपरिक शारीरिक अभ्यास का एक स्थान होता है। तो बताएं सनी, कौन सा गाना सुनवाएं हम आपको?
1: दोस्ताना फिल्म का सुनवा
0: लीजिए। दोस्ताना का कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: सलामत रहे दोस्ताना।
0: चलिए ठीक है सनी भाई, हम आपको सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर फिल्म दोस्ताना का ये गीत।

0: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। एचएस कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
1: हेलो।
2: हाँ नमस्कार, फोन करेंगी सुने में स्वागत करते हैं आपका।
1: जी सर।
2: अपना नाम बताएं।
1: उमा पटेल।
2: उमा कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: टेहरा टेहरी।
2: आपका ये टेहरा टेहरी कहाँ पर है?
1: सागर भोपाल रोड पर।
2: अच्छा अच्छा, उमा क्या करती हैं आप?
1: घर का ही काम करते हैं सर।
2: देखिए, घर का काम करना भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण काम है। जितना काम महत्वपूर्ण है बाहर खेतों में काम करना, नौकरी में, ऑफिस में, व्यापार दुकान में काम करना, उतना ही अपने घर में काम करना है। अच्छा उमा, हमें ये बताओ अपने आप स्वस्थ कैसे रखती हो आप?
1: थोड़ा खुद पे ध्यान देती हूँ।
2: कैसे कैसे, थोड़ा सा बताओ, जिससे कि आपकी आवाज़ सुन के दूसरी महिलाएं जो आप जैसे गांव में रहती हैं वो भी आपसे प्रेरणा ले सकें, आपसे सीख सकें कि उमा इस तरीके से फिट रखती हैं अपने आप को, ऐसे खाना खाती हैं, ये करती हैं, घूमने जाती, क्या करती हैं बताइए आप?
1: जल्दी उठते हैं, घूमने जाते हैं।
2: अच्छा अच्छा, कितने बजे उठ जाती हैं आप?
1: 5 बजे।
2: चलिए बहुत ही अच्छी बात है। कितना घूम लेती हैं?
1: 8 घंटे।
2: चलिए बहुत ही अच्छी बात है। और खान पान में किस प्रकार का ध्यान रखती हैं आप?
1: बाहर की चीजें कम खाते हैं सर।
2: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा करती हैं आप। और यही बातें बच्चों को बताएं कि बाहर का खाना कम से कम खाएं और पैकेट वाला खाना तो बिल्कुल भी ना खाएं।
1: जी सर।
2: तो उमा बताएं गाना कौन सा सुनवाएं हम आपको?
1: चलते चलते का कोई भी सुना दीजिए।
2: आइए सुनते हैं फिल्म चलते चलते का ये गीत।

0: ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: दीपा हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग।
2: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट।
3: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
4: आई नो बा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
2: आई नो ना
4: RBI कहता है
5: तरो से ही शुरुआत बनो फाइनेंशियल।

0: डेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: नमस्कार, फोन करेगी सुने में स्वागत है आपका।
2: जी आकाशवाणी सागर फोन करेगी सुने प्रोग्राम। सर मैं गोपालगंज सागर से संदीप रोहिदास बोल रहा हूँ। सर
1: नमस्कार संदीप भाई, क्या हाल चाल है आपके?
2: सर नमस्कार। सर मैं ठीक हूँ। और
1: तो संदीप भाई हमें ये बताएं कि अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या गतिविधियाँ और क्या क्या काम करते हैं आप?
2: हाँ सर, जो इस बार का विषय है हेल्थ रिलेटेड इश्यू जो है, जो जिस तरह से अगर मौसम के हिसाब से देखा जाए तो बहुत तेज गर्मी पड़ रही है।
1: हाँ,
2: तो उस तरह से हम लोग अपने मतलब अपने शरीर का ख्याल रखें, एहतियात बरतें सर।
1: हाँ,
2: और लू में मतलब बाहर ज्यादा धूप में ना निकले, ठंडा पानी पीते रहें, और भी बहुत सारी बातें सर, जैसे आकाशवाणी से भी स्वास्थ्य परिचर्चाएं और
1: हाँ,
2: स्वास्थ्य वार्ताएं आती रहती हैं, और इस तरह से रेडियो डॉक्टर इस तरह के
1: हाँ, हाँ,
2: ये दे रहे हैं सर, और अपना ज्ञान बढ़ाते रहे सर। अभी
1: संदीप भाई हमें बताएं गाना कौन सा सुनवाए हम आपको?
2: नाम सर धर्म। एक दिन बिक जाएगा माटी के मूल।
1: चलिए संदीप भाई हम आपको सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर फिल्म धर्म कर्म का ये गीत।

तो श्रोताओं, अब आपको इंतजार है मुद्दे की बात का। मुद्दे की बात है पर्यावरण संरक्षण में निभाएं अपनी भागीदारी और इस मौसम में एक पौधा हम जरूर लगाएं। यही होगी हमारी मुद्दे की बात। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का फोन इन कार्यक्रम, फोन करें गीत सुने। इस कार्यक्रम में हमारे तकनीकी सहयोगी थे अरुण कुमार जायसवाल, और इस कार्यक्रम को आपकी सेवा में प्रस्तुत किया आपके इस दोस्त जय शेखर ने। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

आपका व्यापार, आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770 43

0: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के ठीक 11 बजे हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हर गांव हर आंगन हम में है हीरो।
1: के प्रायोजक हैं सेंट्रल मोटर्स भगवानगंज सागर। हर गांव हर आंगन
2: हम में है हीरो।
1: हर गांव हर आंगन हम में है हीरो।

0: श्रोताओं नमस्कार, इस कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं साहिबा और हमारे साथ सेंट्रल मोटर्स हीरो शोरूम के जनरल मैनेजर श्री कपिल श्रीवास जी चर्चा के लिए मौजूद हैं। कपिल जी आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: सेंट्रल मोटर्स हीरो शोरूम की तरफ से मैं कपिल आकाशवाणी और अपने सभी सुनने वाले श्रोताओं का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं।
0: कपिल जी एक साफ और सीधा सवाल सबसे पहले कि हीरो की 125 सीसी बाइक्स को ग्राहक इतना पसंद क्यों कर रहे हैं?
1: बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, आज के समय में ग्राहक एक ऐसी बाइक चाहते हैं जो दमदार भी हो, माइलेज भी शानदार दे और जिस पर रख रखाव के खर्च भी बहुत कम हो। इसलिए हीरो की सुपर स्पेंडर एक्सट्रैक्ट, ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R इन सभी जरूरतों को पूरा करती है। यही कारण है कि हीरो आज देश की सबसे अधिक 125 सीसी मोटरसाइकिल बेचने वाली कंपनी बन गई है।

0: एक सवाल और आता है जो हम जानना चाहेंगे, हमारे श्रोता भी जानना चाहेंगे कि वो क्या खास बात है जो सुपर स्प्लेंडर एक्स टेक को 125 सीसी सेगमेंट में इतना खास बनाता है।
1: बिल्कुल साहिबा जी, सुपर स्प्लेंडर एक्स टेक सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाला मॉडल है और मैं आपको बताऊंगा कि 100 सीसी की कीमत में मिलने वाली सबसे पहली पसंद सुपर स्प्लेंडर एक्स टेक बन गई है, जो कि 100 सीसी बाइक जैसी शानदार माइलेज के साथ 125 सीसी इंजन की अतिरिक्त ताकत देती है, यानी कम खर्च में ज्यादा पावर, बेहतर पिकअप और आरामदायक राइडिंग का अनुभव।

0: कपिल जी, इस प्रोग्राम की खासियत ये है कि इसमें कोई एक काज सवाल जरा हट के जरूर होता है। तो अब वो सवाल आ रहा है कि लोग अक्सर ये कहते पाए गए हैं कि बड़ी इंजन वाली बाइक का खर्च ज्यादा होता है और वो माइलेज कम देती है। हीरो की 125 सीसी बाइक्स में क्या स्थिति है, साझा करें हमारे श्रोताओं के साथ।
1: बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया साहिबा जी। काफी लोग के मन में ये धारणा चलती रहती है, तो मैं आपको बताऊंगा कि हीरो की 125 सीसी बाइक का मेंटेनेंस खर्च बेहद कम है और हीरो की 125 सीसी गाड़ियां कंपनी की आधुनिक तकनीक और मजबूत इंजीनियरिंग के कारण 70 से 80 का शानदार माइलेज देती है, जिसे आप गाड़ी के डिस्प्ले पर रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर के जरिए देख सकते हैं। जी हाँ, मतलब गाड़ी जो माइलेज दे रही है वो हमारे ग्राहक गाड़ी के डिस्प्ले पे देख सकते हैं कि उन्हें कितना माइलेज मिल रहा है। साथ ही हीरो की जो भी गाड़ी है उन सब पे ऐसी पहली कंपनी हीरो है जो उन्हें 5 साल की निशुल्क वारंटी भी देती है।
0: देखिए, ये तो बड़ी ही संतोषजनक बात है। और अब कुछ बात हीरो ग्लैमर एक्स 125 में हम जानना चाहते हैं कि क्या खास बात है जो इसे बाकी 125 सीसी बाइक से कुछ अलग बना।
1: जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी कंपनी ने 125 सीसी में ग्लैमर एक्स सबसे बेहतरीन मॉडल उतारा है। ग्लैमर एक्स 125 अपने 125 सीसी सेगमेंट की सबसे एडवांस बाइक में से एक है। इस सेगमेंट के मॉडल में पहली बार 3 राइडिंग मोड्स दिए गए हैं, जिनकी मदद से ग्राहक अपनी जरूरत के अनुसार पावर और माइलेज का चुनाव कर सकता है। साथ ही इसमें इंडस्ट्री फर्स्ट, इसका मतलब है किसी भी इंडस्ट्री में पहली बार इस गाड़ी में कलर डिस्प्ले और कंप्लीट एलईडी लाइट का पैकेज मिलता है। कंप्लीट का मतलब होता है हेडलाइट, टेल लाइट, आपके इंटीग्रेटर सारे के सारे इसमें एलईडी हैं। इसके अलावा आधुनिक सुरक्षा सुविधाएं और शानदार कंफर्ट इसे हर उम्र के ग्राहकों के लिए एक परफेक्ट बाइक बनाती है।
0: देखिए, आप हम सब जानते हैं कि युवाओं की पसंद अक्सर कुछ हटके होती है, तो हीरो के 125 सीसी पोर्टफोलियो में वो कौन सी बाइक है जो सबसे ज्यादा आकर्षित कर रही है युवाओं?

या हमारे यहाँ 125 सीसी पोर्टफोलियो में, खासतौर पे युवाओं में, अगर कोई युवा स्पोर्टी लुक, दमदार परफॉर्मेंस और प्रीमियम स्टाइल चाहता है तो एक्सट्रीम 125R एक शानदार विकल्प है। इसका एग्रेसिव डिजाइन, मस्कुलर लुक और बेहतरीन पिकअप इसे युवाओं की पहली पसंद बना रहा है। यह बाइक न सिर्फ देखने में आकर्षण है बल्कि राइडिंग का भी बेहतरीन अनुभव देती है।

0: जी हाँ बिल्कुल। और अब वो सवाल आ रहा है जो सबके लिए बहुत उपयोगी है कि अगर सागर के ग्राहक चाहें इन बाइक्स को देखना या टेस्ट राइड चाहें तो वो कहाँ आ सकते हैं?
1: बिल्कुल, हमारे सुनने वाले सभी ग्राहकों का मैं अपने सेंट्रल हीरो भगवानगंज एवं सेंट्रल प्रीमिया शोरूम मकरोनिया में हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ आप सुपर स्पेंडर एक्सट्रैक, ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125 की टेस्ट राइड ले सकते हैं, उनके फीचर्स को करीब से समझ सकते हैं और हीरो के विश्वसनीय 125 सीसी रेंज का अनुभव कर सकते हैं।
0: तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं 100 सीसी जैसी बचत, 125 सीसी की दमदार ताकत, कम मेंटेनेंस, 5 साल की वारंटी, आधुनिक टेक्नोलॉजी और हीरो का भरोसा, तो आज ही पहुंचिए सेंट्रल हीरो भगवानगंज या सेंट्रल प्रीमियम मकरोनिया।

0: सभी श्रोताओं का हृदय से धन्यवाद। एक बार हीरो की 125 सीसी रेंज की टेस्ट राइड जरूर लीजिए, क्योंकि सही बाइक का फैसला कागज पर नहीं सड़क पर होता है। धन्यवाद।
1: शानदार सुपर स्प्लेंडर एक्स टेक ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125 आर आपका इंतजार कर रही है। आप जरूर पधारिए सेंट्रल मोटर्स भगवान गंज सागर। और अगर फोन करना चाहते हैं तो हमारा फोन नंबर है 7225872531, यानी 7225872531। और अब साहिबा को दीजिए इजाजत। हर गांव हर आंगन इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे सेंट्रल मोटर्स भगवानगंज सागर।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हर गांव हर आंगन हम में है हीरो। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। थोड़ी ही देर में विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: कलंजी भाई, स्टेज प्रोग्राम्स आपने सबसे ज्यादा किए हैं। एक खास बात यह भी रही है कि उसमें सभी स्टार्स, सभी फिल्म स्टार्स आपके स्टेज शोज में रहे हैं। तो स्टेज आपने कब से शुरू किया और कुछ बातें उस बारे में बताइए हमें।
1: एक्चुअली क्या था कि हम फिल्म लाइन में आए उसके पहले स्टेज की दुनिया में थे। हमारी एक पार्टी चलती थी, कल्याण जी विजयन पार्टी, तो उसमें काफ़ी शो करते थे हम। मतलब उसमें क्या, उस टाइम के रतन और इस टाइप के गाने पॉपुलर होते थे, वो गाने बजाने के और पब्लिक को खुश करना। उसके बाद तो नागिन की बीन आई, उसके बाद तो स्टेज की दुनिया हमारे लिए बहुत ईजी हो गई। लेकिन हमारे माइंड में ऐसा हमेशा चलता था कि अगर कोई पॉपुलर सिंगर और पॉपुलर एक्टर अगर स्टेज के ऊपर आ जाएं तो बहुत ही बड़ी बात बन सकती है, क्योंकि पब्लिक उनको सुनना चाहती है, देखना चाहती है। तो सिंगरों को उस टाइम हेमंत कुमार, अपने मुकेश जी, पहले वो शर्माते थे क्योंकि आदत नहीं है ना, जो रिकॉर्डिंग करते हैं उनको स्टेज पे ज़रा प्रैक्टिस नहीं होती है ना, कुछ बोलना भी पड़ता है कभी कुछ भी। लेकिन सबको प्रैक्टिस डालते डालते और सभी अच्छे हो जाए उस टाइम। फिर आए किशोर कुमार। किशोर कुमार तो पहले एकदम डरते थे ऑडियंस के सामने आना करना, पर बड़ा उनको ऐसे, तो उनको कुछ प्रॉब्लम हो गए थे फिनेंशियल, तो उनके जो एडवाइज़र था वो बोले किशोर दा आप स्टेज पे आ जाइए तो बहुत पैसे मिलेंगे। हम भी बोलते तो बोले नहीं, स्टेज के ऊपर मैं जाऊँगा तो मैं गिर जाऊँगा। तो हम उनको कैसे समझाते थे, एक दिन मैंने समझाया उनको, किशोर दा आप क्यों डर रहे, मेरे को समझाइए कि आपके सामने जो भी बैठे हैं वो 7 जन्म तक किशोर कुमार नहीं बन सकते। क्यों कि सामने कोई बैठे हुए ऐसे तो नहीं है कि लता मंगेशकर बैठी हैं, कि बड़े गुलाम अली बैठे हैं, कि आमिर खान बैठे हैं, कि आपको डर लगे कि अरे बात पॉइंट अच्छा अच्छा है, फिर से बोलो मेरे को अच्छा लग रहा है। मतलब वो अगर हो तो ठीक है भाई, हमको डर लगे कि भाई वो क्या होने, ये तो बेचारे ऑडियंस है एकदम, जिसने गाना खाली आपके इतने फैन है यार, एक दो दफ़े बोलते रहो बहुत अच्छा यार, मैं क्यों डर रहा हूँ, फिर क्यों डर रहा हूँ, नहीं डरूंगा, ऐसे करके उनको स्टेज पे ले जाते थे और डरते थे। पर बाद में तो वो ऐसे मास्टर हो गए कि ओहो आप बिलीव नहीं कर सकते, उनके तो इतने किस्से हैं, कभी मैं सुनाऊंगा आपको तो लगेगा। एक दिन क्या हुआ, हम कलकत्ता में गए उनके प्रेजेंटेशन में बताता हूँ, तो योडलिंग उन्होंने निकाली, मैं योडलिंग, तो हम लोग बैठे कोई प्लान बना थे, मतलब किशोर एक सवाल मैं पूछूंगा फिर आपने, तो हम बड़े तो मेरे किशोर आप जो ये योडलिंग जो निकाले वो कैसे आपको आइडिया आया। वो बोले मैं छोटा था बच्चा एकदम, तब मैं बहुत शरारती था, मेरी माँ बहुत मारती थी मेरे को, तो बाद में क्या हुआ मैं अच्छा हो गया, फिर भी मेरे को पिट रही है। तो मैं बोला ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है, मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्यों मार रही है मेरे को माँ कुछ। तो बोले तुम रोते हो तो एक आवाज़ निकलती है हमको बहुत अच्छी लगती है। तो मैं बोला कि किशोर दा अभी वो आवाज़ निकाली आप, इतने अच्छे आप बात कह रहे हैं। तो बोले नहीं ऐसे नहीं निकलेगी, मेरे को मारो तुम। अरे मैं कैसे मारेंगे इतने ऑडियंस के बीच में, मैं आपको मारूं ऐसे? तो बोले तब मैं तो नहीं निकलूंगा। तो हमने ऐसे प्लान किया था, मैं ऐसा एक दौर से एक ऐसे लाफा मारा, तो हमने दौड़ करके और उसमें से रो के फिर उसमें आवाज़ निकल के उन्होंने गाना शुरू किया, बस इस टाइम।

मैं हूँ झुम झुम झुम झुम झुम रो पकड़ घूमू बन के घुमरो साथ में हम सफर न कोई कारवां भोला भाला सीधा साधा लेकिन दिल का हूँ

0: आपको बहुत बड़े बड़े अवार्ड से, पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति पुरस्कार, पद्मश्री। कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट किसी अवार्ड फंक्शन का अवार्ड लेते हुए आप श्रोताओं को बताइए।
1: कोई भी अवार्ड मिलता खुशी तो होती है, उसमें कोई सवाल नहीं उठता, लेकिन मुझे लगता है कि जनता का जो अवार्ड है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि जब भी हम काम करते हैं और पहला ही जनता के सामने जाते हैं और उनकी क्या खुशी हुई है, वहीं हमें अवार्ड मिल जाता है। बाकी तो फिर किसने रिकग्नाइज किया कि नहीं किया उसमें नहीं, लेकिन जब भी कोई अवार्ड लेते हैं तो एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है हमारी, क्योंकि हम चाहते हैं कि कितने प्यार से लोगों ने हमें अवार्ड दिया है, तो हम इस संगीत के ज़रिए क्या समाज की सेवा कर सकते हैं, क्या देश की सेवा कर सकते हैं, क्या हमारे आने वाले भाइयों के लिए हम कुछ कर सकते हैं, ये हमारा हमेशा माइंड में रहता है। इसलिए जब भी कोई अवार्ड लेते हैं हमारी जिम्मेदारी तो बढ़ जाती है, बस यही है। फिर आप अगर मजाक की बात करें तो जैसे फिल्म फेयर अवार्ड बहुत बड़ा अवार्ड है, तो हमें कोरा कागज़ के लिए मिला, लेकिन बहुत लेट मिला था, 25 साल कुछ 27 साल इंडस्ट्री में रहने के बाद हमें मिला था। तो वहाँ पूछते हैं कि ये अवार्ड मिलने से आपको क्या महसूस हो रहा है आप, तो मतलब भाई बहुत खुशी हो रही है, क्यों नहीं खुशी हो, क्योंकि बड़ी उम्र में लड़का हुआ है।
0: कल्याण जी भाई, इस तरह के जो जोक्स हैं, जो एक चुटकुले और आप बातों बातों में कहते हैं, जो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है वो भी बहुत मशहूर है, आप जोक्स बहुत अच्छा बोलते हैं और चुटकुले आप बहुत अच्छा बोलते हैं।
1: जब ये ह्यूमर का सब्जेक्ट निकाला है तो मुझे लगता है कि ह्यूमर को मैं बहुत महत्व देता हूँ, कि वो क्या कि जाम जाएँ, कोई लोग हंसते नहीं हो सब है। तो और इसमें सबसे ज़्यादा अगर मुझे किसी ने इंस्पायर किया हो तो आचार्य रजनीश जी, अब ओशो, उन्होंने मुझे बोला था कि कल्याण जी आप में जो आर्ट है इसको आप डेवलप कीजिए, वो कमाल का आर्ट है, बिल्कुल अगर हमारे में भी हो जाता तो मैं तो जो मेरा सब्जेक्ट है प्रीचिंग ना लगे इसलिए मैं आपसे काफ़ी चीज़ें एडॉप्ट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। और उन्होंने बहुत इंस्पायर किया, इसलिए मैंने बहुत स्टडी किया, मैंने ह्यूमर की क्लासेज भी शुरू किए थे। अभी आप बोलेंगे कोई जोक सुनाई, जैसे मैंने बोला अभी बड़ी उम्र में लड़का, पिक्चर साइन की थी नन्ना फरिश्ता, तो हमको पहली मद्रास की फिल्म थी हमारे पास, तो वहाँ स्टोरी राइटर बड़ी सीरियस स्टोरी सुना रहा था कि हमारी स्टोरी देखो ये है ये, और उसमें लास्ट में बोला कि इसमें एक लोरी आती है, बस दिस इज बेस्ट आके पिक्चर में, वो लोरी बहुत काउंट करती है, लोरी लोरी लोरी बहुत अच्छी, कल्याण जी भाई बस बनाना बनाना। तो मैंने ऐसे बोला कि हमारे तो ऑर्डनरी गाने में लोग सो जाते हैं, तो लोरी में तो हम जान लड़ा देंगे, सवाल ही नहीं। तो इतना बड़ा लाफ्टर आया, वो बोले वो क्या, वो समझे नहीं, बाद में उनको समझाएगा कि हम सही बोले।

0: मुकेश जी को आपने उनके करियर के सबसे ज़्यादा गाने गवाए हैं, बहुत से हिट गाने मुकेश जी के आपके द्वारा संगीतबद्ध हैं।
1: मुकेश जी के बारे में कुछ कहना हो तो हम इतना ही कह सकते हैं कि जब भी वो गाते थे तो सीधे हार्ट तक पहुंच जाते, सीधा हृदय, कोई दिमाग के ऊपर गाना नहीं जाता था कि मेरे टूटे हुए दिल से अगर गाते हैं तो ऐसा लगता है कि सही इनका दिल टूटा हुआ है, बस ये इनकी एक खूबी थी। तो फुल ऑफ एक्सप्रेशन, और जितने वो अच्छा गाते थे इतने ही अच्छे इंसान थे, ग्रेट आर्टिस्ट। सभी गाने उन्होंने बहुत प्यारे गाए, लेकिन शमीम जयपुरी जिनका पहला ही गाना हमने मतलब उन्होंने लिखा था, मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज़ न दो, अर्जुन ही वोरानी की पिक्चर, दिल भी तेरा मेरा।

0: कल्याण जी भाई, गायक गायिकाओं की बात हम कर रहे हैं और मोहम्मद रफ़ी का जिक्र अगर ना हो तो प्रोग्राम पूरा नहीं कहलाएगा।
1: मुझे लगता है कि रफ़ी जी एक हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए गिफ्ट जिसको बोल सकते हैं। रफ़ी जी वॉज ए ऑलराउंडर आर्टिस्ट। जैसे क्रिकेट में हम चाहते हैं कि भाई बैट्समैन भी हो, विकेट कीपर भी हो, बॉलर भी अच्छा हो, अच्छा फील्डर भी हो, किसी भी रंग का गाना गवा लीजिए आप, क्लासिकल से लेके कॉमेडी गाना, पैथोस गाना। और एक हीरो के लिए कोई भी हमें दूसरा सिंगर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि भाई अभी इसके लिए और सिंगर ढूंढ, बस ये इनकी खूबी थी और बहुत प्यार से गाते थे, बस यही।

0: कल्याण जी भाई, कोई ऐसे संगीतकार हमारे और वरिष्ठ संगीतकारों में जिनके काम ने आपको इंस्पायर किया हो?
1: कोई भी आदमी किसी भी सब्जेक्ट में जब आगे बढ़ता है तो उस सब्जेक्ट के जो टॉप लोग होते हैं उनको ज़रूर सुनता है, देखता है क्या किया है उन्होंने। तो हमारा म्यूज़िक का सब्जेक्ट रहा, तो हमने अपने टाइम में देखा कि नौशाद जी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा फिनिशिंग, क्या बात है। फिर उस टाइम के सी रामचंद्र, उन्होंने बहुत अच्छा किया। मदन मोहन, उन्होंने अच्छा किया। शंकर जयकिशन, उन्होंने अपना एक रंग अलग दिखाया था। सलील चौधरी, अनिल विश्वास, ये सब हैं। लेकिन अगर हमें पूछे कि भाई आपको ज़्यादा में ज़्यादा किसने इंस्पायर, तो मैं SD बर्मन को बहुत मानता। काहे के लिए कि एक 4-5 मिनट का हमारा गाना होता है, उस 4-5 मिनट के अंदर 2-2.5 मिनट सिंगर गाता है, बाकी ऑर्केस्ट्रा बजता है। तो उसमें ऐसा एक एटमॉस्फेयर पैदा करो कि सिर्फ कानों से दिखाई देने लग जाए कि ये बनाया है, ये बनाया, वो बहुत मुश्किल है। और वो बनाते थे तो हम उसको बहुत स्टडी करते थे, क्या किया गया इन्होंने, कि अगर कोई सीन है कि बादल है तो लगता है कि बादल गरज रहे हैं, ये गरज रहे हैं, ऐसे हर रंग में उन्होंने अपना अपना रंग। सुन मेरे बंधु, उनका जो अपने स्टाइल से गाया है वो सुनाइए, बहुत मज़ा आया।

0: कल्याण जी भाई, हम सब जानते हैं कि बच्चों के लिए एक ग्रुप जिसका नाम है लिटिल वंडर्स, वहाँ बच्चों को, छोटे बच्चों को परफॉर्म करते देख, गाते देख, बजाते देख, विश्वास ही नहीं होता कि बच्चों में इतना टैलेंट हो सकता है। आप मुझे ये बताइए कि ये ग्रुप को फॉर्म करने में ऐसी कौन सी बात थी जिसने आपको ये सोचने के लिए मजबूर किया कि बच्चों के साथ कुछ काम किया जाए?
1: फिल्म की दुनिया और स्टेज की दुनिया, उसमें देखा कि जब भी कल्याण जी आन जी नाइट होती थी तो सबसे ज़्यादा अगर कोई स्कोर कर जाए तो बाल कलाकार कर जाता था। कितने भी बड़े आर्टिस्ट आए हों, लेकिन जब भी एक छोटा कलाकार आ जाता था तो भले वो इतना उसका अच्छा नहीं भी परफॉर्मेंस हो, फिर भी इतनी क्लैपिंग ले जाता, तभी सोच रहे थे कि क्यों ना ऐसा हो कि पूरा शो अगर बच्चों का हो जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग बन सकता है। और फिर बच्चों में क्या है कि मैं दिखाऊँ को बहुत फास्ट डेवलपिंग, उनको कोई टेंशन नहीं होता ना, उनको जो काम दिखा देंगे बस वही काम करना है उनको। तो देखा कि ट्राई करें हम, और आज देखते हैं कि मुझे लगता है कि सभी लोगों का ये कहना है कि शो की दुनिया का सबसे बड़े बड़ा शो है, क्योंकि तीन पीढ़ियों को बच्चे संभालते हैं। एक तो छोटे बच्चे आते हैं, फिर उनके पेरेंट्स, फिर उनके पेरेंट्स, ये तीन पीढ़ियाँ एक ही, और वो तीन घंटे बच्चे ऐसे परफॉर्म करते हैं कि अगर जिसने शो देखा हो कोई बता सकता है कि वो बहुत है। और हम बहुत लकी रहे कि बड़े बड़े जितने आर्टिस्ट हैं, अमिताभ जी, दिलीप कुमार जी, सुनील दत्त, वहाँ से लेके जितने अभी गोविंदा जी आए थे, अमरीश पुरी आए थे, सभी ऐसे सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल काम छोड़ के अपने बिल्कुल आते हैं और बिल्कुल सिखाते हैं। ये एक शो देखा हमने कि कोई की आदमी को जेलसी नहीं होती है, सब एक दूसरे को तारीफ कर रहे हैं, बस यही एक खूबी है।
0: बच्चों की बात चली है, मैं चाहता हूँ एक कोई ऐसा गाना आप सुनवाएं श्रोताओं को जो आप ही का कंपोजिशन हो और बच्चों के लिए हो। जो गाना
1: बजाइए, एक बट्टा दो, दो बट्टी चार, कालीचरण में था, जिसमें अनुराधा पौडवाल और कंचन जी ने गाया था, और वो मुझे लगता है वो दोनों का पहला ही गाना था उसे।

0: संगीत सिर्फ एक क्षेत्र नहीं है जिस पे आप काम कर रहे हैं, बहुत सी सामाजिक संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं और बहुत से साधु संतों का सत्संग भी आपको मिला है, तो आपकी जिंदगी की फिलॉसफी, जिंदगी का फलसफा क्या है, हमें बताइए।
1: अच्छा सवाल है ये, और मुझे लगता है कि सभी लोगों को इस पे ध्यान देना चाहिए कि हम बचपन में जब भी कोई ज़्यादा तो एजुकेटेड है नहीं, लेकिन पिताजी मेरे वो भी कोई ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन बहुत अच्छी बातें करते थे और प्रैक्टिकल में ना आचरण उनका बहुत स्ट्रांग था। तो कहते थे बेटा देखो कोई भी लाइन में जाना, लेकिन जीवन की ज़रूरत कोई ज़्यादा नहीं है, और वो ज़रूरत से अगर आगे निकल गए तो बाकी का चीज़ है वो बांटना, ऐसा होना पैसा काम कर रख के बैठे हुए कुछ बजे, वो बीच बात हमें अभी भी माइंड में है बिल्कुल, और बड़ों की इज्जत करना ये करना, तो वो सब हमारे बचपन में जो डाले हुए संस्कार हैं वो अभी तक हैं। तो हमने देखा कि हम संगीत में आगे बढ़ गए तो मनी तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो बाकी सोचा कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो हमने देखा कि अगर आदमी को निजी आनंद लेना हो तो दूसरों के लिए हम कुछ करते हैं तो ये अच्छा लगता है, तो ये उनकी वजह से हम जितना भी कुछ अपना जो भी कुछ है तो उस चैरिटी में डालने की कोशिश की, फिर अपने शो की दुनिया में जो भी अच्छी अच्छी संस्थाएं हैं उनके लिए जो भी कुछ कर सके तो ये करते हैं, तो ये इसका एक आनंद है, वो एक बहुत ही बड़ा आनंद है और सभी को इसमें लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।

0: चलना।
1: मनीषा जी, इस रिकॉर्डिंग को सुनकर के कैसा अलग सा आनंद महसूस कर रहे हैं? हमारे श्रोता भी निश्चित रूप से इसको अनुभव कर रहे होंगे।
2: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा जयंत जी आपने। और संगीत में वो ताकत है, वो शक्ति है कि वो इंसान के मन मस्तिष्क को शीतल कर देती है, ठंडा कर देती है। बहुत परेशान अगर कोई इंसान है, डिप्रेशन में है, तो वो एक मधुर संगीत सुन के आनंदित हो उठता है, और अगर आनंद में है तो उसका आनंद जो है वो द्विगुणित हो जाता है।
1: बिल्कुल सही
2: कहा आपने। संगीत का सौंदर्य जिन कलाकारों को ये गुण मिला है, जिनको माँ सरस्वती ने ये आशीर्वाद दिया है, वो वाकई बहुत पुण्यात्मा होंगे जिन पर ये आशीर्वाद माँ सरस्वती का है। एक ऐसे ही कलाकार हैं जिनका नाम मैं लेना चाहूंगी, और वो हैं राहुल देव बर्मन।
1: वाह क्या बात है।
2: जिनके लिए मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था ना शुरुआत में, वर्सेटाइल,
1: वैविध्यतापूर्ण कलाकार।
2: जी हाँ, और आपको नहीं लगता जयंत जी कि राहुल देव बर्मन जी की संगीत की जो विशेषता है ना, वो ये है कि वो नित युवा संगीत है हमेशा।
1: जी, जी।
2: आज तक भी जो आज की जो नई पीढ़ी है, वो भी आर डी बर्मन के संगीत को लेकर उतनी ही उत्साही है जितनी पुरानी पीढ़ी थी, या 60, 70 और 80 के दशक में उस संगीत को जितना पसंद किया उस पीढ़ी ने, उतना ही पसंद आज की पीढ़ी भी कर रही है।
1: और विविधता, ये जो शब्द है, इसको सार्थक किया है आर डी बर्मन के संगीत ने।
2: जी हाँ,
1: आप उनका पहला गाना ले लीजिए या उनका आखिरी गीत कंपोजिशन ले लीजिए।
2: जी हाँ? एक लंबा

0: दौर आरडी बर्मन साहब का रहा संगीत में, और पहला गीत जिसका जिक्र भी जयंत जी कर रहे हैं, छोटे नवाब का गीत,
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: जो उनकी पहली फिल्म थी, घर आ जाए घिर आए बदरा सावरिया,
1: रोंगटे खड़े हो गए।
0: जी हाँ, शास्त्रीय संगीत की छाप उसमें स्पष्ट दिखाई देती है। और फिर उसके बाद तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, सर्वाधिक प्रयोग धर्मी संगीतकार भी राहुल देव बर्मन रहे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, न केवल संगीत रचनाओं में जिस तरह के वाद्य इस्तेमाल किए जाते थे, वो कई बार ऐसे वाद्य होते थे जो लोक गीतों में हमें सुनाई देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: या कई बार नए तरह का वाद्य वो बनाते थे, यानी कि बाल्टी में किसी यंत्र को डुबा करके और उसमें से आवाज निकालना, लोहे की किसी चीज को पानी में डुबा करके उससे आवाज निकालना, ऐसे कई प्रयोग उन्होंने किए।
0: बहुत इनोवेटिव जिसे कहा जाता है, बहुत नए नए प्रयोग करने वाले आरडी बर्मन साहब के बारे में हम आपको क्या बताएं। हमें तो ऐसा लगता है जैसे राहुल देव बर्मन संगीत नहीं रचते थे, संगीत का एक अनुष्ठान करते थे। और उस अनुष्ठान का जो उद्यापन है वो हुआ था 1942 अ लव स्टोरी के साथ,
1: वाँ वाँ।
0: जो उनकी आखिरी फिल्म थी। जयंत जी, एक ऐसे प्रयोग धर्मी संगीतकार राहुल देव बर्मन, जिनका जन्मदिन 27 जून को सभी संगीत प्रेमियों ने मनाया, और अभी तक उसका असर हम सबके दिलो दिमाग पर है।
1: जी जी
0: श्रोता, आर डी बर्मन साहब के बारे में हम जब इतनी बातें कर रहे हैं, तब आपका ध्यान जरूर इस बात पर आकृष्ट हुआ होगा कि हम किस कार्यक्रम को अब आपको सुनवाने जा रहे हैं। तो आप शायद बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मुझे जयंत जी के चेहरे से भी लग रहा है कि वो समझ गए। तो श्रोताओं, हमने जो आज ये रिकॉर्डिंग्स आपके लिए चुनी है, ये एक लंबी श्रृंखला है विविध भारती की, और इसकी प्रोड्यूसर छाया गांगुली जी हैं, जो खुद एक बहुत अच्छी गायिका, बहुत अच्छी कलाकार। और छाया जी का तो ये उपकार है कि उन्होंने तीन महान कलाकारों को एक साथ विविध भारती के मंच पर,
1: यही विशेषता इस श्रृंखला की है।
0: हाँ।
1: कि आर डी बर्मन साहब के संगीत पर केंद्रित हैं, मगर उनसे बातें जो कर रहे हैं वो भी महान कलाकार है।
0: जी हाँ।
1: आशा जी और गुलजार साहब।
0: जी हाँ। और जब इन तीनों कलाकारों का एक कुंभ होता है तो ये कार्यक्रम बन के निकलता है, और वो है मेरी संगीत यात्रा, जो सीरीज विविध भारती की बहुत पॉपुलर सीरीज है। श्रोताओं, आप आज जो सुनेंगे ना, उसमें हम तीन अंक उसके प्रसारित करेंगे। तो पहला जो अंक है उस बारे में आप बताइए।
1: जी मनीषा जी, पहला हिस्सा जो है उसमें आरडी साहब ने अपनी पहले फिल्म की, यानी छोटे नवाब के संगीत की बात की है।
0: तो पहले उसी हिस्से को सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
1: जी जी,
2: मेरा पहला गाना गुलजार छोटे नवाब फिल्म का था, और उसमें पहला गाना जो है दीदी मतलब लता जी खुद गाई थी, और उस गाने के बारे में एक बहुत दिलचस्प कहानी है।
3: अच्छा।
2: ऐसा है कि पुराने चावल जैसा होता है, बहुत घमंडी होते हैं सब।
3: अच्छा।
2: मेरे पिताजी भी बहुत घमंडी थे, दोनों का कुछ अनबन हो गया था और दोनों कुछ बोलचाल बंद हो गया था।
3: अच्छा अच्छा, कट्टी हो गई थी।
2: कट्टी हो गई। और दीदी गा नहीं रही थी पिताजी के लिए, तो पिताजी ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, किसी और से गवाएंगे। तो कुछ दिन तक गाना उनके बगैर ही हुआ। तो मेरा वो पीरियड में ऐसा हुआ कि मुझे वो पिक्चर मिली, और मैंने दीदी के पास गया, जाके कहा कि दीदी ये मेरा पहला गाना है तो आपको गाने पड़ेगा। तो कहा क्यों नहीं गाऊंगी, कौन सी डेट है बताओ। तो डेट फिक्स करके बताया। तो उन दिनों में क्या होता था कि रिहर्सल हुआ करता था।
3: अच्छा।
2: मतलब दो या तीन लता भाई जैसे आर्टिस्ट, आशा बोलो, कोई भी हो, रफी साहब बोलो, लेकिन आजकल दुर्भाग्य है कि आजकल उतना
3: रस्म
2: नहीं है। तो वो आए हमारे घर पे रिहर्सल करने के लिए, और रिहर्सल में गाना सुन के बहुत आशीर्वाद दी। उन्होंने कहा कि पिताजी से नहीं मिलाओगे? तो मैंने बोला कि वो दरवाजे पे खड़े हैं दूसरे कमरे में, वो आने की सोच रहे हैं।
4: लगभग दो दशकों यानी 20 साल के एक लंबे अंतराल के बाद देश की प्रथम नागरिक माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस परिसर में कदम रखेंगी। हम अपने सुनने वालों को ये भी बतलाना चाहेंगे कि इससे पहले साल 2006 में मिसाइल मैन और तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यहाँ आए थे। आज विद्यार्थियों के चेहरे पर वो चमक और खुशी साफ देखी जा सकती है। समारोह में प्रतिभा, परिश्रम और उपलब्धियों का भव्य सम्मान होगा। 66 गोल्ड मेडल और 160 उपाधियां दी जाएंगी। हया नजर में दामन पाक जरूरी है, हया नजर में दामन पाक जरूरी है, जो भी है बात साफ साफ जरूरी है।

है। हम सब बुलंदी पर पहुंचे, मगर इससे पहले माँ नर्मदे का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। माँ नर्मदे को हम प्रणाम करते हैं और आप सभी सुनने वालों का फिर से वंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं, और ये कहते हैं कि सोच को बदलोगे सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलोगे सितारे बदल जाएंगे, नज़रों को बदलोगे नज़ारे बदल जाएंगे। कश्ती को बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशाओं को बदलोगे तो किनारे बदल जाएंगे। आगे हम ये भी कहना चाहेंगे कि तूफ़ानों में किनारे मिल जाते हैं, तूफ़ानों में किनारे मिल जाते हैं, ज़िंदगी में सहारे मिल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में बहुत प्यारे मिल जाते हैं। आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर यानी RDU के 36वें ऐतिहासिक दीक्षांत समारोह की आयोजना है। हम सब यहाँ पर इस ऐतिहासिक समारोह का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हम खुशकिस्मत हैं। हम ये भी बतलाना चाहेंगे कि इस दीक्षांत समारोह में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के माननीय राज्यपाल और कुलाधिपति श्री मंगू भाई पटेल करेंगे। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव और उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री इंद्र सिंह परमार विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। श्रोताओं, खास बात यह है कि इस बार रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में भारत शब्द का व्यापक उपयोग विशेष चर्चा का विषय बना हुआ है। समारोह से जुड़ी डिग्रियों, स्वर्ण पदकों, प्रमाण पत्रों, आमंत्रण पत्रों और अन्य आधिकारिक दस्तावेजों में इंडिया के स्थान पर भारत शब्द को प्रमुखता दी गई है। कुलगुरु प्रोफेसर राजेश कुमार वर्मा का इस संबंध में कहना है कि विश्वविद्यालय के साथ भी भारत जोड़ा गया है, जिससे समारोह की पहचान भारतीयता, सांस्कृतिक मूल्यों और राष्ट्रीय गौरव से जुड़ती दिखाई दे रही है। प्रोफेसर वर्मा हमें ये भी बता रहे हैं कि अंग्रेजी में तैयार दस्तावेजों में भी भारत का उल्लेख किया गया है। ये पहल देश की सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय स्वाभिमान को सम्मान देने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है। श्रोताओं, हम आपको ये भी बतलाना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय यानी RDVV की स्थापना 12 जून 1956 को हुई थी। मूल रूप से जबलपुर विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित इस संस्थान को 16वीं सदी की महान गौंड वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर 1983 में इसका नाम रखा गया है। श्रोताओं, रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को चंदेल राजा कीर्ति सिंह के परिवार में कालिंजर महोबा में हुआ था। उनका विवाह गौंड वंश के राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से हुआ था। पति की असामयिक मृत्यु के बाद उन्होंने अपने अल्पायु पुत्र वीर नारायण को गद्दी पर बैठाकर गढ़ा मंडला का शासन संभाला। रानी ने कई युद्ध जीते। 24 जून 1564 को रानी दुर्गावती ने मुगल सेनापति आसफ खां के खिलाफ एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा था। हार की संभावना देखकर और आत्मसमर्पण करने के बजाय उन्होंने खुद को कटार मारकर अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान दिया था। ऐसी ही वीरांगना के नाम पर हमारे जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रखा गया है। जी हाँ, आज हम इस ऐतिहासिक 36वें दीक्षांत समारोह का हिस्सा हैं, ये हमारे लिए भी गौरव की बात है। श्रोताओं, हमें ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि 7वीं बार हमारी संस्कार धानी जबलपुर में माननीय राष्ट्रपति जी का आगमन हो रहा है। इससे पहले 6 बार माननीय राष्ट्रपति जी हमारे जबलपुर आ चुके हैं। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 28 अक्टूबर 1948 को शहर आए थे। उन्होंने शहीद स्मारक बनाने की आधारशिला रखी थी। हालांकि जब वे जबलपुर आए थे तब राष्ट्रपति के पद पर नहीं थे, लेकिन उनका नाम पहले राष्ट्रपति के लिए तय हो गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार शहर आए। पहली बार 1 मार्च 1958 को आए थे। उपराष्ट्रपति रहते हुए वे यहाँ जबलपुर विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे। राष्ट्रपति बनने के बाद
20 फरवरी 1965 को वे जब नागपुर जा रहे थे उस दौरान कुछ समय के लिए जबलपुर रुके थे। हमारे देश के नवे राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा वर्ष 1997 में शहर आए थे। वे जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के 50वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। हम यहाँ ये भी बतलाना चाहेंगे कि देश के 13वें राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी 27 जून 2014 को जबलपुर आए थे। वे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे। हमें ये भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने राज्य न्यायिक अकादमी में आयोजित परिचर्चा में हिस्सा लिया था। वे मां नर्मदा की महाआरती में शामिल होने वाले देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। श्रोताओं, हम यहां ये भी बतलाना चाह रहे हैं कि हमारा जबलपुर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 20 साल बाद माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय मौजूदगी में ये हॉल दमक उठेगा। आपको जानकर ये अच्छा लगेगा कि माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू तीसरी बार जबलपुर आई हैं। इससे पहले वे 27 सितंबर 2023 को एक दिवसीय दौरे पर आई थीं। तब उन्होंने ट्रिपल आईटीडीएम परिसर से डिजिटली हाईकोर्ट की नई बहुमंजिला इमारत का शिलान्यास किया था। वे पहली बार 30 अप्रैल 2017 को जबलपुर आई थीं। तब वे झारखंड की राज्यपाल थीं। इस दौरान आपने भेड़ाघाट की संगमरमरी वादियों में पंचवटी से बंदरकूनी तक के बीच नौका विहार किया था। हम फिर से आपको बतलाना चाह रहे हैं, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि हैं भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अध्यक्षता करेंगे मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल और कुलाधिपति श्री मंगूभाई पटेल। विशिष्ट अतिथि होंगे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री इंदर सिंह परमार। विश्वविद्यालय का पंडित कुंजीलाल दुबे प्रेक्षागृह इस ऐतिहासिक समारोह का साक्षी बनेगा। इस समारोह में 20 चयनित विजेताओं को स्वर्ण पदकों से सम्मानित किया जाएगा। शेष पदक विजेताओं उपाधि धारकों को प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री माननीय इंद्र सिंह परमार द्वारा स्वर्ण पदक और उपाधियां बाद में प्रदान की जाएंगी। वाकई पदक विजेता प्रतिभावान छात्र छात्राएं आतुर हैं, जिन्हें आज पदक और उपलब्धियां मिलेंगी। माना कि ये शहर पत्थरों का है, माना कि ये शहर पत्थरों का है, मगर बाशिंदों के दिल तो धड़कते होंगे। कलकल करती मां नर्मदे के किनारे बसी ऋषि जावाली की नगरी, आचार्य विनोबा की संस्कार धानी जबलपुर, जिसने कला, साहित्य, चिकित्सा, विज्ञान और धार्मिक क्षेत्र के लिए एक से बढ़कर एक विद्वान, मनीषी, आचार्य, कवि, साहित्यकार, संगीतकार दुनिया को प्रदान किए हैं। इसी संस्कार धानी में आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को सम्मानित किया जाना वाकई गौरव की बात है। जीवन में अद्भुत संसार के लिए त्याग, श्रम की उड़ान बहुत आवश्यक होती है। शेष वक्त की पाबंदी, लगन और शौक कामयाबी दिलाते हैं। वाकई स्वर्ण पदक विजेताओं ने अपनी मेहनत की उड़ान पर सफलता प्राप्त की है, जो आज सम्मानित हो रहे हैं, वाकई बधाई के पात्र हैं। इरादे नेक हो तो मंजिल आसान होती है, इरादे नेक हो तो मंजिल आसान होती है, सच्ची लगन हो तो रास्ते भी सरल होते हैं। इसलिए कहता हूँ, पीछे मत देख, ना शामिल हो गुनहगारों में, सामने देख के मंजिल है तेरे अपने पैरों में, बात बनती है गर दिल में हो इरादे अटल। कुछ ऐसे ही सच्चे अटल इरादे लेकर चलते ये पदक विजेता और अपने अपने क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं और कुछ नया कर राष्ट्र के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। हम आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश का एक प्रमुख NAAC ए ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय है। यह उच्च शिक्षा अनुसंधान और भिन्न भिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यहाँ से तालीम लेने वाले छात्र छात्राएं
देश में ही नहीं बल्कि विदेश

में भी देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हमने शुरू में श्रोताओं बात की कि भारत शब्द जोड़ा गया, और जब भारत की बात आती है तो हमें हमारा मन ये कहने को अग्रसर होता है, प्रफुल्लित होता है, और हम ये कह सकते हैं कि हमारा भारत देश एक आह्लाददायक अनुभूति और अपनेपन से भरा एक एहसास है। इसके वनों के पत्तों की मर्मर ध्वनि पक्षियों

0: है, नदियों का जल जैसे अमृत है, ऐसी अतुलित संपदा से परिपूर्ण अपने भारत को हम शत शत नमन करते हैं।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
0: हम अपने सुनने वालों को ये भी बतलाना चाहेंगे कि 36वें दीक्षांत समारोह में हमारे अतिथिगण कुछ ही समय पश्चात मंचासीन होने वाले हैं।

ये आकाशवाणी भोपाल है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे माननीय राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू का संबोधन। तब तक सुनते हैं ये देशभक्ति गीत।

0: जी हाँ श्रोताओं, 36वां दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि कुछ ही समय पश्चात मंचासीन होने जा रहे हैं।
1: वो भी वाला मॉडल होता है।

श्री दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। जी हाँ, हम ये बतलाना चाहेंगे कि जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय क्यों रखा गया है। आरडीवीवी की स्थापना 12 जून 1956 को हुई थी। मूल रूप से जबलपुर विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित इस संस्थान को 16वीं सदी की महान गौंड वीरांगना रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि देने के लिए 1983 में इसका नाम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रखा गया। श्रोताओ, रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1924 को चंदेल राजा कीर्ति सिंह के परिवार में कालिंजर महोबा में हुआ था। उनका विवाह गौंड वंश के राजा संग्राम सिंह के पुत्र दलपत शाह से हुआ था। पति की असामयिक मृत्यु के बाद उन्होंने अपने अल्पायु पुत्र वीर नारायण को गद्दी पर बैठाकर गढ़ा मंडला का शासन संभाला। रानी ने कई युद्ध जीते। 24 जून 1964 को रानी दुर्गावती ने मुगल सेनापति आरसब खां के खिलाफ एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा था। हार की संभावना देखकर और आत्मसमर्पण करने की बजाय उन्होंने खुद को कटार मार

0: कर अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान दिया था। ऐसी ही वीरांगना के नाम पर हमारे जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय रखा गया है। जी हाँ, आज हम इस ऐतिहासिक 36वें दीक्षांत समारोह का हिस्सा हैं। ये हमारे लिए भी गौरव की बात है।
1: अपन को ये माइक मिलना चाहिए।

आप हैं विविध भारती भोपाल के साथ 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संबोधन का सीधा प्रसारण।

बड़ा हर्ष का विषय है कि दीक्षांत यात्रा प्रेक्षागृह में दाखिल हो चुकी है, आ चुकी है। प्रेक्षागृह हॉल चमक रहा है, दमक रहा है। दीर्घ पंक्ति में मंत्रीगण, विधायकगण, मेयर सारे बैठे हुए हैं ड्रेस कोड के साथ। वे छात्र छात्राएं आतुर हैं, खुशी से झूम रहे हैं। और देखिए, करतल ध्वनि से महामहिम राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का स्वागत किया जा रहा है। और ये हाल इस गौरवमयी उनकी उपस्थिति का बन रहा है साक्षी।

माननीय राष्ट्रपति जी, कुलाधिपति जी, मुख्यमंत्री जी एवं सम्माननीय अतिथिगणों से सादर अनुरोध है कि दीप प्रज्वलन करने की कृपा करें।

0: देवी की आराधना के साथ आज का कार्यक्रम शुरू हो चुका है।
1: माननीय कुलाधिपति जी से सादर अनुरोध है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के 36वें दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।
2: अनुमति है।
1: माननीय कुलगुरु जी से विनम्र अनुरोध है कि 36वें दीक्षांत समारोह का स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें।
3: रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में आज के मुख्य अतिथि भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, समारोह की अध्यक्षता कर रहे मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री मंगूभाई पटेल जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मध्य प्रदेश के माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी का मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथ ही समारोह में पधारे हमारे मध्य प्रदेश शासन के माननीय मंत्री महोदय, राज्यसभा सांसद जी, लोकसभा सांसद जी, सभी विधायक गण, विभिन्न विश्वविद्यालय से पधारे हुए कुलपति गण, मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न सम्मानित अधिकारी, स्वर्ण पदक प्रदान करने वाले विभिन्न दानदाता, विश्वविद्यालय के कोर्ट के, कार्य परिषद के, विद्या परिषद के सभी सम्मानित सदस्य, अन्य गणमान्य नागरिक, समस्त अतिथिगण, प्राध्यापकगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मीडिया के सभी साथी एवं आमंत्रित जो कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, साथ ही वे छात्र छात्राएं जो गोल्ड मेडल शोध उपाधि प्राप्त करने वाले हैं, उन सबको मैं राजेश कुमार वर्मा कुलगुरु हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। अत्यंत गौरव का विषय है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जी का जो दुर्गा विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम पर संचालित है, 24 जून को 462वां बलिदान दिवस है। मैं रानी दुर्गावती जी के अद्भुत शौर पराक्रम का स्मरण करते हुए उनके चरणों में सादर वंदन करता हूँ। 27 जुलाई 2024 का दिन विश्वविद्यालय के इतिहास का एक स्वर्ण दिन लिखा गया, जिस दिन विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार नेक द्वारा विश्वविद्यालय को ए ग्रेड प्रदान किया गया, जो कि ए प्लस से केवल 0.04 दूर रहा, अन्यथा ए प्लस ग्रेड प्राप्त होता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में विश्वविद्यालय ने रोजगार उन्मुख शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत कौशल विकास आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आरंभ किए, जिसमें प्रमुख रूप से बांस से विभिन्न प्रोडक्ट तैयार करना, हस्तशिल्प, शिल्पकला, इंटीरियर डिजाइन, मूर्ति निर्माण, सिलाई प्रशिक्षण, फैब्रिक प्रिंटिंग, ज्वेलरी मेकिंग की कार्यशालाएं, रोजगार मेला आदि आयोजित किए गए। शिक्षा मंत्रालय राज्य भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय में संचालित डिजाइन इनोवेशन सेंटर को अब तक 10 करोड़ की ग्रांट मिल चुकी है, वह 6 पेटेंट प्राप्त कर चुका है। नीति आयोग द्वारा विश्वविद्यालय को अटल कम्युनिटी इंक्यूबेशन सेंटर के से भी प्रदान किया गया, जिसमें 2.5 करोड़ की ग्रांट प्राप्त होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालय को भौतिक विज्ञान का नोडल बनाया गया है, जिसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान का पाठ्यक्रम तैयार करना और उसकी कार्यशालाएं आयोजित करना और पुस्तकें तैयार करना विश्वविद्यालय के टीम के हाथ में है। वैदिक गणित के लिए शिक्षा संस्कृत उत्थान न्यास एवं अन्य संस्थान सी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और अन्य संस्थानों से विश्वविद्यालय द्वारा MOU किए गए हैं। नए पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय में 2024-25 से लगातार आरंभ किए गए। BTech, कंप्यूटर, BSc, BCom के अंतर्गत परंपरागत पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय में आरंभ किए गए और इन पाठ्यक्रमों के कारण 2024-25 में विश्वविद्यालय में प्रवेश में विद्यार्थियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। इन दो वर्षों में 2023 की तुलना में लगभग 100% बढ़ाते हुए विश्वविद्यालय की संख्या दोगुनी हो गई विद्यार्थियों की संख्या। विश्वविद्यालय के प्रति विद्यार्थियों का बढ़ता हुआ विश्वास विश्वविद्यालय का बढ़ता हुआ गौरव है। हमें विश्वास है कि 2026-27 के प्रवेश में हम पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। 2024 में हमने कुछ लक्ष्य स्थापित किए थे, समय पर परीक्षा, समय पर परिणाम। इसमें हमने कुछ परिणाम जिस दिन सुबह परीक्षा समाप्त हुई उसी दिन शाम को परिणाम घोषित कर दिए। ऐसे कुछ परिणाम 2025 में परीक्षा समाप्ति के दिन शाम को 3 दिन में और 5 दिन में घोषित कर दिए और आने वाले वर्षों में हम इस रिकॉर्ड को बनाए रखते हुए नए रिकॉर्ड स्थापित करने का संकल्प लेते हैं। जुलाई 2025 में विश्वविद्यालय ने पीएचडी प्रवेश परीक्षा आयोजित की। 28 विषय की परीक्षा में 11 विषय के परिणाम परीक्षा के दिन शाम को हमने घोषित कर दिए और 17 विषय के परिणाम दूसरे दिन जारी कर दिए। इसका मतलब यह हुआ कि 28 घंटे में विश्वविद्यालय ने 28 परिणाम जारी किए, जो कि एक रिकॉर्ड है विश्वविद्यालय के लिए। डिजिटल गवर्नेंस के अंतर्गत विश्वविद्यालय की प्रवेश फॉर्म, परीक्षा फॉर्म, प्रवेश पत्र, फीस जमा करना, परीक्षा परिणाम, प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन पूर्णतया ऑनलाइन किया गया है और भविष्य में हम उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन डिजिटल ऑनलाइन कराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। विज्ञान भारती द्वारा महाकौशल मेले में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के स्टॉल को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था, यह विश्वविद्यालय के लिए उपलब्धि का विषय है। युवा कार्यरत अतिथि विद्वानों की सक्रियता से आधुनिक शैक्षणिक पद्धतियां, डिजिटल संसाधनों का उपयोग, अध्ययन अध्यापन के अनुरूप वातावरण निर्माण के द्वारा विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। आज विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर माननीय अतिथियों की उपस्थिति में हम यह घोषणा करते हुए बड़े गर्व की अनुभूति हो रही है कि विश्वविद्यालय के 142 छात्र छात्राओं को 240 स्वर्ण पदक प्राप्त हो रहे हैं और 179 पीएचडी धारकों को और 3 डीलिट शोधार्थियों को 1 डीएससी और 1 मानद उपाधि आज दी जा रही है। विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में एक विशेष बदलाव चर्चा का विषय बना हुआ है, जो 3 दिन से राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेंड कर रहा है। समारोह से जुड़ी लगभग सभी आधिकारिक सामग्री इंडिया के स्थान पर भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। डिजिटल डिग्रियां, स्वर्ण पदक, प्रमाण पत्र, दस्तावेजों में सब में भारत का शब्द का उपयोग किया गया है, इंडिया शब्द का उपयोग हटाया गया है। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालय के नाम के साथ भी भारत शब्द जोड़ा गया है, जिससे समारोह की समग्र पहचान भारतीयता, राष्ट्रीय गौरव के भाव से जुड़ाई देती है। मैं एक बार पुनः माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय कुलाधिपति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी और आप सभी अतिथियों का इस कार्यक्रम में सादर वंदन अभिनंदन करता हूं और उपस्थित छात्र छात्राओं को हृदय से शुभकामना देता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम।
1: माननीय कुलगुरु जी से सादर अनुरोध है कि माननीय भारत के राष्ट्रपति जी, माननीय कुलाधिपति जी, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करें।

0: प्रतीक चिन्ह से सम्मानित करते हुए विश्वविद्यालय की ओर से डॉक्टर मोहन यादव जी प्रतीक चिन्ह लेते हुए विश्वविद्यालय की ओर से प्रतीक चिन्ह दिया जा रहा है। राज्यपाल कुलाधिपति माननीय श्री मंगू भाई पटेल जी को
1: गौरव की पति जी की अनुमति से मैं डॉक्टर रविशंकर सोनवाल कुल सचिव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के 36वें दीक्षांत समारोह की कार्यवाही प्रारंभ करता हूं। माननीय कुलगुरु जी कृपया कला संकाय के अंतर्गत श्री विजय दत्त श्रीधर को डीएड उपाधि एवं वर्ष 2023-24 एवं 24-25 में स्नातक एवं स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थियों विद्यार्थियों को उपाधि शोधार्थियों को शोध उपाधि एवं वर्ष 2021 एवं 21-22 के छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान करने की अनुमति माननीय कुलाधिपति जी से प्राप्त करने की कृपा करेंगे।
2: माननीय कुलाधिपति जी कृपया अनुमति प्रदान करें।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदया जी अब मैं आपके सम्मुख उन छात्र छात्राओं को प्रस्तुत कर रहा हूं जिन्होंने विभिन्न संकायों में एक से अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त करने की योग्यता अर्जित की है। आपसे अनुरोध है कि कृपया इन छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक एवं योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करेंगे। स्वर्ण पदक वर्ष 2021 दीपांशु मिश्रा एमए हिंदी साहित्य परीक्षा 2 स्वर्ण पदक,

कल्याणी त्रिपाठी एमए संस्कृत महिला परीक्षार्थी। तारियां बजती रहे। कल्याणी त्रिपाठी एमए संस्कृत महिला परीक्षार्थी 2 स्वर्ण पदक। ऋषिका तिवारी एमए दर्शन शास्त्र परीक्षा 3 स्वर्ण पदक। शिवानी साहू बीए हिंदी परीक्षा 2 स्वर्ण पदक। नितिन तिवारी एमए इतिहास 2 स्वर्ण पदक।

पलक सोनी एमएससी भौतिक शास्त्र महिला परीक्षार्थी 2 स्वर्ण पदक। प्रियंका साहू एमएससी कार्बनिक रसायन परीक्षा 2 स्वर्ण पदक।

श्री शिवेंद्र सिंह एमए दर्शन शास्त्र परीक्षा 3 स्वर्ण पदक। देवेंद्र मिश्रा बीए दर्शन शास्त्र परीक्षा 2 स्वर्ण पदक।

मुक्ता मिश्रा एमए प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व, महिला परीक्षार्थी 2 स्वर्ण पदक। सैजली नायक एमए राजनीति विज्ञान परीक्षा 2 स्वर्ण पदक।

0: प्रदेश के मुखिया हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वे हम उनको आशीर्वचन प्रदान करें।
1: रानी दुर्गावती की नगरी, मां नर्मदा की जिस नगरी पे विशेष कृपा हो वो अद्भुत जबलपुर, जिसकी कारण से मां की कृपा से काले पत्थर की चट्टान भी संगमरमर की हो जाती है, इतना सौभाग्यशाली नगर ये जबलपुर आज गौरवान्वित हो रहा है हमारे बीच, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सबसे बड़े शासन के उच्च पद पर विराजमान माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आज एक नया इतिहास बन रहा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में। मैं प्रदेश सरकार की ओर से आपका अभिनंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दो कारणों से ये खुशी डबल हो रही है। आज हमारे बीच मंच पर विराजमान माननीय राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल साहब, शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी और बीते समय माननीय राष्ट्रपति जी, हमने अपने उस गौरवशाली 5000 साल पुराने इतिहास को जीवंत करते हुए ये भगवान कृष्ण और सुदामा की ये प्रदेश की एक विशेष खाती रही है कि हमारे यहाँ गुरु परंपरा से कुलपति गुरु आश्रम को गौरवान्वित करते रहे। ऐसे में हमने देश के अंदर मध्यप्रदेश के सभी कुलपतियों के नाम कुलगुरु पर रखने का निर्णय किया, इसलिए इस रानी दुर्गावती के कुलगुरु माननीय राजेश जी सभागार में मौजूद सभी आमंत्रित अतिथिगण, प्राध्यापकगण, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों और सबसे ज्यादा बधाई वो सारे युवा मित्रों जिनके भरोसे से हमारा ये राज्य और अपनी आपकी प्रतिभा क्षमता से न केवल राज्य बल्कि देश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और ताकत से आगे बढ़ेगा।

ये आज सौभाग्य की बात, दीक्षांत समारोह और दीक्षांत समारोह दोहरी खुशी लेकर के आया। हमारे बीच हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी स्वयं अपने हाथों से नहीं

0: शासन करता, अकबर के सामने भी अपनी क्षमता से 50-50 युद्ध लड़ करके हर बार जीत हासिल करके पूरे देश को गौरवान्वित करने का गौरवशाली अतीत लेके चलती और उससे आगे बढ़ करके एक युद्ध ऐसा होता है जो आज के दौर में हमको समसामयिक होगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब नवाचारों के बलबूते पर टेक्नोलॉजी का नुकसान क्या होता है और टेक्नोलॉजी का फायदा क्या होता है, ये उस दौर के समय हमारे अपने देश के लिए इतिहास बना था जब टेक्नोलॉजी के अभाव में तोपों के सामने युद्ध करने में, हाथी सहित सेना को युद्ध करने में जो कठिनाई होती है, ऐसे अजय योद्धा को जब युद्ध पहली बार हो रहा और तोपों की गर्जना से हाथी भड़क करके युद्ध के नकारात्मक पक्ष की तरफ ले जा रहे हैं, ऐसे में रानी दुर्गावती ने जो अपनी बात अपने महावत सिंह सैनिकों को कहा था कि किसी भी हालत में मेरा शरीर ये स्वाधीनता के लिए, मेरा शरीर भारत की अजर अमर लड़ाई के लिए, दुश्मनों के हाथों में मेरा शरीर न जाने पाए, और ऐसे में कोई कारण से युद्ध के अगर हम हारने की तरफ पहुंचते हैं, क्योंकि तोपों की लड़ाई से हमको लड़ने की आदत नहीं, अगर कोई कारण से ऐसी स्थिति बने तो अपने सैनिक जो हाथी पे बैठे उससे कहा था कि ये खंजर लेना और जैसे ही हम हारने के कगार पे पहुंचे तो मेरा प्राणांत कर देना। घटना ऐसी घटती है कि कोई कारण से वास्तव में स्थिति विकट हो जाती, रानी की जान संकट में पड़ जाती, एक तीर आता तो उनकी आंखें निकाल के ले जाता, दूसरा तीर उनकी दाहिनी आंख को तीर के निकाल के ले जाता, ऐसे में लगता है कि अब जीवन बचना मुश्किल है, युद्ध का परिणाम भी सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन कड़क करके रानी फिर अपने सैनिक से कहती, तेरे को क्या आज्ञा दी? सैनिक हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, महारानी मैंने आपका नमक खाया, मैं आपके बेटे समान अपनी माँ पे मैं हथियार कैसे उठा सकता हूँ? कड़क करके रानी कहती है कि तुमको जो बताया वो बताया, उसको आज्ञा का पालन करो, और उसकी घबराहट देखकर खुद अपने हाथ से अपना प्राणांत करके जबलपुर सहित पूरे देश को गौरवान्वित करती है कि चाहे बलिदान देना पड़े, जन्म और मृत्यु के क्रम में जन्म तो एक बार होगा लेकिन जो मृत्यु को गौरवान्वित कर दे, वाकई वो रानी दुर्गावती का विश्वविद्यालय आज एक गौरवशाली इतिहास को लिख रहा है। जब 5-5 स्वर्ण पदक लेकर के बेटी हमको सीना 56 इंच का करने का मौका दे रही, कितना अच्छा लगता है। कोई 3 स्वर्ण पदक, कोई 2 स्वर्ण पदक, जो नई प्रतिभाओं के बलबूते पर विश्वविद्यालय अपना नया इतिहास लिख रहा है, ये हमारे लिए गौरवशाली क्षण है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब 12वां वर्ष उनकी सफलता के नए कीर्तिमान रच रहा है, ऐसे में विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रांगण, माँ सरस्वती के प्रांगण में आज ये नया सूर्य उगा है, जब शासन के सर्वोच्च पद पर बैठी महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे बीच मध्यप्रदेश की युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दे रही, और हमारे अपने सरकार के माध्यम से हमने पहले उच्च शिक्षा में सकल पंजीयक दर से आगे बढ़ते हुए हमने अपना जो सकल पंजीयक दर है उसको राष्ट्रीय प्रतिमान से भी आगे बढ़ते हुए 28.9% पे ले गए। आज स्कूल शिक्षा का ड्रॉप आउट भी 0 की तरफ हम ले गए। सरकार बनने के साथ ही हमने 3 नए शासकीय विश्वविद्यालय खोलने का प्रयास किया। कई प्रकार से शासन की व्यवस्थाओं में ये वर्ष हमने किसान कल्याण वर्ष भी मनाया। इसके माध्यम से एग्रीकल्चर के अलग अलग संकायों के बलबूते पर हमारे विश्वविद्यालयों में भी, चूंकि कृषि प्रधान हमारा प्रदेश है, ऐसे में कृषि से रुचि बढ़े लोगों की, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर सब सेक्टर में बढ़ाते हुए तमाम प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने का उपक्रम हमने प्रारंभ किया है। मैं अपनी ओर से आज के इस अवसर पर सामने बैठी हमारी यहाँ की पूर्व मंत्री हमारी बनर्जी मैडम को भी आपको भी प्रणाम करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये क्रम और गौरवशाली इतिहास ये जारी रहेगा, आपका आशीर्वाद हमारा साथ सदैव रहेगा। मैं एक बार फिर आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और मेरे साथ प्रेम से बोलो भारत माता की।
1: अब मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय कुलाधिपति श्री मंगू भाई पटेल जी को कि वे हमें आशीर्वचन प्रदान करें।
2: सभी को नमस्कार। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का 36वां दीक्षांत समारोह में अपने बीच उपस्थित भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंत्री उच्च

शिक्षा विभाग चाहिँ इन्द्र सिंह परमार जी, लोकसभा राज्यसभा के सांसद श्री विधायक गण, कुलगुरु राजेश वर्मा जी, अन्य कुलगुरु भी यहाँ उपस्थित है, सभी माता जयश्री बैनर्जी, जो यह मैं कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नड्डा जी रहे उनकी सास है, कई बार उनको मिलना हुआ, आज यहाँ उपस्थित है, उपस्थित संकाय अध्यक्ष, विभिन्न परिषद के सदस्यगण, अधिकारीगण, उपस्थित अभिभावकगण एवं महानुभाव, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, माँ नर्मदा की पुण्य सलीला से पावन संस्कार धानी एवं संग मरमर नगरी जबलपुर में माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आगमन हम सभी के लिए हर्ष, सम्मान और गौरव का अनुभव क्षण है। प्रदेशवासियों की ओर से आपका श्रद्धापूर्वक हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आपकी गरिमामय उपस्थिति विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को ऐतिहासिक गरिमा और भव्यता से आलोकित कर रही है। समारोह में उपाधि और पदक प्राप्त करता विद्यार्थी विद्यार्थिनियों, उनके गुरुजन और परिजनों को बधाई और शुभकामना देता हूँ। इस पावन अवसर पर गौड़बाना की सौरवशाली दहा की अमर वीरांगना, अदम्य साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति की अनुपम प्रतीक महारानी रानी की दुर्गावती को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ, जिनका जीवन जनजातीय अस्मिता, प्रजा कल्याण, नारी शक्ति के त्याग, पराक्रम, नेतृत्व, क्षमता और आत्मगौरव का अमर गान है, जो आज भी जनजातीय समुदाय सहित देश की प्रत्येक बेटी और युवा पीढ़ी की प्रेरणा का केंद्र है। कहते हुए गर्व का अनुभव होता है कि देश की सर्वोच्च और सर्वाधिक जिम्मेदारी का पालन कर रही श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की जनजातीय समाज की उस गौरवशाली परंपरा को नई ऊंचाइयां प्रदान कर रही है, जिसका उज्जवल प्रतीक रानी दुर्गावती है। इसी प्रेरणादायी परंपरा से साक्षी दीक्षांत समारोह में उपस्थित युवा छात्र छात्राओं से कहूंगा कि आपकी डिग्री भारत के भविष्य के निर्माण, नवाचार और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाली शक्ति है। आज जब आप जीवन की नई यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, तब समय की पुकार है कि आप रानी दुर्गावती के शौर्य और लोक कल्याण के आदर्शों और जीवन संघर्ष में प्रेरणा प्राप्त करें। मैं यह कहना चाहूँगा कि यहाँ बहुत से ट्राइबल बच्चे हैं, जब हम आए अंदर तो कई जनजातीय जननायकों का फोटो भी हमने देखा, उन्होंने अपने जीवन में जो कार्य किए वो जनजाति समाज के लिए गौरवान है। मैं ये समझना चाहूँगा कि आप पढ़े लिखे, आज दीक्षांत समारोह आपका हुआ, कल अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, मगर जनजाति समाज के कई ऐसे काम है जो हमको करना है। हर एक यूनिवर्सिटी, जब मैं राज्यपाल पद पे आया तभी हर एक यूनिवर्सिटी को मैंने बोला कि आपको पांच पर गांव गोद लेना है, जिसकी वजह से बच्चे को भी सीधे गांव में जाए और परिस्थिति देखे कि जनजाति समाज का क्या क्या करना जरूरी है और उसमें आदत बन जाए कि समाज को हमको कुछ करना है। मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार की अनेक योजना है, मगर पीएम जनमन योजना अति पछात के लिए बेगा, भारिया और सहारिया करीब करीब मध्य प्रदेश में 14 लाख से ज्यादा है, उनके लिए केंद्र सरकार ने 24,000 रुपये का प्रावधान किया था। 9 जितने डिपार्टमेंट का काम उसमें हो रहा था। कई ऐसे सहारिया, बेगा, भारिया के स्थान पे मैं खुद गया हूँ कि सरकार की जो कामगिरी चल रही है वो ठीक से चल रही है कि नहीं। और मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ महामहिम

0: राष्ट्रपति जी खुद की यह योजना है, क्योंकि आज तक अति पछात के लिए कोई योजना नहीं बनी। बहुत सालों से मैं ये राजनीतिक जीवन में हूं, मगर पहली बार मैंने ऐसे अति गरीब जो है, अति गरीब आदिवासी है, उनके लिए भी एक योजना बनी और 3 साल चली, बहुत अच्छे काम हुए हैं। धरती आबा ग्राम विकास योजना, केंद्र सरकार ने 80,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मैं समझता हूँ आप पढ़े लिखे हैं, आपके गांव में, मैंने सरकार को भी बोला कि हर तहसील का ऐसा मैप बनाओ कि कौन से तहसील में जीवन जरियात कौन सी चीज करना अभी भी बाकी है। वो मैप बनाएंगे तो हर एक तहसील को और हर एक गरीब आदिवासी को सरकार की योजना का लाभ मिलेगा। इसलिए मैं विद्यार्थियों को आग्रह करूंगा कि आपने अच्छी तरह, आपका माँ बाप ने संस्कार दिया, पालन पोषण किया, ये यूनिवर्सिटी ने आपको अच्छी तरह पढ़ाकर आज डिग्री भी दिए, अच्छी प्लेसमेंट भी मिले, मगर समाज को कभी नहीं भूले, राष्ट्र को कभी नहीं भूले, इतना ध्यान रखते मेरे को अपेक्षा है कि आप उसमें सफल होंगे। आज जब जीवन की नई यात्रा प्रारंभ कर रहे, तब समय की पुकार है कि आप रानी दुर्गावती ने जो हमको प्रेरणा दी है उसी तरह जीने का प्रयत्न करें। आइए हम सब मिलकर लोकतांत्रिक मूल्यों, नारी सशक्तिकरण, विकसित भारत के संकल्प को जीवन का ध्येय बनाकर राष्ट्र की प्रगति में अपना श्रेष्ठ योगदान दे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार। भारत माता की जय।
1: मैं आमंत्रित करता हूं माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को कि वे अपना उद्बोधन प्रदान करें।

इस शिक्षण समारोह में उपस्थित मध्य प्रदेश के राज्यपाल तथा इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री मंगू भाई पटेल जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, राज्य सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार जी, विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर राजेश कुमार वर्मा जी, अध्यापकगण, अभिभावकगण, प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ जनप्रतिनिधिगण, देवी और स्वजन, सभी को नमस्कार। आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही। रानी दुर्गावती जिनके नाम पर ये विश्वविद्यालय स्थापित है, वे अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम की प्रतिमूर्ति थी। पिछले वर्ष ही गोंडवाना साम्राज्य की उस महान शासक और वीरांगना की 501वीं जन्म जयंती देशवासियों ने मनाए। संयोग से आज से दो दिन बाद 24 जून को उनकी 462वां बलिदान दिवस है। रानी दुर्गावती भारत के नारी शक्ति के शौर्य के प्रतीक, वे सदैव नारी शक्ति के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। मैं महान रानी दुर्गावती की स्मृति प्रति सादर नमन कर। देवियों और स्वजन, प्रकृति के मनोरम क्षेत्र में स्थित और पूर्ण सलीला माँ नर्मदा के जल से संप्रसित रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की 70 वर्ष की यात्रा पर आप सबको गर्व हुआ होगा, हो रहा होगा। इस विश्वविद्यालय के आसपास के क्षेत्र में जनजातीय वनवासी संस्कृति की प्रचुर उपस्थिति है। इस विश्वविद्यालय से जुड़े रानी दुर्गावती के नाम की सार्थकता सभी सिद्ध होगी जब सभी भागीदारी जनजातीय समाज और वंचित तथा पिछड़े वर्ग, विशेषकर इन वर्गों की बेटियों की सशक्तिकरण के लिए प्रयास करें। जनजाति समाज स्वाभिमानी है। आज हम 80 साल स्वाधीनता के 80 साल के तरफ जा रहे हैं, 77, 76 ईयर्स हो गया है, लेकिन वो अपने जगह पे खड़ा है।

क्योंकि वो स्वाभिमानी है, अपना दुख दर्द अपना परेशानी दूसरों को बताते नहीं।

0: लोगों को बताना, सरकार को बताना, उनके भावना से परे, इसीलिए। लेकिन आज कुछ महिलाएं, कुछ बेटियां, कुछ बेटाएं उच्च शिक्षित हो रहे हैं। मैं राज्यपाल महोदय से सहमत, बड़ी बनना सरकार के सहयोग से या खुद के परिश्रम से, अच्छी बात। लेकिन एक अकेला चलना समाज को छोड़ के, ये शायद क्योंकि उसी समाज से हम यहाँ तक आए हैं, उनके लिए चिंता करना हम लोगों का कर्तव्य हो। जो भी बेटियां, जो भी बेटाएं, कोई भी बड़े पोस्ट पे रहे, उनके तरफ समय देना। कभी कभी पढ़ाई करके शहरों में रह जाते हैं, गांव जाते नहीं। मुझे लगता है उनके लिए ये सबसे बड़ा समाज के प्रति उपहार होगा, समाज के प्रति जो कर्तव्य होगा, बीच बीच में जाके उनको मार्गदर्शन देना। वो नहीं मानते, नहीं मांगते कि आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता के लिए सरकार बहुत सारे सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सुविधा को कैसे लिया जाए, कहाँ जाए, कैसे करे, वो भी बहुत लोगों को पता नहीं। इस चीज को मार्गदर्शन करना जो आगे बढ़ के उन लोगों का कर्तव्य होता। गवर्नमेंट अपने हिसाब से वो कर रहे हैं, लेकिन एक जनजाति होने के नाते युवाओं का भी कर्तव्य है कि उन तक जाए, उनको मार्गदर्शन करे। और उनको भी जैसे कि हम सपने देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं 2047 तक देश विकसित होगा। मैं एक चीज को बार बार दोहराती हूं, उसको मैं अभी भी दोहराना चाहती हूं। हम सब जानते हैं पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बड़ा कवि थे। वो कहते थे भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं जीता जगता राष्ट्र। मैं समझती हूँ एक राष्ट्रपति पुरुष का जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक, ये सभी प्रदेश का, सभी गांव का जैसे विकास करना जरूरी है, ऐसे ही उसी गांव में, उसी प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति जो पीछे रह गए उनको आगे लाना, शायद सर्वांगीण विकास होगा। और 2047 का सपना शायद इससे ही परिपूर्ण होगा। शिक्षा ही किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विकास का सबसे प्रभावी माध्यम, इसीलिए जनजातीय समुदाय के शैक्षणिक विकास के लिए प्रयास करना बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय में ग्रामीणों एवं वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु अनेक विशेष कौशल आधारित पाठ्यक्रम चलाई जा रहा है। हम सबको मिलकर ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे जनजातियों युवाओं को आधुनिक विकास में भागीदारी करने का अवसर मिले, और साथ ही उनकी जनजातीय पहचान व अस्मिता अपने सहज रूप से बनी रहे। क्योंकि अपना आइडेंटिटी, अपना धरोहर, अपना संस्कृति, अपना परंपरा को भूलना नहीं चाहिए। वो बहुत ही पवित्रता चीज है, क्योंकि असरलता और पवित्रता बनाए रखना जरूरी है। जनजातीय समाज के लोगों के कौशल एवं ज्ञान को आधुनिक माध्यमों से प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में इस विश्वविद्यालय जैसी शिक्षण संस्थानों को विशेष प्रयास करना चाहिए जनजातीय ज्ञान एवं शिल्प परंपरा का व्यापक स्तर अध्ययन सभी देशवासियों के लिए लाभदायक होगा। उच्च शिक्षण संस्थान विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ नवाचार और अनुसंधान के प्रमुख केंद्र भी होते हैं। विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उद्यमिता का विकास करना शिक्षण संस्थान की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। साथ ही संस्थानों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे विद्यार्थियों में भारतीय संस्कृति, परंपरा और भाषाओं के प्रति गर्व के भाव को संचारित करें। ये हम लोग का भारत एक ऐसे देश है, विभिन्न भाषा, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न खान पान पहनाव, लेकिन वो आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी को समालोचित करना ठीक नहीं। आज विदेश से लोग आते हैं, हम राष्ट्रपति भवन में सभी स्टेट का व्यंजन उनको पेश करते हैं, वो बहुत उत्साह के साथ वो खाते हैं और प्रशंसा भी करते हैं। आधुनिकता और परंपरा के समन्वय से देश का संतुलित विकास संभव है। इस विश्वविद्यालय के शैक्षणिक ढांचे एवं पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा को समाहित करने की पहल सराहनीय है। मुझे ज्ञात हुआ है कि ये विश्वविद्यालय वैदिक गणित एवं भारतीय शैक्षणिक मूल्यों के प्रचार प्रसार हेतु विभिन्न संस्थाओं के साथ सहयोग के लिए प्रयासरत है, जहाँ पर नवाचार को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि यहाँ पर कार्यरत डिजाइन इनोवेशन सेंटर द्वारा पेटेंट भी प्राप्त किए गए। प्यारे विद्यार्थियों के लिए दीक्षांत समारोह जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव। ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि आज दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक पाने वाले विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या बहुत अधिक। ये हमारी बेटियों के निरंतर आगे बढ़ने के संकल्प और देश के सर्वांगीण विकास का प्रतीक। आज हमारा देश नव युवकों का देश है। 65% युवा है, जिनमें कुछ भी करने का अदम्य साहस है। देश और देशवासियों को आपसे बड़ी अपेक्षाएं हैं और ये अपेक्षाएं तभी पूर्ण होगी जब आपको योग्यता अनुसार रोजगार मिले। इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारें प्रयासरत है। रूसा तथा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसी योजनाओं से विश्वविद्यालय को प्राप्त हो रही अनुदान से अधोसंरचना के विकास, अनुसंधान के क्षेत्र में नवाचार तथा शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हुई। अध्ययन एवं अनुसंधान उच्च शिक्षा के अभिन्न अंग। हमें ऐसे अध्ययन एवं अनुसंधान पर बोल देना होगा जो देश और समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। देवियों और स्वजनों, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, वंचित वर्गों का विकास, स्वच्छता, सामाजिक समरसता आदि विषयों को अध्ययन एवं अनुसंधान में शामिल करने से समाज लाभान्वित होता है। साथ ही देश के विकास के लिए योजनाएं बनाने में सहायता मिलती है। हम सबकी ऐसे सोच और ऐसे प्रयास होना चाहिए कि मध्य प्रदेश सहित देश के सभी विश्वविद्यालय ज्ञान विज्ञान एवं अनुसंधान के उत्कृष्ट संस्थान के रूप में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि लाभ करें। प्यारे विद्यार्थियों, आज पूरा विश्व तेजी से बदल रहा है। हमारी भाषा, रहन सहन, जीवन शैली सब तेज गति से बदल रही, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे कुछ मूल्य शाश्वत है जो हमें सदैव शक्ति प्रदान करते। मेरा मानना है कि आप जैसे युवाओं को भारतीय संस्कृति के मूल्यों और आदर्शों को अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। सत्य, अहिंसा, करुणा, सेवा और ईमानदारी जैसे मूल्य हर युगों की मूल चेतना का हिस्सा रहे। इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाकर आप कठिन परिस्थितियों को भी दृढ़ता से सामना कर सकते हैं, एक आदर्श नागरिक बन सकते हैं, राष्ट्र निर्माण के महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। आप केवल अपने परिवार या विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि राष्ट्र की आकांक्षाओं और भविष्य के निर्माता है। आपके कंधों पे देश का भविष्य निर्भर कर रहे हैं। आपके ज्ञान, ऊर्जा और संकल्प से ही विकसित भारत का सपना साकार होगा। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि अपने शिक्षा और प्रतिभा का उपयोग केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं, बल्कि समाज के व्यापक कल्याण के लिए होना चाहिए। अपने आसपास के वंचित और ग्रामीण समुदाय की समस्याओं को समझें, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप समाधान विकसित करें, उन्हें सशक्त बनाएं और विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में अपनी भूमिका निभाएं। अपने कर्तव्य के साथ यहाँ से जाने के बाद आप एक बड़ा ऑफिसर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, लेकिन अपना कर्तव्य को अवहेला करके समाज सेवा नहीं, कर्तव्य के साथ समाज सेवा, दोनों काम को निभाना पड़ेगा। मुझे लगता है वो सामर्थ्य आप में है, वो जोश आप में है, देश के लिए काम करना आपका कर्तव्य में है, आपका शरीर में है, आपका धमनी में। आज देश डिजिटल प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, हरित ऊर्जा, अंतरिक्ष अनुसंधान और आधुनिक अवसंरचना के क्षेत्र में नई ऊर्जाएं प्राप्त कर रहे हैं। इन अवसरों का लाभ उठाएंगे, नवाचार कीजिए, शोध कीजिए और वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाए। परंतु इस प्रगति के साथ पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाना है। जल, जंगल और जमीन का संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग, जैव विविधता की रक्षा तथा सतत विकास के लिए प्रतिबद्धता अपनी जीवन यात्रा का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। आज जिस गर्मी, जिस तरह के वृष्टि बहुल, अनावृष्टि के हम झेल रहे हैं, उसका कारण पर्यावरण शायद इतना सुरक्षित नहीं। मुझे विश्वास है कि आप सब युवा अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का समझकर जीवन में आगे बढ़ेंगे और अपनी संस्थान, क्षेत्रों और देश का नाम रोशन करें। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना कर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: राष्ट्रगीत के लिए कृपया सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करेंगे।

0: धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के प्रेरक उद्बोधन, कुलाधिपति माननीय श्री मंगूभाई पटेल के शुभाशीष और राष्ट्रगान के साथ ही रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर का यह ऐतिहासिक 36वां दीक्षांत समारोह अब संपन्न हो चुका है। दीक्षांत यात्रा उसी गरिमा के साथ हॉल से वापस लौट रही है। चलते चलते हम ये भी बतलाना चाहेंगे कि हमारी क्रिएटिव टीम में थे कार्यक्रम अधिशासी श्री प्रशांत परमार, सहायक अभियंता श्री सुनील पंडित, वरिष्ठ अभियांत्रिकी सहायक श्री नीरज श्रीवास्तव, रोहित कुमार कोड़ोपे, वरिष्ठ टेक्नीशियन श्री सूरज मेश्राम और मार्गदर्शन रहा आकाशवाणी के उप महानिदेशक अभियांत्रिकी श्री वलीउल्लाह खां सर का, कार्यक्रम प्रमुख श्री श्यामलाल टहलानी का, कार्यक्रम अधिशासी श्री विपिन कुमार यादव का। अब मैं रविंद्र दुबे आपको ले चलता हूँ अपने स्टूडियो। नमस्कार।

रेशमा और शेरा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में, और ये किन अभिनेत्री पर फिल्माया गया ये आपको बताना है श्रोता। और बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आए हैं आज की जो ये इबारत है उसके विषय में। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि राजस्थान की मिट्टी की सौंधी महक लोक संस्कृति की रंगत और प्रेम की मधुर चुवन को बेहद खूबसूरती से समेटे हुए है चांदनी, केसरिया बालम, रंग बिरंगी चुनर, मीनाकारी के गहने और रेगिस्तान की मखमली रात मिलकर ऐसा दृश्य रचते हैं मानो लोक रंग स्वयं शब्दों में उतर आया हो। बींद और बींदनी का सहज संवाद केवल प्रेम नहीं बल्कि उस जीवन दर्शन को भी व्यक्त करता है जहाँ पानी की हर बूंद, हर परंपरा और हर भावना अनमोल है। ये इबारत राजस्थान की गलियों, महलों और रेत के धोरों के बीच ले जाकर प्रेम, संस्कृति और स्मृतियों के रंगों से सराबोर कर देती है। जी हाँ, और इनके बारे में आपको लिखना भी है। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज गद्यांश हमें रेगिस्तानी रेत के टीलों की ओर ले जाएगा और उसके मखमली स्पर्श को अनुभूत कराएगा। रेगिस्तान का सर्द आसमान, मखमली रेत और उस पर चांदनी की चादर ओढ़े थिरकते पानी की लहरें, ये किसी सम्मोहन से कम नहीं। चांदी से चमकती रेत के टीलों के बीच बनी पानी की लहरें जब उठती हैं तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद कोई मखमली कविता लिखती हो। रेगिस्तान की रातें जितनी शांत होती हैं उतनी ही मखमली रात के सन्नाटे में जब पूर्ण चंद्रमा की किरणें पानी की सतह पर पड़ती हैं तो पानी की हर एक लहर मोती से चमकने लगती है। ऐसा लगता है मानो रेतीले समंदर में सितारों की बारात उतर आई हो। क्या ही बात है श्रोताओं। जी हाँ, बिल्कुल सही कि रेत की जो सुंदरता है और रात जो राजस्थान की होती है, रेत की रातें जो होती हैं वो बड़ी खूबसूरत होती हैं। इस बारे में हमारे एक श्रोता भी लिखते हैं, और अगर ऐसा कोई अनुभव आपके पास है, आप राजस्थान गए हैं तो वहाँ के बारे में हमें ज़रूर लिख सकते हैं। और रात के ही बारे में हमारे एक श्रोता लिखते हैं, रेगिस्तान में मखमली रात एक रहस्यमय मौन, साइलेंस ऑफ डिवाइन के रूप में है जहां सांसारिक कोलाहल शांत हो जाता है, जो प्रकृति के शांत, कोमल और निश्चल रूप को दर्शाता है। रेत पर पानी की लहर, हवा द्वारा बनाई गई लहरें, ईश्वर की इच्छा डिवाइन विंड के भाव का एक रूप है जो विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य से बहते रहने की प्रेरणा देता है। ये दोनों वाक्यांश एक संकेत देते हुए प्रतीत होते हैं कि मनुष्य का मन रेगिस्तान की मखमली रात की तरह शांत होना चाहिए और रेत पर पानी की लहरों को सहजता से स्वीकार करना चाहिए। रेत कठोरता और लहर तरलता का मिलना जुलना द्वैत को मिटाकर अद्वैत की ओर ले जाता है।

बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने लिखा है। डोर फिल्म का ये गीत था करसन सरगतिया और मीर अली हुसैन की ये रचना थी, सलीम सुलेमान का संगीत था। श्रोताओं, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने आज के गीतों को पहचानना है, शब्दों को पहचानना है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में हमें राजस्थान के रेगिस्तान की सैर आज की इबारत करा रही है, तो गीत भी उसी के अनुसार होंगे। चांदनी ने चंदा से कहा, तू चंदा में चांदनी की सरिया बालम पिया तो से नैना लागे, बहुत सारे गीत इन्होंने लिखे हैं। और एक और श्रोता लिखते हैं पीतल की मुरी गागरी, और भी कुछ एक गीत इन्होंने सुझाए हैं, बताए हैं, पहचाने हैं। एक और श्रोता ने दिले नादा ये गीत पहचाना है। एक और श्रोता है सोना ले जा रे चांदी ले जा रे, ये गीत सुरीले सफ़र में हो सकता है शामिल। एक श्रोता और लिखते हैं कि राजस्थान की खूबसूरती तब देखने को मिली जब मैं अपने परिवार के साथ जैसलमेर घूमने गया। सचमुच राजस्थान की खूबसूरती अपनी समृद्ध संस्कृति, रेगिस्तान और शाही आभूषण के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। राजस्थान के थार जैसलमेर मखमली रेत का अनुभव होता है। चांदनी रात में जब पूर्णिमा की किरणें इन रेत के टीलों पर पड़ती हैं तो ये भी सोने चांदी की तरह चमक उठती हैं। केसरिया रंग राजस्थान के शौर्य, त्याग और संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ के पारंपरिक परिधानों जैसे साफा, लहरिया और बंधेज में इस रंग का प्रयोग होता है। राजस्थानी आभूषण अपनी बारीकी, नक्काशी और भारी डिजाइनों के लिए जाने जाते हैं। यहाँ की महिलाएं सिर से लेकर पैर तक चांदी और सोने के गहने पहनती हैं, जिनमें रखड़ी, माथा, गला, बाजूबंद और भारी पायल प्रमुख हैं। ऐसे चांदनी रातों और मखमली रेतों पर ऊँटों की सवारी करने का अलग कौतूहल है। तो क्या आपने ऊँटों की सवारी की है तो हमें ज़रूर लिख भेजिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि आइए चलिए मित्रों, चलते हैं विविध भारती के सुरीले सफ़र में, और आज दो बूंद पानी और रेशमा और शेरा के गीत की धूम होगी। तो जी हाँ, देखते हैं कि आज कौन कौन से गीत होते हैं। वैसे गीत की जहाँ तक बात होती है तो कविताएं भी याद आती हैं। चेतक कविता क्या आपको याद है और ये किस पर लिखी गई थी तो आप ज़रूर बताएं। और कौन कौन से किले आपने देखे हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट किसे कहते हैं ये भी आपको बताना है।

आप सुन रहे थे वीर दुर्गादास फिल्म का ये गीत। आपको बताना है कि ये किस की रचना थी। वैसे तर्ज थी SN त्रिपाठी की, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ें थीं, और आपको राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य भी बताना है कि कौन सा है श्रोताओं, और क्या आपने दाल बाटी चूरमा और घेवर का स्वाद चखा है, तो ये भी आप बता सकते हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज तो राजस्थानी रंग छा जाएगा, ऐतिहासिक किलों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा किले इस राज्य में मिलेंगे। शौर्य पराक्रम का जीता जागता उदाहरण है राजस्थान। ये राज्य तभी तो इसे कभी भी जीता नहीं जा सका, या फिर इस पर अलग तरीके के किले नहीं बनवाए जा सके। वैसे बहुत सारे किले हैं वैसे यहाँ पर श्रोताओं, और तमाम बहुत कुछ है इबारत पढ़ने से पता चलता है। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफ़र की भारत में मेरे रंगीलो राजस्थान की महिमा का खूब बखान किया गया है, तो आप सब पधारो मारे धोरा रोर देश राजस्थान में। राजस्थान की संस्कृति, रहन सहन, परिधान, खान पान और वहाँ की भाषा बहुत मीठी है। व्यंजन में चूरमा बाटी, गट्टे की सब्जी और कैर सेंगरी की भाजी का क्या कहना। मारो राजस्थान सबसे निरालो, जयपुर की चुनरी का क्या कहना, ऐसा है मारा राजस्थान। धोरा की धरती अब तो प्रकृति भी यहाँ खूब

भोजन इत्यादि के बारे में जाना। जी हाँ, और इन्होंने आगे भी बहुत लंबी चौड़ी इबारत लिखी है। तो एक और श्रोता लिखते हैं कि गीत संगीत सुनना, संगीत को महसूस करना दोनों अलग अलग बातें हैं। कभी कभी एक ही धुन किसी के लिए सिर्फ संगीत होती है और किसी दूसरे के लिए एक याद या भावना या एक कहानी की तरह होती है। आपको कलाकार पहचानने हैं श्रोता और फिल्म।

संध्या और प्रशांत पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे, फिल्म थी सेहरा। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी की आवाजें थी, हसरत जयपुरी के बोल थे। और इसके पहले जो गीत हमने आपको सुनवाया था वीर दुर्गादास का, आपसे गीतकार पूछा था। जी हाँ, आपने ठीक लिखा है, भरत व्यास का लिखा नगमा था, एसएन त्रिपाठी की तर्ज थी। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि मैं एक महीना श्रोता लिखती हैं कि एक महीना जोधपुर में मैं रही थी, तब जैसलमेर में घूमी थी। वहाँ का रहन सहन, खान पान, वहाँ की रंग बिरंगे बाजार ने बहुत मनमोहा था। बहुत तीखा खान पान है वहाँ के पकवान, घेवर, मावा, कचौरी, मिर्ची पकौड़ा, गट्टे की भाजी का मज़ा लिया था। जी हाँ, आपने रंग बिरंगे बाज़ार की बात की है श्रोताओं, तो राजस्थान में आप क्या बता सकते हैं मीना बाज़ार कहाँ लगता है, तो आप ज़रूर बताएं। एक और श्रोता लिखते हैं, हम जब छोटे थे सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ते थे तब राजस्थान गए थे मामा जी की बारात में। वहाँ का तापमान, पानी का स्वाद, तीखे भोजन की विविधताएं, अनोखी वेशभूषा, रेगिस्तान की गर्म रेत और कुछ विशेष स्थानों की याद अब तक मन मस्तिष्क में अंकित है, जिसमें मुख्यतः चामुंडा देवी मंदिर, पुष्कर नाथ ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर। जी हाँ, यहाँ कौन सा मेला लगता है ये अगर आप जानते हैं तो ज़रूर बताइए, क्योंकि आपने इस मंदिर की बात की है। मंदिर के दर्शन भी किए और देवी के दर्शन किए और चमकी

लीले पत्थर अब तक सहेज कर रखे हैं। जी हाँ, आपने लाए होंगे। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं, घूमर कलबील या नृत्य भवाई नृत्य राजस्थान के लोकप्रिय नृत्य और दाल बाटी चूरमा, खेर सांगरी की सब्जी, गट्टे की सब्जी और भी बहुत से लोकप्रिय व्यंजन हैं यहाँ के। जी हाँ, तो क्या आप श्रोताओं राजस्थान का कोई सुंदर सा पंछी बता सकते हैं? एक और श्रोता लिखती हैं कि रेगिस्तान में मीलों तक फैले रेत के टीले जिसे धूर कहा जाता है के साथ साथ चट्टानी पथरीले मैदान भी शामिल हैं। थार में कई खारे पानी की झील भी है। सब आप ही बता दे रहे हैं श्रोताओं, तो फिर बताइए खारे पानी की कौन सी मशहूर झील है, ये भी आप बता दीजिए। जिसमें जी हाँ, इन्होंने लिखा है लेकिन मैं ये आगे नहीं पढ़ूंगी। एक और श्रोता लिखती हैं कि राजस्थान का सबसे प्रमुख और राज्य नृत्य घूमर है, इसे नृत्य का सिरमौर कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान में कई अन्य प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं जैसे कलबेलिया, तहताली, भवाई और गैर। राजस्थान का आधिकारिक राज्य नृत्य घूमर है, इसे राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर और राजस्थानी संस्कृति की आत्मा कहा जाता है। हालांकि राजस्थान अपनी समृद्ध संस्कृति विविधता के लिए जाना जाता है, इसीलिए यहाँ कई अन्य प्रसिद्ध लोक नृत्य भी प्रचलित हैं।

इस गीत में श्रोताओं एक दुल्हनिया हैं जिनके सर पे घूंघट है, आप क्या उन्हें पहचानते हैं? इस कलाकार का नाम आपको बताना है।

किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म राजपूत से। राजेश खन्ना और जो दुल्हन थी वो नज़र आती हैं हेमा मालिनी। श्रोताओं, और इसका जवाब भी हमारे श्रोताओं ने खूब दिया है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि ये जून का महीना गर्मी ही गर्मी, पसीना ही पसीना, ऐसे में विविध भारती के सुरीले सफ़र जैसे प्रोग्राम मन को तसल्ली देता है। आज इबारत पढ़ते हुए हमारे राजस्थान के टूर की याद आई। रेगिस्तान राजस्थान का नाम सुनते ही गर्मी महसूस हुई, लेकिन हम दिसंबर महीने में गए थे इसलिए ठंडी उतनी ही थी जितनी गर्मी के दिनों में गर्म हवा होती है। पीतल की मुरी गागरी और मंगवा दे, और पीतल की मेरी मंगवा दे कहकर हमने वहाँ के लोकल ड्रेस में फ़ोटो खिंचवाए। जहाँ लोकल ड्रेस जहाँ की भी हम घूमने जाते हैं वहाँ की तो होती है, तो इसकी अगर कोई यादें आपके पास हों तो आप हमसे बांट सकते हैं। वैसे हमने आपसे पूछा था श्रोताओं कि चेतक कविता क्या आपने पढ़ी है, तो इस बारे में हमें ज़रूर लिखें और चेतक कौन था। एक और श्रोता लिखते हैं, बींद इबारत में एक शब्द है, बींद मतलब राजस्थानी में दूल्हा, जी हाँ, और बींदनी बोलते हैं दुल्हन को। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीला सफ़र में राजस्थानी छटा के बिखेरेंगी रंग, यहाँ की संस्कृति पहनावा खान पान बहुत ही शानदार है, महिलाएं आज भी हाथों में सफ़ेद चूड़ियाँ पहनती हैं जो हड़प्पा सभ्यता से मेल खाती हैं। जब खुदाई हुई तो कई साक्ष्य मिले जो अब भी राजस्थान में मौजूद हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है राजस्थान की संस्कृति कितनी

आप सुन रहे थे ये गीत मेरा गांव मेरा देश से, जहां छोटी छोटी छतरियां दिखाई गई हैं श्रोताओं, और आशा पारेख होती हैं, धर्मेंद्र होते हैं, लेकिन राजस्थान में सबसे बड़ी एक छतरी है जो कहां स्थित है ये आपको बताना है। कुछ हमने सवाल आपसे पूछे थे सोने की मीनाकारी के और कुंदन या और भी जेवरों के, तो ख़ास अगर बात की जाए सोने की मीनाकारी और कुंदन के जड़ाऊ जेवरों की, तो बीकानेर बड़ा ही प्रसिद्ध है यहाँ का और इन्हीं चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। वैसे लाख की चूड़ियों का भी कारोबार बहुत बड़ा होता है राजस्थान में, तो क्या इस शहर में आपने कुछ ख़रीदारी की है? ये लाख की चूड़ियाँ कहाँ मिलती हैं राजस्थान में, ये आपको बताना है। और झीलों की नगरी के बारे में हमने आपसे पूछा था, तो राजस्थान में उदयपुर कहा जाता है, लेक सिटी पैलेस, ऐतिहासिक इमारतें, जग मंदिर और तमाम चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। और छतरी के बारे में आपको बताना है, और कठपुतली जो होती है यहाँ की बड़ी प्रसिद्ध होती है, तो कठपुतली की जब हम बात करते हैं तो सबसे प्रसिद्ध जो भारत की कठपुतलियों के नाम हैं वो आपको बताने हैं। और चेतक के बारे में हमारे श्रोता लिखते हैं कि क्षमा चाहूंगी, चेतक की वीरता कविता श्याम नारायण पांडे की है, मैंने सुभद्रा कुमारी चौहान लिखा था, कोई बात नहीं, लेकिन चेतक के बारे में तो सभी जानते हैं और हमने भी सबने कविता पढ़ी है। चेतक महाराणा प्रताप के जो घोड़े थे, इस बारे में लिखा है हमारे एक श्रोता ने, और हल्दी घाटी का युद्ध तो सभी को याद होगा, सबने पढ़ा होगा इस बारे में, तो चेतक की वीरता का क्या कहना। एक श्रोता लिखते हैं कि हमने चेतक कविता पढ़ी है, चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। और एक और श्रोता ने लिखा है कि महाराणा प्रताप सिंह जी का घोड़ा जिसका नाम चेतक है, रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। इसके आगे इन्होंने नहीं लिखा, तो रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, इस तरह की ये कविता थी। और एक और श्रोता ने लिखा है कि मेवाड़ के वीर योद्धा महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। एक और श्रोता लिखती हैं कि सूरत मेरे फ्लैट के सामने तपती नदी बहती है, सदियों में खास करके वहाँ साइबेरियन पक्षी आते हैं, चार महीना बसेरा करते हैं, हमें ये नज़ारा देखने का मौका हर रोज़ मिलता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि राजस्थान का रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान बाड़मेर और जैसलमेर के बीच स्थित है, जो दुर्लभ जीवों जैसे चिंकारा, रेगिस्तानी लोमड़ी और गंभीर रूप से लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का घर है जैसलमेर के सैम और खुरी के टीले डेरा डालने और ऊंट सफारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सफारी की कुछ यादें हो तो आप ज़रूर लिखिए हमें श्रोताओं। एक और श्रोता लिखते हैं कि चेतक राणा प्रताप के घोड़े का नाम था। ये कलाकार आपको पहचानने हैं, और क्या ये इस गीत की शूटिंग के बारे में आप कुछ बता सकते हैं?

हेमा मालिनी और फिरोज खान पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे धर्मात्मा फिल्म से। वैसे इस गीत की शूटिंग के बारे में ऐसा बताया जाता है कि अफगानिस्तान के रेतीले इलाकों में शूट हुई ये पहली फिल्म मानी जाती है। एक श्रोता लिखते हैं कि जोधपुर कभी जाएं तो बिना रस के गुलाब जामुन ज़रूर खाएं, तो ये तो नई बात पता चली है। और पीतल की मोरी गागरी इस गीत के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफ़र राजस्थान में हम जो है वो घूमने जा रहे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि इन्होंने कुछ फादर्स डे के बारे में लिखा है। जी हाँ, फादर्स डे की आप सभी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने आज फादर्स डे के बारे में भी लिखा है। एक और श्रोता लिखती हैं, चेतक कविता स्कूल टाइम में पढ़ी है, चेतक राणा प्रताप का घोड़ा था, बहुत ही साहसी और फुर्तीला। ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी। और अगर बोलना शुरू करें शायद अभी तो आधी ही याद होगी इन्हें। और एक और श्रोता लिखते हैं कि रेगिस्तान की मखमली रात में चांद जब रेत पर उतरती है तो केसरिया रंग में रंगा राजस्थान अपनी पूरी खूबसूरती के साथ सामने आ जाता है। और मेले की रौनक, चुनर के रंग, महल, अटारियां, सबके बारे में इन्होंने लिखा है। और हमने आपसे पूछा था श्रोताओं कि मीना बाजार कहाँ लगता है राजस्थान में। जी हाँ, जयपुर में लगता है। और दो कठपुतलियों के बारे में हमने आपसे पूछा था जो राजस्थान की तो नहीं मानी जाती हैं लेकिन राजस्थान कठपुतलियों के लिए बहुत ही मशहूर है। और इस रिवाज को, इस परंपरा को हम सबको बढ़ाए रखना है, बनाए रखना है, ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये भारतीय कलाकारों की जो कलाकारी है बड़ी ही कम अब देखने में आती है। और पुतलियों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। वैसे जयपुर में लगता है मीना बाजार।

सैफी आजमी का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे परवीन सुल्ताना मैंने पुरुषोत्तम की आवाज़ों में दो बूंद पानी फिल्म से जो सिमी ग्रेवाल और सखियों पर फिल्माया गया। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर कई ऐतिहासिक छत्रियां स्मारकी गुंबद मौजूद हैं। हालांकि राजस्थान की कला संस्कृति में शेखावाटी की सबसे बड़ी छत्री सीकर जिले रामगढ़ में है माना जाता है। इसे सेठ रामगोपाल पोद्दार की छत्री के नाम से जाना जाता है। पंचकुला की छत्रियाँ जो हैं वो बड़ी ही प्रसिद्ध हैं। श्रोताओं आप इसके बारे में भी ज़रूर देखिए क्योंकि बहुत बड़ी छत्री है और राजस्थान की सबसे बड़ी छत्रियों में मानी जाती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि चेतक कविता मैंने पढ़ी है, चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था, बहादुर वीर बहादुर योद्धा थे वो। एक और श्रोता लिखते हैं कि चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था, हल्दीघाटी युद्ध के दौरान जब महाराणा प्रताप युद्ध में थे तो चेतक खुद गंभीर रूप से घायल था, तब उसने अपने स्वामी की जान बचाने के लिए बहुत गहरी खाई में छलांग लगाई थी। एक और श्रोता का ने लिखा है कि इन्होंने लिखा है पुष्कर मेले के बारे में, जी हाँ इसके बारे में हमने आपसे पूछा भी था। पुष्कर का मेला लगता है और ब्रह्मा जी का मंदिर है यहाँ और ये मेला बहुत अलग अलग चीज़ों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और जहाँ तक नमक के रेगिस्तान की बात हमने आपसे पूछी थी, कच्छ की रण जो गुजरात की तरफ है वो नमक का रेगिस्तान बड़ा ही सुंदर है। ख़ासकर अगर इस जगह को आप चांदनी रात में देखेंगे तो आपको बड़ा ही अलग अनुभव होगा। ग्रेट इंडियन डेजर्ट हमने आपसे पूछा था, जी हाँ थार का रेगिस्तान जो है राजस्थान से शुरू होता है और बहुत गुजरात पंजाब और आगे भी फैला हुआ है, तो ये बड़ी ही सुंदर बातें हैं। और गुलाबो और शिताबो ये दो कठपुतलियां हैं, आप इनके बारे में जानते हैं तो हमें लिखें कहाँ की ये कठपुतलियां हैं।

ताजमहल फिल्म का ये गीत आपने सुना, मधुमति और हेलन का नृत्य बड़ा ही खूबसूरत इस गीत में नज़र आता है श्रोताओं। और माउंट आबू जो राजस्थान का एक हिल स्टेशन है, यहाँ एक बड़ा ही सुंदर मंदिर है, आप जानते ही होंगे दिलवाड़ा टेंपल। क्या आपने ये टेंपल मंदिर देखा है तो आप यहाँ की कलाकारी के बारे में हमें बता सकते हैं, क्योंकि राजस्थान जो है वो तो कलाकारियों का शहर या प्रांत ही माना जाता है। और बहुत सारे श्रोताओं ने सांभर झील के बारे में लिखा है। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, जो मुख्य रूप से जयपुर और नागौर ज़िले की सीमा अजमेर के निकट पर स्थित है। और भी बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने यहाँ के सुंदर पंछियों के बारे में लिखा हुआ है श्रोताओं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि राजस्थान में मीना बाज़ार मुख्य रूप से जयपुर में आमेर के किले के बाहर और वर्ल्ड ट्रेड पार्क जैसे बड़े मॉल्स में स्थायी बाज़ार के रूप में मौजूद है। इसके अलावा राज्य भर में लगने वाले त्योहारों मेलों के दौरान समय समय पर विशेष अस्थायी मीना बाज़ार भी लगाए जाते हैं। यहाँ एक और इमारत है श्रोताओं, इस इमारत के नाम पर विविध भारती का एक कार्यक्रम भी है, क्या आप बता सकते हैं?

कार्यक्रम का पहला गीत आंधी फिल्म से है, जिसे गाया लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। गुर्जर की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया आर डी बर्मन ने।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: मौसम फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबी अलमाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में योग किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा,
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ये थीम समाज के वरिष्ठ सदस्यों के स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर एवं गरिमापूर्ण जीवन के लिए योग की उपयोगिता को रेखांकित करती है। आज हम जो जीवन शैली अपनाते हैं वही हमारे आने वाले समय के स्वास्थ्य एवं सुख का आधार बनती है।
0: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भी योग की विभिन्न मुद्राओं तथा प्राणायाम का अभ्यास किया। प्रदेश के सभी जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक योग के कार्यक्रम हुए, जिनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और योग की विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इंदौर ने भ्रामणी प्राणायाम में नया रिकॉर्ड बनाया। इधर राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में बड़ी संख्या में लोगों ने योग अभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा, पेयजल, चिकित्सा और अन्य बुनियादी सुविधाओं की विशेष व्यवस्थाएं की। ग्वालियर में सामूहिक योग कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के तीन पोत INS दुनियागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा,
2: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था। आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और साथियों, एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आज आयोजित नीट UG पुनर्परीक्षा में देश भर के 22 लाख विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। उन्होंने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2026 में आज प्रदेश के लगभग 1,18,000 अभ्यर्थी 30 जिलों के 283 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देंगे। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच, ईयरफोन, कैमरा, बेल्ट, आभूषण और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए इस बार प्रश्न पत्र वितरण की प्रक्रिया पूरी तरह गोपनीय रखी गई है। प्रश्न पत्र एयरफोर्स के विशेष विमान से भोपाल पहुंचाए गए हैं। NTA ने इस बार

हर परीक्षा में तकनीक आधारित सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। पेपर लीक या अफवाहों को रोकने के लिए राज्य साइबर मुख्यालय में विशेष निगरानी की व्यवस्था बनाई गई है। और अब मौसम। प्रदेश में मानसून की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। मौसम विभाग ने इसके 25 जून तक प्रवेश करने की संभावना जताई है। प्रदेश में प्री मानसूनी गतिविधियां जारी हैं। विभाग के अनुसार आज इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सहित 37 जिलों में आंधी, गरज चमक और बारिश का अलर्ट है। कई क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आज ग्राम पंचायत खोड में खाद्यान्न वितरण केंद्र का औचक निरीक्षण किया। प्रभारी मंत्री ने स्टॉक रजिस्टर, POS मशीन के संचालन और खाद्यान्न की गुणवत्ता की सघन जांच की। त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला में भारत ए और मेजबान श्रीलंका ए के बीच फाइनल मुकाबला जारी है। मैच दाम्बुला स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी विंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से बंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में लिस्ट ए प्रारूप का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है, जो स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इसके अधिक लाभ मिलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। श्री मांडविया ने कहा कि योग न केवल भारत की विरासत है, बल्कि विश्व को दिया गया एक अनुपम उपहार है।
3: योगा केवल हमारी विरासत नहीं है, दुनिया को दिया गया एक उपहार ही है। और इसलिए जब सारी दुनिया 21 जून को योगा दिन मनाती है, तब हम सभी भारतीय योग से जुड़े हर दिन में योगा करके अपने स्वयं को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए प्रयास करिए।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में भाग लिया। ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोगों ने योग, प्राणायाम और राजयोग का अभ्यास किया। उधर पंजाब में विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों और संस्थानों ने योग सत्र आयोजित किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जालंधर के निजी विश्वविद्यालय में आयोजित योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने राज्य के लोगों, विशेषकर युवाओं से नशा न करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने लोकभवन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जुहू तट पर आयोजित योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि योग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम का प्रभावी माध्यम है और स्वस्थ रहने के लिए सभी को नियमित रूप से योग करना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बोरिवली में आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने मुंबई में योगाभ्यास किया। IIT बॉम्बे, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा नेशनल थर्मल पार्क कॉरपोरेशन के मुख्यालय सहित कई संस्थानों ने भी योग दिवस मनाया। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
4: गोवा के तालेगांव स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में योग दिवस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक सहित छात्र, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी और योग अभ्यासकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में कॉमन योग प्रोटोकॉल पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने योग कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्य भर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। इधर राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में भी योग सत्र का आयोजन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस सत्र में भाग लिया। मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि योग को केवल वार्षिक आयोजन तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास में भाग लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के 3 पोत INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह

0: बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
1: नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों पर 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाने के दौरान उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
2: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, उसके साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
1: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
3: मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। निर्भय होके बैठे, चिंता मुक्त होके बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
1: श्री प्रधान ने बताया कि सीबीएसई के शेष परीक्षा परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे।
3: सीबीएसई की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे सीबीएसई के 17 लाख बच्चों से लगभग 15.5 लाख बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था, वो काम लगभग पूरा हो चुका है। सीबीएसई जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रुपए के प्रोसेसिंग शुल्क पर 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी विंस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री विंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
4: ईरान के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि 60 दिनों के भीतर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य पर नए शुल्क लगा सकता है। बढ़ते तनाव के कारण शुक्रवार को प्रस्तावित वार्ता स्थगित कर दी गई थी। ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नाम मिनाब 168 रखा गया है, जो स्कूल पर हुए हमले में मारे गए लोगों की स्मृति में है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कालीबफ करेंगे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: मुंबई में बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही, जिससे बस सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहीं। हालांकि बेस्ट प्रशासन ने शहर में नीट पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 100 से अधिक बसों की व्यवस्था की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की संभावना है। बिहार और तेलंगाना के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा विदर्भ में बुधवार तक लू चलने की संभावना व्यक्त की गई।

0: क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए के सामने 378 रन का लक्ष्य रखा है। दामबुला के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ए को शानदार शुरुआत मिली। टीम बिना कोई विकेट गंवाए 130 रन के पार पहुंची। वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 29 गेंदों में 94 रन बनाए। उन्होंने महज 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की है। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष M.B. कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

शरद भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

0: एसएच बिहारी के बोलों को सुरों में ढला ओपी नय्यर ने आशा भोसले का गाया सावन की घटा फिल्म का गीत आपने सुना। इस गीत से पहले श्रोताओं हमने आपको सुनवाया सूरज फिल्म का नगमा, हसरत जयपुरी का लिखा शंकर जयकिशन की तर्जी, मोहम्मद रफी की आवाज थी।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है,
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम, अंदर शायर पैदा हो रहा था। मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
5: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
4: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: थे और इस गीत के पहले श्रोता परख फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया था। लता मंगेशकर की आवाज थी, शैलेंद्र के बोल थे, सलिल चौधरी का संगीत था। सदाबहार नव में कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से मन चाहे गीत कार्यक्रम के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।

नमस्कार श्रोताओ, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01:30 हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं मन चाहे गीत कार्यक्रम में। कहीं धूप खिली है श्रोताओं, कहीं बादलों के डेरे हैं। दोपहर के इस समय कहीं आराम और गपशप, तो कहीं कुछ कामकाज की मसरूफियत। तो चलिए आपके बीच विविध भारती के गीतों का ये अफसाना जरा हम भी छेड़ देते हैं। देखिए, मन चाहे गीत कार्यक्रम का ये गीत कहीं आपकी पसंद का गीत तो नहीं? सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

शोर मचाए शोर इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर का गाया गीत और संगीत थे रविंद्र जैन के। और इस गीत की पसंद भेजी हमारे पास रायगढ़ खालापुर रायगढ़ से श्री प्रमोद पाटिल, श्रीमती ज्योति पाटिल, योगेश कुलकर्णी, शर्मिला महात्री इसी गीत को सुनना चाहते थे, अदालत दास वैष्णव, मानस शांति वैष्णव, ऋचा गायत्री वैष्णव, भीष्म दास मानिकपुरी, ये फरमाइश थी छत्तीसगढ़ से, और तिलहारा महाराष्ट्र से उर्वी बेन, नायाब बेन, प्रीति बेन, मनाली निधि सेजल की ये फरमाइश थी।

गीत आप सुन रहे थे आन मिलो सजना फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज़ थी, आनंद बख्शी के बोल थे। इस गीत की पसंद भेजी राजस्थान से पूजा खटक, विमला देवी, शंभू दयाल खटक ने, और उल्लासनगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर की ये फरमाइश थी।

खिलौना फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। श्रोता, इस गीत की पसंद की कवाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव, मालोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल धर्मपाल, वीर सिंह लाती, लखविंदर संधु, महावीर संधु, गुरचरण ग्रोवर, रमेश मिगलानी। इसी गीत को सुनना चाह बीकानेर से कैलाश सोनी, गोविंदा सोनी, उत्तम सोनी और कोटा से शिखा, सीमा, प्रीति, सपना, संध्या मानस और शालू ठाकुर की फरमाइश थी।

0: सात अजूबे इस दुनिया में आठ में अपनी जोड़ी,
1: सात अजूबे इस दुनिया में आठ में अपनी जोड़ी, पर थोड़े से भाई टूटे ना

सुख सुख के हम साथी हैं ये वादा है, अपना जो कुछ है सब आधा आधा है। दुख सुख के हम साथी हैं ये वादा है, अपना जो कुछ है सब आधा आधा है। जो ये सच्चा वादा है तो सब कुछ आधा आधा है तो, अरे रानी माँ से मुझको

धर्मवीर फिल्म का गीत था मोहम्मद रफ़ी मुकेश की आवाज़ों में, आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। श्रोताओं, इस गीत को पसंद किया भाटापारा से, छत्तीसगढ़ भाटापारा से गनुलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी कुमार, गणेश राम, छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, भिलाई छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिम्पल देवांगन और शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक़ार, नसीन परवीन, रोजी बिट्टू, साजदा, हिना कौसर, सितारा और इस गीत की फरमाइश की जालंधर से रमाकांत शर्मा, मीनाक्षी शर्मा, रवि शर्मा और अक्षय शर्मा ने। विविध भारती का ये कार्यक्रम है मन चाहे गीत।

लता मंगेशकर का गाया फिल्म आंखें का गीत आप सुन रहे थे। साहिल लुधियानवी के बोल थे, रवि का संगीत है श्रोताओं ये, और इस गीत को पसंद किया इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धामतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश साहू, शुभम और सावित्री साहू।

इस गीत को सुनना चाहा शीशगढ़ बरेली से इलियास इदरीसी, नईम इदरीसी, नदीम इदरीसी ने, और इस गीत के लिए सादुल शहल से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान की फरमाइश आई। और इसी गीत को सुनना चाहते थे बदायूं उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसरूर खान, सरफराज, विकास सक्सेना और चंचला कश्यप। मन चाहे गीत, ये कार्यक्रम श्रोताओं अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को और भेजते रहिए पत्र मन चाहे गीत कार्यक्रम के लिए।

0: ये है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग। श्रोताओं, आज आपको सुनवा रहे हैं नाटक मृत्युहीन प्राण का दूसरा और अंतिम भाग। आलोक भट्टाचार्य के मूल बांग्ला नाटक का ये हिंदी अनुवाद है। हिंदी अनुवादक हैं दीप नारायण मिठोलिया, निर्देशक सुदर्शन कुमार।
2: जुडू।
3: यस सर।
2: बेंजामिन कुछ बता रहा है? कुछ मुंह खोला उसने?
3: नहीं सर, कुछ नहीं बोलता।
2: व्हाट, 48 घंटे हो गए और अभी तक मुंह से बोल नहीं फूटे? दरअसल बात यह है जुडू कि तुम्हारे शरीर में काले लोगों का खून भी तो कुछ कुछ मौजूद है, तभी उनके मामलों में रहम की मात्रा जरा कुछ बढ़ सी जाती है।
3: क्या क्या कह रहे हैं आप सर?
2: मैं ये कह रहा हूं कि जरा सख्ती के साथ दवा का डोज तो अपने आप मुंह से बोल फूट पड़ेंगे।
3: मिस्टर थॉमसन, मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं, पर क्या करूं, कमबख्त के मुंह से एक बात तक नहीं निकल रही। बात के बदले कस के सिर्फ खून निकल रहा है।
2: खून के साथ साथ बातें भी निकालनी होगी, इट्स मस्ट। कमिश्नर साहब का हुक्म है। चलो एक बार मैं खुद ही कोशिश कर देखता हूं।
3: यस सर।

0: हेलो मिस्टर मोलाइज, अपने बारे में नए सिरे से कुछ सोचा आपने?
1: अपने बारे में बाला, मुझे सोचने की क्या जरूरत है? इसकी जिम्मेदारी तो आप लोगों ने खुद ही ले रखी है।
0: फिलिस सिलेपी का खून आपने नहीं किया?
1: नहीं।
0: तो फिर किसने, किन लोगों ने किया, इसे तो आप जरूर जानते होंगे।
1: नहीं जानता।
2: हमारे पास ऐसी खबर है कि उस निरीह भले आदमी फिलिप्स को जान से मार डालने के लिए आप लोगों की एक गुप्त मीटिंग हुई थी।
1: एक काले आदमी के लिए अचानक आप लोगों को इतना दर्द क्यों होने लगा है?
0: ये देश की कानून व्यवस्था का प्रश्न है।
1: कानून व्यवस्था या आप लोगों के प्यारे जासूस की मौत हो गई है, इसलिए बहुत तकलीफ हो रही है आपको मिस्टर थॉमसन।
0: जासूस समझकर उसे बुलेट से छलनी बना डाला। वाह, बहुत खूब।
1: बुलेट चलाना तो आप लोगों का खानदानी पेशा है, मेरा हाथ कलम से सिर्फ कविताएं लिखता है।
0: कविताएं लिखता है? क्यों? यू ब्लैकी रास्कल, उस साथ को हम जॉन्सबर्ग ट्रेजरी लूटते वक्त इसी हाथ में राइफल थी ना? क्यों थी ना?
1: नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं थी। अगर अगर किसी दिन रही तो समझिएगा, उसे ऐसा करने के लिए आप लोगों ने ही मजबूर किया है।
0: हम लोगों ने?
1: हाँ, आप लोग।

0: ना ना जिनी, तुम मुझे खाने के लिए जिद ना करो बेटी। कोई भी खाना मेरे गले से नीचे नहीं उतरेगा।
1: जरा सा दूध तो पी लो मौसी।
0: ना ना, इस वक्त कुछ नहीं लूंगी बेटी।
1: तुम बैठो, मैं गरम करके लाती हूँ।
0: जेल में बेंच को शायद खाने को भी नहीं देते होंगे। अब फिर कौन आ गया? क्या बात है, आप लोग फिर आ गए?
2: सॉरी मिसेस मोरेस, आपको थोड़ी सी तकलीफ देने आ गए।
0: आखिर आप लोग चाहते क्या हैं?
2: बस दो एक बातें पूछना चाहते हैं आपसे।
0: उसके पहले मेहरबानी करके बताएंगे कि किस जुर्म में मेरे बच्चे को जेल के सीखचों के अंदर बंद किया गया है?
2: फिलिप सिलेपी की हत्या के जुर्म में।
0: झूठ है, बिल्कुल झूठ है। मेरे बच्चे ने हत्या नहीं की है। क्यों झूठ मूठ मेरे बेटे को खून के इल्जाम में फंसा रहे हो?
2: हम लोग तो कानून के गुलाम हैं मिसेस मोलेस।
0: आप लोगों के कानून तो हमारे जैसे काले लोगों की गर्दन दबोचने के लिए है।
2: ओह नो नो नो नो, ये आप लोगों की गलत धारणा है।
0: अच्छा साहब बहादुर, क्या आप लोग कोई ऐसी दवा नहीं दे सकते जिसे बदन पर लगाने से हमारे शरीर के रंग भी सफेद हो जाएं?
2: सुन रहे हो जुडू, मिसेस मोलेस क्या फरमा रही हैं?
3: हाँ सर, सुन रहा हूँ।
4: अच्छा मान लीजिए, अगर आप लोग सफेद चमड़ी के होते तो क्या करते मिसेस मोलेस?
0: तो हमारे लिए कांटे वाले तारों से घिरा बांडुस्तान बनाने की जरूरत नहीं पड़ती।
3: सर लगता है बेंजामिन ने अपनी माँ को भी तैयार कर पक्का कर दिया है।
2: अरे वो तो करेगा ही जुडू, नहीं तो खून खराबा करके आने के बाद हाथ धोने के लिए पानी कौन देगा?
0: आप लोगों को जो कुछ भी कहना है कह डालिए और मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए, मुझे खुशी होगी।
2: यस यस यस, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आपका बेटा बेंजामिन किन लोगों के साथ मिलता जुलता था?
0: बहुत के साथ, उसके बहुत से दोस्त हैं।
2: बहुत से दोस्तों को तो हम पहचानते हैं, खास दोस्तों में जैसे समझिए जेने रोयांगा, रॉबिन खाबड़कर, मिस्टर।
0: नहीं, ये सारे नाम मैंने पहले कभी नहीं सुने।
5: मौसी दूध ठंडा हो रहा है, ले आऊं?
0: नहीं, मैं ही आऊंगी थोड़ी देर बाद।
2: ये कौन बोले? किसी

0: किसी की आवाज लगती है?
1: मेरे एक पड़ोसी दोस्त की लड़की है।
0: जरा उसे बुलाइए।
1: क्यों, उसकी क्या जरूरत है?
0: घर में आपके सिवा और तो किसी को देखा नहीं इसके पहले, इसीलिए आप जरा, हमें ये भी देखने की जरूरत है कि इस घर में किस किस का आना जाना है।
2: ये लीजिए, मैं आ गई, देखिए।
0: क्या नाम है तुम्हारा?
2: जिनी पैराम्बा।
0: क्या करती हो?
2: कॉलेज में पढ़ती हूँ।
3: सर, लगता है इसे कहीं देखा है।
2: कहीं सड़क, बाजार या कॉलेज जाते समय देख लिया होगा।
3: ऐसे नहीं, कहीं और देखा है।
0: यस, याद आया, अभी कुछ दिनों पहले एक सुनसान पार्क में तुम्हारे साथ हमारी मतलब हम दोनों के साथ तुम्हारी मुलाकात हुई थी ना?
3: हाँ, वहाँ चुपके चुपके प्रेम करने या किसी से मिलने गई थी। क्यों, गई थी ना?
0: क्वाइट इंटरेस्टिंग अफेयर। अच्छा मिस पैराम्बा, तुम जरूर बेंजामिन को चाहती हो? अच्छा, तो फिर उसकी कविताओं को भी जरूर चाहती होंगी?
2: जी हाँ, चाहती हूँ, बहुत तेरे चाहते हैं।
0: पर क्या तुम ये जानती हो कि बेंजामिन जिस हाथ से कविताएं लिखता है उसी हाथ से आदमी का खून भी करता है?
2: जी नहीं, मुझे यकीन नहीं है इस बात पर।
0: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, मुझे भी यकीन नहीं है, पर कुछ चारा भी तो नहीं है, इसीलिए मुझे जरूरत है तुम्हारी।
2: जी, मेरी? अब इसे बीच में क्यों घसीट रहे हैं अफसर साहब?
0: प्लीज मिसेस मुलायम, जिनी तुम ये जरूर चाहोगे कि बेंजामिन बेगुनाह साबित होकर फिर तुम्हारे बीच वापस आ जाए?
2: आप कहना क्या चाहते हैं?
0: मैं ये कह रहा हूं, मतलब ये चाहता हूं सिर्फ थोड़ी सी मदद जो तुम्हारे बेंजामिन को तुम्हारे पास ही वापस ला देगी। आओ, मेरे साथ आओ।
2: नहीं, वो क्यों जाएगी?
0: ओहो, डरने की कोई बात नहीं है।
2: मैं कहां जाऊंगी?
3: मेरे साथ?
2: नहीं
3: सर, मैं ये कह रहा
0: हूं। जिडू, फिर वही बात। आओ चलो जिनी, डरने की कोई बात नहीं है, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ बेंजामिन का रिश्ता किस ढंग का है। हाँ, देखो ना, अब इस बात को उसकी माँ के सामने तो पूछा नहीं जा सकता ना।
2: नहीं, वो नहीं जाएगी। जिनी, तुम अंदर जाओ।
0: नहीं, वो मेरे साथ ही जाएगी।
3: सर, मैं कह रहा था कि
0: जिडू, जबरदस्ती पकड़ के ले चलो इसे।
2: नहीं,
0: इट्स माय ऑर्डर।
2: मौसी, नहीं, छोड़ दो मुझे।

0: लगता है बाहर से मेरा तन, सुलग रहा अंदर से मेरा मन। हर अश्वेत माओ के घर घर में, धरती के कण कण में, अंबर में उमड़ पड़ा लाशों का एक जुलूस, काले ताबूतों का एक जुलूस। रंग भेद के कुत्सित लिए विचार मिले श्वेत गिद्धों को नए शिकार। माओ के कोमल अंशों को नोच, खून सनी है इनकी पैनी चोंच। इन सफेद गिद्धों के दल छाए, मन की आग ज्वाला सी बन जाए। फैले चारों ओर आग की ज्वाल, अंगारे बन जाए जयमाल। लगातार 2 सालों से चल रहा है शारीरिक उत्पीड़न, और जारी है स्वीकारोक्ति वसूलने की असफल चेष्टाएं। लेकिन
1: क्या सोच रहे हैं मिस्टर मोलेस?
0: कौन? नहीं, कुछ नहीं सोच रहा हूं।
1: जरूर कुछ ना कुछ आप सोच रहे हैं।
0: ये भी क्या आप लोगों का ऑर्डर है? जो कुछ ना कुछ मुझे सोचना ही रहना होगा। नहीं, कुछ नहीं सोच रहा हूं मैं। आप लोग जा सकते हैं।
1: किसी के बारे में सोचना क्या आपको अच्छा नहीं लगता मिस्टर मुलाज? मान लीजिए चीनी के बारे में। कितने दिन हो गए चीनी से आपकी मुलाकात नहीं हुई?
0: चीनी?
1: जी हाँ, चीनी आपकी महबूबा, जिसे लेकर ना जाने कितनी कविताएं आपकी कलम से अब तक निकल चुकी हैं।
0: तो अब आप लोग मेरे व्यक्तिगत जीवन की खोज लेने आए हैं।
1: मिस्टर मोलाज, आज मैंने ये तय किया है कि आपको कोई जबरदस्त सरप्राइज दूं।
0: सरप्राइज मुझे?
1: हाँ। गार्ड, 4 नंबर सेल का दरवाजा खोल दो।

0: जिनी?
1: पेच।
0: ये जिनी को यहाँ क्यों लाए हैं? क्यों लाए हैं जिनी को यहाँ?
1: तुम कैसे हो पेच?
0: जिनी, जिनी, मैं जिंदा हूँ जिनी। तुम कैसी हो? माँ कैसी है? अच्छे हैं ना सब?
1: हाँ, पेच। ये लोग मुझे पकड़ कर ले आए हैं।
0: पेच। इसे, इसे यहाँ क्यों लाए हैं? कहिए। ये क्यों लाए हैं इसे यहां?
2: फिलिप सिलेपी का खून किसने किया?
0: नहीं मालूम।
2: आपने नहीं किया, इसका मुझे यकीन है। लेकिन दल में कौन कौन थे
3: ये तो आपको निश्चित रूप से मालूम है। बस
2: उतना ही बता दीजिए।
1: बेंच, बेंच, मुझे नहीं मालूम ये लोग मुझे क्यों पकड़ कर लाए हैं। मुझे डर लग रहा है।
0: जिनी,
2: कल कोर्ट में फाइनल हियरिंग है, वहां कोर्ट के सामने कहने से भी चलेगा।
1: बेंच, ओ बेंच,
0: जिनी,
1: मुझे बचाओ।
0: जिनी,
1: बेंच,
0: जिनी,
1: बेंच, मुझे तुम बचाओ।
0: मिस्टर थॉमसन, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिनी क्या क्या कसूर है, उसे यहाँ क्यों लेकर आए हैं, उसे क्यों लेकर आए हैं, बताइए।
2: सिर्फ लेकर ही नहीं आए हैं,
3: अभी तो आपकी आंखों के सामने बहुत कुछ होने वाला है।
2: पता डालिए, फिलिप्स की हत्या के समय वहां कौन कौन थे? कहिए, बोलिए।
0: मिस्टर थॉमसन, मेरे कमजोर पक्ष पर चोट कर आप लोग सोचते हैं कि मैं नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप लोगों की जो मर्जी हो आप कर सकते हैं। थॉमसन, जितना भी सताना हो मुझे सताइए, पर उसे छोड़ दीजिए।
2: सॉरी मिस्टर मनाइन, आपकी वजह से,
0: सिर्फ
2: आपकी की वजह से
0: मिस्टर थॉमसन,
2: आपकी फूल जैसी जिनी को कीड़ों ने काट खाया।
0: मिस्टर थॉमसन, मिस्टर थॉमसन, थॉमसन, थॉमसन, थॉमसन, थॉमसन, थॉमसन, थॉमसन, थॉमसन, थॉमसन, थॉमसन, थॉमसन, थॉमसन, थॉमसन, थॉमसन, थॉमसन, थॉमसन, थॉमसन, थॉमसन, थॉमसन, थॉमसन, थॉमसन, थॉमसन, थॉमसन, थॉमसन, थॉमसन, थॉमसन, थॉमसन, थॉमसन, थॉमसन, थॉमसन, थॉमसन, थॉमसन, थॉमसन, थॉमसन, थॉमसन, थॉमसन, थॉमसन, थॉमसन, थॉमसन, थॉमसन, थॉमसन, थॉमसन, थॉमसन, थॉमसन, थॉमसन, थॉमसन, थॉमसन, थॉमसन, थॉमसन, थॉमसन, थॉमसन, थॉमसन, थॉमसन, थॉमसन,

pessoal!

0: taking as well all other aspects into account, Benjamin Molloy has been proved guilty in the eye of law.
1: दक्षिण अफ्रीका की प्रिटोरिया सरकार द्वारा गठित सर्वोच्च अदालत ने अश्वेत तरुण कवि बेंजामिन मोलेयेस को जघन्य नरहत्या, राष्ट्रद्रोहिता एवं सरकार विरोधी षड्यंत्रों में लिप्त रहने के अपराध में प्राण दंड से दंडित किया है।

0: मिस्टर मोलेज, मुझे सख्त अफसोस है।
1: कौन? मिस्टर थॉमसन।
0: इस वक्त बीती बातें याद कर आपको पछतावा नहीं हो रहा मिस्टर मोलेज?
1: नहीं, कोई पछतावा नहीं, वजह भी तो नहीं, बल्कि मुझे गर्व है।
0: अब भी वक्त है मिस्टर मोलेज, अपनी राय बदलकर अगर आप सच्चाई बता दें तो।
1: धन्यवाद, आपको और कोई जरूरी बात न करनी हो तो आप जा सकते।

0: दंडित कवि की मां ने प्रिटोरिया की बोखा सरकार से पुत्र की प्राण भिक्षा के लिए आवेदन किया था, लेकिन सरकार ने उस आवेदन को ठुकरा दिया है। दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत कवि बेंजामिन मोरेस को दी गई मौत की सजा को माफ कर देने के लिए विश्व के अनेक राष्ट्र नेताओं ने प्रिटोरिया सरकार से निवेदन किया है।
1: वो इंसान नहीं है जिनी, वो इंसान नहीं है। आवेदन निवेदन किसी का भी कोई मूल्य नहीं है उनके पास, कोई चीज उन्हें नहीं छूती।
2: इतने बड़े झूठ को उन्होंने जबरदस्ती अपनी मनमानी जालसाजियों से सच साबित कर दिया। इस तरह का जुल्म नहीं चल सकता।
1: उनके लिए सच नाम की कोई चीज नहीं है बेटी, ना इंसाफी और झूठ। उनके कानून है, उनके औजार है।
2: ओ बेंज, तुम्हारी कविताएं कब सच होंगी बेंज? कब कब?

मुझे गर्व है अपने ऊपर, मेरा जीवन गौरव मंडित, जितना जीवन मैंने भोगा मुझे गर्व है उस जीवन पर। मातृभूमि के मस्तक पर लो मैंने अपने क्रुद्ध रक्त से तिलक किया है, बंदी गृह की लौह सलाखा मेरे प्राणों को बंधन में रख सकने में कभी नहीं हो सकती सक्षम। निकल पड़ूंगा मुक्ति राह पर, मुझे मिला था मात्र एक जीवन जो मैंने सौंप दिया है स्वतंत्रता को।

अक्टूबर 1985 को सारे विश्व के जनमत को ठुकराकर जोहान्सबर्ग के केंद्रीय कारागार में स्वाधीनता संग्राम के सिपाही रंगभेद नीति का विरोध करने वाले कवि बेंजामिन मोलहेस के प्राण दंड के आदेश को क्रियान्वित किया गया।

0: हमें अफसोस है मिसेस मुलाय, सब कुछ खत्म हो चुका है। बेंजामिन अब सिर्फ एक लाश भर है।
1: खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, तो फिर उसका निस्तेज ठंडा शरीर ही मुझे दे दो। मैं केवल एक बार देखूंगी उसे, सिर्फ एक बार देखूंगी।
0: सचमुच मैं बहुत दुखी। लाश देने का ऑर्डर नहीं
1: है। ऑर्डर नहीं है साहब, मैं उसकी माँ हूँ। माँ, वो मेरा खून है। उसे 28 सालों तक मैंने पाला पोसा है। मैं माँ होकर अपने मरे बेटे का मुंह तक नहीं देख सकती साहब।
0: Really? We are sorry.
1: बेंजी, अपनी कविता की कॉपियां भी तू ले जा जा बेंजी, ये सारी कॉपियां ले जा जा, ये ले सब ले जा।
2: मृत्यु का मतलब नहीं है अंत सृजन का, मृत्यु में है सार्थकता सार जीवन का। मृत्यु देती प्रेरणा प्रतिकार करने की, जुल्म का अन्याय का संहार करने की।

मृत्युहीन प्राण। अभी आप इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग सुन रहे थे। आलोक भट्टाचार्य के मूल बांग्ला नाटक का ये हिंदी अनुवाद था। हिंदी अनुवादक थे दीप नारायण मिठोलिया, निर्देशक सुदर्शन कुमार। केंद्रीय नाटक एकांश दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले।

0: श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले हमारे साथ बांट रही हैं उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत की पहली कड़ी।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान, और उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक बहुत खास शख्सियत मौजूद हैं, जो एक और बहुत ही खास शख्सियत को याद करने के लिए हमारे इस कार्यक्रम में आई हैं। कार्यक्रम का नाम ही उजाले उनकी यादों के है, तो आज का कार्यक्रम है उजाले सदाशिव अमरापुरकर की यादों के, और ये उजाले बांटने के लिए मौजूद हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। बहुत बहुत स्वागत रीमा जी।
2: धन्यवाद धन्यवाद।
1: पिताजी की यादों के उजाले बांटने के लिए आकाशवाणी के स्टूडियोज में, विविध भारती के स्टूडियोज में आते हुए जो पहली फीलिंग है वो क्या है?
2: आकाशवाणी या विविध भारती के स्टूडियोज में मैं जब भी आती हूँ तो थोड़ा मैं अपने बचपन में चली जाती हूँ, बिकॉज हमारी पूरी फैमिली का आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो, विविध भारती, इससे बहुत ही करीबी संबंध रहा है। तो मेरी माँ भी रेडियो आर्टिस्ट थी, अलग अलग ड्रामास, एड फिल्म्स में उन्होंने काम किया था ऑल इंडिया रेडियो के लिए। मैं खुद बचपन में मराठी दो शोज कर चुकी हूँ जिसमें मैं वॉइस आर्टिस्ट थी, और सबसे ज़रूरी बात कि 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है जो उन्होंने आकाशवाणी के साथ की है,
1: परभणी में।
2: तो वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था, और वहां पर वो लगभग 2 महीने टिके, तो ये टिके ही कहना सही होगा, बिकॉज उनकी वो पर्सनालिटी नहीं थी कि वो जॉब करे, क्योंकि शादी हो चुकी थी, 2 बच्चियां थी, तो इसलिए पिताजी को दिखाने के लिए कि नहीं नहीं मैं कमा रहा हूँ, उन्होंने वो जॉब की थी।
1: ये सोचकर कितना मजेदार लगता है कि वो मराठी में बोलते होंगे आकाशवाणी का ये परभणी केंद्र है।
2: और उनकी आवाज तो वैसे भी उनकी स्ट्रेंथ थी, आज भी है, मतलब आज भी जब भी हम आवाज सुनते हैं तो फैमिली मेंबर्स की तो हमारी आंखें भर आती है। उस वक्त तो उनकी ताकत बहुत ही ज्यादा थी उस आवाज की, तो उनके बहुत सारे फैंस हो गए थे, और फिर ऐसे हुआ कि एक पॉइंट पे मम्मी को ऐसे लगने लगा कि अरे अभी बहुत ही ज्यादा फैंस हो रहे हैं इनके, विशेषतः लड़कियां, तो ये अगर छोड़ रहे हैं जॉब तो ठीक ही बात है।
1: वाह वाह वाह। ये रेडियो में आना उनका कैसे हुआ था, इसकी कोई कहानी हो तो वो?
2: हाँ, तो उसमें बात ऐसी थी कि जैसा मैंने कहा कि पापा बिल्कुल ही पूरी तरह से वो थिएटर, रंगमंच, नाटक, इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व थे, उनके दिमाग में 2400 घंटे वही चलता था, और माँ की और उनकी जो मुलाकात हुई थी वो भी नाटक के दौरान ही हुई थी। मतलब मजे वाली बात यह है कि वो बचपन से, जैसे हम लोग कहते हैं किंडरगार्टन से, वैसे बचपन से वो एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में पढ़े, लेकिन कॉलेज में, क्योंकि माँ बहुत होशियार स्कॉलर, उस जमाने में जो कंसेप्ट थी स्कॉलर की, वैसी स्कॉलर थी, तो इसलिए उसने साइंस लिया हुआ था और पापा ने आर्ट्स लिया था, तो कॉलेज में भी वो एक ही कॉलेज में थे। तो जब थिएटर करना शुरू किया तब उन्हें लगा नहीं नहीं नहीं, ये सुनंदा ने करना चाहिए हमारे साथ काम, तो इसलिए उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी, और फिर वो थिएटर में मम्मी जो घुस गई, तो फिर साइंस वायंस सब पीछे रह गया, थिएटर ही चलता रहा।

0: लकीली पापा के जो पिताजी थे वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे अहमदनगर में, जो आज अहिल्यानगर कहा जाता है जिसे। तो उनका ऐसा कुछ नहीं था कि बाबा तू पहले नौकरी कर, पैसे कमा, फिर तेरी शादी करता हूँ। उन्हें पता चला कि ये सुनंदा और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो इनकी शादी करा देना सबसे अच्छी बात। आई थिंक पापा 23-24 साल के थे और मम्मी 23 साल की थी, उन दोनों में 6 महीने का ही अंतर है उम्र में। तो तब उनकी शादी हुई, 73 में शादी हुई, और 74 में मेरी सबसे बड़ी बहन जो है उसका जन्म हुआ। मम्मी उस वक्त LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है वहां पर जॉब करती थी, तो मम्मी ने पापा को ये सहूलियत दे रखी थी कि
1: मन का जियो,
0: हाँ तुम जियो, मैं संभाल लूंगी, मैं कमा रही हूँ, अपने बच्चों को हमें कुछ कम नहीं पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा, दादाजी और दादी और चाचा जी ये सब लोग थे, तो फैमिली में वैसे पैसे की उनका ये कहना नहीं था कि तुम घर में पैसे दो, पर उनका ये कहना था कि तुम खुद के लिए कुछ कमाओ। तो और मम्मी वो कर रही थी, तो इसलिए दादाजी का भी था कि चलो ठीक है, अभी अगर तुम्हारी बीवी कमा रही है तो तुम्हें जो करना है वो तुम करो। तो पहली बेटी हुई 74 में, 76 फरवरी में दूसरी बेटी हुई। तब फिर मम्मी को ऐसे लगने लगा, अरे अभी अपनी 2 बच्चियां हो गई, अभी भी ये कुछ नहीं कमा रहे हैं। तो रीजनल न्यूज़पेपर्स में उस समय एड आती थी, हाँ, तो फिर वो मम्मी ने वो एड देखी। और पापा का ऐसा था, वो पूना मुंबई थिएटर के चक्कर में चक्कर काट रहे थे, अहमदनगर पूना मुंबई इस तरह से उनका चल रहा था। तो उन्होंने मम्मी ने वो एड देखी न्यूज़पेपर में, और मम्मी ने बिना पापा को बताए वहां पे अप्लाई कर दिया।
1: वेरी गुड,
0: हाँ। और फिर जब ऑडिशन थी तब मम्मी ने उन्हें बताया SSC ऑडिशन है, आपको जाना है और करके आना है। वो समय ऐसा था कि कमाने वाली माँ थी और घर पे दिखाना बहुत जरूरी था कि भाई मेरी फैमिली बढ़ रही है, मैं भी कमा रहा हूँ इस तरह से। सो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, चलो अब तुम कह रही हो तो मैं जाता हूँ और ऑडिशन देता हूँ। और ऑफ कोर्स उनकी आवाज ऐसी थी कि सिलेक्ट होना ही होना था। तो वो सिलेक्ट हो गए और उन्होंने जॉब करी, 2 महीना उन्होंने जॉब करी वहां पर। और 1.5 महीने बाद उन्होंने मम्मी को खत लिखा कि मैं अगर ये करता रहा तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा जिंदगी में। तो फिर मम्मी ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, तो तुम छोड़ दो। तो उन्होंने छोड़ दिया, पर उन्होंने वो जॉब इस तरह से करी थी, तो आकाशवाणी ने उन्हें काफी हाथ दिया था उस वक्त जब उन्हें वो जरूरत थी पुश की, एक जो साइकोलॉजिकल पुश हमें लगता है मानसिक रूप से कि हमें अभी मुझे कुछ अचीव नहीं कर पा रहा हूं मैं, उस वक्त जो एक अचीवमेंट की फीलिंग है वो आकाशवाणी ने दी हुई है। और मेरे ख्याल से हमें भी, विशेषता मेरे बारे में मैं कहूंगी कि जब आप ऐसे घर में पैदा होते हो और बड़े होते हो कि जहां पर सुपर अचीवर्स है आपके आजू बाजू सारे, तब एक होता है कि मुझ में क्या है, शायद मुझ में कुछ नहीं है, ऐसी एक फीलिंग जो घर का सबसे छोटा सदस्य होता है उसमें आ सकती है, आने की आशंका होती है। तब मुझे आकाशवाणी ने हाथ दिया और मुझे ये समझ में आया उस वक्त कि नहीं, मेरे पास मेरी आवाज है और मैं बहुत अच्छे से खुद को एक्सप्रेस कर सकती हूँ, कंडक्ट कर सकती हूँ। आई थिंक आकाशवाणी हमारे परिवार के लिए वैसा एक जरिया रहा है कि जिन्होंने हमें, जब हमें कॉन्फिडेंस नहीं था या जब हम एकदम लो जिसे फेज कहते हैं वैसे इसमें रहे हैं, उस वक्त हाथ दिया है, जिसे मराठी में हम उभारी कहते हैं, उभारी दी है,
1: उबारा है।
0: हाँ, तो आकाशवाणी से हमारा रिलेशनशिप, हमारी फैमिली का इस तरह से।
1: कितनी सुनहरी यादें आपने शेयर की सदाशिव जी के आकाशवाणी से जुड़ने की। यहाँ सुनंदा जी का जिक्र आता है और नाटकों का भी जिक्र आता है कि जहाँ वो उनके रास्ते एक साथ हुए,
0: राइट।
1: कोई पॉइंट ऑफ टाइम था जहाँ ये एहसास हुआ कि उन्हें अब सुनंदा जी के साथ जीवन बिताना है, वो कोई एक मोमेंट था जहाँ ये हुआ?
0: पापा उनके नाम ही की तरह सदाशिव भोला साम जिसे कहते हैं, वैसी पर्सनालिटी के थे, स्पेशली जब वो कॉलेज में थे तब। तो उनके दिमाग में एक ही पागलपन चढ़ा हुआ था, एक ही भूत सवार था, वो था नाटक, और उन्हें वही करना था। ठीक है, नाटक करते वक्त घंटों तक आप साथ में रिहर्सल्स करते हैं, सब करते हैं, साथ में वक्त बिताते हैं, तो जो दोस्ती है वो दोस्ती से थोड़ी ज्यादा है, इतना उन्हें शायद समझ में आया होगा। पर उसके ऊपर कुछ करे, उसके ऊपर कुछ एक्ट करे, ये उनकी पर्सनालिटी नहीं थी।
1: पहला कदम उनकी तरफ से नहीं आना था,
0: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मुझे याद है आज भी, मतलब ये हमारे घर में हमारे बहुत ही आर्ग्यूमेंट का विषय हुआ करता था जब पापा थे तब, कि पहले प्रपोज किसने किया लेकिन जब अभी मम्मी ने किताब लिखी है उसमें उसने क्लियरली लिखा हुआ है कि मम्मी ने ही उन्हें एक चिट्ठी लिख के कहा था कि ऐसा ऐसा मेरी फीलिंग्स है और क्या आपको भी यही लगता है, और उन्हें वो चिट्ठी दी थी उन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा था कि देखो अपने दोस्तों के सामने मत खोलना ये चिट्ठी, घर जाके अकेले में खोलना, बिकॉज पापा ऐसे थे वो हमेशा दोस्तों से घिरे रहते थे, तो वो दोस्तों के सामने खोलेंगे जोर से पढ़ेंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा, इतना डर मम्मी को लग रहा था। तो इस तरह से तो वो पॉइंट था जब मम्मी, क्योंकि मम्मी के घर पे उनके पिताजी की मौत बहुत जल्दी हो चुकी थी जब वो 10-11 साल की थी, तो उस वजह से उनके घर पे वो और उनकी माँ इतने ही थे, उनकी बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी। तो अभी इसके लिए भी लड़का देखो ये करो, जब वो शुरू हुआ उनके घर पे जब वो ग्रेजुएशन के आसपास थी, तब उन्होंने कहा अभी ये मेरा ये जो पगला आदमी है उसे ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम में जो है वो प्यार है, उसे ये समझाना अभी जरूरी हो गया है। और फिर उन्होंने वो चिट्ठी लिखी थी, तब फिर उनका आगे जाके इस तरह से हुआ कि फिर मम्मी ने ही थोड़ा थोड़ा, बिकॉज उस वक्त मेरे दादाजी जो थे वो बहुत कर्मठ स्वभाव के थे, तो किसी लड़की का घर पे आना, लड़कियों से दोस्ती, ये सब इम्पॉसिबल था उस समय और अहमदनगर जैसे छोटे से शहर में। पर लकीली मम्मी के पिताजी और वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, तो जब मम्मी घर जाने लगी दादी से, फिर पापा की बुआ भी उन्हीं के साथ रहती थी, उनसे इस तरह से जब बातें होना शुरू हुई, तब उन्हें समझ में आया कि कुछ तो मामला है। और फिर उन्होंने वन फाइन डे मम्मी को बुलाया घर पे और कहा कि देखो तुम्हें ये सब दिख रहा होगा कि इतना बड़ा घर है, ये है वो है, पर ये सब मैं धर्मादाय कर दूंगा, बेटों को कुछ नहीं दूंगा मैं। हाँ, तो अगर तुम ये सोचती हो कि इस वजह से है तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तब मम्मी का इतना क्लियर था कि उसने कहा ठीक है मैं जॉब कर रही हूँ, मैं चला लूंगी घर, नो प्रॉब्लम। तो बहुत ही ज्यादा क्लियर इन दोनों के थॉट्स थे। और जैसा मैंने कहा कि पापा को ये शब्दों में पेश करना कि जो हमें हुआ है वो प्यार है, ये पॉसिबल नहीं था जो मम्मी कर पाई, लेकिन जिस वक्त वो कमिटमेंट हो गई उस वक्त वो कंप्लीट कमिटमेंट हुई।
1: वाह वाह।
0: तो वो हालांकि वो उन्होंने शब्दों में नहीं कहा होगा, पर वो उनके एंड तक, मतलब ये उन्हें प्यार हुआ जब वो 21 साल के थे, 64 के होने तक वो प्यार बिल्कुल वैसा ही रहा, और ये हम सब लोगों ने देखा हुआ है। और उन दोनों ने वही सीख हमें भी दी है कि अगर कमिटमेंट कर रहे हो तो पूरी तरह से करो, फिर वो अपने काम की तरफ हो या इंसानों की तरफ हो।
1: क्या तो, प्यारी बात है। यहाँ एक बहुत क्यूट बात सामने आई है और वो है एक प्रेम कहानी जो चिट्ठी के जरिए आगे बढ़ती है। हम जिस समय और समाज में हैं वहां ये यकीन करना अब जरा मुश्किल है कि चिट्ठियों के जरिए भी प्यार का इजहार हो सकता है और वो चिट्ठी बचाकर जीवन भर रखी जा सकती है। मुझे लगता है ये जगह है गाने की, और वो गाना बहुत ही मुफीद है जो चिट्ठी के जरिए प्यार के इजहार की बात करता है। फिल्म है संगम।

0: यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात जो पीछे छूट गई है उसका सिरा पकड़ के आगे बढ़ते हैं। मम्मी की एक किताब है पिताजी के नाम पर, और आपने कहा कि उसमें ये जिक्र आता है कि उन्होंने सबसे पहले इजहार किया, उस किताब का नाम बताइए और वो नाम क्यों रखा गया है, इसकी कहानी बताइए।
1: हाँ, ओके। तो वो किताब अगर आप देखेंगे तो उसका नाम है खुलभर दुधाची कहानी। खुलभर माने छोटी सी कटोरी में जितना दूध बैठता है उसको खुलभर कहते हैं।
0: ओके।
1: मतलब उतना सा, खुलभर दुधाची कहानी, सो उतने से दूध की ये कहानी।
0: हाँ, सवाल आता है कि ये आखिर क्या है,
1: क्या है, राइट। सो श्रावण महीना जब होता था तो अहमदनगर में, या आज भी छोटे गांव में होता होगा, हर मंगलवार को और शुक्रवार को उपवास होता है, पूजा होती है, कथा कथन होता है। तो उस वक्त जो फोक टेल्स जिसे हम कहते हैं, वैसी कथाएं कही जाती थी। तो उस समय सुनी हुई ये कहानी है। ये कहानी है कि एक छोटा सा गांव है, राज्य है, और वहाँ पर अकाल पड़ा हुआ है, बारिश हुई ही नहीं है, ठीक है, सूखा पड़ा हुआ है। और वहाँ पर वो राजा हैरान हो जाता है कि अब मैं क्या करूँ, और इसलिए वो पंडितों को बुलाता है और कहता है अब मैं क्या करूँ। वो पंडित उसे कहते हैं कि जो ये महादेव का मंदिर है आपके गांव में, तो उसका जो गर्भगृह है उसे पूरी तरह से दूध से आप भर दो, तो शंकर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और फिर आपको बारिश हो जाएगी। तो राजा फरमान निकालते हैं कि हर एक के घर में कल जितना भी दूध होगा, जितना भी जिसके पास होगा, वो सब लाके गर्भगृह में अर्पण कर दे। तो ये सब होता है, तो फिर भी वो गर्भगृह भरता ही नहीं है, इतना दूध आता है, लंबी लंबी लाइनों में लोग आके दूध डालते हैं वहां, फिर भी नहीं होता है। और जो सिपाही होते हैं वो घर घर जाकर आपके पास और दूध है, और दूध है, और दूध है, ऐसा करते हैं। तब वो एक घर में जाते हैं, वहां पे एक बुढ़िया होती है, तो वो कहते हैं आप गए थे दूध डालने, बोले नहीं नहीं मैं अभी जा ही रही हूँ। तो उसने एक कटोरी में, छोटी सी कटोरी में दूध लिया हुआ है, और उसने क्या किया है कि उसके घर पे जो उसके बच्चे बच्चियां पोते सब लोग हैं, उनका खाना पीना सब कुछ होने के बाद जितना दूध बचा वो लिया और वो गई और महादेव जी के ऊपर उसने चढ़ा दिया। और जिस क्षण उसने वो चढ़ाया, वो गर्भगृह पूरा दूध से भर गया। तो कहानी का मतलब ये है कि आपके जो कर्तव्य है वो आप पूरा कीजिए, और फिर जो बचा कुचा है वो आप भगवान को दीजिए, भगवान को चलता है।
0: वाह वाह वाह।
1: सो बेसिकली आप अपनी जो पूरी जिंदगी है वो अपने कर्तव्यों के प्रति और अपनी जो जिम्मेदारियां है उनके प्रति आप अर्पण कीजिए, इस तरह की वो कहानी है। और थोड़ी बहुत मम्मी की जो कहानी है, जीवन की कथा अगर हम सोचे तो वो उसी तरह से गई है। वो भी एक गजब की अदाकारा है, बहुत अच्छा गाती है, लिखती है, बट जब उनकी शादी हुई और उन्हें ये समझ में आया कि नहीं, ये जो मेरा सदाशिव है, ये जो मेरा महादेव है, इसे जो करना है, इसमें ज्यादा पोटेंशियल है, इसने ये करना चाहिए, तब उन्होंने अपना खुद का सब पीछे छोड़कर एक बहुत ही कर्मठ घर में जाकर बच्चियों को पाला, और दादा दादी मतलब उनके सास ससुर, बुआ पापा की बुआ थी जो सन्यासिन थी, उनका सब कुछ करते हुए, ये सब कर्तव्य करते करते करते फिर अल्टीमेटली जब उनकी बेटी की शादी हुई, आते ये जो 53, फिर उन्होंने अपना लिखाई का काम और ये सब शुरू किया। और अभी ये है कि पिछले 20 सालों में उनकी लगभग 30 किताबें आ चुकी हैं। तो इसलिए वो हमें लगा कि ये जो कहानी है ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है उस बुक के लिए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी की कहानी उस तरह से रही है। और ऑफ कोर्स भगवान, मतलब उन्होंने पापा को जिस तरह से प्यार दिया, जिस तरह से विश्वास दिया, वैसा ही पापा ने उन्हें रेसिप्रोकेट किया। पापा का भी उन पर ऐसा ही विश्वास था, जो अंधविश्वास हम कह सकते हैं थोड़ा सा था, पर वो था। और उस वजह से आई थिंक जो आज भी हमारा घर फूला फला है और इतना अच्छा है, वो उस विश्वास की वजह से है।
0: बहुत ही सुंदर घटना है ये जो किताब के नाम की घटना है, और जिस तरह से आपने उसको विस्तार दिया है ये बहुत ही मार्मिक है। अब चूंकि अमूमन जो रवायती इंटरव्यूज होते हैं वो ये कि बचपन से शुरू करेंगे, लेकिन हम कहीं से शुरू हुए हैं तो वो बचपन की बातें हम आगे कहीं जाके करेंगे, क्योंकि बातचीत के अंदर घटनाएं तो आगे निकल कर आएंगी। उनकी बातें सुनंदा जी और सदाशिव जी के रिश्ते की चल रही हैं और कैसे उनकी डोर आपस में जुड़ती है चल रही। पहले उन नाटकों का जिक्र करते हैं जो उन्होंने उस दौरान साथ में किए थे, उनसे जुड़ी कुछ कहानियां हो तो वो बताएं।
1: राइट, सो उनसे जुड़ी तो काफी कहानियां हैं जो हम सुनते सुनते बचपन से आ रहे हैं
0: जी।
1: पर उन्होंने एक जो प्ले उन्होंने किया था वो था बंडू बेबी अणि बुरखा। तो उस वक्त इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशंस होती थी, ये जो प्ले था इसमें बंडू और बेबी तो पति पत्नी का कैरेक्टर था, ये इन दोनों ने किया था। और उसी नाटक के दौरान आई थिंक दे रियलाइज्ड कि दे आर इन लव विद ईच अदर। ये एक नाटक के बहुत सारे किस्से हैं, मतलब मम्मी क्योंकि जैसे मैंने कहा कि स्कॉलर इसकी थी तो जब भी उनकी एग्जाम आती थी तो वो अवेलेबल नहीं होती थी प्ले के लिए। प्ले तो करना था, अभी कॉम्पिटिशन है तो जाना तो पड़ेगा। तो उस वक्त मम्मी तो नहीं है, मम्मी ने कहा मैं तो नहीं, मेरी एग्जाम है अभी, मैं पढ़ाई करने वाली हूँ, आपको जो करना है करो। तो उन्होंने किसी और को वहां पर कास्ट किया और फिर मम्मी ने कहा अगर ये लड़की कास्टिंग है तो आप नहीं करोगे ये रोल तो इसलिए फिर पापा का रोल भी किसी और ने वहां पर किया।
0: बहुत सही,
1: ठीक है,
0: बहुत ही सही।
1: तो और वो जो था वो उसका शो था संगमनेर नाम के एक छोटे से गांव में, अहमदनगर के पास ही है, वहां पर उसका शो था और उस समय लाइट चली गई तो माइक नहीं थे तो फिर आवाज ही नहीं आ रही थी। अच्छा, मम्मी हालांकि नाटक में नहीं थी पर क्योंकि वो यूथ फेस्टिवल जैसा माहौल था तो और किसी कॉम्पिटिशन में वो थी तो इसलिए वो वहां गई हुई थी। तो फिर वहां पर और वो जो नई लड़की और लड़का था उनके आवाज पहुंच ही नहीं रहे थे ऑडियंस तक। तो फिर इन दोनों ने वो डायलॉग्स पीछे से जोर से वो बोले और उन लोगों ने लिपसिंग किए स्टेज के ऊपर।
0: वाह वाह, क्या प्रयोग।
1: इस तरह से वो हुआ। तो ये जो एक किस्सा है ये बहुत ही अच्छा है। उसके बाद कभी भी मम्मी ने पापा से ये नहीं कहा कि मैं नहीं हूँ प्ले के लिए जो भी डेट चाहिए जब भी चाहिए वो अवेलेबल होती थी।
0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर। एक पूरा दौर था जब सदाशिव जी लगातार नाटक कर रहे थे और भ्रमण कर रहे थे क्योंकि नाटकों के लिए तो अलग अलग शहरों में गांव में जाना होता है। उस दौर के कोई बहुत ही प्रसिद्ध नाटक हैं जिन्होंने उन्हें एक मुकम्मल पहचान दी थी, उनकी बात करते हैं।
1: उसमें मैं सबसे पहले पापा कलाकार तो थे, एक्टर तो थे ही, पर वो निर्देशन में भी बहुत रस रखते थे, वो निर्देशक भी थे। राइट, सो अगर उनके नाटकों की बात कही जाए तो उन्होंने कुछ नाटक ऐसे किए थे जैसे छू मंतर करके एक नाटक था, फिर बखरे का राजा जी ये एक प्ले था, छिन्न करके

0: एक नाटक था, कन्यादान एक नाटक था, फिर हैंड्स अप, ये जो पांच छह नाटक है, काही स्वप्ने विकायची ये भी एक था, पर काही स्वप्ने विकायची थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल था और कंपटीशन वाला प्ले था, बाकी के ये जो सारे जो मैंने नाम लिए ये कमर्शियल नाटक थे। इसके अलावा भी बहुत सारा काम किया हुआ है, पर ये नाटक मैं स्पेशल इसलिए समझती हूँ बिकॉज ये हर एक नाटक ने कुछ इंडस्ट्री को भी दिया हुआ है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो उनका अलग अलग जिक्र मैं चाहता हूँ, जैसे छिन्न का बहुत जिक्र मिलता है, हैंड्स अप का जिक्र मिलता है, काही स्वप्ने विकायची अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ उसका भी खूब जिक्र मिलता है, अलग अलग मानदंडों पर इन्होंने कुछ
0: किया है
1: कामयाबी।
0: काही स्वप्ने विकायची ये जो प्ले था ये बहुत पहले कुछ जो प्लेस पापा ने किए थे उसमें से था, तो उसमें वो एक रिटायर्ड टीचर का रोल करते थे जो 83 इयर्स ओल्ड होते हैं, और उस वक्त पापा की उम्र थी 23-24 ज्यादा। उस समय उन्होंने काफी सारे उस पे INT और ये जो सारी कॉम्पिटिशन्स होती थी उसमें काफी सारे अवार्ड्स जीते थे उस एक रोल के लिए। उन्हें लोग कास्टिंग के लिए बुलाते थे कि आप आओ हमारे यहाँ पे प्ले में, और वो हर बार जाते थे तो लोगों को लगता था ये कौन आ गया, वो तो एक बुढ़ा आदमी है जो वो रोल कर रहा है, यू नो उम्र में ज्यादा है, आपने कैसे किया, आप तो नहीं हो सकते। ऐसे काफी सारी अपॉर्चुनिटीज उस समय पापा की आंखें चली गई बिकॉज लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये वही इंसान है जिसने 83 साल के एक वृद्ध इंसान का रोल किया हुआ है, और वो इतना बखूबी निभाया उन्होंने कि लोग ये सोच ही नहीं सकते थे कि ये एक 24-25 साल का युवक है। तो वो एक प्ले इसलिए बहुत ज्यादा फेमस था क्योंकि पापा की जो एक्टिंग की रेंज थी वो एक प्ले में काफी सारी एक्सपोज हुई थी। इसके अलावा छिन्न जो प्ले है वो विजय तेंदुलकर साहब ने लिखा हुआ था, और उसकी खासियत ये है कि वो एक प्ले है जिसमें सबसे पहले और मेरे ख्याल से आखिरी बार वही एक प्ले है जिसमें स्मिता पाटिल जी ने कमर्शियल थिएटर किया था,
1: और वो पापा, भी पापा ने के निर्देशन में
0: तो इसलिए वो एक बहुत ही खास प्ले रहा है, और लोगों ने जो सराहा है उस प्ले को क्योंकि उसका विषय है और जो सब था, एक तो तेंदुलकर साहब की जो लिखाई है वो एक तो पाथ ब्रेकिंग ग्राउंड ब्रेकिंग होती है, और उसके ऊपर पापा का डायरेक्शन, ये बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट दोनों चीजें हुई थी। उसी की स्टाइल में दूसरा एक नाटक कहा जाए तो वो है कन्यादान। कन्यादान में डॉक्टर श्रीराम लागू, नीना कुलकर्णी, आशालता वाबगावकर, ये बहुत बड़े बड़े नाम थे उस समय, और उनके साथ अगेन पापा ने निर्देशित भी किया था, उन्होंने एक्टिंग भी की थी उसमें। छिन्न और कन्यादान इन्होंने पापा को एक एक्सपेरिमेंटल थिएटर डायरेक्टर के तौर से एस्टेब्लिश किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। और उस समय थिएटर जिस तरह से देखा जाता था, लोग जिस तरह से देखते थे, वैसा मुझे नहीं लगता आज तक वो सुवर्ण काल फिर से आया है।
1: हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब टेलीविजन उस तरह से
0: नहीं आया था,
1: और महाराष्ट्र में खास तौर पर थिएटर की सशक्त परंपरा थी, और कामयाबी के झंडे गाड़ते थे प्लेज, और उनकी दास्तानें आज तक कही जाती है।
0: करेक्ट करेक्ट। तो ये प्ले था, उसके बाद पापा ने INT के लिए ही एक प्ले किया था, बखरे का राजा जी। तो बखरे का राजा जी ये जो प्ले था इसमें नीना कुलकर्णी और दिलीप कुलकर्णी जो उनके हस्बैंड थे वो भी एक बहुत उम्दा कलाकार थे, उन दोनों को लेकर ये प्ले बनाया गया था, पर उस समय वो प्ले चला नहीं, कमर्शियली इट वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल, और INT को काफी लॉसेस झेलने पड़े थे बिकॉज इट वाज अ हिस्टोरिकल सेट, सब वैसे लगा था और ये सब हुआ था। तो उसके बाद पापा ने डिसाइड किया अब मैं जो करूंगा वो मैं कमर्शियली वायबल करूंगा, पैसे कमाने चाहिए लोगों, मतलब प्रोड्यूसर्स ने, राइट। तो इसलिए उन्होंने दो प्लेज किए उसके बाद डेफिनेटली, जिनके बारे में मैं बात करना चाहूंगी। एक प्ले तो था छू मंतर जो उन्होंने डायरेक्ट किया था, और इस प्ले की मजे वाली बात यह है कि उस वक्त लक्ष्मीकांत बेरडे को फर्स्ट टाइम कमर्शियल प्ले में पापा ने कास्ट किया था।
1: ओ हो, गजब।
0: इट वाज हिज लॉन्च। तो और वो प्ले बहुत चला बिकॉज इट वॉज अ आउट एंड आउट कॉमेडी और बहुत मजा आया लोगों को. और एक लक्ष्मीकांत बेर्डे जैसा कलाकार आया, पापा थे लक्ष्मीकांत बेर्डे थे, तो इट वॉज पिक्ड अप लाइक हाउ. उसके बाद हैंड्स अप किया था पापा ने, जिसमें वो थे, भक्ति बर्वे थी, ऐसे 5-6 बहुत ही स्ट्रांग आर्टिस्ट उसमें थे. और पापा ने निर्देशित भी किया था वो प्ले, और दैट वॉज अ हिस्टोरिकल प्ले. मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि बहुत बार

0: उन्होंने उनकी कास्टिंग रामा शेट्टी के लिए की।
1: वाह।
0: ओके और फिर उसके बाद तो इट इज जैसे हम कहते हैं कि हिस्ट्री है। उसके बाद फिर पापा एक राष्ट्रीय स्तर पर एक कलाकार का नाम उन्हें मिल गया और वो काफी सारी फिल्मों में ही बिजी हो गए। तो थिएटर वो करते रहे पर बहुत थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा बाद में वो करते रहे।
1: बिल्कुल।
0: तो इसलिए वो हैंड्स अप ये एक जो प्ले है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंड्स अप का ये एक मजेदार किस्सा है। उस वक्त क्या होता था, जैसे आपने कहा कि वो समय ऐसा था जब मराठी में नाटक की परंपरा बहुत बहुत स्ट्रांग थी। तो दिन में दो दो तीन तीन शो लगते थे एक प्ले के। तो और उस वक्त जैसे अब है मेट्रो पकड़ लिया चले गए, उबर पकड़ ली चले गए, वैसा नहीं था। आर्टिस्ट को खुद ही जुगाड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। पापा के पास उस वक्त एक टू व्हीलर थी। तो शिवाजी मंदिर में प्ले खत्म हुआ, वहां से उन्हें ठाणा पहुंचना था।
1: ओहो।
0: और ये मैं उस समय की बात कर रही हूँ जब वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे ये सब इतना अच्छा नहीं था बम्बई में।
1: हाँ जी।
0: तो पापा स्कूटर पे जाते थे तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कपड़े नहीं बदले और वो वैसे ही निकल गए और एक भी सिग्नल पर वो नहीं रुके। और हर बार जब उन्हें ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो बिकॉज वो उस कॉस्ट्यूम में थे उनको लगता था अरे ये तो कोई इंस्पेक्टर है कुछ अर्जेंट काम होगा तो सॉरी सॉरी सर करके। तो ये कलाकार इस तरह से होते हैं, औलिया जिसे हम कहते हैं कि वो उन्हें सिर्फ वही दिखता है कि मेरा कर्टन और आधे घंटे में खुलने वाला है, मुझे वहां पहुंचना है बस। और
1: क्या प्यारी बात है। वाह। यहाँ भी गाने की जगह बन रही है और मुझे लगता है कि ये करते हैं कि मम्मी की पसंद का कोई गाना लगाते हैं यहाँ पर।
0: मम्मी की पसंद का ये जो गाना है मेरे महबूब में क्या नहीं।
1: वाह वाह वाह क्या बात क्या बात क्या बात। सुनते हैं ये गाना।

0: कर और तेंदुलकर साहब का नाम वहां बार बार आता है। बहुत करीबी रिश्ता सदाशिव जी का तेंदुलकर जी से रहा है, उससे जुड़ी कुछ घटनाएं जिनकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ आपसे सुनना चाहता हूँ।
1: ओके तेंदुलकर जी एक हम कह सकते हैं विद्यापीठ थे,
0: बिल्कुल
1: किसी भी घटना की तरफ देखने का उनका जो दृष्टिकोण होता था वो बहुत अलग होता था। रोज की घटनाओं की तरफ भी वो जिस तरह से देखते थे और बात करते थे ये बहुत अलग था। तो उनकी और पापा की जो पहचान थी वो प्ले की वजह से हुई थी, पर सुहास अउचट करके बहुत बड़े आर्टिस्ट है, पेंटर है, उन्होंने उनको मिलाया था। एक ये अहमदनगर से आया हुआ लड़का है जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, ये जब तेंदुलकर साहब को समझ में आया तो उन्होंने उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट किया। और सपोर्ट किया मतलब मैं इस तरह से कहती हूँ कि देर वर डेज, ऐसे दिन थे जब दो दो तीन तीन दिन तक पापा उनके घर पर ही रहते थे।
0: गजब।
1: हाँ, और उस वक्त तेंदुलकर साहब जो काम कर रहे थे, इतना बड़ा काम कर रहे थे, तो वो प्रोसेस का एक भाग होना एक युवा के लिए जो अहमदनगर जैसे छोटे से गांव से आया है ये बहुत बड़ी बात थी। तो पापा हमेशा कहते हैं कि मैं तो उनके सामने जाता था तो जैसे ब्लॉटिंग पेपर होता है जो इंक ब्लॉट करता है, वैसे मैं, मराठी में हम उसे टिप कागद कहते हैं, तो वैसे मैं टिप कागद हो जाता था, जो भी मिले वो एब्जॉर्ब करो।
0: वाह वाह,
1: बस उतना ही। तो ये स्थान तेंदुलकर साहब का पापा की जिंदगी में था। दूसरा, जब 82 में मम्मी को बॉम्बे में ट्रांसफर मिली तब कैसे तैसे करके पापा ने एक किराए का घर लिया था, क्योंकि हम तीनों बच्चियां, मेरी दादी और मम्मी और वो, ऐसे हम सब लोग रहने वाले थे।
0: किस इलाके में?
1: अंधेरी में ही लिया था उन्होंने, बिकॉज उस वक्त बैंड्रा बहुत महंगा था, तो ऐसे उन्होंने अंधेरी में लिया था। तो एक किराए पे छोटा सा घर लिया था, और दो साल बाद वो घर मालक ने कहा कि भाई अभी नहीं, अभी आप छोड़ दो, मुझे ये घर बेचना है। तो रातों रात एक हफ्ते के अंदर बंबई जैसे शहर में एक घर ढूंढ पाना ये बहुत ही डिफिकल्ट है। तो पापा गए तेंदुलकर साहब के पास, बिकॉज जैसे मैंने कहा ही वॉज अ गाइड, ही वॉज अ फ्रेंड, ही वॉज अ फिलोसोफर। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा हुआ है, नो प्रॉब्लम। उन्होंने सीएम साहब के लिए एक लेटर लिखा कि ये ऐसा ऐसा कलाकार है, बहुत अच्छा कलाकार है, और इसे बंबई में रहने के लिए घर नहीं है, तो आप इसकी कुछ मदद कर दीजिए। तेंदुलकर साहब का लिखा हुआ खत लेकर पापा पहुंच गए। उस समय चव्हाण साहब सीएम थे, उन्होंने वो लेटर देखा और एक मिनट के अंदर उन्हें लेटर दिया। उस समय ऐसा था कि 2% कोटा हुआ करता था कलाकारों के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए। तो उसमें से जोगेश्वरी में जो नई एक कॉलोनी बन रही थी वैशाली नगर, वहां पर हमें एक 1 BHK का फ्लैट म्हाड़ा का मिला। तो वो लेटर तेंदुलकर साहब ने दिया और इट वाज अमेजिंग। जैसा पापा हमेशा कहते थे कि आपकी जिंदगी के हर मुकाम पर आपको ऐसे इंसान मिलते हैं जो या तो आपको कुछ नया दिखाते हैं या आपको आगे पुश करते हैं। तो मेरे ख्याल से और पापा से जो बातें होती थी उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि तेंदुलकर साहब ऐसे थे जो पापा के लिए ना ही, मतलब एक नया तरीका दुनिया को देखने का तो था ही जो उन्होंने सिखाया उन्हें, पर उन्होंने उन्हें बहुत बड़ा पुश भी दिया। तो बंबई में घर अपना खुद का लेना हो या उन्हें पहली फिल्म मिलनी हो, पहली फिल्म हालांकि पापा की 22 जून 1897 थी,
0: उसकी बात आगे करेंगे,
1: उसकी आगे करेंगे, पर बड़ी फिल्म जिसमें हालांकि 3.5 सीन थे पर वो पूरी फिल्म पे छा गए थे,
0: बिल्कुल
1: रामा शेट्टी छा गया था कैरेक्टर, तो वो फिल्म हो, तो आई थिंक तेंदुलकर साहब का अनन्य साधारण महत्व हमारी पूरी फैमिली की लाइफ में है।
0: बिल्कुल। एक घटना है जिसमें उन्होंने पूछा था तेंदुलकर से कि आपने अर्धसत्य में मुझे रोल क्यों दिलवाया, उसका जिक्र करें।
1: उसका ये तो एक्चुअली तेंदुलकर साहब ही बेस्ट बता पाएंगे, पर उन्होंने जब पूछा तब मेरे ख्याल से जो मुझे याद है कि तेंदुलकर साहब ने कहा था कि देखो कलाकार कलाकार होता है, क्योंकि उस समय भी और आज भी हमारी इंडस्ट्री में काफी कैंप्स बने हुए हैं।
0: बिल्कुल।
1: सो पूना से आने वाले लोगों का एक कैंप है, बॉम्बे से लोगों का एक कैंप है, अभी तो बॉलीवुड में भी यूपी से आने वाले लोगों का एक कैंप है, इस तरह से, और वो कालातीत है, वो चलता ही रहता है, हर जगह वो होता है। तो उन्होंने कहा था कि कलाकार जो होता है ना उसकी जात और उसका ये सिर्फ एक होता है धर्म, वो है कला। और तुम जिस तरह से खुद को सैक्रिफाइस कर रहे हो, वैसे मुझे लगता है तुम ये रोल ठीक से कर पाओगे। हालांकि उस वक्त बात ये हुई थी कि पापा को लग रहा था कि हीरो का रोल उन्हें मिलेगा, जो कि ओमपुरी जी को मिला था, क्योंकि इंस्पेक्टर हैंड्सअप में उन्होंने इंस्पेक्टर किया था, और ये रामा शेट्टी का रोल इन्हें ऑफर किया गया था। तो उन्होंने तेंदुलकर साहब से पूछा था, पर मुझे तो लगा था मैं इंस्पेक्टर का रोल करूंगा। तो उन्होंने कहा था, तुम बस जो तुम्हें काम दिया है वो ठीक से करो, तुम विलन हो या हीरो हो, दैट डज नॉट मैटर, ये फिल्म के आखिर में तुम याद रहने वाले हो लोगों को, ये भूलना मत। तो वो पापा ने सुनी उनकी बात और ही इज वेयर ही रीच्ड।
0: बिल्कुल बिल्कुल, एक कलाकार की ताकत ये है कि कितना छोटा रोल क्यों ना हो, अपनी मौजूदगी, अपनी आमद को कैसे साबित किया जा सकता है। उसकी मिसाल है अर्धसत्य। हिंदी सिनेमा के इतिहास में ऐसे बहुत कम मिसालें मिलती हैं जहां कुछ दृश्यों में अभिनेता ने अपनी वो छाप छोड़ी के इतिहास रच दिया। लेकिन ये उनकी पहली फिल्म नहीं थी,
1: नहीं थी।
0: तो पहली फिल्म जो नचिकेत और जयू वाली थी, वो कैसे मिली, उसका जिक्र कीजिए।
1: वो कैसे मिली, इसके बारे में मैं ज्यादा बता नहीं पाऊंगी
0: जी।
1: लेकिन पूना में उस वक्त पापा रहते थे ज्यादा करके, और वहां पर वो प्ले वगैरह कर रहे थे, तो उन्होंने कास्टिंग में उन्हें तिलक का रोल दिया गया था, और पापा उस वक्त एकदम पतले दुबले पतले से ऐसे थे। तो जयू और नचिकेत पटवर्धन उनके बहुत अच्छे दोस्त थे उस वक्त। तो आप करोगे, उन्होंने कहा हाँ मैं करूँगा, नो प्रॉब्लम, चलो। मतलब पापा कहते थे कि अभी दुकान ही खोलकर बैठे हैं, तो जो आएगा वो करना तो पड़ेगा, इस तरह से उन्होंने वो किया था। तो लेकिन उन्होंने वो रोल किया उस वक्त, जयू और नचिकेत पटवर्धन ये अभी तो बहुत ही सीनियर और रिस्पेक्टेड ये है, पर वो भी काफी यंग थे उस वक्त। और फिल्म में मुझे याद है पापा ने बाद में जब राज से स्वराज तक में लोकमान्य तिलक का रोल किया, तब उन्होंने बहुत ज्यादा उस पर मेहनत की थी, क्योंकि उन्हें समझ में आया था कि ये जो फिल्म हमने की है जयू नचिकेत के साथ, इसमें हालांकि मैं तिलक लग रहा हूँ फीचर्स के तौर पर, लेकिन जो उसका क्रिटिक आया था वो ऐसा आया था कि मैं मराठी में ये वाक्य कहती हूँ, या ज्यादा लोकमान्य टिलक हा रामोशा सरखा दिसतो। रामोशी मतलब जो क्लीनर्स होते हैं ना ऑफिसेज में या घर में, उन्हें रामोशी कहा जाता था एक जमाने में, अब तो नहीं कहते कोई, तो इस तरह से वो दिखता है। तो इसलिए उसके बाद जब पापा ने राज से स्वराज तक की, जब उन्हें फिर से एक बार तिलक करने का मौका मिला, लोकमान्य तिलक का किरदार निभाने का मौका मिला, तब पापा ने बाकायदा 6-8 महीने, उस समय ये नहीं होता था, लेकिन जिम जाकर, बिकॉज लोकमान्य तिलक की जो बॉडी थी, ही वॉज वेरी वेल बिल्ट, तो इस तरह से दिखने के लिए पापा ने वो सारे एफर्ट्स लेकर वो काम किया हुआ था। ये फिल्म के बारे में जब भी पापा से बात होती थी तो वो कहते थे मैं तो थ्रिल था कि मुझे फिल्म में लिया है, बिकॉज उनकी उम्र भी काफी कम थी उस वक्त। और क्या करना चाहिए जब आप कोई इस तरह का किरदार, जो इतना बड़ा है, इतनी बड़ी इंसान का किरदार जब आप निभा रहे हो, तब क्या करना चाहिए इसके लिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये दोनों चीजें उन्हें उस फिल्म से समझ में आई। आज भी जब वो दूरदर्शन पे वो फिल्म लगती है तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच।
0: बिल्कुल, राज से स्वराज का जो जिक्र आया है, मैंने उनके इंटरव्यूज में देखा और पढ़ा है कि बहुत ही प्रिय रहा है ये रोल उनके लिए, और जब भी कभी उनसे ये पूछा गया है कि आपके फेवरेट रोल्स कौन से रहे, तो उन्होंने बड़ी फिल्मों और वो तमाम मशहूर रोल्स को छोड़ के इसका जिक्र किया। वो क्यों है?
1: क्योंकि जैसा मैंने कहा कि राज से स्वराज तक में जो लोकमान्य तिलक की भूमिका निभाना है, ये एक उनके लिए एक लर्निंग कर्व रहा है। 28 जून 1897 ये फिल्म में जयू नचिकेत पटवर्धन उन्हें डायरेक्ट किया था लोकमान्य तिलक की भूमिका में, और यहाँ पर अमाल अलाना जी ने उन्हें डायरेक्ट किया था राज से स्वराज तक में। अमाल अलाना अगेन एक बहुत बड़ा नाम है, अलकाजी सर जिन्होंने NSD जैसी संस्था को रूप लाया, उनकी बेटी अमाल अलाना, उन्होंने ये दिग्दर्शित किया हुआ था। और उस समय ना पापा और 10-15 साल आगे आ चुके थे करियर में एज एन एक्टर ऑल्सो, ही वॉज अ स्टार एट दैट टाइम जब राज से स्वराज तक हुई थी। तो जब उन्हें फिर से चांस मिला तो उन्होंने सोचा कि अब आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ,
0: जो कसर रह गई,
1: जो कसर रह गई है वो पूरी करनी है, अभी मैं रामोशी नहीं दिखूंगा।
0: yes.
1: मुझे याद है उन्होंने वो विग से लेके, बिकॉज उनकी कंटिन्यूटी काफी सारी फिल्म्स की होती थी। अब जैसे होता है कि

0: कलाकार एक समय पे एक ही फिल्म करते हैं तो इसलिए वो पूरी तरह से वैसे ड्रेस्ड अप होते हैं, वैसे नहीं हुआ करता था उस वक्त। दो दिन इस फिल्म का शूटिंग हुआ, फिर दो दिन उस फिल्म का हुआ, इस तरह से चलता था। तो किसी भी रोल के लिए पूरी तरह से बाल निकालना या ये पॉसिबल नहीं था। पर मुझे याद है कि जब उन्हें ब्रेक था एक महीने का, तब पापा ने जो कोर्ट सीन्स थे स्पेशली उसके लिए ये निकाले थे, बिकॉज अमाल जी ने उन्हें कहा था कि देखो कोर्ट सीन में जब लाइटिंग होती है तो विग बहुत बुरा दिखता है। एग्जैक्टली तो इसलिए उन्होंने उस समय बाल निकाल कर, और बाकी की फिल्मों में अगर आप देखोगे उस समय में जो शूटिंग हुए थे उसमें पापा ने विग्स पहने हुए हैं।
1: ओके, क्योंकि कोई रास्ता नहीं था।
0: एग्जैक्टली, पर उस समय कलाकार ऐसा नहीं करते थे, वो मैं बताना चाहती हूँ। तो ही वॉज वेरी वेरी इन्वॉल्व्ड इन द स्क्रिप्ट, और उस समय तक पापा का जो रीडिंग था, पापा ही वॉज अ वोरेशियस रीडर, मतलब रोज वो 2-3 घंटा तो पढ़ना तो बनता ही है, किताबें पढ़ना उनका एक जरिया था। तो तब तक उन्होंने जो इतिहास के बारे में पढ़ा था, आई थिंक उसकी वजह से भी उन्हें वो करते वक्त, वो एक्टिंग करते वक्त बहुत मजा आया था। इसीलिए शायद वो उनका फेवरेट ये है कि मैं अभी प्रूव करूंगा। और वैसा लोकमान्य तिलक बाद में, हालांकि बहुत लोगों ने कोशिश की, पर जैसा राष्ट्रीय स्वराज तक में है वैसा लोकमान्य तिलक आज तक हो नहीं पाया है, वैसा लिखा भी नहीं गया है उस तरह से। तो आई थिंक इसलिए वो उनका बहुत फेवरेट कैरेक्टर रहा है।
1: दिलचस्प बात यह है कि इस सीरीज को आज भी लोग खोज खोज कर देखते हैं। हाँ? और दूरदर्शन के आर्काइव्स पर ये अभी भी देखा जा सकता है, खोज कर अगर आप देखें। हाँ? तो वेव्स पर शायद ये अभी भी उपलब्ध है।
0: तो वेव्स पर ही डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी है जो श्याम बाबू ने डायरेक्ट की थी।
1: उसका जिक्र करने से पहले यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बताइए कि कौन सा गाना यहाँ आना चाहिए।
0: यहाँ पर तो मुझे ऐसे लगता है कि एक गाना है जो बिल्कुल पापा की जो सोच थी उनके समाज के प्रति, उनके देश के प्रति, वो बहुत ही सुंदर तरीके से जिस गाने में आई है वो था राजी फिल्म का, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू।
1: क्या बात है, गुलजार साहब के बोल।
0: ऑफ कोर्स
1: सुनते हैं ये गाना।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की पहली कड़ी। बातचीत की श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

26 घंटे की खास खबरें। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज प्रदेश के सभी जिलों में सामूहिक योग कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों ने बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई और मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संस्थापक और प्रथम सरसंघ संचालक डॉ. केशव हेडगेवार की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र के लिए समर्पित डॉ. हेडगेवार का अनुशासित जीवन युवाओं के अनंत काल तक के लिए प्रेरित करता रहेगा। प्रदेश सरकार की भावांतर भुगतान योजना को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। और मौसम विभाग ने आज इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत प्रदेश के 37 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके दैनिक कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूँ आपकी दोस्त शिवानी राठौर। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। साथ ही हमारा दूसरा विषय रहेगा ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। दोस्तों, क्रम वार्ता में हम आपको वार्ता सुनवाएंगे, विषय योग का जीवन में महत्व। वार्ताकार है रघुवीर पाराशर। साथियों, क्रम जीवन आलोक में हमारा चर्चा का विषय रहेगा आपका महाविद्यालय आपके कैरियर का प्रथम चरण है। और साथियों, आपका मनोरंजन कराएंगे कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। दोस्तों, योग भारत की प्राचीन संस्कृति और परंपरा की अमूल्य देन है। यह केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि शरीर मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने की एक वैज्ञानिक पद्धति है। आधुनिक जीवन की भागदौड़, तनाव और अनियमित दिनचर्या के कारण लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। ऐसे समय में योग स्वस्थ और सुखी जीवन का प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। दोस्तों, योग के महत्व को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत भारत के प्रयासों से हुई। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, इसलिए इस दिन का विशेष महत्व माना गया है। दोस्तों, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून सन 2015 को पूरे विश्व में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। साथियों, योग मनुष्य के शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नियमित योग अभ्यास से शरीर स्वस्थ लचीला और ऊर्जावान बनता है। यह अनेक बीमारियों मोटापा मधुमेह उच्च रक्तचाप और हृदय संबंधी अनेक रोगों को नियंत्रित करने में सहायक होता है। साथियों, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी योग अत्यंत लाभकारी है। यह तनाव चिंता और अवसाद को कम करता है तथा मन को शांति प्रदान करता है। ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से व्यक्ति अपनी एकाग्रता और आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए योग विशेष रूप से उपयोगी है क्योंकि इससे स्मरण शक्ति और अध्ययन क्षमता में वृद्धि होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश विदेश

में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। साथियों, महाविद्यालय, विद्यालयों, सरकारी संस्थानों और सामाजिक संगठनों के द्वारा सामूहिक योगाभ्यास कराया जाता है। योग विशेषज्ञ लोगों को विभिन्न आसनों और उनके लाभों की जानकारी देते हैं। इस दिन योग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए रैलियां, संगोष्ठियां और प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों, योग दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना और योग के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। आज विश्व के अनेक देशों में लाखों लोग योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं। वर्तमान समय में तकनीकी विकास के कारण लोगों की शारीरिक गतिविधियां कम हो गई हैं। लंबे समय तक मोबाइल, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा रहा है। ऐसी परिस्थिति में योग एक सरल, सस्ता और प्रभावी उपाय है। इसे किसी विशेष उपकरण या स्थान की आवश्यकता नहीं होती। नियमित रूप से कुछ समय योग को देने से व्यक्ति स्वस्थ और सकारात्मक जीवन जी सकता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस केवल एक उत्सव नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन का संदेश है। योग मानवता को शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। यह भारत की महान सांस्कृतिक विरासत है जिसे आज पूरा विश्व अपना रहा है। हमें भी योग को अपने दैनिक जीवन में अपनाकर स्वस्थ, संतुलित और सुखमय जीवन की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। यही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का वास्तविक उद्देश्य और महत्व है। साथियों, अब समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का। आइए सुनते हैं ये प्यारा

दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम आज की बात में हमारे अगले विषय ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है पर चर्चा करने का। साथियों, ऊर्जा मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। आज के आधुनिक युग में बिजली, पेट्रोल, डीजल, गैस और अन्य ऊर्जा स्रोतों के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। उद्योगों, कृषि, परिवहन, शिक्षा और घरेलू कार्यों सहित लगभग हर क्षेत्र में ऊर्जा पर निर्भरता है। बढ़ती जनसंख्या और तकनीकी विकास के कारण ऊर्जा की मांग निरंतर बढ़ रही है। ऐसे में ऊर्जा संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। इसलिए कहा जाता है ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। साथियों, ऊर्जा किसी भी देश के विकास की आधारशिला होती है। बिजली से घरों में प्रकाश होता है, मशीनें चलती हैं और उद्योगों का संचालन होता है। यदि ऊर्जा उपलब्ध न हो तो विकास की गति रुक सकती है। इसलिए ऊर्जा का संरक्षण आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है। साथियों, ऊर्जा का उत्पादन करने में भारी लागत और संसाधनों की आवश्यकता होती है। नए बिजली संयंत्र स्थापित करना, ईंधन जुटाना और वितरण व्यवस्था विकसित करना एक लंबी और महंगी प्रक्रिया है। यदि हम ऊर्जा की अनावश्यक खपत को कम करें तो उतनी ही ऊर्जा बचाई जा सकती है जितनी नई ऊर्जा के उत्पादन से प्राप्त होती है। इस प्रकार बचाई गई ऊर्जा भी उत्पादन के समान ही महत्वपूर्ण होती है। ऊर्जा संरक्षण से आर्थिक बचत होती है, पर्यावरण सुरक्षित रहता है और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग संभव होता है। यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में भी सहायक होता है। साथियों, ऊर्जा संरक्षण के लिए हमें अपने दैनिक जीवन में कुछ सरल आदतें अपनानी चाहिए, जैसे आवश्यकता न होने पर बिजली के उपकरणों को बंद कर देना चाहिए, एलईडी बल्बों का उपयोग करना चाहिए क्योंकि वे कम बिजली खर्च देते हैं, दिन में प्राकृतिक प्रकाश का अधिक उपयोग करना चाहिए, वाहनों का अनावश्यक उपयोग कम करके सार्वजनिक परिवहन, साइकिल और पैदल चलने को हमें बढ़ावा देना चाहिए। दोस्तों, ऐसे कई काम करके हम ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। विद्यालय और समाज में ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना भी अत्यंत आवश्यक है। यदि प्रत्येक व्यक्ति छोटी छोटी बातों का ध्यान रखे तो बड़े स्तर पर ऊर्जा की बचत संभव है। दोस्तों, ऊर्जा मानव जीवन और राष्ट्रीय विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बढ़ती ऊर्जा मांग

0: और सीमित संसाधनों को देखते हुए ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। ऊर्जा की बचत करके हम न केवल धन और संसाधनों की रक्षा कर सकते हैं, बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह ऊर्जा का सोच समझकर उपयोग करे और संरक्षण के उपाय अपनाए। वास्तव में ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। दोस्तों, एक सार्थक और दूरदर्शी विचार है जो हमें उज्जवल और सुरक्षित भविष्य की ओर ले जा सकता है। साथियों, अब समय हुआ है क्रम वार्ता में आपको विषय योग का जीवन में महत्व पर वार्ता सुनवाने का। वार्ताकार है रघुवीर पाराशर।
1: योग विज्ञान का अर्थ है जोड़ना, अर्थात आत्मा और परमात्मा का मेल योग कहलाता है। योग शब्द की निष्पत्ति संस्कृत की युज धातु के धज प्रत्यय से हुई है, जिसका अर्थ है जोड़ना। श्रीमद्भागवत गीता में कहा है, योग है कर्म सुकौशलम, अर्थात प्रत्येक कार्य को कुशलता पूर्वक करना ही योग है। योग भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण धरोहर है। योग केवल भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की अनेक संस्कृतियों का आधार स्तंभ रहा है। यह एक प्राचीन विद्या है जिसका उद्देश्य शरीर, मन व आत्मा की शक्तियों का यथोचित समन्वय कर उत्तम चरित्र का निर्माण और आदर्श समाज की रचना करना है। योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न एवं बुद्धि स्थिर रहती है। सारांश में कहें तो योग का अर्थ शरीर और मन की संतुलित अवस्था के साथ सात्विक आहार का सेवन है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर एवं मन के साथ ही चेतना भी शुद्ध और सबल होती है। योग अभ्यास से शरीर के सभी तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथियां, शरीर का आधार मेरुदंड और मस्तिष्क की कार्य क्षमता का विकास होता है। शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। योग शिक्षा के अंतर्गत जिस सर्वांगीण विकास की चर्चा है, ये योग द्वारा ही संभव है। भारतीय ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के बाद योग विद्या का विकास करके मानवता के समक्ष इस विषय में बहुत ही सरल व सुस्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, जिससे व्यक्ति भौतिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ लेते हुए मनुष्य जीवन के चरम व परम लक्ष्य को सहजी प्राप्त कर सकता है। योग तो कल्प वृक्ष की भांति है, यह जीवन जीने का एक प्रभावी व्यवहारिक विज्ञान है। योग शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास, शारीरिक व मानसिक शक्ति का विकास, बौद्धिक क्षमता का विकास, स्मरण शक्ति एवं तार्किक क्षमता का विकास, संवेगों पर नियंत्रण, नैतिक एवं चारित्रिक गुणों का विकास, सुगठित शरीर एवं कांतिमय चेहरे का निर्माण। योग जीवन का ज्ञान, जीवन का विज्ञान, जीवन जीने की कला, अर्थात मानव जीवन का लक्ष्य परम आनंद की प्राप्ति का साधन है। मनुष्य में निहित सृजनात्मक शक्तियों का जागरण एवं रूपांतरण ही योग है। मन को शांत एवं नियंत्रित करने की कुशल विद्या एवं दिव्यता को प्राप्त करना ही योग कहलाता है। परम सत्य को जानना एवं परम सत्य में रमण करना ही योग है। स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर, मृत्यु से अमृतत्व की ओर जाना ही योग है, जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वामी विवेकानंद सरस्वती के शब्दों में योग उस साधन प्रणाली का नाम है जिसके द्वारा जीवात्मा तथा परमात्मा की एकाग्रता का अनुभव होता है और जीवात्मा तथा परमात्मा के साथ ज्ञान पूर्वक संयोग होता है। योग का लक्ष्य एक ही है, नर से नारायण बनाना। मन की शक्ति की कोई सीमा नहीं होती, वह जितना भी एकाग्र होता है उसकी शक्ति उतनी ही बढ़ती जाती है। ये सभी वैज्ञानिक खोजों का रहस्य है जो सिर्फ योग द्वारा ही संभव है। जीवन में योग की क्या भूमिका है, इस संदर्भ में योग उच्च जीवन प्राप्त करने की विद्या है जो व्यवहारिक जीवन को उच्चतर स्तर पर ले जाती है। सर्वोच्च स्तर पर जाकर यही मोक्ष का कारण बनती है। इसका आरंभ मन के नियंत्रण से होता है। जीवन में सभी स्थूल कर्म शरीर से ही होते हैं, किंतु उन कर्मों का कर्ता मन है। जैसे मन में विचार होते हैं, वैसे ही कर्म शरीर द्वारा होते हैं। इसलिए शरीर द्वारा किए जाने वाले अच्छे बुरे कर्मों के लिए मन ही जिम्मेदार है। इसलिए योग साधना का आरंभ मन के नियंत्रण से ही किया जाता है। योग के कई मार्ग हैं, जिनमें राजयोग, हट योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, नाद योग, तंत्र योग आदि। इनमें से किसी की भी साधना की जाए, सभी से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इनके लिए विभिन्न ग्रंथ उपलब्ध हैं तथा कई योगी इनकी साधना भी करवाते हैं। ज्ञान साधना के लिए योग वशिष्ठ पूर्ण योग ग्रंथ है तथा शंकराचार्य इसके पूर्ण उपासक

थी। व्यावहारिक जीवन में गीता का योग सर्वाधिक उपयोगी है। इसके 18 अध्यायों में 18 प्रकार के योगों का वर्णन है। कोई भी साधक अपनी रुचि के अनुसार किसी की भी उपासना कर ईश्वर प्राप्ति कर सकता है। शरीर में आत्मा एक कारण तत्व है जो सभी क्रियाओं का कारण है, किंतु इसकी सभी क्रियाएं मन से ही होती हैं। इसलिए ये मन ही करता है। संसार की अनुभूति भी मन को होती है। सुख दुख का अनुभव, राग द्वेष, ईर्ष्या आदि जितने भी दुर्गुण हैं, सभी मन की ही उपज है। इसी प्रकार प्रेम, दया, करुणा, सेवा आदि जितने भी भाव हैं, वे भी सभी मन की ही उपज है। अतः मन पर नियंत्रण की आवश्यकता रहती है, वरना समाज व्यवस्था रह ही नहीं सकती। ये मन ही संसार है। संसार के सभी बंधन मन के ही कारण हैं, तथा मन से ही मुक्त होना मुक्ति है। आत्मा को जानने वाला भी मन ही है, जो आत्मा से भिन्न ही है। आत्मा ज्ञेय है तथा मन ही उसका ज्ञाता है। जिसे ज्ञान होता है, यदि मन ना रहे तो इसकी अनुभूति भी संभव नहीं है। अनुभूति के बाद भी उसकी व्याख्या मन के द्वारा ही की जा सकती है। अतः मन की ही सर्वाधिक भूमिका है। यदि मन आत्मा में विलीन हो जाए तो उसकी व्याख्या कौन करेगा? जो मन सांसारिक विषयों से ही भरा है, वह उस चैतन्य को जान ही नहीं सकता। मन को सबसे पहले सांसारिक विषयों से मुक्त करना पड़ेगा, तभी वह आत्मज्ञान का अधिकारी बनता है। मन को इन विषयों से खाली करना प्रथम चरण है। योग द्वारा सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास होता है। सर्वांगीण विकास का अर्थ है शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक स्तर पर विकास। एक ही समय में इन सभी स्तरों पर उन्नति केवल योगिक क्रियाओं के माध्यम से संभव है। शारीरिक विकास, योगिक क्रियाएं जैसे सूक्ष्म व्यायाम, आसन, प्राणायाम आदि जो जीवन के एक एक अंग पर क्रिया कर उन्हें उन्नत करती है। मानसिक विकास, मन को एकाग्र कर सोई हुई शक्तियों को जागृत किया जाता है, जिससे आत्म विकास, साहस, धैर्य, उत्साह, संयम आदि गुण विकसित होते हैं। ध्यान व प्राणायाम की क्रियाएं इस उद्देश्य की प्राप्ति में परम सहायक हैं। भावनात्मक दृष्टि से भी भक्ति योग भावनाओं को परिपक्व बनाने में सबसे सशक्त माध्यम है। बौद्धिक विकास के लिए मन की एकाग्रता अपरिहार्य है। जब मन शांत होता है तो मस्तिष्क के अरबों न्यूरॉन्स शिथिल होकर स्वतः ही उन्नत हो जाते हैं। अतः बुद्धि तर्क संगत निर्णय लेने में सक्षम हो जाती है। सामाजिक विकास भी योग के माध्यम से होता है। मन की शांत व एकाग्र अवस्था व स्वतः ही समाज सेवा की ओर प्रेरित करती है। ईश्वर में अटूट श्रद्धा, उसके प्रति समर्पण आध्यात्मिक विकास की नींव है। ईश्वर के प्रति श्रद्धा मन को शांत व शून्यता के प्रति अग्रसर करता है। आध्यात्मिक विकास जीवन की सार्थकता के लिए परम आवश्यक है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया को रोगों के होने का कारण माना जाता है, और रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को मारना अर्थात जीवाणु रोधक एंटीबायोटिक की उपचार कर रोगों को ठीक किया जाता है। दूसरा, आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त और कफ, त्रिदोष और सप्त धातु का असंतुलित होना रोग उत्पत्ति का कारण माना जाता है। औषधियों के द्वारा वात, पित्त, कफ को संतुलित कर रोग निवृत्ति की जाती है, परंतु योग चिकित्सा के अनुसार विजातीय द्रव्य का शरीर में रुक जाना अर्थात किसी भी अंग को प्रभावित करना रोग का कारण बनता है। विजातीय द्रव्य के वातावरण में जीवाणु के उत्पन्न होने से रोग के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, यही रोग की उत्पत्ति मानी जाती है। योग में विजातीय द्रव्य द्वारा बना वह वातावरण है जिससे हानिकारक जीवाणु पनपते हैं और लक्षणों के रूप में रोग उत्पन्न होते हैं। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि रोगों का कारण जीवाणु नहीं बल्कि वह दूषित पदार्थ है जो शरीर में रुक जाते हैं। योग चिकित्सा द्वारा शरीर के इन विजातीय द्रव्यों टॉक्सिन को शरीर से दूर कर दिया जाता है, जिससे जीवाणु पनपने का वातावरण ही समाप्त ही कर दिया जाता है, जिससे रोग का मूल कारण समाप्त हो जाता है। योग चिकित्सा द्वारा रोग शरीर के हर स्तर पर शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक और भावनात्मक स्तर से दूर कर संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति की जाती है, तथा सभी स्तरों की पूर्ण क्षमता को उभार कर संतुलित विकास के लिए अग्रसर किया जाता है। स्वास्थ्य ही शरीर की धरोहर है। ये जो शरीर ईश्वर ने दिया है, ये बड़े पुण्य और अपने अच्छे कर्मों का वरदान है कि आप अपने आनंद में जीवन

0: को तनाव व रोग युक्त न बनाए, इसलिए लय प्रतिज्ञा हम करेंगे योग, रहेंगे निरोग, रहेंगे निरोग।
1: दोस्तों अभी सुन रहे थे आप वार्ता, विषय योग का जीवन में महत्व। वार्ताकार थे रघुवीर पाराशर। अब समय हुआ है क्रम जीवनालोक में हमारे आज के विषय आपका महाविद्यालय आपके कैरियर का प्रथम चरण है पर चर्चा करने का। साथियों मनुष्य के जीवन में शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। शिक्षा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करती है और उसे जीवन में सफलता प्राप्त करने योग्य बनाती है। विद्यालयी शिक्षा के बाद महाविद्यालय का जीवन प्रारंभ होता है जो विद्यार्थियों के भविष्य और कैरियर की दिशा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथियों महाविद्यालय केवल डिग्री प्राप्त करने का स्थान नहीं है बल्कि यह वह मंच है जहां विद्यार्थी अपने ज्ञान कौशल और व्यक्तित्व का विकास करता है। इसलिए कहा जाता है कि आपका महाविद्यालय आपके कैरियर का प्रथम चरण है। दोस्तों महाविद्यालय शिक्षा का वह स्तर है जहां विद्यार्थी अपने रुचि और लक्ष्य के अनुसार विषयों का चयन करते हैं। यहां उन्हें केवल पाठ्यपुस्तकों का ज्ञान ही नहीं बल्कि व्यावहारिक और व्यावसायिक ज्ञान भी प्राप्त होता है। महाविद्यालय विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। विद्यालय में विद्यार्थियों की सामान्य शिक्षा दी जाती है जबकि महाविद्यालय में उन्हें विशेष विषयों का गहन अध्ययन करने का अवसर मिलता है। यही अध्ययन आगे चलकर उनके कैरियर की नींव बनाता है। साथियों महाविद्यालय विद्यार्थियों के कैरियर निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ उन्हें विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी मिलती है और अपनी प्रतिभा को पहचानने का अवसर भी प्राप्त होता है। विभिन्न प्रतियोगिताओं संगोष्ठियों कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों के ज्ञान और कौशल में वृद्धि होती है। महाविद्यालय में विद्यार्थियों को नेतृत्व समय प्रबंधन टीम वर्क संचार कौशल और समस्या समाधान जैसी महत्वपूर्ण क्षमताएं विकसित करने का अवसर भी मिलता है। ये गुण किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। इसके अतिरिक्त कई महाविद्यालय विद्यार्थियों को इंटर्नशिप और प्लेसमेंट की सुविधाएं भी प्रदान करते हैं जिससे उन्हें रोजगार प्राप्त करने में भी सहायता मिलती है। साथियों महाविद्यालय केवल शैक्षणिक विकास तक सीमित नहीं होता, यह विद्यार्थियों के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास का भी केंद्र है। खेलकूद सांस्कृतिक कार्यक्रम वाद विवाद प्रतियोगिताएं और सामाजिक गतिविधियां विद्यार्थियों में आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का विकास करती हैं। साथियों महाविद्यालय जीवन का सही उपयोग करना विद्यार्थियों की जिम्मेदारी है। उन्हें समय का सदुपयोग करते हुए नियमित अध्ययन करना चाहिए और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए। केवल परीक्षा पास करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि नई नई जानकारियां प्राप्त करना और अपने कौशल को विकसित करना भी अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों विद्यार्थियों को महाविद्यालयों द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का पूरा लाभ उठाना चाहिए। अनुशासन परिश्रम और सकारात्मक सोच के माध्यम से वे अपने कैरियर को सफल बना सकते हैं। महाविद्यालय विद्यार्थियों के जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह उन्हें कैरियर की मजबूत नींव तैयार कर देता है और भविष्य की चुनौतियों के लिए सक्षम बनाता है। दोस्तों घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं आपसे विदा लेने को। दीजिए आपकी दोस्त शिवानी राठौर को अनुमति। नमस्कार।

0: अभी युवा श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। योगदान हमारे शिवपुरी केंद्र का था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। समय है
1: FM 102.6 MHz पर। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित

0: नगर निगम सागर प्रस्तुत करता है।
1: मैं सागर हूँ।
0: सागर का चप्पा चप्पा अपने विकास की कहानी कह रहा है। सड़कों का निर्माण और बेहतर साफ सफाई बनी सागर की पहचान।
2: सागर को बनाएं अपने सपनों का सागर।
0: अपने सागर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में सागर नगर निगम का सहयोग करें।
3: नगर निगम सागर द्वारा जनहित में जारी।
0: मैं सागर हूँ। इस प्रोग्राम में स्वीकार कीजिए साहिबा
4: और नासिर का
0: नमस्कार। सागर का हर चौराहा, हर गली अपने में कई कहानियाँ समेटे हुए है। ऐसी ही कुछ कहानियाँ हम आपसे साझा करेंगे इस प्रोग्राम में। अगर आपके पास भी ऐसी कुछ कहानियाँ हैं, तो हमें लिखकर भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9302911960 पर। इस कार्यक्रम में शामिल हैं सागर वासियों की पुरानी यादें, आजकल के उनके अनुभव और सुझाव भी।
5: नमस्कार श्रोताओं, मैं पलक चौरसिया आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं सागर नगर निगम द्वारा शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में जानकारी साझा करना चाहती हूँ। सागर शहर मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक केंद्र है। नगर निगम का उद्देश्य शहर को स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित और आधुनिक बनाना है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अनेक विकास कार्य निरंतर किए जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सड़क निर्माण और सुधार कार्यों की। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नई सड़कों का निर्माण किया गया है तथा पुरानी और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कर आवागमन को सुगम बनाया गया है। इससे नागरिकों को बेहतर यातायात सुविधा प्राप्त हो रही है। सागर नगर निगम और स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा सागर शहर की ऐतिहासिक लाखा बंजारा झील के कायाकल्प गहरीकरण और सौंदर्यीकरण का एक बड़ा काम किया गया है। इसे एक प्रमुख पर्यटन और वाटर स्पोर्ट्स केंद्र के रूप में भी विकसित किया गया है। साथ ही यातायात के दबाव को कम करने और झील के ऊपर से सहज आवागमन के लिए एक एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है। झील के प्रसिद्ध चकरा घाट और किनारों को गंगा के घाटों जैसा भव्य रूप दिया गया है। जल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पाइपलाइन विस्तार, टंकियों के निर्माण तथा जल वितरण प्रणाली के सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नगर निगम का प्रयास है कि प्रत्येक घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंच सके। स्वच्छता के क्षेत्र में भी सागर नगर निगम लगातार कार्य कर रहा है। घर घर कचरा संग्रहण, सार्वजनिक स्थानों की नियमित सफाई तथा स्वच्छता जागरूकता अभियानों के माध्यम से शहर को स्वच्छ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। नागरिकों की सहभागिता से स्वच्छ सागर का सपना साकार हो रहा है। शहर में आधुनिक स्ट्रीट लाइटों की स्थापना भी की गई है। LED लाइटों के उपयोग से ऊर्जा की बचत हो रही है और रात के समय नागरिकों की सुरक्षा में वृद्धि हुई है। हरित सागर के निर्माण के लिए पार्कों का सौंदर्यीकरण, वृक्षारोपण अभियान और हरित क्षेत्रों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ नागरिकों को स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण प्राप्त हो रहा है। नगर निगम द्वारा नालियों और जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं। बरसात के मौसम में जल भराव की समस्या को कम करने हेतु नालों की नियमित सफाई और नए ड्रेनेज कार्य कराए जा रहे हैं। इसी के साथ डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में भी नगर निगम आगे बढ़ रहा है। नागरिक अब कई सेवाओं का लाभ ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे समय की बचत होती है और कार्यों में पारदर्शिता आती है। महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए भी विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। सार्वजनिक सुविधाओं के विकास से सभी वर्गों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। प्रिय श्रोताओं, किसी भी शहर का विकास केवल प्रशासन के प्रयासों से नहीं बल्कि नागरिकों के सहयोग से भी संभव होता है। आइए हम सभी स्वच्छता बनाए रखने, पर्यावरण संरक्षण करने और सार्वजनिक संपत्तियों

0: चौक हमारे यहाँ ये विचार आया और बनाया गया। तो हमने एक बार फिर निवेदन किया कमिश्नर महोदय से कि वो इस पर प्रकाश डालें कि कैसे विचार आया और कैसे बना और क्या फायदा होगा।
1: देखिए, सबसे पहले तो आपका स्वागत है कि प्रोग्राम के माध्यम से सागर नगर निगम के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से आपके द्वारा पब्लिक के बीच जो है प्रस्तुत किया जा रहा है। जहाँ तक संविधान चौक बनने की अवधारणा है, ये इसकी एक बड़ी लंबी यात्रा है। जैसे कि संविधान बनने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे, तो इतना तो वक्त नहीं लगा, बट करीब 2 माह की अवधारणा में हमने इस चौक को तैयार किया। और इस चौक को बनाने के पीछे बहुत सारे विषय थे, जैसे कि सागर में आने जाने वाले आगंतुकों के लिए बाईपास होने के कारण मुख्य क्षेत्र था। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि संविधान एक ऐसी किताब है जिससे कोई राष्ट्र संचालित होता है, और वो एरिया अंबेडकर बाट के नाम से भी जाना जाता था। तो वहां पर अंबेडकर जी की मूर्ति को लगाने को लेके जो विषय था, तो हमने इस बारे में सोचा कि क्यों ना इसको विस्तृत तरीके से चीजों में ऐलान किया जाए। फिर हमने संविधान से जुड़े समस्त तथ्यों को और बाबा साहब के जीवन परिचय के साथ साथ संविधान से जुड़े हुए संविधान की प्रस्तावना, संविधान का इतिहास, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक के तत्व और संविधान से जुड़े अन्य तथ्यों को वहां पर उकेरा। आप वहां देखेंगे कि वहां पर आपको संसद भवन भी देखने को मिलेगी, वहां पर राष्ट्रपति भवन देखने को मिलेगा, वहां आपको राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ भी जो है देखने को मिलेगा, वहां पर जो कोणार्क का सूर्य चक्र भी आपको देखने को मिलेगा, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति भी देखने को मिलेगी। हमने मुख्य रूप से संविधान की विशेषताएं, संविधान का इतिहास, संविधान की प्रस्तावना, संविधान के मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य के बारे में हमने मुख्य रूप से बताया, जिसके बारे में हर आम नागरिक को पता होना चाहिए।
0: सर, इतने स्पॉट्स जो बन रहे हैं वो आप लोगों ने बहुत अच्छे डिजाइन करे, बहुत अच्छे बनाए, अब बात ये आती है कि इनको सहेजा जाए और संवारा जाए, तो उसके लिए आप आम जनता से कुछ कहना चाहते हैं?
1: आम जनता से अपील यही है कि ये जो है सारी चीजें आपके लिए बनाए जा रही है, आपकी है, आपके शहर के लिए है, आपके शहर की पहचान है, आपके आने वाली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक है। किसी भी बड़े शहर की जो पहचान होती है उसमें उसके चौक चौराहों का एक बड़ा महत्व होता है। जैसे कि हम जितने भी बड़े शहरों में जाते हैं, वहाँ के चौक चौराहे हमें बताते हैं वो शहर कितना खूबसूरत है, कितना अपनी संस्कृति से भरा हुआ है, कितना अपना इतिहास सहेजे हुए है। इन सारी बातों से फर्क पड़ता है। तो मेरा आमजन से आग्रह है कि जो भी बनाया जा रहा है वो आपके अपनी चीजें हैं, इनको सहेज के रखें, सुरक्षित रखें। आपका दिन शुभ हो। बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच सर, आपका इतना समय लिया, आपने हमारे कार्यक्रम में शामिल होकर मनोबल बढ़ाया, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: दिन ब दिन सागर और भी सुंदर होता चला जा रहा है, इसकी और भी कहानियों को समेट कर हम जल्द ही आपसे फिर मिलने आएंगे अगले अंक में। तब तक इजाजत दीजिए साहिबा को
3: और नासिर को।
2: नमस्कार।
3: ये कार्यक्रम आप सुनेंगे हर रविवार शाम 5:30 पर आकाशवाणी सागर से। अपने सागर से जुड़ी कुछ और बातें लेकर आएंगे हम अगले अंक में।
0: सागर का चप्पा चप्पा अपने विकास की कहानी कह रहा है। सड़कों का निर्माण और बेहतर साफ सफाई बनी सागर की पहचान।
4: सागर को बनाएं अपने सपनों का सागर।
0: अपने सागर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में सागर नगर निगम का सहयोग करें।
3: नगर निगम सागर द्वारा जनहित में जारी। मैं सागर हूँ।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे नगर निगम सागर।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम मैं सागर हूँ। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं भेंट वार्ता। विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर श्वेता नेमा। इनसे बातचीत की है दीपक निषाद ने।
6: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस बातचीत में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद, और बेहद खास विषय पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मनाते हैं, और ये दिन हमें याद दिलाता है कि योग न केवल हमारे शरीर को निरोगी रखता है बल्कि प्रकृति के साथ हमारे गहरे जुड़ाव को भी मजबूत करता है। तो इस विषय पर बातचीत करने के लिए एक बेहद खास मेहमान को हमने आज आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में। आप हैं डॉक्टर श्वेता नेमा। आप योग से पीएचडी हैं और कई संस्थानों में आप योग की ट्रेनिंग

0: जीती हैं, योग ट्रेनर के रूप में भी आपकी ख्याति है और योग में आपके कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैं। तो डॉक्टर श्वेता नेमा मैम, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस बातचीत में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और सबसे पहले हम आपसे ही बातचीत की शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि आप योग में PhD हैं, बहुत लंबे समय तक आपने योग की पढ़ाई की है, उसमें ट्रेनिंग की है, रिसर्च किया है और योग में आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो हमारे श्रोताओं को आप बताइए कि योग में आपने कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया हुआ है।
1: सभी को मेरा नमस्कार। योग में मैंने कूर्मासन में 45 मिनट्स का और पश्चिमोत्तानासन में 1.5 घंटे का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और जैसे मैंने किया है, योग के कोई भी जो भी अभ्यासी है वो भी सहजता से कर सकते हैं, बस उसमें स्थिरता चाहिए और किसी भी कार्य को करने में निरंतरता चाहिए। तो वो जैसे मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, वैसे और भी जो भी योग शिक्षक हैं, योग के छात्र हैं, वो भी कर सकते हैं।
0: जी, बहुत अच्छी बात है कि निरंतरता के साथ, अनुशासन के साथ आप भी कर सकते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड का मतलब ये हुआ कि उस आसन को उतने लंबे समय तक आपने ही सबसे ज्यादा लंबे समय तक किया है।
1: जी, जब मैंने कूर्मासन के लिए पता किया था तो चाइना में 15 मिनट का रिकॉर्ड बनाया हुआ था।
0: जी।
1: तो मैंने जो टारगेट सेट किया था कि चलो 15 मिनट का है तो 30 मिनट्स का तो जाना है। फिर 30 मिनट्स जब हो गया तो और कोशिश किया कि और जितना बढ़ सके, तो फिर 50 मिनट्स तक मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड गया था। और 50 मिनट्स गया था लेकिन 45 मिनट्स के बाद बॉडी में थोड़ा सा मूवमेंट, तो इसलिए 45 मिनट सिलेक्ट किया था।
0: 45 मिनट्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड आज भी आपका कायम है।
1: जी, बिल्कुल।
0: चलिए अब हम बातचीत में सीधे दाखिल होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर हम ये बातचीत कर रहे हैं। तो योग के बारे में आपसे हम जानना चाहेंगे, योग प्राणी मात्र के लिए है, हम कहते हैं कि योग सभी के लिए है, तो पहला प्रश्न आपसे ये है कि योग क्यों करना चाहिए और किस उम्र के लोग योग आराम से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं?
1: योग सभी के लिए है, जो भी प्रकृति में जो भी प्राणी है। जैसे हम देखते हैं कि योग के जितने भी आसन अभ्यास हैं वो प्रकृति के नाम से ही आसनों के नाम है।
0: जी।
1: तो जो प्रकृति और मनुष्य को एक दूसरे से जुड़ाव रखती है, और जो भी आसन है, प्रकृति का जो भी नाम है, उसके गुणों के साथ हमारे शरीर में वैसे परिवर्तन, सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करती है। सपोज करिए जैसे वृक्षासन है, तो वृक्षों की जो दृढ़ता है, आप देखिए सर्दी गर्मी हमेशा एक उस पे अडिग रहते हैं, वैसी हमारे शरीर में एक दृढ़ता आती है, कंपन नहीं रहती है। ऐसे बहुत सारे, जैसे आप देखिए सर्पासन, सर्प मतलब एक जीव के उस पे रखा है, तो उसके गुण जैसे बोलते हैं सर्प जो होता है, उससे हम जो अभ्यास करते हैं हमारे शरीर में हृदय की मांसपेशियां स्ट्रांग होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और हृदय हमारा स्वस्थ होता है।
0: जी, किस उम्र के लोग योग को कर सकते हैं?
1: 3 साल के बच्चों से लेके और हर एक उम्र के, चाहे वो युवा हो, महिलाएं हो, बालिकाएं हो, वृद्ध महिलाएं, वृद्ध पुरुष, सभी लोग इस अभ्यास को कर सकते हैं। बस हमें कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना पड़ता है। मान लीजिए किसी को पहले से किसी तरह की बीमारी है, मान लीजिए कोई हृदय रोगी है या किसी तरह का कोई ऑपरेशन हो गया है या इंजरी हुई है कोई, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि उनमें कौन कौन से अभ्यास वर्जित हैं। जरूरी नहीं है कि कोई अभ्यास है तो वो सारे लोग कर सकते हैं। इन सावधानियों को अगर हम ध्यान में रख के करते हैं तो हमें हमारे शरीर में उसके सकारात्मक परिणाम होते हैं। नहीं तो कई बार हमने देखा है कि हम, मान लीजिए कहीं कोई पेन है और हम फिर भी अभ्यास कर रहे हैं, फिर कभी सुनने में आता है कि योग से हमें ये तकलीफ हो गई है, क्योंकि हमने एक अच्छे मार्गदर्शक के साथ हमने उस अभ्यास को नहीं किया।
0: बिल्कुल सही कहा आपने कि योग प्राणी मात्र के लिए है, योग सभी कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी बीमारी का और अपने चोट का, अपने इंजरी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और कुशल मार्गदर्शन में आप करेंगे तो आपको उससे बेहतर लाभ मिलेगा। 2026 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो थीम रखा गया है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग, यानी स्वस्थ आयु के लिए योग। तो हम ये जानना चाहेंगे कि बदलती हुई जीवन शैली में दुनिया भर में लोगों की जो औसत आयु है वो बढ़ी है, लेकिन बदलती जीवन शैली ने कई तरह की बीमारियों से भी हमें चपेट में लिया है। बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ी हैं, मानसिक तनाव भी बढ़ा है। तो बढ़ती उम्र में भी आपको स्वस्थ रखने के लिए योग कितना कारगर सिद्ध हो सकता है?
1: जी बिल्कुल, जैसे जैसे हम देखते हैं भौतिकता, या फिर आप देखिए कहीं ना

0: कहीं कैरियर में बच्चों की आप देखिए कितनी दौड़ चल रही है, समाज में भी एक ऐसी अंधी दौड़ चल रही है कि एक दूसरे को पीछे करने की दौड़ चल रही है, उसमें शारीरिक के साथ मानसिक भी तनाव होता है और उसके साथ हमारी भावनात्मक स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ता है, और इतना नहीं फिर उसी के कारण सामाजिक स्वास्थ्य पे भी हमारे प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं वो राष्ट्र तक लेकर जाता है। तो सबसे पहले तो जब हम स्वस्थ रहें तो केवल शारीरिक स्वस्थता नहीं, मानसिक स्वस्थता, भावनात्मक स्वस्थता और सामाजिक स्वस्थता जरूरी है। अब हम ज्यादा जिए, हमारी उम्र लंबी हो और बीमारियों के साथ, इससे अच्छा है ना कि हम कितने वर्ष जीते हैं, उससे अधिक महत्वपूर्ण कि हम कितने स्वस्थ, प्रसन्न, आनंद और ऊर्जावान रहकर जीते हैं, वो हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। और जो आज की जीवन शैली है, देर से उठना, रात में देर से सोना, और हम स्क्रीन टाइम देखिए आप कितना बढ़ते जा रहा है, मोबाइल चलाते हैं, और अननेसेसरी अगर हमारे पास मान लीजिए कुछ समय है, पहले हम किताबें पढ़ते थे, कुछ अभ्यास करते थे, प्रकृति के पास रहते थे, अभी क्या हो गया है, समय है तो हम मोबाइल में कहीं ना कहीं रील्स देखना या पूरे टाइम मोबाइल चलाना, उसके कारण कहीं ना कहीं हमारे दिमाग पे जोर पड़ता है और मेंटल हेल्थ में बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है। और सबसे ज्यादा जो परिवर्तन इसमें जो होता है, हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, पहले आप ये देखिए पहले के समय में लोग जल्दी उठ जाते थे, उनको पता होता था कि सूर्योदय हो गया और केवल रोशनी से वो पता लगा लेते थे कि अभी सूर्यास्त हो गया, पहर जो होते हैं चार पहर उनका पता लगा लेते थे। अभी दिनचर्या इतनी बिगड़ चुकी है कि बायोलॉजिकल क्लॉक पूरी डिस्टर्ब हो गई, तो जिसके कारण सबसे ज्यादा हमारे मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़ता है, और वो जो मेंटल हेल्थ है तो वो शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है, और इसका सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो हमारे हार्मोन्स पे पड़ता है।
1: जी जी, बहुत सही आपने कहा कि जो आसनों का नाम रखा गया है वो प्रकृति के तमाम जो आयाम है उसके आधार पे रखा गया है, और प्रकृति के साथ हमारे अभिन्न जुड़ाव को भी दर्शाता है ये। और आपने ये भी बात कही कि प्रकृति के साथ हमें उठना बैठना सीखना चाहिए, हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो प्रकृति के साथ ही निर्धारित होनी चाहिए, तो ही हम बेहतर जीवन शैली को जी सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और ये थीम ये भी दिखाता है कि बढ़ती उम्र के साथ व्यक्ति शारीरिक रूप से मजबूत, मानसिक रूप से चैतन्य और भावनात्मक रूप से खुश रह सकता है, यही योगा फॉर हेल्दी एजिंग दर्शाता है। आगे बढ़ना चाहेंगे और आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो आज के दौर में योग का वैज्ञानिक आधार है, खासकर जो किशोरों में, किशोरियों में समस्याएं हमें देखने को आती हैं, बीमारियों के निदान में शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से योग कितना सक्षम है?
0: योग भले हम शारीरिक क्रियाएं करते हैं, चाहे वो प्राणायाम हो, ध्यान हो या आसन हो, लेकिन उसका प्रभाव हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य पे भी पड़ता है और मानसिक स्वास्थ्य पे भी और शारीरिक स्वास्थ्य पे भी पड़ता है। जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, जो हम सोचते हैं, चलते हैं, जो हमारे थॉट प्रोसेस रहते हैं, सारा जो उसमें वैज्ञानिकी, जो आपने बोला कि वैज्ञानिक आधार, वो सारा हार्मोन्स रहता है। तो अब हमारी दिनचर्या इतनी डिस्टर्ब हो चुकी है, उस समय क्या होता है, छोटी छोटी बातों का तनाव लेना, उस समय क्या होता है, एड्रेनलिन हार्मोन्स है वो सिक्रेशन होता है। एक तरह से हम इसको बहुत सरल भाषा में समझे कि एक नेगेटिव हार्मोन है जो हमारे शरीर में सांसों की गति को बढ़ाना या हमारे इनडाइजेशन की प्रॉब्लम को करना या बहुत ज्यादा हार्ट बीट को बढ़ा देना, एंजाइटी, हाथों में कंपन, चिंता, तो उसके कारण क्या होता, तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़ते जाते। अगर यही कोई भी नेगेटिव थॉट अगर एक समय से ज्यादा रहता है तो यही हमारे डिप्रेशन के उसमें कन्वर्ट होता है, तो उस समय फिर कार्टिसोल जो हार्मोन होता है, स्ट्रेस हार्मोन, वो बढ़ जाता है, जिसके कारण फिर आज आप देखते हैं युवाओं में सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, और जो हमारी जो दिनचर्या है वो डिस्टर्ब होने के कारण
1: अनिद्रा की समस्या भी होती है।
0: अनिद्रा की समस्या, पैनिक अटैक आना, या आज आप ये देखिए बच्चे थोड़ा सा भी विपरीत परिस्थितियां झेल नहीं पाते हैं, तो कारण हार्मोनल डिसऑर्डर्स है। ये जरूरी नहीं है कि फीमेल्स में हो, मेल्स में भी होता है, युवाओं में होता है, बच्चों में होता है या बुजुर्गों में भी होता है। अब अगर हम योग जीवन शैली लेते हैं, प्रॉपर हम आहार चर्या रखते हैं, दिनचर्या हमारी अगर प्रॉपर है तो जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं जैसे सेरोटोनिन हार्मोन होते हैं, डोपामिन हार्मोन, जो हमारे जितने भी शारीरिक जो हमारे अंग हैं उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना, तो ये डोपामिन

0: काम होता है, हैप्पी हार्मोन जो होते हैं सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, जब हम योग व्यायाम या किसी भी तरह के हम खेल खेलते हैं या जब हम हंसते हैं तो उस समय सबसे ज़्यादा एंडोर्फिन हार्मोन सिक्रेशन होता है, जो हमारे विपरीत परिस्थितियाँ, कभी मान लीजिए एंजाइटी होती है या चिंता होती है तो एंडोर्फिन हार्मोन हमारा बैलेंस है, तो वो जो चिंता वाला जो है उसको आसानी से समभाव में लेकर जाता है। जैसे बोलते हैं ना, समत्वम योग्य उच्यते, मतलब विपरीत परिस्थितियां भी आएंगी लाइफ में और अच्छी परिस्थितियां भी, तो तालमेल बनाने का काम जो ये हैप्पी हार्मोन करता है।
1: जी, शरीर मन और आत्मा को एकीकृत करता है, उनको संतुलित करता है और एक संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में आपका निर्माण करता है और आप अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य करने के लिए अग्रत होते हैं। आगे आपसे हम जानना चाहेंगे कुछ आसनों के बारे में बताइए जिसको आसानी से हम कर सकते हैं। सामान्य व्यक्ति जो शुरुआत कर रहा है योग की, वो शुरुआत कैसे कर सकता है?
0: देखिए, सबसे पहले तो अगर कभी भी कोई भी चीज शुरू करते हैं, जैसे हम योग शुरू करते हैं, तो एक अच्छा कुशल प्रशिक्षक होना चाहिए कि वो आपकी बारीकियां बता सके कि कब हमें सांस लेना है, कब सांस छोड़ना है, कब झुकना है, कब उठना है, कितनी देर विराम लेना है। तो जब हम योग की शुरुआत करते हैं तो एक शांत अवस्था में, जहाँ पे आपको एक सकारात्मक ऊर्जा मिल रही हो, उस स्थान पर आप आराम से एक मैट लेकर बैठें, शांति से प्रार्थना से शुरू करते हैं और शुरुआत में जो शिथिलीकरण अभ्यास हैं, छोटे छोटे अभ्यास जैसे ग्रीवा संचालन, स्कंद संचालन, कटी संचालन और टखनों को चलाना, इस तरह के अभ्यास जो हैं सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करते हैं। फिर उसके बाद हम खड़े होकर किए जाने वाले कुछ अभ्यास जैसे ताड़ासन हो गया, वृक्षासन हो गया, त्रिकोण आसन, ये सहज अभ्यास हैं जो हर एक व्यक्ति कर सकता है। बैठकर किए जाने वाले कुछ अभ्यास जैसे भद्रासन हो गया, वज्रासन हो गया, शशांक आसन, उष्ट्रासन, उसके बाद पेट के बल किए जाने वाले कुछ अभ्यास जैसे भुजंगासन, मकरासन, सलाभासन, फिर पीठ के बल वाले कुछ अभ्यास जैसे पवन मुक्त आसन, सवासन, सेतु बंधासन, फिर इन अभ्यासों के बाद प्राणायाम। प्राणायाम में भी आप, जैसे जो हमारा शरीर है पूरी 72,000 नाड़ियों पर आधारित है, परंतु उसमें अगर हम देखें पूरी 72,000 नाड़ियों में दो नाड़ियां प्रमुख हैं, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी। अगर हम और सहज उसमें समझे, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, इनको अगर हम बैलेंस करते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं, चाहे वो मानसिक हो चाहे शारीरिक हो। उसके लिए हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, अगर स्ट्रेस एंजाइटी उसके लिए भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, कभी भी सिर दर्द है या पेट से संबंधित कुछ भी समस्याएं, कपालभाति उसके लिए। और अभी जैसे आप देखते हैं कि वेदर कितना हीट हो रहा है, तो उसके लिए हम शीतली शीतकारी प्राणायाम करते हैं और कुछ ध्यान का हम अभ्यास करते हैं। अगर हम इस सीरीज में करते, एक आइडियल सीरीज है, इसमें बच्चे भी कर सकते हैं और वृद्ध भी इन अभ्यासों को कर सकते हैं, इसलिए बहुत सहज अभ्यास हमने इस पे बताए हैं। और इन अभ्यासों को करके केवल हमारे शरीर में, अगर हम बोले केवल नॉर्मल अगर अपन देखें, बाह्य शरीर में देखें कि हाथ पैर अच्छे से चलना, इतना ही नहीं, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, इंटरनल भी, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सब स्ट्रांग हो जाता है।
1: जी, योग के साथ साथ ध्यान भी शामिल है और आपने बहुत विस्तार से जो प्रक्रियाएं होती हैं एक क्रम से उसके बारे में बताया, इस क्रम में आप कर सकते हैं। और इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे जो योग दिवस का प्रोटोकॉल रखा गया है उसके बारे में कुछ बताइए हमें आप।
0: जो योग प्रोटोकॉल रखा जाता है सभी के लिए, योग अगर हम देखें तो उसी सीरीज में हमें अभ्यास करना है। जैसे जो अभी मैंने बताया है कि सबसे पहले हम प्रार्थना से शुरू करते हैं, और प्रार्थना का उद्देश्य ये है कि मान लीजिए हम कहीं बाहर से आ रहे हैं और हम डायरेक्ट अभ्यास करते हैं तो मन तो हमारा वहीं पे है। आप जब किसी भी तरह की प्रार्थना करते हैं, मंत्र करते हैं, तो आप मानसिक रूप से उन अभ्यासों के लिए तैयार हो जाते हैं और उसके बाद आप शिथिलीकरण अभ्यास से शुरू करते हैं और पूरा प्राणायाम करते हुए ध्यान पर जाते हैं। यही एक आदर्श प्रोटोकॉल के रूप में अभी आप देख रहे हैं सभी के लिए दिया गया है।
1: जी, योग फॉर ऑल, योग सभी के लिए है, और योगा फॉर हेल्दी एजिंग इस बार का थीम रखा गया है, यानी आप योग को अपना करके, योग को अपने जीवन में शामिल करके स्वस्थ आयु की तरफ बढ़ सकते हैं, बुजुर्गावस्था में भी आप स्वस्थ रह सकते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आत्मिक

0: रूप से। बस चलते चलते आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप हमारे सुनने वालों को योग दिवस के ऊपर कुछ संदेश देना चाहें तो आप जरूर बताएं।
1: मेरा तो सबसे पहले सभी के लिए ये शुभकामनाएं हो कि हमारे राष्ट्र में जो भी लोग हैं सभी स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें, हमारे राष्ट्र में हमेशा प्रसन्नता रहे। और जैसा कि योग एक विधा है तो ये आज की विधा नहीं है, आज हम इसको कहीं कहीं एक्सरसाइज के रूप में देखते हैं, कुछ लोगों के लिए ये एक्सरसाइज है, कुछ लोगों के लिए जीवन जीने की कला है, ये एक प्राचीन विधा है। योग के बारे में भगवद गीता में भी बहुत अच्छे से समझाया गया है कि समत्वम योग उच्यते, जब आप जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं तो कैसे आप केवल योग के माध्यम से आप समभाव में रहते हैं। अगर आप योग के नियमित अभ्यासी हैं तो आप किसी भी विपरीत परिस्थितियां हो, किसी तरह का शारीरिक या मानसिक कष्ट है तो आप कैसे समभाव में, आपको योग आपकी मदद करता, आपको कुछ नहीं करना होता, केवल आप योग को चुनते हैं तो योग आपको चुनता है फिर, और प्रकृति आपको हर तरह से बचाव के रूप में कार्य करने लगती है, और हमारी जो वृत्तियां हैं, जो नकारात्मक वृत्तियां हैं वो सकारात्मक होने लगती हैं। और जो भी व्यक्ति, मान लीजिए कोई योग विधा का नहीं है, योग का शिक्षक नहीं है, योग का छात्र नहीं है, कोई अलग अलग विधाओं में भी अगर कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है या कोई पुलिस प्रशासनिक सेवाओं में है, अगर योग को आप अपने जीवन में उतारते हैं तो योग कहीं ना कहीं उत्कृष्ट बनाने की एक कला है। जैसे भगवद गीता में भी बोला गया है योगः कर्मसु कौशलम्, आप जो भी कार्य करते हैं उसकी कुशलता है जो वो योग को दर्शाती है। और लास्ट में मैं ये चीज ये बोलूंगी, अच्छा आहार लेना है, अच्छी सोच रखना है, अच्छे कार्य करना है और योग के साथ अपने जीवन जीना है। एक श्लोक से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योग भवति दुखः। जो व्यक्ति अपने आहार व्यवहार कर्म और विश्राम में संतुलन रखता है उसके जीवन में योग से अपने आप ही उसके दुखों का नाश हो जाता है। मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी सुखी हों।
0: बहुत उपयोगी और बहुत सारगर्भित बातें, संदेश आपने हमारे श्रोताओं को दी और बहुत अच्छी बात आपने कही कि जब आप योग को चुनते हैं तो योग आपको चुनता है, आप बेहतर जीवन शैली की तरफ आगे बढ़ते हैं। योग शरीर को फिट रखने का सिर्फ एक माध्यम नहीं है बल्कि जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का एक प्रभावी तरीका है। और 21 जून सिर्फ योगासन करने का दिन नहीं है बल्कि स्वस्थ, संतुलित और जागरूक जीवन शैली अपनाने का भी संदेश देता है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं डॉक्टर श्वेता नेमा मैम, आप PhD हैं योग से और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी आपने बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमसे बातचीत करने के लिए।
1: सभी को मेरा नमस्कार।
2: तो अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, विषय था स्वस्थ आयु के लिए योग। विशेषज्ञ थी डॉक्टर श्वेता नेमा और इनसे बातचीत की थी दीपक निषाद ने। FM बैंड 102.6 MHz पर हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं चित्रपट संगीत। सुनिए कार्यक्रम का यह पहला गीत, इसे हमने लिया है फिल्म अकेले हम अकेले तुम से। आवाजें उदित नारायण और आदित्य नारायण की हैं। मजरूह के बोल हैं अनु मलिक का संगीत है।

अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से चित्रपट संगीत और कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए फिल्म जानवर से। समीर की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है आनंद मिलन ने और आवाजें सुनिधि चौहान के साथ उदित नारायण की हैं।

अभी आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत आकाशवाणी के सागर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं समीर का लिखा हुआ, संगीत एक बार फिर आनंद मिलिंद का है, आवाजें उदित नारायण और ज्योत्सा हर्डीकर की। फिल्म का नाम है लाडला।

0: अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत, यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं काव्य पाठ, पितृ दिवस पर विशेष आधारित है। रचनाकार हैं डॉक्टर आलोक चौबे।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं अपनी पहली कविता पढ़ना चाहता हूँ, पिता पर प्रस्तुत है। पहाड़ कुछ नहीं कहते, पहाड़ कुछ नहीं कहते, खड़े रहते हैं डटकर पिता की तरह। और पिता वो तो होते ही हैं पहाड़, जिनसे टकराती हैं समय की आंधियां, काले गहरे बादल, सह जाते हैं वो सारे आघात चुपचाप। रिश्ता है कभी कभी उनके हृदय से भी झरना स्नेह का, पर हमेशा नहीं। अक्सर वो रहते हैं चट्टान से, जिनमें जड़ें जमाती हैं पीढ़ियों से तनी विरासत और परंपराएं, और पनपते हैं कुछ नए बीज भी, जिन्हें निष्ठुरता का आवरण ओढ़ पोषित करते हैं पहाड़। पहाड़ कुछ नहीं कहते, अक्सर मौन रहते हैं, कभी कभी टिककर दूसरे पहाड़ से सुस्ता लेते हैं बस, पर पहाड़ों में समाया होता है।

जीवन, जीवंतता भी, संगीत भी, कविता भी, राग भी, पर कहीं बहुत अंदर तक, जहां से ध्वनि नहीं आ पाती बाहर। कसमसाते हैं पहाड़ भी कभी कभी, पर ढहते नहीं आसानी से। दरकनों को भींच कर खड़े रहना चाहते हैं चुपचाप, पहाड़ कुछ नहीं कहते, खड़े रहते हैं डटकर पिता की तरह, और पिता वो तो होते ही हैं पहाड़। श्रोताओं, एक और कविता प्रस्तुत करता हूं आपके समक्ष, जिसका शीर्षक दिया गया है सुबह बदलाव की। कितने घरों में सुबह की पहली चाय बच्चों के पापा बनाते हैं, कितने घरों में सुबह की पहली चाय बच्चों के पापा बनाते हैं। रोज मम्मी भी काम पे जाती हैं तो अपना घर सजाते हैं, कोई मेहमान आता है तो भैया पानी और चाय ले जाते हैं। हम अपने घर के लड़कों को क्या घर चलाना सिखाते हैं? दीदी को कुछ सीखने जाना हो बाहर तो भाई रोटी तरकारी बनाते हैं। माँ थक हार कर जब आती है काम से तो क्या पापा उन्हें उठकर पानी पिलाते हैं? तुम और छुटकी आज आराम करो, हम बाप बेटे मिलकर खाना बनाते हैं, क्या ऐसा कहकर घर के कामों में हाथ बटाते हैं? जिन्होंने अपनी बेटी सौंपी ऐसे माता पिता की भी जिम्मेदारी उठाते हैं, अपने आसपास बेटा बेटी का भेद मिटाते हैं। आओ आओ एक नई परिपाटी चलाते हैं, अपने घर से ही थोड़ा बदलाव लाते हैं, लड़कों को थोड़ा और संवेदनशील, साहसी और संस्कारी बनाते हैं, पौरुष का सही सार्थक अर्थ समझाते हैं, वो क्या चाहती है स्त्रियों के अस्तित्व का सही मर्म बतलाते हैं, थोड़ा और समझ जाते हैं। आओ आओ एक नई परिपाटी चलाते हैं, बहादुर लड़कों को थोड़ा घरेलू और घरेलू लड़कियों को थोड़ा बहादुर बनाते हैं, बहादुर लड़कों को थोड़ा घरेलू और घरेलू लड़कियों को थोड़ा बहादुर बनाते हैं, आधी दुनिया को खुले आकाश का पूरा होता चांद दिखाते हैं। कुछ कोने मन के अंधेरे छूटे हैं जो, उनमें आनंद की, उम्मीद की, हौसलों की और विश्वास की ज्योति जलाते हैं। आओ आओ एक नई परिपाटी चलाते हैं, अपने घर से ही थोड़ा बदलाव लाते हैं। अगली कविता प्रस्तुत है श्रोताओं, रहें।

निडर रहो सुघड़ रहो सहो न कोई छल, निडर रहो सुघड़ रहो सहो न कोई छल, दो दखल दो दखल दो दखल दो दखल, निडर रहो सुघड़ रहो सहो न कोई छल, दो दखल। शौर्य।

अटल। धन्यवाद। अंतिम कविता पढ़ना चाहूंगा श्रोताओं। कुछ सुनी आवाजों के पीछे दबी हैं खिलखिलाहटें, कुछ सुनी आवाजों के पीछे दबी हैं खिलखिलाहटें, जो पनप नहीं पाई क्रूर अट्ठासों के कारण। वो चहक, अटकेलियां, शरारतें कम होती गईं, बढ़ी तो बस उम्र और फिक्र अनजानी सी। कुछ हौसलों ने जीत तो लिया जहां, राह भी दिखाई औरों को, पर ये जहान वैसा क्यों नहीं जैसा वो चाहती हैं? क्या गलत है वह चाह, तो ये दिखावा क्यों? मत हंसने दो उन्हें अगर नहीं चाहते, पर कुछ बंदिशें उस ओर भी लगाओ जहां से आती हैं अट्ठासों की आवाज, वरना तरस जाओगे सुंदर संसार के लिए और जीवन जीवन बन जाएगा रेत में गला हुआ एक ठूंठ, सिर्फ एक ठूंठ। अगला गीत प्रस्तुत करना चाहूंगा। हम गीत

0: नमस्कार श्रोताओ,
1: अभी आप सुन रहे थे काव्य पाठ पितृदिवस पर विशेष। रचनाकार थे डॉक्टर आलोक चौबे। FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है।
2: अब बढ़ेगा आपका व्यापार, आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार। हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने

0: सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी की महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: दादी कौन सा प्लांट है?
2: टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
4: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
5: अब बढ़ेगा आपका व्यापार, आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770 43

सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी की महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन।

0: यादें हमारी धरोहर हैं, यादें हमारे दिलों में बसती हैं, यादों का कारवां। सुनिए आकाशवाणी सागर से हर माह के चौथे शुक्रवार को सुबह 10:05 से।
1: यादें याद आती हैं।
0: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। करें थोड़ा सा इंतजार।

0: 2026 के अंतर्गत भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनने से पहले आइए सुनते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 20।
1: दिस इज आकाशवाणी, वी नाउ ब्रिंग यू बॉल बाय बॉल।
2: श्री रामचरित मानस का 227वां भाग आप सुनेंगे सुबह 6:35 पर। सुबह 6:45 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम संगीत सरिता श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार।

कलाकार वायलिन वादक पंडित एस एल खंडारा का पांचवा भाग आप सुनेंगे, प्रस्तुति मनीषा जैन की। सुबह 7 बजे आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। त्रिवेणी ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सुबह 8:15 पर, लेखक यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 8:30 से। सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार, कलाकार हैं अभिनेता अमरीश पुरी, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। उजाला उजाले उनकी यादों के रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग आप सुनेंगे सुबह 10 बजे कार्यक्रम पिटारा में। रंग तरंग कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 11 बजे। दोपहर 12:05 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल। दोपहर 1 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर। 3 बजे कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे दोपहर 2 बजे, लेखक यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। 7 बजे ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दोपहर 2:30 पर। सखी सहेली ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दोपहर 3 बजे।

पिटारा में आप सुनेंगे कार्यक्रम सेहतनामा। डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। छायागीत कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 5 बजे से। तराने नए पुराने कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे सुबह शाम को 5:30 पर। संध्या रंजन ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 6:35 पर। संगीत सरिता का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे शाम 6:45 पर। फौजी भाइयों के लिए विशेष कार्यक्रम जयमाला आप सुनेंगे शाम 7 बजे। शाम 7:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से, फिल्म का नाम खिलौना। रात 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम हवा महल नाटिका, वो आए घर में हमारे, लेखन राजकुमार दाग, निर्देशन सत्येंद्र शरद। रात 9 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके लिए। आज के फनकार कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे रात 9:30 पर। रात 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम छाया गीत, आलेख एवं स्वर जयंत पत्रकार का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। ढलती जाए रात ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 10:30 पर। रंग तरंग कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे रात 11 बजे। ये थी झरोका के अंतर्गत कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संध्या रंजन।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की चौथी कड़ी।
1: संगीत सरिता के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। पंडित जी फिर एक बार आपका स्वागत है। पिछली कड़ी में हम बात कर रहे थे संगीतकार प्यारेलाल जी के बारे में। उनके द्वारा बजाया गया वॉयलिन कुछ गीतों में बड़ा मुखर रूप में हमें सुनने को मिलता है।
2: बिल्कुल,
1: तो इसके बारे में और क्या आप बताना चाहेंगे हमें?
2: देखिए, प्यारेलाल जी का एक पूरा स्कूल था फिल्म इंडस्ट्री में।
1: जी जी।
2: और उनको जितने वायलिन प्लेयर थे फिल्म इंडस्ट्री के, वो बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं। उनके पिताजी रामप्रसाद जी तो फिल्म के स्कूल में उनका बड़ा दर्जा था एज ए गुरु। फिल्मों में जो वायलिन सिखाने वाले खास लोग थे उनमें रामप्रसाद जी का भी बड़ा योगदान है।
1: जी, जी।
2: और प्यारेलाल जी खुद अच्छा वायलिन बजाते थे और उन्होंने कई सारी फिल्मों में व्यक्तिगत सोलो पीसेस दिए वायलिन के, बहुत सुंदर। मुझे उनके बारे में ज़्यादा कहने का अधिकार कम है इसलिए क्योंकि मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। वो एज ए वायलिनिस्ट फिल्मों में काफ़ी पॉपुलर थे
1: जी,
2: प्यारेलाल जी। और शुरू में जब ये बड़े म्यूजिक डायरेक्टर लोग थे, मदन मोहन साहब, नौशाद साहब, रोशन साहब,
1: हाँ,
2: जयदेव साहब, उस वक्त उन्होंने कुछ सोलो पीसेस बजाए हैं फिल्मों में। और वो उनमें से मदन मोहन जी का एक गीत है जो हकीकत फिल्म का गीत है
1: जी।
2: तो वो गीत आप श्रोताओं को सुनवा सकते हैं। मदन मोहन साहब के म्यूजिक डायरेक्शन में प्यारेलाल जी ने जो सोलो पीस बजाया उसमें,
1: मैं ये सोच के उसके दर से।
2: एग्जैक्टली वही गीत है।

हकीकत फिल्म का गीत अपने श्रोताओं को पंडित जी हमने अभी सुनवाया, रफी साहब का गाया हुआ, जिसमें प्यारे लाल जी द्वारा बजाया सोलो पीस हमने सुना। और

0: इसी की बात हो रही थी आपसे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कभी फिल्मों की ओर रुख करने का मन हुआ होगा आपका?
1: जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। इनफैक्ट 1975 में मैं पूना में था, नौकरी करता था
0: जी,
1: और तबादला करा के मैं केंद्रीय विद्यालय में बम्बई में आया। उस जमाने में मेरा एजेंडा में एक बात थी कि क्लासिकल म्यूज़िक मुझे सीखना चाहिए, और पंडित रामनारायण जी अकेले वो व्यक्ति थे जिनके साथ मैं मिल के उनसे सीखना चाहता था। लेकिन यूथ जो होता है वो बड़ा कंफ्यूज होता है। मैं भी जवान था उस वक्त, तो मेरा कभी कभी फिल्मों की तरफ भी अट्रैक्शन होता था, कभी क्लासिकल म्यूज़िक की तरफ।
0: हाँ।
1: उसी उधेड़बुन में एक दिन मैं जयदेव साहब के यहाँ जा पहुँचा, और जयदेव जी रहते थे हीरोज़ टाकीज़ जो बम्बई में है उसके पीछे लिली कोर्ट में।
0: हाँ हाँ।
1: मेरे एक मित्र प्रदीप बारोट और मैं दोनों गए। प्रदीप बारोट सरोद बजाते हैं, तो उनके साथ मैं गया और जयदेव जी को मैंने देखा एक कमरे में चटाई बिछाए हुए। आज के म्यूज़िक डायरेक्टरों से उनकी तुलना नहीं कर सकते आप, वो इतने बड़े लोग थे, महान बड़े जो वास्तव में कहे जाने चाहिए
0: जी।
1: एक चटाई बिछा रखी, तकिया लगा के थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं, और पास में हारमोनियम पड़ा हुआ, तो हम गए मिलने, हमें तो दर्शन करने थे। उन्होंने मुझे सलाह दी और मेरे गुरुजी पंडित रामनारायण ने सलाह दी कि फिल्मों में अगर जाओ तो मेरे पास मत सीखना।
0: हो
1: इवन जयदेव जी ने भी यही कहा कि फिल्मों में जाओगे तो फिल्मी हो जाओगे। और ये देखिए बड़प्पन बड़े लोगों का, जयदेव जी, गुरुजी, नौशाद साहब या रोशन साहब, ये सब फिल्मों में रहे लेकिन फिल्मी नहीं हुए। और यहाँ एक बात मैं बहुत आदर के साथ श्रोताओं को और आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे गुरुजी ने फिल्मों में असंख्य पीसेस बजाए और एक से एक उम्दा, जिनका जिक्र अगले एपिसोड में करेंगे
0: जी।
1: तो जयदेव जी ने मुझे कहा कि फिल्मों में बजाओगे तो फिल्मी हो के रह जाओगे। जयदेव जी इतने महान संगीतज्ञ थे कि उन्होंने जिस फिल्म में भी गीत बनाए हैं वो गीत महान हुए। एक गीत उनका सुना दीजिए, तू चंदा में चांदनी, रेशमा और शेरा फिल्म का। ये मेरी तरफ से उनको आदर होगा।
0: जयदेव साहब की बात निकली है तो उन्हीं का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं
1: जी। अवश्य।

0: महान संगीतकार जयदेव की ये संगीत रचना फिल्म रेशमा और शेरा से अपने श्रोताओं को हमने सुनवाई, लता जी की आवाज, बाल कवि बैरागी की रचना, और इस रचना के साथ ही वॉयलिन का विहंगम संसार इस श्रृंखला की ये कड़ी यहीं संपन्न हो रही है। नमस्कार।
1: वॉयलिन का विहंगम संसार। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा। बस कुछ ही पलों के बाद

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।
2: जय माला।

0: आजादी। जरा याद करो कुर्बानी।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा। फौजी साथियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा का नमस्कार। साल के दो चार दिनों में देशभक्ति गीतों को सुनने मात्र को देश प्रेम नहीं कहा जाता। देश प्रेम एक ऐसी भावना है जो दिल में गहरे बैठती है। देश की माटी के लिए अपना सर्वस्व लुटाने का जज्बा, हर खतरे को भांपते हुए भी उसकी ओर कदम बढ़ाने का साहस और निडरता हमारे सैनिकों की निशानी है। अपने परिवार को सिर्फ चंद लोगों में सीमित ना करके संपूर्ण देशवासियों को अपना परिवार मानने का हौसला हमारे सैनिक करते हैं। न सिर्फ वो ये मानते हैं बल्कि इस परिवार को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें दुश्मन की कितनी ही गोलियों का सामना करना पड़े, चाहे तोप के सामने ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। हमारे जांबाज सैनिक वो अदम्य साहस दिखा जाते हैं जिन्हें पढ़कर, सुनकर और जानकर हम आश्चर्य, जोश और कृतज्ञता से भर जाते हैं। ऐसी ही अदम्य साहस, जांबाजी और निडरता की कहानी रचने वाले एक वीर सैनिक की शौर्य गाथा आज हम लिए आए हैं। आप हैं देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित सिपाही पांडुरंग सालुंखे।

बचपन के बाद जीवन के खूबसूरत दिनों में किशोरावस्था को शामिल किया जाता है। ये एक ऐसा समय होता है जब व्यक्ति जितना साहसी होता है उतना ही भ्रमित भी। उसे अपने जीवन के प्रति एक अलग उत्साह होता है, साथ ही भविष्य की अनिश्चितताएं भी सामने होती हैं। शायद इसीलिए किशोरावस्था को अल्हड़ता का दूसरा नाम भी कहा जाता है। लेकिन ये स्थिति सभी के साथ नहीं होती। कुछ ऐसे युवा भी होते हैं जो कम उम्र में ही अपना भविष्य तय कर लेते हैं, बना लेते हैं एक ऐसा नाम जो साल दर साल लोगों की जुबान को पवित्र करता है। ऐसा ही व्यक्तित्व रहा सिपाही पांडुरंग सालुंखे का। महाराष्ट्र के सांगली जिले के एक गांव में 1 मई 1950 को बालकृष्ण सालुंखे के घर जन्मे सुपुत्र पांडुरंग सालुंखे। आप मात्र 19 वर्ष की आयु में ही देश प्रेम की राह पर चल निकले और बन गए मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की 15वीं बटालियन का हिस्सा और कहलाने लगे सिपाही पांडुरंग सालुंखे। मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट भारतीय सेना की एक ऐसी पैदल सेना रेजिमेंट है जो हल्के हथियारों के साथ युद्ध के मैदान में उतरती है। इस सेना के पास भले ही हथियारों के रूप में भार कम हो, लेकिन वो शत्रुओं पर हमेशा भारी पड़ती है, क्योंकि हल्के हथियारों के साथ भारी जोखिम उठाते हुए तीव्र गति से युद्ध मैदान में घुसकर शत्रुओं को परास्त करना इनका गुण है। 1768 में बनी ये रेजिमेंट सबसे पुरानी लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट ने स्वतंत्रता के पहले और बाद में कई युद्धों में अपना योगदान दिया है और तकरीबन 56 से भी अधिक युद्ध सम्मान इस रेजिमेंट के नाम हैं। अप्रैल 1952 में इसे सेकंड पैरा ट्रूप्स में बदला गया है। पैरा ट्रूप्स ऐसी सेना होती है जिन्हें पैराशूट्स की मदद से युद्ध क्षेत्र में उतारा जाता है, जो सीधे शत्रु सेना से भिड़ने को तैयार रहती है। आपको ये भी बता दें कि मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट का युद्ध घोष है, बोला छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। यही युद्ध घोष करते हुए सिपाही पांडुरंग सालुंखे ने साहस की परिभाषा बदल दी।

1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध 3 से 16 दिसंबर तक लड़ा गया था। इस दौरान हमारे तीनों सेना के सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। तकरीबन 4090 भारतीय सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। 600 सैनिकों को विभिन्न सैन्य सम्मानों से नवाजा गया, जिनमें 4 परमवीर चक्र, 76 महावीर चक्र और 513 वीर चक्र शामिल हैं। इन महावीर चक्र विजेताओं में से ही एक हैं हमारी आज की शौर्य गाथा के नायक सिपाही पांडुरंग सालुंखे, जो शामिल थे उस 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री में, जिसे इस युद्ध में बैटल ऑनर बुर्ज और द थिएटर ऑनर पंजाब का सम्मान भी मिला।

भारती पर आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा। इस श्रृंखला में आज देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित सिपाही पांडुरंग सालुंखे की शौर्य गाथा। ७१ में पाकिस्तान की ओर से युद्ध का आभास होते ही संभावित हमलों को रोकने के लिए रक्षात्मक कार्यवाही शुरू कर दी गई। इसके तहत 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री को मध्य के पास साकी नाले पर फतेहपुर लोपोक का भार सौंपा गया। इस इन्फेंट्री में ही शामिल थे सिपाही पांडुरंग सालुंखे। इस इन्फेंट्री ने छनकला, तुर और भिंडी औलक गाँवों में निगरानी रखने के साथ ही वेरा में भी लड़ाकू दस्ता स्थापित कर दिया। मराठा लाइट इन्फेंट्री के इस कदम से फतेहपुर, बुर्ज और घोगा इलाके की सीमा सुरक्षा बल पोस्ट को भी मजबूती मिली। यूं भी मराठा लाइट इन्फेंट्री अकेली नहीं थी, उनके साथ एक फील्ड रेजिमेंट और 66वीं आर्मर्ड रेजिमेंट की विजयंत टैंक स्क्वाड्रन भी थी।

0: वहीं अमृतसर के दिशा में शत्रुओं को रोकने के लिए दूसरी बटालियन तैनात थी और तीसरी बटालियन को गुरदासपुर सेक्टर में मोर्चा दिया गया। इस तरह हम शत्रुओं के लिए पूरी तरह से तैयार थे।
1: बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, सिंह से दहाड़ के जुल्म के पहाड़ पे चढ़े चलो, बढ़े चलो बहादुरों, बढ़े चलो,
2: बढ़े चलो, बढ़े चलो,
1: पत्थर जो आए

0: के अनुसार पाकिस्तान ने 3 और 4 दिसंबर की रात अपनी 2 बटालियन के साथ हमला बोला। 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री का मुकाबला 43वीं बलूच के साथ हुआ। देर रात शुरू हुए इस हमले में पाकिस्तान को बढ़त मिली और उसने घोगा, बहलोल, गुलगढ़ के साथ पूरे धुस्सी बंद पर कब्जा कर लिया, जिसमें दक्षिण छनकला से लेकर दक्षिण भिंडी औलख भी शामिल थे। सुरक्षा सीमा बल की फतेहपुर पोस्ट पर भी दुश्मनों का कब्जा था। भारतीय सेना के हाथ में गांव बने रहे, लेकिन एक बड़ा क्षेत्र दुश्मनों के कब्जे में था। युद्ध के मैदान में हार जीत बनी रहती है, लेकिन सबसे जरूरी होता है अपने हौसले और धैर्य को बनाए रखना। यहाँ हम ये नहीं देखते कि दुश्मन के हाथों में क्या है, बल्कि इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि हमारे पास मौजूद संसाधनों का उपयोग किस तरह किया जाए। यही वो गुण है जो हमारी भारतीय सेना के जवानों के अंदर मौजूद है।
1: है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आन भान शान या की

करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।

भाव या किशोर का चुनाव या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या किशोर का चुनाव या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो।

0: विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा में समय है एक अंतराल का।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा। इस श्रृंखला में आज देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित सिपाही पांडुरंग सालुंखे की शौर्य गाथा। पाकिस्तान की ओर से युद्ध आरंभ हो चुका था और एक बड़ा क्षेत्र भी उनके कब्जे में था। हमारे आज की शौर्य गाथा के नायक सिपाही पांडुरंग सालुंखे अपनी रेजिमेंट के साथ युद्ध मैदान में डटे हुए थे। आगे की रणनीति पर विचार हो रहा था तो 5 दिसंबर को 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री ने अपना प्रयास जारी रखा

और एक छोटी ही सही लेकिन महत्वपूर्ण घटना हुई। दुग और औलख में ईस्ट बंगाल राइफल्स के करीब 150 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। वो अपने साथ पाकिस्तानी सेना से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी भी ले आए थे। सेना ने यह तय किया कि पाकिस्तान के कब्जे से धुस्सी बंद को वापस लेना है। किसी भी हार से तुरंत बौखलाकर वार ना करना, बल्कि कुछ कदम पीछे हटकर एक रणनीति के साथ वापस युद्ध मैदान में जाना एक सार्थक परिणाम भी लाता है।

15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट युद्ध के मैदान में डटी थी। इसका नेतृत्व कर रहे थे मेजर रणबीर सिंह, जो सेकंड इन कमांडर थे और कंपनी कमांडर का दायित्व भी निभा रहे थे। वो अपनी सेना के साथ बुर्ज की ओर आगे बढ़ने लगे। शत्रुओं को इसकी भनक लगते ही 6 दिसंबर को बुर्ज पोस्ट पर पाकिस्तानी सेना की ओर से दिन के उजाले में ही हमला होने लगा। ऐसे में मराठा लाइट इन्फेंट्री ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। इसकी उम्मीद शत्रु सेना को नहीं थी, वो इस हमले से सकते में आ गए। पीछे हटने के सिवा उनके पास कोई चारा ही नहीं था। मेजर रणबीर सिंह ने निर्णय लिया कि अब बुर्ज पर अधिकार करने में ज्यादा समय लगाना उचित नहीं होगा। अगर जरा सी भी देर की गई तो शत्रु एक बार फिर तैयार हो सकते हैं। एक ओर जहां शत्रु सेना एक छोटी सी जीत के जश्न में ही डूब गई थी, वहीं हमारी सेना के निर्णय से आप समझ सकते हैं कि अगर शत्रुओं को खदेड़ना हो तो एक छोटी जीत को अपने दूसरे प्रयास से बड़ी जीत में बदलने के बाद ही जश्न मनाया जा सकता है। पाकिस्तानी सेना को बुर्ज में मुंह तोड़ जवाब देने के बाद सिपाही पांडुरंग सालुंखे अपनी मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के साथियों के साथ अगले आदेश का इंतजार कर रहे थे। उनकी रेजिमेंट का नेतृत्व मेजर रणबीर सिंह के हाथ में था। मेजर रणबीर सिंह ने ये तय किया कि अब दुश्मन सेना को ज्यादा समय देना उचित नहीं है। अपनी अन्य साथी सेनाओं के साथ उन्होंने एक ऐसी रणनीति अपनाने का फैसला किया जो दुश्मन के लिए भ्रम की स्थिति

बेहतरीन नेतृत्व तभी सफल हो पाता है जब उसके पास एक साहसी और निडर सेना मौजूद हो। मेजर रणबीर सिंह 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट और अन्य रेजिमेंट्स के साथ बुर्ज पर दुश्मनों को दोनों ओर से घेरने की योजना बना चुके थे। ऐसे में उन्हें अपने साथ मौजूद सभी सैनिकों पर पूरा भरोसा था। रेजिमेंट्स भी अपने साहस, पराक्रम और जज्बे का एक एक कतरा न्यौछावर करने को तैयार थे। मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट जिनकी रग रग में दौड़ता है कर्तव्य, सम्मान और साहस, जो हर बार शत्रुओं को ये याद दिलाते हैं कि वो भारत की सबसे पुरानी लाइट इन्फेंट्री हैं, जिनके युद्ध घोष से ही शत्रु के हृदय में भय की झंकार होती है। उसी 15वीं मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में शामिल थे हमारी आज की शौर्य गाथा के नायक सिपाही पांडुरंग सालुंखे, जो अपने साथियों के साथ मेजर रणबीर सिंह के नेतृत्व में पूरी तरह तैयार थे शत्रुओं पर हमला बोलने के लिए। 6 दिसंबर को बुर्ज पर हमला शुरू हुआ। बंकरों में छुपी शत्रु सेना के साथ मराठा पैदल सेना ने आमने सामने की लड़ाई की। यहां तक कि हमारी सेना ने कुछ स्थितियों में शत्रुओं से सीधे हथियार छीन लिए और उन्हें हराया। ये एक बेहद क्रूर और मुश्किलों से भरी लड़ाई थी, क्योंकि हमारे सैनिक शत्रुओं के मोर्चे पर जाकर उनसे सीधे लड़ रहे थे। इस बीच पीछे से टैंक और पैदल सैनिक भी उनकी मदद के लिए आ रहे थे। शत्रु बुरी तरह से बौखलाया हुआ था। एक ओर उस पर सीधा हमला जारी था और दूसरी ओर उसे अपनी हार नजर आने लगी थी। ऐसी बौखलाहट में अक्सर आक्रामकता बढ़ती जाती है। सिपाही पांडुरंग सालुंखे भी यहाँ शत्रुओं से दो दो हाथ कर रहे थे। तभी उनकी नजर शत्रुओं के एक ऐसी चाल पर पड़ी जिससे हमारी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। शत्रु ने एक रॉकेट लॉन्चर पैदल सेना के साथ आ रहे भारतीय टैंकों की ओर मोड़ दिया था। अनहोनी किसी भी वक्त हो सकती थी। सिपाही पांडुरंग सालुंखे शत्रु सेना से बुर्ज पर अपने साथियों के साथ भिड़ रहे थे। इसी बीच दुश्मनों ने रॉकेट लॉन्चर पीछे से आती पैदल सेना और भारतीय टैंक की ओर मोड़ दिया। एक पल में ही बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। जैसे ही सिपाही पांडुरंग ने रॉकेट लॉन्चर को देखा, बिना वक्त गवाए वो उस ओर दौड़ पड़े। सिपाही पांडुरंग सालुंखे ने शत्रु सैनिक के हाथ से रॉकेट लॉन्चर छीन लिया और उस शत्रु सैनिक को मार गिराया। लेकिन शत्रु उनके इस कारनामे से बौखला गया और सिपाही पांडुरंग सालुंखे पर स्टेन गन से धुआंधार वार किया। गोलियों की इस बौछार से सिपाही पांडुरंग सालुंखे वहीं शहीद हो गए। लेकिन उन्होंने अपने इस बलिदान से अपने कई साथियों की जान बचा ली। यही नहीं, उनके इस बलिदान के कारण ही बुर्ज पर भारतीय सेना का कब्जा हो सका।

सिपाही पांडुरंग सालुंखे ने जब बलिदान दिया तब वो मात्र 22 वर्ष के थे। इस छोटी सी उम्र में ही उन्होंने वो बड़ा काम किया जिनसे उनका नाम अमर हो गया। सिपाही पांडुरंग सालुंखे को उनकी इस असाधारण बहादुरी, अदम्य साहस और कर्तव्य निभाते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए मरणोपरांत देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।

हम इस जांबाज सिपाही को नमन करते हैं। विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित सिपाही पांडुरंग सालुंखे की शौर्य गाथा। शोध आलेख और स्वर निहाल शर्मा का, प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं, गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम इंद्रधनुष साज और आवाज़। बांसुरी पर हैं पारसनाथ। सबसे पहले सुनते हैं इस गीत की धुन।

0: ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए व्यापार में सुगमता सुधारों से सशक्त होती अर्थव्यवस्था पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय और डॉक्टर एसपी शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: In the last 12 years of the NDA government, Prime Minister Narendra Modi has always emphasized that ease of doing business is one of the major priorities of the government. And the government has relentlessly been working towards this goal so that business opportunities can be democratized, more and more people can become a part of the nation building exercise. And of course, the concept which has been reiterated time and again that instead of job seekers, more and more people become job creators. So to discuss this very important topic of ease of doing business, how it has strengthened India's business framework in the last 12 years. We have two economic experts with us, Mr. Dilip Chinoy and Dr. S.P. Sharma, economic experts. A warm welcome to you on Akashvani.
2: Thank you.
1: So, Dr. Sharma, पहले आपके पास आते हैं और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पिछले 12 वर्षों में जिस तरह से व्यापार जगत बढ़ा है, जिस तरह से ज्यादा नए व्यापारों को एक तरह से प्रोत्साहन मिला है सरकार की ओर से, जो रिफ्लेक्ट होता है स्टार्टअप्स, अगर हम देखें 350 स्टार्टअप्स थे 2014 में और अब 220,000 स्टार्टअप्स है हमारे देश में। सो एक स्टेटिस्टिक जस्ट इट्स रिप्रेजेंटेटिव कि किस तरह से ग्रोथ हुआ है। सो आप कैसे देखते हैं 12 वर्षों को, बिजनेस एनवायरनमेंट जो इंप्रूव हुआ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या लगता है आपको सरकार के कौन से एफर्ट्स, अगर आप टॉप टू हमें बताएं, इस दिशा में जो रिफॉर्म्स परिवर्तनकारी रही हैं?
2: जी बिल्कुल, सोनू जी आपने सही बताया कि जो रिफॉर्म्स हुई हैं जो पिछले 12 वर्षों में, जिन्होंने एक बहुत मेजर ब्रेक थ्रू दी है हमारे इकोनॉमी को, हमारे मैन्युफैक्चरिंग को और हमारे ओवरऑल जो देश का जो जीडीपी है उसको आगे बूस्टअप किया है। तो सरकार का जो पहल था, जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ, मेक इन इंडिया से, क्योंकि मेक इन इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बिना कुछ भी नहीं था। तो सरकार ने मेक इन इंडिया को अनाउंस करते ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स के ऊपर जोर दिया, बहुत बल दिया, जिससे कि हम बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर पाए। अगर हम देखें कि 2014 में जो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंक था वो 143 था, वर्ल्ड बैंक का एक इंडेक्स आता था उस टाइम पे, तो जिसमें हम 143 थे, बहुत नीचे थे। मतलब लगभग जो जितनी भी इकोनॉमीज हैं, जो भी इमर्जिंग मार्केट्स हैं या फिर एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, इवन के डेवलपिंग इकोनॉमीज भी हमारे से काफी ऊपर थी। तो उसके बाद सरकार ने इसके ऊपर पूरा जोर दिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिफॉर्म्स के ऊपर जोर दिया, तो हम धीरे धीरे करके 2020 तक जो थे 63 तक आ गए थे। हम अपना रैंकिंग जो था सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करते हुए 63 पे आए। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने अपना इंडेक्स बंद कर दिया, मे बी बिकॉज ऑफ सम रीजंस। उसके बाद जो स्टेट्स ने, उन्होंने अपना ब्रैप रिफॉर्म्स चालू किए, बिजनेस रिफॉर्म्स असेसमेंट प्लान जो था, उसके बाद उसमें बहुत तेज गति से काम हुआ, स्टेट्स में एक बहुत हेल्दी कंपटीशन हुआ, जिसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो एक पैशन बन गया, जो लोगों में, बिजनेसेस में, सरकार में, उसमें ज्यादा से ज्यादा रिफॉर्म्स हो, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो होनी शुरू हो गई, जो उसके पिलर्स हैं, खास करके जो एक हम बात करते हैं कि एक फेसलेस, पेपरलेस और फिर लेसर प्रोसीजर्स एंड लेसर कंप्लाइंसेस, ये चार जो पिलर्स हैं, इन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू दी है, जिससे हम आज अगर हम देखते हैं हमारे स्टार्टअप्स, जो आपने बात की कि लगभग कोई 360 स्टार्टअप्स थे, उसके बाद अभी 220,000 हैं। अगर हम देखें कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अभी हमारा लास्ट ईयर का अगर हम उसका ग्रोथ रेट देखें तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रू मोर देन 10%। सो डबल डिजिट ग्रोथ इज कमिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो ये सब चीजें जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से ही हो पाई, जिससे कि हमारा जो इन्वेस्टर है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुआ और जो एफडीआई आना शुरू हुआ, जो 2019-20 के बाद एक एफडीआई को ब्रेक थ्रू मिली और अभी हम 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा क्यूमुलेटिव एफडीआई अट्रैक्ट कर चुके हैं। हमारे देश में 1 ट्रिलियन से ज्यादा का एफडीआई का एक क्यूमुलेटिव जो भंडार है वो हो चुका है, और अभी लास्ट ईयर ही हमारा एफडीआई $95 बिलियन था। तो लगभग हम मेरे ख्याल से इसी वर्ष में हम 100 बिलियन डॉलर का एक एफडीआई डेस्टिनेशन बनने जा रहे हैं. सो दिस इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ अवर इज ऑफ डूइंग बिजनेस विच हैज सपोर्टेड द मैन्युफैक्चरिंग अवर एफडीआई एंड अवर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू मूव फॉरवर्ड एंड टू बिकम मोर एंड मोर रेजिलिएंट इन द ग्लोबल इकोनॉमी.
1: एब्सोल्युटली. सो मिस्टर चनॉय, डॉक्टर शर्मा हैज सो यू नो एक्सटेंसिवली एक्सप्लेन दैट हाउ द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हैज बिकम द मंत्रा फॉर द पुश दैट हैज कम टू द मैन्युफैक्चरिंग sector, to the Make in India initiative of the government and the GDP growth. Would you say that the government's focus has gradually shifted from a compliance-heavy system to a facilitation-driven ecosystem? How do you see this basic mindset change, or you can say paradigm shift, in how the government is taking a collaborative and inclusive approach?
3: If you look at the whole ecosystem, right, earlier business was always viewed with suspicion.
1: Yes.
3: You were always seen as being a tax evader, not filing returns, you know, always evading and finding ways to circumvent the law, whatever it is.
1: Mm-hmm.
3: A very significant change has happened in this last 12 years, that business has been recognized. I think for the first time, the Prime Minister actually talked about businesses being responsible and contributors to the economic growth in his Independence Day speech. It's never happened before. The second thing, which is very important to actually understand in this whole context, was that there were a whole set of small things, like if you didn't file certain data under certain law, or if you did not submit a return by a certain time, it was imprisonment. So all that has gone away. A lot of that has gone away. Some things still remain. You've had two versions of the Jan Vishwas Bill, 1.0 and 2.0. So you've actually looked at this. The third thing which is there is that they've allowed self-certification.
1: Yes.
3: Right? For the common man, what does self-certification mean? It means if you're doing something, if you're applying anywhere, you can take a copy of your Aadhaar card and self-attest it.
1: Mm-hmm.
3: This was not possible in earlier regimes. You could take a lot of documents and self-certify them. If you were to file certain

0: entrepreneurship is in their mind. They want to move forward to become entrepreneur to provide the jobs to the other people. So this is the reflection of overall ease of doing business during the last 12 years, with the many reforms starting from Make in India to the recent reform of Bhavya scheme. Like, the government has provided industrial park scheme. You can develop your manufacturing plant in a single go, in a single space to move forward. And that is a great example of ease of doing business.
1: Yes.
0: Like, the single window system was providing the procedural breakthrough. Now this Bhavya scheme is providing the setup of business at a single space. So all these developments are supporting the economy, supporting the businesses, and supporting the employment to happen for the growing young population in the country. So I'll give you some more example. Like, earlier I discussed the FDI inflows in India. Now the free trade agreements. These free trade agreements are becoming a major breakthrough for the Indian economy in the global economic system. We have already signed 8 free trade agreements. 9th is in process since the last 6-7 years. And these free trade agreements will become more fruitful with more and more ease of doing business.
1: Yes.
0: So as already we have undertaken many reforms for the ease of doing business, so this is the right time to move forward to become more and more strong in the global economic system with the free trade agreements with the promising economies. So this is the support of ease of doing business, that the government is able to sign free trade agreements with the many competitive economies in the advanced economies.
1: Yes.
0: Like 38 economies are advanced economies in the all free trade agreement which we have signed during the last 6-7 years.
1: Absolutely.
0: With a great confidence.
1: Yes.
0: That yes, we have a strong ease of doing business, we can compete with them in the global market or even in the domestic market, as ease of doing business has created a great level playing field in the economy. So going forward, I believe now we are very much capable to move forward and to become a great player in the global economy, to compete with many countries. Like Shunai mentioned, that our PMI is now at the top of the competitive economies.
1: Absolutely.
0: We are, our PMI is higher than any economy in the top 10 economies. Like our services PMI, our manufacturing PMI, even despite the such kind of headwinds at the global level, our PMI is more and more resilient in the global economic
1: Absolutely.
0: System.
1: Absolutely. चलोए, जैसा कि अभी डॉक्टर शर्मा ने कहा कि हम, और आपने भी कहा कि इतने हम आपदाओं से गुजरे, इतनी मुश्किल सिचुएशंस जो इंटरनेशनल लेवल पर हुई, चाहे वो पैंडेमिक हो, चाहे ये जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो, बट फिर भी हमारे आर्थिक मजबूती बनी रही है. मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो सरकार के फ्लैगशिप स्कीम्स रही हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया या पीएम मुद्रा योजना, जिसमें आपको एक बिजनेस शुरू करने के लिए कोलैटरल फ्री बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन दिया जाता है, या जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन सिस्टम बनाया गया था सरकार द्वारा, इनको आप कितना कहें कि क्रांतिकारी मानते हैं, जिन्होंने सबको, जिनकी भी ड्रीम थी एक व्यापार शुरू करने की, उसे पूरा करने का एक मौका दिया.
2: सूर्य जी, अगर आप देखें तो अगर एक बिजनेस शुरू करने के लिए, और आपने एसपी शर्मा से ये पूछा था कि क्या बदला है, ठीक है, तो पहला जो चीज बदला, जैसे उन्होंने समझाया कि आप घर बैठे बैठे, और आपने पूछा ऑनलाइन का, आप घर बैठे बैठे अपना बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं, आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, आप पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं, और आप टैक्सेस भर सकते हैं. तो आपका जो समय बर्बाद होता था लाइनों में खड़े हुए और ये इंटरेक्ट करने के लिए, अब वो एक बहुत कम सा हो गया है. अगर आप देखें जो स्कीम्स जिसकी आपने बात की थी, तो ये स्कीम्स जो आपने इस 3 स्कीम्स की बात की थी ना, ये एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए है. जो आप देखें तो जो मुद्रा स्कीम है, वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और उनके लिए जो छोटे छोटे अमाउंट्स जो बैंक्स में एक बहुत अविश्वसनीय होती थी, क्योंकि बैंक के लेंडिंग पोर्टफोलियो में जिसकी उनको कॉस्ट पड़ती थी उस लोन को देने के लिए, वो उनका इंटरेस्ट कवर नहीं करता था. तो गवर्नमेंट ने जब ये स्कीम एक तरीके से लागू किया, और इनमें मुद्रा स्कीम तो एक ही उस वर्ग के लिए, ठीक है, अलग अलग स्कीम जो है, स्ट्रीट वेंडर्स के लोन स्कीम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए स्कीम है. तो इस रिफॉर्म की एक खासियत है कि उन्होंने, और किसान क्रेडिट कार्ड उसको मत भूलिएगा,
1: जी जी,
2: उन्होंने पूरे जो इकोनॉमी में जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटा है, लोएस्ट लेवल से लेके हाईएस्ट बिजनेसमैन एंड एफडीआई के लिए, हर कदम पे उनको क्या दिक्कत आ रही है, उनकी क्या जरूरत है, उसके लिए एक स्कीम लॉन्च किया, पीएम विश्वकर्मा स्कीम, जिसको कारीगर को एक लोन मिलता है अपने टूल्स को करने के लिए, और एक उनको स्किलिंग करते हैं. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. और जनधन योजना और जो आधार और मोबाइल का जो ट्रिनिटी है, उन्होंने ग्रास रूट लेवल में लोगों की जिंदगी बदल दी है। और साथ में क्योंकि वो छोटे छोटे अमाउंट्स जो जनधन योजना में आए थे और जो करोड़ों अकाउंट्स खोले गए थे, अगर उसकी आप पूंजी जोड़िए तो वो सारा जो पूंजी है इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने के काम आई है। वो पहले तो एक अपने घर में रखी रहती थी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी सपोर्ट नहीं करती थी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज के जमाने में 2012-13 में आप पूछे कि आप अपने बेटे को क्या बनाएंगे, तो लोग कहते थे इंजीनियर, डॉक्टर या चार्टर्ड अकाउंटेंट।
1: जी
2: ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का नाम ही नहीं आता था।
1: जी,
2: और अगर किसी को कहते कि आप बिजनेस शुरू करें तो माँ बाप कहते कि नहीं बेटा, बेटी आप मत जाओ इसमें, आप एक नौकरी करो।
1: हाँ।
2: एक माइंडसेट चेंज हो गया है देश भर में, गांव गांव में, और अब एक एंटरप्रेन्योर बनने में बहुत ही इज्जत है और देश के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरी जो उसके साथ में आया है, और आपको ये आंकड़ों से नहीं पता होगा लेकिन अगर आप देखें तो अगर आप बिजनेस में फेल करते हो कि आपकी बिजनेस चले नहीं, तो पहले ही एक बहुत ही बुरी नजरिए से देखा जाता था। अब कहते हैं नहीं बेटा, आप इस फेलियर से सीखो और दूसरा बिजनेस शुरू करो।
1: बिल्कुल।
2: और ये एक खास, पहले ये रिफॉर्म्स होने से पहले ये एक बहुत खास डिफरेंस था भारत में और अलग अलग इकोनॉमीज में। अब इंडिया में भी वो एक तरीके से आ गया। और जो ग्लोबल स्तर पे अभी आप देखें तो मेडिकल डिवाइसेस में, ड्रोन्स में, कई कई सेक्टर्स है, स्पेस में यंग स्टार्टअप्स जो है इस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस स्पेस में देखे तो इसरो से कम्पीट कर रहे हैं, डिफेंस में डीआरडीओ से कम्पीट कर रहे हैं, मेडिकल में मेडिकल लेबोरेटरीज के।
1: और कम्पीट की जगह शायद हम कह सकते हैं कि कोलैबोरेशन का एक सरकार का भी है कि उन्होंने सारे सेक्टर्स खोले हैं और वेलकम किया है।
2: बिल्कुल, आपने इमरजेंसी लोन फैसिलिटी किया था लेकिन आप वो देखें, वो आत्मनिर्भर भारत का कोविड के अंतर्द्वान एक स्कीम था जो कोविड में गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एनजीओस और सिटीजन्स ने जो कोलैबोरेट किया था। अभी देखिए, कोविड के पहले तो हम ना पीपीई किट्स बनाते थे, ना वैक्सीन बनाते थे, ना वेंटिलेटर बनाते थे, पूरे गवर्नमेंट इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के साथ हमने वैक्सीन यूज की, अपनी ओन वैक्सीन। ठीक है, पीपीई किट्स में हम नंबर वन बन गए थे, वेंटिलेटर्स बनाना शुरू किया था और कई एक तरीके से थे। और जो स्कीम्स आत्मनिर्भर 1, 2, 3, 4 मेरे ख्याल से थे, उसमें जो स्कीम्स दिए थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे इंडिया को स्टेबलाइज करने के लिए। और उसके खास बात की रिफॉर्म्स से अगर आप देखें तो जो हमने परसेंटेज ऑफ जीडीपी उसमें लगाया था वो औरों देशों से बहुत ही कम था, लेकिन फिर भी अनाज 80 करोड़ लोगों को एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, विमेन के लिए, अलग अलग जो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैं जो आपके श्रोता सुन रहे होंगे वो अपने बिल्कुल संबंध करेंगे कि हमारे लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और हमारे लिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत कुछ हुआ है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं।
1: सो हम मान सकते हैं कि ये ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस है, जैसे आपने जन विश्वास बिल की अभी कुछ समय पहले बात की थी कि काफी सारे डिक्रिमिनलाइज हुए हैं ऑफेंसेस और सजा घटाई गई है ताकि एक जो वो डर का जो माहौल था वो ना हो। एक और जो अभी डॉक्टर शर्मा ने बात करी, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान ब्रैप जो 2015 में शुरू किया गया, और उसका एक ग्रासरूट्स लेवल की बात कर रहे हैं, ग्रासरूट्स लेवल पर डेवलपमेंट पे जो बल दिया गया है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ये ब्रैप है, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान। तो आपको लगता है कि ये भी बहुत जरूरी है भारत जैसे देश में जो इतना विस्तृत है, इतना विविध है और हर एक ज्योग्राफी की अपनी कोई प्रोडक्ट है या अपना कोई ऐसा एक यूनिक प्रोपोजिशन है जो मोनेटाइज किया जा सकता है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने सुनो जी, और उसमें आप देखें तो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है और कंपेटिटिव फेडरलिज्म है। पिछले 12 सालों में आपने दोनों देखे, तो मैं आपको एक दूसरी ओर ले जाता हूं जो हमारे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, हम उन्हें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं। उसमें क्या किया, उसमें एक डैशबोर्ड बनाया कि भाई ये आपके इंडिकेटर, उसमें बिजनेस का भी इंडिकेटर है और एक साल में सबसे ज्यादा कौन तरक्की कर रहा है उसको एक अवार्ड दे रहे थे। तो वहां के जो कलेक्टर्स हैं और वहां ग्रास रूट लेवल पे आप देखें तो वो डैशबोर्ड को देखते थे और कहां कोई अच्छा कर रहा है उसको एक लेकर के अपने डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट करने का देते थे और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली उससे सीख सकते थे। अब क्या हुआ है कि ऑल्दो ये वर्ल्ड बैंक ने अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बंद कर दिया है, बट इंटरनली भारत में ये कंपैरेटिव करते हैं स्टेट्स में कौन क्या कैसे रिफॉर्म कर रहा है
1: जी,
2: उसको कंटिन्यू हो रहा है। तीसरी जो चीज है, कई स्कीम्स बजट में आए, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, चाहे आप

0: पे देखिए यार, कई स्कीम्स हैं जिसमें अगर स्टेट रिफॉर्म करेगा और स्टेट कुछ करेगा उसके साथ ही आपको सेंटर से फाइनेंसिंग मिलेगा। 2014 के बाद हर स्टेट में एक इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है। हर स्टेट ये प्रेजेंट करना है उन्हें क्या रिफॉर्म किए हैं, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किए हैं, और इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स का होता है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट हो गया है कि रिफॉर्म करने का।
1: और ये धुरी यही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे यहाँ बहुत बढ़ी है। डॉक्टर शर्मा, अगर आपके पास आए तो मार्केट एक्सेस पर भी बहुत जो रिफॉर्म्स हुए हैं टेक्नोलॉजी ड्रिवन, ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी हैज बीन अ बिग एनेबलर इन दीज 12 इयर्स, क्योंकि उसको बहुत तेजी से अडॉप्ट किया गया है। जो अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस द्वारा लाई गई, या जो ONDC है, वन नेशन डिजिटल, एंड लॉजिस्टिकल रिफॉर्म्स जो हुई है लॉजिस्टिक्स में, उनको आप कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं MSMEs के लिए, स्मॉल बिजनेसेस के लिए, अपना जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको पहुंचाने के लिए मार्केट तक?
2: जी बिल्कुल सोनू जी, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स के साथ साथ सरकार ने नई पॉलिसीज भी दी है, जैसे कि आपने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की बात की है, उसमें बायर्स और सेलर्स, जो आपका कोई प्रोडक्ट है तो आप उसको कैसे आगे सेल कर सकते हैं, गवर्नमेंट उसकी बायर कैसे बन सकती है। और ONDC प्रोवाइड करता है कि जो ई कॉमर्स है आपका, उसमें बायर्स एंड सेलर्स मिलकर आपस में कैसे अपने जो बिजनेस है उसको आगे ब्रेक थ्रू दे सकते हैं, कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्या है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के, आपको बायर जो है इधर उधर खोजने का जरूरत नहीं है, आप एक प्लेटफॉर्म पे अपना जो प्रोडक्ट है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, उसको आप बता सकते हैं, तो फिर बायर आपको अपने आप ही मिलेगा। तो जैसे आपने रिफॉर्म्स की बात की, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी सरकार लेके आई जिसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट होता था 14% ऑफ GDP होता था, और इस पॉलिसी के साथ साथ जो रिफॉर्म्स हुई, जो सरकार ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रिफॉर्म्स की, जो रेल कनेक्टिविटी में जो रिफॉर्म्स की, जो एयर कनेक्टिविटी में रिफॉर्म्स की, और जो वाटरवेज में जो रिफॉर्म्स की, तो उनके मद्देनजर जो हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट है दैट इज नाउ 9-10% ऑफ GDP, तो उसमें बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट हुई है पिछले 6-7 वर्षों में। और साथ साथ में जो मैं बताना चाहूंगा कि PLI स्कीम, जो एक ऐसी स्कीम है जो आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है, सरकार ने ऐसे 14 सेक्टर्स चूज किए जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर्स हैं, जहां पे सरकार ने इंसेंटिव बेस्ड उनको स्कीम में आने को बोला, जिसमें कि आप देखेंगे कि उस स्कीम के मद्देनजर हमारा जो एक्सपोर्ट है बहुत इंक्रीज हुआ है। नाउ वी आर मेकिंग न्यू एंड न्यू रिकॉर्ड्स इन अवर एक्सपोर्ट ट्रैजेक्टरी। हमारा जो एक्सपोर्ट है पिछले 6-7 वर्षों में हर एक साल नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इवन के पिछले साल भी जब ये हेडविंड्स थे, जब टैरिफ हेडविंड्स भी थे, जब आपका ये जियोपॉलिटिक्स भी चरम सीमा पे चला गया, तब भी हमारा जो एक्सपोर्ट है उसने नया कीर्तिमान $863 बिलियन का स्थापित किया, जिसमें सर्विसेज और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स दोनों है। और जैसे चिनॉय साहब ने भी बात की कि ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, अगर हम पीछे 2020 के बाद कोरोना पीरियड के बाद का अगर हम अपना ग्रोथ रेट देखते हैं, दैट इज मोर देन 7% ऑन एन एवरेज। इमीडिएट कोरोना के बाद हम 9.7% पे ग्रो किए, उसके बाद मोर देन 8% पे ग्रो किए, उसके बाद हम 7.3 पे ग्रो, अभी जो टोटल अगर हम देखेंगे दैट इज मोर देन 7% इन अ रो, तो एक बहुत बड़ी चीज है। जबकि ग्लोबल ग्रोथ जो है वो 6% से गिर के, अभी जो लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है वो लगभग कोई 2.7% रहेगी या 2.6% रहेगी। तो कितना ग्लोबल ग्रोथ में कितनी डिसेलरेशन हुई, लेकिन इंडिया का ग्रोथ रेट जो है इंटैक्ट रहा। अभी भी जो वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट्स हैं वो 6.6% पे, हमारे RBI का एस्टिमेट 6.5% पे, और हमारे जो इंडस्ट्री बॉडीज हैं दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक एट अराउंड 7%। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अवर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, अवर एक्सपोर्ट्स, अवर रिफॉर्म्स प्रोसेस एंड अवर रिफॉर्म्स फॉर दीज ऑफ डूइंग बिजनेस गो हैंड इन हैंड। ये चारों चीजें मिलके एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू जो है हमारी इकोनॉमी को दे रहे हैं। हमारे आगे लक्ष्य है, जैसे हम बात करते हैं कि हम विकसित भारत बनेंगे 2047 तक, वो एक बहुत ही राइट डायरेक्शन में हमारी जो ग्रोथ हो रही है। जैसे 2030 का हमारे अनुमान है कि हमारा एक्सपोर्ट है जो हम $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट देखना चाहते हैं, जिसमें मर्चेंडाइज 1 ट्रिलियन होगा, सर्विसेज 1 ट्रिलियन होगा, और हमारी जो इकोनॉमी है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, और जो हमारा GDP का साइज ऑफ GDP दैट विल ऑल्सो क्रॉस 5 ट्रिलियन। तो कुल मिला के जो स्टेटिस्टिक्स है और जो रिफॉर्म्स है और जो क्वालिटेटिव जो डेवलपमेंट्स हैं, जैसे मैंने बताया कि अभी सरकार ने एक भव्य स्कीम अनाउंस की है, उसके पहले सरकार ने जो इंसेंटिव्स दिए एक्सपोर्टर्स को, के मद्देनजर के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, भले ही हम डायरेक्ट तौर पे इंसेंटिव्स नहीं दे सकते, फिर भी हम फैसिलिटेट कर सकते हैं कि उनको जो ये वेस्ट एशिया क्राइसिस है उसका जो इंपैक्ट है कैसे मिटिगेट किया जा सकता है। तो इन सब चीजों में सरकार बहुत तेज गति से आगे रिफॉर्म्स कर रही है। और जैसे चिनॉय साहब ने एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की बात की, जो सरकार सरकार ने कोरोना के टाइम पे अनाउंस की थी।

0: क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मैनचेस्टर में खेले जा रहे क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल जो दिल्ली से रिले किया जा रहा है।
1: मार्जोना कैप ने 3 ओवर में 21 रन दिए, शबनम इस्माइल ने 4 ओवर में 28 रन, ट्रेवन ने 2 ओवर में 23 रन, मिलावा ने 4 ओवर में 33 रन, आयबोंगा खाका ने 4 ओवर में 31 रन और नदीन दिकलाक ने 2 ओवर में 16 रन। अगली गेंद और उसे खेला गया है डीप कवर्स की तरफ, जब तक गेंद को

श्रोता गीत आपने सुना फिल्म बागी 4 से, आवाज़ जोश ब्रार की थी। गीत के बोल परंपरा टंडन के, संगीत कुमार और जोश ब्रार का था।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुर।

0: कर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाली उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: थोड़ी देर में समाचार प्रस्तुत किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरियापलायम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता और भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर त्रिकोणीय राष्ट्र ए श्रृंखला अपने नाम की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे शामिल हैं।
6: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
5: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार

0: के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: डेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई।
2: परीक्षा में शामिल 10,000 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं। परीक्षा केंद्रों पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर और राज्य पुलिस की मदद से 2-स्तरीय तलाशी व्यवस्था लागू की गई थी। सीसीटीवी निगरानी के लिए कंट्रोल और कमांड सेंटर, एनटीए मुख्यालय, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 34 केंद्रीय संस्थानों, सभी राज्यों तथा जिलाधिकारी कार्यालयों में स्थापित किए गए थे। एनटीए ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7,00,000 पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और कई रेलवे स्टेशनों पर उन्नत यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि देश भर में रेल अवसंरचना और सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
3: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, के साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर इस वर्ष दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ये समझौता अगले वर्ष फरवरी या मार्च तक लागू हो सकता है। आज मुंबई में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय कारोबारियों को यूरोप के लगभग पूरे बाजार तक बेहद कम या 0 सीमा शुल्क पर पहुँच मिलेगी और इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मुंबई स्थित एक फर्म के साझेदारों से जुड़े कई परिसरों और अन्य स्थानों पर 62,42,00,000 रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में तलाश अभियान चलाया है। सीबीआई ने कहा कि मुंबई में इंडियन बैंक की एसएएम शाखा की शिकायत पर इस महीने की 18 तारीख को मामला दर्ज होने के बाद तलाश अभियान चलाया गया। एजेंसी ने फर्म और उसके साझेदारों, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता खतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमेरिका और ईरान के बीच पहले ही 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम की बात कही गई है, लेकिन इसराइल इस सीधे समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसने लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला पर हमले जारी रखे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने स्पष्ट किया है कि यदि बातचीत सफल होती है और प्रारंभिक समझौता लागू होता है तो कतर के पास ईरान की फ्रीज की गई 6 अरब डॉलर की धनराशि ईरान को वापस दिए जाएंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट INS तरकश कल मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचा। ये जहाज दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपने परिचालन अभियान के तहत तैनात है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस तैनाती का उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना और भारत तथा मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। राजस्थान, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब बात खेलों की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर ही सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 158 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए NEET UG पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सम्पन्न। तमिलनाडु के पेरिया पालियम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

जाने माने अभिनेता टॉम ऑल्टर का 29 सितंबर को निधन हो गया। उन पर केंद्रित विशेष आज के फनकार कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान।
1: सदमा न पहुंचे कोई मेरे जिस्म-ए-ज़ार पर, आहिस्ता फूल डालना मेरे मज़ार पर।

बचपन से ही चूंकि उत्तर प्रदेश के इलाकों में रहना हुआ तो उनकी हिंदी बहुत ही अच्छी थी। मसूरी के वुडस्टॉक स्कूल में अपनी शुरुआती पढ़ाई करने के बाद टॉम अमेरिका चले गए थे। तब उनकी उम्र 18 साल की थी। एक साल तक वो येल यूनिवर्सिटी में रहे। 19 बरस की उम्र में टॉम टीचर बनकर आ गए जगाधरी हरियाणा में। ये वो दिन थे जब वो टीचर तो थे ही एक स्कूल में जिसका नाम सेंट थॉमस स्कूल था, लेकिन चूंकि स्पोर्ट्स से उनका गहरा लगाव था तो वो वहां बच्चों को क्रिकेट भी सिखाया करते थे। 2.5 बरस तक टॉम ऑल्टर

0: ये फिल्म उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने एक हफ्ते में 3 बार इसे देख डाला। यहां से टॉम ऑल्टर की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। उन्होंने सोचा कि वो फिल्मों में काम करेंगे। इसके तकरीबन 2 बरस के बाद टॉम ऑल्टर फिल्म्स एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी पुणे में एक्टिंग का डिप्लोमा लेने के लिए आ गए। सन 1972 से 1974 तक वो पुणे में रहे।
1: मैंने सन 72 में फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था और एक्चुअली इस जगत का सफर तब शुरू हुआ था सन 72 से। 2 साल वहाँ रहा मैं पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में, बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा लिया, बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर 74 में 74 में मैं यहाँ आया था, मेरे ख्याल से मई का महीना था, और मैं अपनी मोटरसाइकिल पर पुणे से बम्बई आया था। मुझको याद है, अच्छी तरह याद है, जेब में 44 रुपये थे और एक पुरानी मोटरसाइकिल थी मेरे पास, उसके अलावा सपनों के अलावा कुछ नहीं था मेरे पास। ये सपनों का सफर तब शुरू हुआ था। काफ़ी तकलीफें भी झेलनी पड़ी, आज भी झेल रहा हूँ, बट एक संघर्ष जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है हर आदमी के जीवन में, और संघर्ष आज भी जारी है और एक मज़ेदार संघर्ष है।
0: टॉम ऑल्टर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो राजेश खन्ना बनना चाहते थे, वो एक रोमांटिक हीरो बनना चाहते थे। हालांकि फिल्मों में उनका जो करियर रहा वो बतौर हीरो नहीं बल्कि बतौर चरित्र अभिनेता रहा। सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी।
1: राज कपूर की एक बहुत ही मशहूर फिल्म थी राम तेरी गंगा मैली, फिल्म मैंने मंदाकिनी के ब्रदर का रोल किया था, एक पहाड़ी आदमी है, वो भी हिंदुस्तानी रोल, और ये जुनून से बहुत पहले, लेकिन जिस तरह मैंने कहा लोग जल्दी भूल जाते हैं, खैर कोई बात नहीं, कोई शिकायत नहीं है। वो रोल मुझे बहुत बहुत पसंद आया क्योंकि वो अपनी जान की कुर्बानी देता है अपनी बहन के लिए, तो वो एक रोल था। फिर एक फिल्म आई थी शतरंज के खिलाड़ी मिस्टर सत्यजीत रे की, उसमें मैंने अंग्रेज का रोल किया था ज़रूर, लेकिन उस अंग्रेज को शेर व शायरी में दिलचस्पी थी और हिंदुस्तान से बेहद प्यार था और उर्दू में बात करता था वो, तो वो बहुत ही एक दिलचस्प किरदार था शतरंज के खिलाड़ी में।
2: वी आर मोस्ट ग्रेटफुल टू हिज मैजेस्टी फॉर ग्रांटिंग अस दिस इंटरव्यू।
3: इस मुलाकात के लिए हम सुल्तान आलम के बेहद शुक्रगुजार।
2: We also appreciate his gesture in disarming his soldiers.
3: हम फौजियों की उनकी अच्छी कदर करते हैं।
2: We regard it, we hope rightly, as evidence of his concern to negotiate a peaceful conclusion for the treaty.
3: हम समझते हैं अली जा अहदनामे के बारे में दोस्ताना बातचीत के लिए तैयार है।
2: I would like, if I may, to add a personal request to His Majesty that he please sign this treaty and formalize his abdication.
3: हमारी दरख्वास्त है सुल्तान आलम अहदनामे पर दस्तखत फरमा के अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबदार हो जाएं।
2: His Majesty shall have a maximum of 3 days for deliberation.
3: इस मसले पर फरमाने के लिए सुल्तान आलम को ज्यादा से ज्यादा 3 दिन की मोहलत मिलेगी।
2: After which the company will assume the administration of Oud.
3: बाद इस मुद्दत के कंपनी बहादुर अवध का सारा इंतजाम अपने हाथ में ले लेगी।
2: I hope the king has understood what I've said.

0: जो कुछ कहा है उम्मीद है सुल्तान आलम समझ गए होंगे।
1: What is this? May please tell His Majesty that I have no use for that.
0: ये रेजिडेंट साहब की किसी काम की नहीं है।
2: आप हमारी दस्तार तो ले सकते हैं रेजिडेंट साहब, दस्तखत नहीं ले सकते।
3: और अब जहाँ तक हिंदी या हिंदुस्तानी का सवाल है, मैं तो मेरी पैदाइश तो मसूरी के है, यूपी की है। जिस जमाने में मेरी पैदाइश हुई यूपी के उस इलाके में लोग या तो हिंदुस्तानी में बात करते थे या तो उर्दू में। हिंदी तो उस इलाके में बाद में आई। मैं वेस्टर्न यूपी की बात कर रहा हूँ, मसूरी देहरादून की बात कर रहा हूँ। बचपन में मेरे वालिद साहब उर्दू लिखते भी थे, पढ़ते भी थे, बात भी करते थे उर्दू में। तो शुरू से मेरे अंदर एक बहुत ही एक दिलचस्पी रही, एक शौक़ रहा उर्दू सीखने का। हिंदी तो हमने स्कूल में सीखी थी। तो मैं जब पूना आया था 1972 में फिल्म इंस्टीट्यूट में, मैंने कहा मैं इस शौक़ को अब मतलब उसको एक अंजाम भी दूँ। मेरे एक दोस्त वहाँ बने मोहम्मद रफ़ीक, तो उन्होंने मुझको उर्दू सिखाना शुरू किया पूना में 2 साल तक। फिर मैं यहाँ आया तो मेरी खुशनसीबी ये रही कि उस्ताद जालिब साहब से मेरी एक मुलाकात हुई। बहुत जाने माने उस्ताद थे उर्दू के, उनका इंतकाल हुआ कुछ 6-7 साल पहले। तो 5 या 6 साल तक मुसलसल मैं जालिब साहब के साथ उर्दू सीखता रहा। और जालिब साहब के बारे में इस वक्त कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत ही जज्बाती मामला है, लेकिन अगर कुछ हद तक मुझको उर्दू आती है वो सिर्फ जालिब साहब की वजह से। लेकिन उर्दू का शौक मेरे अंदर इसलिए आया क्योंकि मेरे फादर बोलते थे, लिखते थे, पढ़ते थे उर्दू।
4: अच्छा।
3: और उस जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि यूपी के उस इलाके में जहाँ मेरी परवरिश हुई उस जमाने में उर्दू या हिंदुस्तानी जबानें चलती थी, हिंदी बाद में आई। शकील बदाउनी का एक शेर है, अगर वो बहुत ही जाने माने शायर थे, उन्होंने लिखा कि शकील दिल हूँ मैं हूँ मोहब्बतों का राजदान, मुझे फख्र है मेरी शायरी मेरी जिंदगी से जुदा नहीं। यानी कि शायरी और जिंदगी अगर जुदा यानी कि अलग अलग रहे तो तब आदमी शायरी नहीं कर पाता, शायद शायरी लिख पाता लेकिन कर नहीं पाता।
5: आज के इस कार्यक्रम में आप टॉम ऑल्टर की जो रिकॉर्डिंग सुन रही हैं वो बहुत बरस पहले विविध भारती के एक इंटरव्यू के दौरान कही गई बातें हैं।
3: उस तरह से एक और फिल्म का नाम लूंगा मैं जरूर, उसका नाम था चमेली मेम साहब, जिसमें मेरा हीरो का रोल था। वो भी बहुत ही सिंपथेटिक रोमांटिक बहादुर इंसान था वो। तो मुझे वो रोल शायद सबसे ज्यादा पसंद है। वो फिल्म भी पसंद है लेकिन वो रोल मुझे बहुत पसंद है। और वो जो हीरो का रोल था वो मुझको उस फिल्म के अलावा बस और एक फिल्म में मिला था हीरो का रोल, जो कभी कंप्लीट नहीं हुई थी फिल्म। तो मेरी जो तमन्ना थी ना, जो एक मसूरी से लेकर जो मैं तमन्ना लेकर यहाँ बम्बई आया था, उस फिल्म में जाकर वो तमन्ना जो है वो पूरी।
5: फिल्म क्रांति में उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर का रोल किया था।

0: सन 1993 में उन्होंने फिल्म सरदार में काम किया।
1: आज इस मीटिंग में जो फैसले लिए जाएंगे उनका असर सिर्फ इस मुल्क ही पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर होगा। इसलिए मौजूदा हालात को देखते हुए और आप सब लीडरों के साथ बात करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हुकूमत जल्द से जल्द सौंप दी जानी चाहिए आपके हाथ में। हमें पूरी उम्मीद है कि आपके इन फैसलों से पैदा होने वाले हालात को संभालने के लिए आप सब तैयार होंगे।
0: टॉम ऑल्टर न केवल फिल्मों में सक्रिय थे बल्कि बरसों बरस तक वो टेलीविजन के लिए भी काम करते रहे।
2: प्रोफेशनली मैं सबसे पहले सिनेमा से जुड़ गया था क्योंकि उस टाइम में टेलीविजन था लेकिन बस उसकी ज्यादा अहमियत नहीं थी। तो और हम आए थे बंबई में फिल्मों में काम करने के लिए, टेलीविजन में काम करने के लिए नहीं, या नहीं तो थिएटर में काम करने के लिए। तो सिनेमा से मैं जुड़ गया था और एक सपना था हीरो बनने का फिल्मों में, और कुछ एक छोटी सी हद तक वो सपना साकार भी हुआ। लेकिन आज भी, हालांकि टीवी में बहुत काम करता हूं मैं और टीवी से मुझे कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन आज भी मैं अपने आप को फिल्म आर्टिस्ट मानता हूं। प्रेफरेंस में रखना बहुत मुश्किल है। प्रोफेशनल तौर पे तो टीवी को मैं ज़्यादा पसंद इसलिए करता हूं कि टीवी में एक मुसलसल आपको काम मिलता रहता है, और अगर आपकी सीरियल हिट हो गई तो जिस तरह जुनून हिट हो गया है, 5 या 5.5 साल तक लगातार आप एक ही किरदार को निभा रहे हैं तो बहुत उसमें मज़ा आता है। तो प्रोफेशनली आजकल मैं टीवी को ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन जो एक मज़ा आता है काम करने में, या जब आपकी पिक्चर हिट होके रिलीज़ हो जाती है या रिलीज़ होके हिट हो जाती है, वो जो मज़ा है जब आपकी पिक्चर हिट हो जाती है और लोग, मतलब बेशुमार लोग थिएटर हॉल में जाते हैं आपकी फिल्म देखने के लिए, तो वो जो मज़ा है वो सिर्फ सिनेमा में है, वो टीवी में नहीं है। तो उसका एक अलग मज़ा है फिल्मों का। और जहाँ तक थिएटर का सवाल है, वो एक नॉन प्रोफेशनल तौर पे मुझे थिएटर बेहद पसंद है क्योंकि थिएटर में आराम है, फुर्सत है, कोई जल्दी नहीं है, और एक चीज़ को आप बाकायदा 3-4 महीने तक रिहर्सल कर सकते हैं, उसके बाद आप पेश कर सकते हैं, ऑडियंस भी सामने बैठे हैं। तो हर चीज़ का एक अलग पहलू है, हर एक अलग मज़ा है। तो प्रोफेशनली जिस तरह मैंने कहा, शायद प्रेफरेंस मैं टीवी को दूं, और जहाँ तक मज़े का सवाल है तो शायद प्रेफरेंस को मैं सिनेमा को दूं, और जहाँ तक पर्सनल एक तसल्ली या सेटिस्फेक्शन का सवाल है तब मैं शायद प्रेफरेंस दूं थिएटर को।
3: तो आपने उसे अपने ही साए के घटने बढ़ने से परेशान कर दिया।
4: और क्या करते हुजूर, क्या है कि वहां से निकलने का रास्ता में और कोई मिल नहीं रहा था, और वो बेचारा इतना परेशान था कि उसके दिमाग में इतनी सी भी बात नहीं आ रही थी कि हम उस लाइट को कभी आगे खिसका रहे थे तो कभी पीछे, जिससे उसका साया कभी बढ़ रहा था तो कभी घट रहा था।
5: आपने कभी अपने साये को घटते बढ़ते देखा है?
4: मैडम, हम दूसरों के सायों को नापते रहते हैं, अपनी फिक्र कहाँ। मिस्टर धनाज, आप इतने खामोश क्यों हो गए?
6: नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस
7: आप ये सोच रहे होंगे कि इस केशव कलसी से पहले आपकी मुलाकात क्यों नहीं हुई, क्योंकि अगर होती तो वो जमीन का टुकड़ा आपके हाथों से नहीं जाता।
8: मेरे दोस्त मुझे प्यार से के कहते हैं, काम का कलसी। आप भी मुझे के कहें तो बहुत मुसर्रत हो।
2: और शुरू में मैं ये कहूँ कि मेरी मदर को ये रोल बिल्कुल पसंद नहीं आया कि वो अपने बेटे को ऐसे रूप में देखना पसंद नहीं करती थी। तो उससे मुझको एक अंदाज़ा मिला कि हाँ, शायद ऐसा हो सकता है कि कैरेक्टर या किरदार जो है वो अपनी निजी ज़िंदगी के ऊपर हावी हो जाए। लेकिन अंत में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये ज़रूर है कि आदमी जब कोई किरदार निभाता है तो वो अपनी निजी ज़िंदगी से कुछ ऐसे पहलू, कुछ ऐसी बातें निकाल कर उस किरदार के अंदर डालने की कोशिश करता है। तो ये ज़रूर है कि केशव कलसी का जो किरदार है, मेरे अंदर जब मैंने वो शुरू किया था कैरेक्टर, तो मेरे अंदर कुछ थोड़ा सा गुस्सा था और एक ज़िद थी मेरे अंदर दिखाने की कि मैं इस तरह का रोल कर सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा गुस्सा था, थोड़ी सी ज़िद थी, तो मैंने अपनी ज़िंदगी से ये चीज़ें निकाल कर उस कैरेक्टर के अंदर डाल दी। लेकिन मेरे ख्याल से वो जो कैरेक्टर है वो मेरी निजी ज़िंदगी के ऊपर हावी नहीं हुआ, बल्कि 5.5 साल तक इस कैरेक्टर को निभाते निभाते बीच में कभी कभार ये मुश्किल हुआ कि उस कैरेक्टर के अंदर वही गुस्सा, वही ज़िद, उसको बरकरार रखना मुश्किल हो गया था मेरे लिए 5.5 साल तक। तो बीच में एक बार मैंने उसको थोड़ा सा ढीला भी छोड़ दिया था जानबूझकर, और मुझको लगा कि कोई नोट करेगा नहीं, लेकिन 2-3 लोग मेरे पास आए थे पब्लिक में से, और उनने बाकायदा मुझको गालियां दी कि ये तुमने क्या किया, अचानक तुमने नरम क्यों बना दिया। तब वापस मुझे अपने आप को बिल्कुल कस के रखना पड़ा। तो बहुत ही दिलचस्प रहा यह सफर केशव कलसी के साथ, और मेरे ख्याल से इस सफर से बहुत कुछ सीखने को मिला मुझको।
0: चीलों से टॉम ऑल्टर का बड़ा गहरा लगाव रहा। जैसे कि हमने आपको बताया, टॉम ऑल्टर जब जगाधरी के एक स्कूल में पढ़ाया करते थे, उन दिनों में

0: बच्चों को वो क्रिकेट भी सिखाया करते थे। अगर आप YouTube पर खोजें तो आपको महान सचिन तेंदुलकर का एक बहुत पुराना, लगभग शुरुआती दौर का इंटरव्यू नजर आएगा। वो टॉम ऑल्टर ने ही लिया था। खेलों से अपने जुड़ाव के बारे में टॉम ने हमें बताया था।
1: एक्चुअली खिलाड़ी बनना चाह रहा था, खासकर क्रिकेट का, तो मैं उतना अच्छा खिलाड़ी नहीं था तो मैं बन नहीं पाया। स्पोर्ट्स में मतलब शुरू से बचपन से स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, यूं कहना चाहिए कि एक जुनून सवार रहा मेरे ऊपर स्पोर्ट, आज भी है। स्पोर्ट्स से, स्पोर्ट्स की दुनिया से, खिलाड़ियों से बहुत गहरा है मेरा एक रिश्ता रहा है शुरू से बचपन से। क्रिकेट के साथ धीरे धीरे जो है मेरा रिश्ता और गहरा होता जा रहा है, और लेकिन स्कूल में ऐसा कोई खेल, ऐसा कोई स्पोर्ट था ही नहीं जिसमें मैंने हिस्सा नहीं लिया, स्कूल और कॉलेज में दोनों। और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल तक मैंने बास्केटबॉल में भी हिस्सा लिया, तो बास्केटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, क्रॉस कंट्री, इन सारे जो खेल हैं इन सब में मैंने हिस्सा लिया। आजकल मैं खेलता हूँ क्रिकेट और थोड़ी बहुत रनिंग भी करता हूँ। मैं लिखता भी हूँ स्पोर्ट्स के बारे में, पेपर्स में, मैगजीन्स में स्पोर्ट्स के, मैंने कई प्रोग्राम्स भी बनाए हैं टीवी के लिए, और कमेंट्री भी मैंने दी है। तो मालूम नहीं, स्पोर्ट्स से मुझे एक हमेशा एक प्रेरणा मिलती रहती है कि स्पोर्ट्स जो है हमको बहुत कुछ सिखा सकता है जिंदगी के बारे में, जिंदगी का संघर्ष जो है किस तरह लड़ना चाहिए वो आदमी स्पोर्ट्स से सीख सकता है। तो इसलिए स्पोर्ट्स ने शुरू से लेके आज तक मुझको बहुत सहारा दिया है, सुकून भी दिया है, राहत भी दी है, और मुझको सिखाया बहुत कुछ है स्पोर्ट्स ने।
0: टॉम ऑल्टर का थिएटर से गहरा लगाव रहा है, इस बारे में उन्होंने बताया।
1: थिएटर में इसलिए मैं करता हूँ, ज्यादातर पैसे के लिए तो मैं करता नहीं हूँ थिएटर। पूरा जो सिलसिला है थिएटर का, एक आपने पहले दोस्तों के साथ प्ले को आपने जांचा, फिर आपने पढ़ा, फिर उसके बाद आपने रिहर्सलें की, रिहर्सलों के अंदर इतनी तब्दीलियाँ आ जाती हैं हर चीज़ में, फिर आखिरकार एक परफॉर्मेंस भी होता है वो भी ऑडियंस के सामने, तो एक लंबा एक सफ़र है ये थिएटर का। तो मुझे वो सफ़र बेहद पसंद है, वो सफ़र आपको थिएटर इसमें, सिनेमा और टीवी में नहीं मिलता है। तो वो मुझे बहुत पसंद है, लोगों के साथ दोस्ती कायम करना, नए रिश्ते पैदा हो जाते हैं रिहर्सल करते करते परफॉर्मेंसेस का, और हर परफॉर्मेंस में कुछ नए रंग आ जाते हैं। तो ये मज़ा है थिएटर का कि आपको फुर्सत मिलती है, एक टाइम मिलता है आपको, एक अरसा पूरा आपको मिल जाता है। मैंने मेरे ख्याल से 15-20 प्लेस किए हैं बम्बे में आके। एक प्ले है जो मैं अपने दो बहुत ही अजीज दोस्तों के साथ किया करता था, नसीरुद्दीन शाह और बेंजामिन गिलानी के साथ, उस प्ले का नाम है वेटिंग फॉर गॉडो। इंग्लिश का प्ले है, बहुत ही कठिन प्ले है समझने के लिए भी और समझाने के लिए भी, लेकिन हम लोगों ने कम से कम 50-60 उसके शोज किए हैं, और वो प्ले मुझको बेहद पसंद है, वेटिंग फॉर गॉडो।
0: संगीत में अपनी दिलचस्पी के बारे में टॉम ऑल्टर ने विविध भारती को अपने एक इंटरव्यू में ये बात बताई थी।
1: क्लासिकल संगीत से कोई खास मेरा रिश्ता नहीं रहा है, ना तो हिंदुस्तानी क्लासिकल ना तो इंग्लिश क्लासिकल, लेकिन हाँ पुराने, अब तो खैर पुराने हैं, उस टाइम तो नए थे हमारे लिए, पुराने फिल्मी गीत मुझे बेहद पसंद है। और जहाँ तक इंग्लिश म्यूजिक का संबंध है तो बीटल्स के गाने, फिर ईगल्स के गाने, उससे पहले एक और फोक ग्रुप था पीटर पॉल एंड मैरी, उनके गाने, ये मुझे आज तक मतलब बेहद पसंद है। इंडियन म्यूजिक में हाल ही में कुछ पिछले मैं देख रहा हूँ 1-2 साल से, कहीं से मालूम नहीं कहाँ से मेरे अंदर एक क्लासिकल म्यूजिक में एक दिलचस्पी पैदा हुई है जो पहले बिल्कुल नहीं थी मेरे अंदर। अभी हाल ही में मैं भोपाल में था तो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का एक वहाँ पर कार्यक्रम था, तो फर्स्ट टाइम जिंदगी में मैंने ध्यान से बैठ कर किसी एक इस तरह के प्रोग्राम को सुना, और मेरी आंखों में तो आंसू आ गए सुनते सुनते। तो शायद इस बुढ़ापे में क्लासिकल म्यूजिक में भी एक दिलचस्पी मेरे अंदर पैदा हो रही है, लेकिन अब तक जो है मेरा इंटरेस्ट रहा है या तो फोक म्यूजिक में या तो पॉपुलर म्यूजिक में, रॉक में उतना इंटरेस्ट नहीं है। तो फिल्मी गाने बस वही हमारे तीन जो सितारे हैं, किशोर जी, रफ़ी साहब और मुकेश जी, उनके गाने तो घंटों तक, क्या मैं दिनों महीनों तक सुन सकता हूँ। मैं सच बताऊं कुछ इसका कारण क्या है मैं बता नहीं सकता हूं, लेकिन आजकल जब गाने मैं सुनता हूं तो मुझको 10 बार सोचना पड़ता कि आवाज़ किसकी है। शायद मेरे अंदर दिलचस्पी कम हो गई, या शायद कुछ आवाज़ें जो हैं वो सेम टू सेम होती जा रही हैं। मुश्किल है, मुझको याद है हम आशिकी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जिसमें फर्स्ट टाइम कुमार शानू ने कुछ गाने पेश किए थे, अब मैंने उनकी आवाज़ पहली बार सुनी थी जब नया नया था वो, तो मैंने प्रोड्यूसर से कहा कि ये जो आदमी है कुमार शानू, ये बहुत सक्सेसफुल रहेगा। उस टाइम में कुमार शानू की आवाज़ मुझको

बहुत अच्छी लगी। बाकी जो नए नए हैं वो अब क्या बताऊं मैं, कुछ उनकी आवाज को पहचानने में मुझको तकलीफ, शायद इसलिए कि मैं पुराने जमाने में खोया रहता हूँ। ये गीत मुझे इतना पसंद है कि नाम लेते वक्त भी मजा आता है। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। अच्छा लगता है जब कोई अपना पुकारता है नाम लेकर, अपना ही नाम खास हो जाता है हमारे लिए। इंतजार करना पड़ता है उस मासूम लम्हे के लिए, पर वो लम्हा जब आता है जिंदगी में तो बीतता नहीं, वो ठहर जाता है, वो लम्हा बर्फ हो जाता है हमेशा के लिए। उस लम्हे की खुशबू महका देती है जिंदगी को। अभी तक हम उस लम्हे में जी रहे हैं जब पहली बार तुमने हमें नाम लेकर पुकारा था।

चंद लम्हों में सारी जिंदगी जी लेते हैं हम, जैसे खिड़की से बारिश देखते हैं जब, और बूंदों को महसूस करते हैं अपने चेहरे पर, जैसे समंदर के किनारे बैठकर जब बतियाते हैं लहरों से, जैसे किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर होता है एहसास कि कितना विराट है ये संसार और कितने छोटे हैं हम इन चंद लम्हों में, जैसे हम जी लेते हैं सारा जीवन चंद लम्हों वाला ये जीवन।

तस्वीरों के रंग धुंधले पड़ जाते हैं, पर लम्हों के रंग कायम रहते हैं। काली सफेद तस्वीरों के रंग भले भूरे या धूसर पड़ जाएं, पर ये तस्वीरें जब आती हैं सामने तो छपाक से हम डुबकी लगा लेते हैं बीते हुए वक्त में। पुराने एल्बमों से इसीलिए तो प्यार होता है हम सबको। किसी फुर्सत के दिन जब खोलते हैं पुराना कोई एल्बम, तो बीते वक्त के गलियारों में खूब टहलना होता है। यूं आती है बीते हुए दिनों की याद, जैसे अभी कल ही तो जिया था हमने ये सब।

जो काम पुरानी तस्वीरें करती हैं वही काम करते हैं पुराने गाने। कोई एक गीत, कोई एक सुर, कोई एक पंक्ति हमें ले जाती है कई बरस पीछे। अंताक्षरी वाला वो दिन, वो तुमसे चुपके से नजरें मिलाना, वो फिल्मी गानों के बहाने सबके सामने अपनी बातें कहना। कितने शरारती थे ना हम हमेशा से, अब देखो ना ये बजा पुराना गाना और ये चल पड़े हम बीते वक्त की यादों के रास्ते पर।

लोग जमा करते हैं जाने कौन कौन सी महंगी चीजें, जेवर। लोग परदेश जाते हैं खूबसूरत जगहों पर। दुनिया चीजों के प्यार में मुब्तिला हो जाती है। जिंदगी वो है जिसमें चीजें नहीं जज्बात जमा किए जाएं। जिंदगी वो है जिसमें हो प्यार की रोशनी। जिंदगी वो है जिसमें दो दिल एक ही लय और ताल पर धड़कते हों, जिसमें हम एक दूसरे के लिए जीते हों।

तुम्हारे देख भर लेने से दुनिया खूबसूरत लगने लगती है हमें। जरा सोचो, एक निगाह, एक मुस्कान भी बदल सकती है किसी की दुनिया। प्यार हो जाना दुनिया की सबसे खूबसूरत घटना है, और प्यार में जीना सबसे खूबसूरत बना देता है जिंदगी को। आओ हम इस संगदिल दुनिया में प्यार के नर्म फूल खिलाएं।

0: खबर मिल।
1: फिल्म भूल न जाना, संगीतकार दान सिंह।
2: एक चमेली के मंडवे तले, एक चमेली के मंडवे।
1: फिल्म चा चा चा, संगीतकार इकबाल कुरैशी।
3: फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम।
1: फिल्म ये दिल किसको दूं, संगीतकार इकबाल कुरैशी।

0: फिल्म माई लव, संगीतकार दान सिंह।
1: हम तेरे बिन जी ना सकेंगे सनम, हम तेरे बिन जी ना सकेंगे सनम।
0: फिल्म ठाकुर जरनैल सिंह, संगीतकार गणेश।
2: तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार।
0: फिल्म सखी रॉबिन, संगीतकार रॉबिन बनर्जी। आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को, नमस्कार।

0: विविधा के सभी सुनने वालों को जयंत पात्रीकर
1: और मनीषा जैन का
0: नमस्कार।
1: आज की जो विविधा है इसमें फुहारों की बात होगी, लेकिन ये जो वर्षा है ये सुरों की वर्षा है और सुरों की इस रस वर्षा में हम भीगेंगे। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में दो महान संगीतकारों की बात, एक ऐसे संगीतकार की बात जिन्होंने हिंदी फिल्म संगीत को बहुत कर्णप्रिय की थी, और एक और संगीतकार की बात जिनके बारे में सिर्फ एक ही शब्द निकलता है और वो है वर्सेटाइल। तो हमारे श्रोता समझ रहे हैं हम किनकी बात करने जा रहे हैं।
0: दो संगीतकारों की हम बात करने वाले हैं, इनमें जो सीनियर है, वरिष्ठतम हाँ। है, उनकी बात पहले करते हैं
1: जी।
0: कल्याण जी वीर जी शाह,
1: वाह, एक से एक सुंदर मीठे धुनों के रचयिता कल्याण जी वीर जी शाह।
0: मूलतः ये शाह परिवार गुजरात का जो कच्छ इलाका है
1: जी जी।
0: वहाँ के कुंद्रोड़ी गांव का रहने वाला था और कल्याण जी के पिता मुंबई आ बसे थे व्यापार करने के लिए
1: जी।
0: और दोनों भाई कल्याण जी और आनंद जी उन दिनों व्यापार में अपने पिता का हाथ भी बटाते और संगीत सीखा करते।
1: हाँ, और बड़ी दिलचस्प बातें उस समय से जुड़ी हुई हैं जो कई बार हमारे श्रोताओं ने भी सुनी है, मुझे लगता है उन्हें भी पता है।

0: लेकिन ये जरूर है कि उनके जो शॉप थी, उनकी जो दुकान थी, वहाँ एक संगीत रसिक आया करते थे
1: जी जी।
0: और उनके साथ ये बातचीत जुड़ी हुई है।
1: वो संगीत शिक्षक थे असल में, वो कल्याण जी के पिता की उसी दुकान के ग्राहक थे, बहुत पुराने ग्राहक थे। और सौदा ऐसे ही तय हुआ करता था हमेशा कि जो पैसे उन्हें देने होते हैं उसके बदले वो कल्याण जी और आनंद जी को संगीत सिखाया करते थे।
0: क्या बात है, देखिए कहां कहां कैसी कैसी संगीत रचा बसा है। एक दुकान है जहां पिता के साथ दो पुत्र हैं और वहां संगीत का जो है माहौल बना हुआ है। क्या ही सुंदर दृश्य होगा और क्या ही सुंदर बातें हैं ये जो हम सुनते हैं।
1: और जिस इलाके में ये लोग रहा करते थे शाह परिवार, वहां बहुत से गुजराती और मराठी संगीत प्रेमी बसते थे।
0: हाँ।
1: जी, पूरा माहौल ऐसा था कि गणेश उत्सव हो या दुर्गा उत्सव हो, अलग अलग अवसरों पर संगीत के कार्यक्रम वहां हुआ करते थे। और कल्याण जी और आनंद जी को बचपन से ही मौका मिलता रहा संगीत वो सुना करते, सीखा करते, बहुत से वाद्य वो बजाया करते। और चूंकि कल्याण जी बड़े भाई थे, वो पहले इंडस्ट्री की तरफ आए। और 1954 की बात है कि एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, या हम ये कह सकते हैं कि वो भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जो विदेश से आया था।
0: कौन सा?
1: उसका नाम था क्लेवियोलाइन। और इसमें किसी कीबोर्ड या पियानो की जैसी कीज थी
0: जी जी।
1: और उस कीबोर्ड पे इन्होंने वो धुन बजाई थी जिसे हम नागिन धुन के नाम से जानते हैं।
0: हाँ, हेमंत दा ने अपनी फिल्म नागिन में उसी धुन का प्रयोग किया है। और हमारे श्रोता बखूबी जानते हैं कि कल्याण जी भाई ने इस धुन को बजाया और अमर धुन हो गई ये।
1: बिल्कुल। और फिर तो सिलसिला चल पड़ा। पहले वाद्य बजाते थे, बाद में कल्याण जी भाई असिस्ट किया करते थे हेमंत कुमार जी को।
0: जी जी।
1: और फिर उन्हें मौका मिला स्वतंत्र रूप से एक फिल्म के संगीतकार बनने का, और वो फिल्म थी सम्राट चंद्रगुप्त।
0: और क्या ही मीठे गीत उस फिल्म के हैं। तो श्रोताओं, आज हम इतनी बातें कर रहे हैं कल्याण जी वीरजी शाह की, उनकी पहली फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त तक की जो यात्रा है उसका एक संक्षेप में विवरण अभी तक जयंत जी ने दिया। और मुझे लगता है ये समय आ गया है जब बाकी की बातें जो हैं या इसके अलावा जो बातें हैं वो स्वयं हम कल्याण जी के स्वर में ही क्यों न सुने। और आज श्रोताओं, कल्याण जी वीरजी शाह जी को हम याद कर रहे हैं हमारे कार्यक्रम विविधा में। 30 जून उनका जन्म दिवस है, तो आज विविधा में जो सबसे पहली प्रस्तुति है वो यही है। श्रोताओं, संगीतकार कल्याण जी वीरजी शाह से बातचीत की ये रिकॉर्डिंग जिसे हम अपने संग्रहालय से लेकर आए हैं, और कल्याण जी से बातचीत की है गणेश शर्मा ने।
2: ये सब जानते हैं कि नागिन की वो मशहूर बीन आपने, कल्याण जी भाई ने ही बजाई थी, उसकी कुछ यादें हमें बताइए।
3: शॉर्ट में कहूँगा कि वो क्लेवियोलाइन इंस्ट्रूमेंट था, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट था, जो उस टाइम फर्स्ट सिंथेसाइजर आया था। उसके बाद तो अभी सिंथेसाइजर की दुनिया हो गई। और उसमें वो कॉम्बिनेशन था नहीं एक्चुअली नागिन बीन, क्योंकि फॉरेन में तो बीन समझती नहीं, तो हमने कुछ कॉम्बिनेशन बना के वो एक नाग पंचमी करके एक पिक्चर थी, नाग कहीं जा बसी हो रही मेरे पिया को नदर्सी हुई। उसके बाद ये सुन के वो मुझे लगता है जालान साहब ने सुना था, और उनके बाद हेमंत कुमार जी ने, वो नागिन पीछे बन रही थी उसके लिए मुझे बुलाया गया, और फिर उसमें नागिन बीन बजाई मैंने। और वो आप पूछेंगे कि उसमें कोई कोई इंटरेस्टिंग बात सुनाइए, तो मुझे याद है बरोबर कि लता जी उस टाइम ही कह रही थी कि कल्याण जी कुछ भी बोलो मुझे लगता है कि ये गाना ऐसा सुपरहिट होने वाला है कि आप याद करेंगे, मेरी बात याद करना। आज भी हम याद करते हैं, सही लता जी ने कहा था उससे।

0: कलन जी भाई, फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त आपकी पहली फिल्म थी जिसमें आपने संगीत दिया, और उस फिल्म में लता मंगेशकर ने आपके लिए गीत गाए। उसके बाद तो आपका लता जी के साथ में एसोसिएशन बहुत सारे गानों में रहा, कुछ बताइए।
1: लता जी के बारे में कुछ कहना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उनका गाना ही कह रहा है कि वो क्या थे। अभी हमें लता मंगेशकर अवार्ड मध्य प्रदेश का होता है, वो हमें इस साल का मिला, तो वहाँ भी मैंने कहा कि इंदौर में जन्म हुआ उनका, और इंदौर में जन्म हुआ उसी टाइम से लगा कि फिल्म संगीत का जन्म हुआ, इससे ज़्यादा वर्ड मेरे पास नहीं है। और एज ए म्यूजिक डायरेक्टर मैं कह सकता हूँ कि जब भी हम गाना रिकॉर्ड करके आते हैं तो वही गाना हम जब सुनते हैं तो, और किसी भी सिंगर का गाना जब भी सुनाते हैं, ऐसा लगता है कि ज़रा और यहाँ कुछ करते तो और अच्छा हो सकता था। लेकिन ये एक ऐसी सिंगर कि जब भी हम गाना लिखे कभी ऐसा लगा नहीं कि नहीं नहीं नहीं अभी कुछ कम रह गया, बस यही, बस इनकी खूबी, ऐसे आगे कुछ नहीं।